मीडियम बीफ 462.96 मीटर अर्थात 648 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के वैशाख मास की 22वीं तिथि, तदनुसार 12 मई सन 2026। हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 5:57 होने को हैं। अब हमारी आज की प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है।

ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। सुबह के 6 बजने को है। कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे जिन्हें हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संघर्ष को इस दशक के सबसे बड़े संकटों में से एक बताते हुए राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए नागरिकों से एकजुट होने का आह्वान किया है। वडोदरा में सरदार धाम छात्रावास का लोकार्पण करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है कि इस स्थिति का देशवासियों पर कम से कम प्रभाव पड़े। प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से सात सूत्री अपील को अपनाने का आग्रह किया है।
1: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टाले।
0: प्रधानमंत्री ने देशवासियों से विदेशों से आयातित उत्पादों का उपयोग कम करने और विदेशी मुद्रा के व्यय से जुड़े व्यक्तिगत कार्यों से बचने का आग्रह किया। सरकार ने कहा है कि देश में पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं है। कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का 60 दिन और एलपीजी का 45 दिन का भंडार उपलब्ध है। विदेशी मुद्रा भंडार 703 अरब डॉलर के स्तर पर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में हुई मंत्री समूह की बैठक में ये जानकारी दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार से 5 देशों की यात्रा पर रवाना होंगे। पहले चरण में वे शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे, विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग तथा परस्पर हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत होगी। यात्रा के साथ संबंधों को नई गति मिलेगी। इसके बाद श्री मोदी रविवार को स्वीडन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। वहां स्वीडन के प्रधानमंत्री अल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत में द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की जाएगी तथा व्यापार और विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के नए उपाय तलाशे जाएंगे। दोनों प्रधानमंत्री यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेन के साथ उद्योग जगत प्रमुखों को संबोधित करेंगे। यात्रा के चौथे चरण में प्रधानमंत्री मोदी सोमवार को नॉर्वे पहुंचेंगे। वे तीसरे भारत नॉर्वे शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी इस महीने की 19 तारीख से इटली की आधिकारिक यात्रा पर होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की 5 देशों की यात्रा से यूरोप के साथ भारत की साझेदारी मजबूत होगी। असम में आज हिमंता बिस्वा सरमा लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। गुवाहाटी में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्य के मुख्यमंत्री कार्यक्रम में शामिल होंगे। पुदुचेरी में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन नेता एन रंगासामी मुख्यमंत्री पद की शपथ बुधवार को लेंगे। अमेरिका और ईरान के बीच कमजोर संघर्ष विराम के लाइफ सपोर्ट पर होने के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टिप्पणी के बाद राजनयिक तनाव गहरा हो गया है और तेल बाजारों को झटका

0: लगा है। ईरान ने अमरीका के शांति प्रस्ताव पर अपनी प्रतिक्रिया में अमरीकी प्रतिबंध हटाए जाने, ईरान की फ्रीज परिसंपत्तियां खोलने, अमरीकी नाकाबंदी समाप्त करने और हॉर्मुज जल डमरू मध्य पर ईरानी प्रबंधन को मान्यता देने की मांग की थी, लेकिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इन शर्तों को नामंजूर कर दिया था। शांति प्रस्ताव खारिज होने के बाद कच्चे तेल की कीमतों में 4% से अधिक का उछाल आया है। आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने पंजाब किंग्स को 3 विकेट से हरा दिया। 211 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए दिल्ली कैपिटल्स ने 19 ओवर में 7 विकेट पर 216 रन बनाकर मैच जीत लिया। आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला अहमदाबाद में सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। लीजिए सुनिए भक्ति संगीत का प्रातःकालीन आयोजन वंदना।

उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में हिंद महासागर तक और पूर्व से पश्चिम तक भारत भूमि की महिमा अपरंपार है। हर दिशा में भारत माता का जयगान गूंज रहा है। हर दिशा से गूंजता भारत का संदेश विश्व में देश की अखंडता और संप्रभुता का प्रतीक है।

हे ईश्वर, हमें इतनी शक्ति प्रदान करें कि हम सही मार्ग पर चल सकें और अपने मन में उठने वाले बुरे विचारों और कमजोरियों पर विजय पा सकें। आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें कि हम दूसरों के प्रति करुणा, प्रेम और सहानुभूति रखें तथा कभी भी गलत रास्ते की ओर आकर्षित न हों।

मीरा के लिए उनके आराध्य श्री कृष्ण जीवन और प्राणों का एकमात्र आधार हैं। उनके लिए भगवान केवल पूजा के विषय नहीं बल्कि उनके अस्तित्व का सार हैं।

जब प्रेम में आकर्षण, अपनापन और समर्पण का भाव अधिक होता है तो प्रिय से दूरी विरह का भाव दर्शाती है। अपने प्रिय की एक झलक ही मन को आनंदित कर देती है।

मीरा के लिए कृष्ण केवल एक देवता नहीं बल्कि उनके सच्चे पति प्रियतम और जीवन के आधार हैं। उनका ये प्रेम सामाजिक बंधनों और परंपराओं से परे है जिसे सांसारिक दृष्टि से नहीं आंका जा सकता।

मर्यादा को किसी धर्म से हटा दिया जाए तो वह धर्म केवल बाहरी रूप और कर्मकांड मात्र रह जाता है। दया ही अपने आप में सर्वोच्च धर्म है, क्योंकि दया मनुष्य को भीतर से शुद्ध करती है, उसके मन और हृदय में दिव्यता का संचार करती है और उसे आत्मिक विकास के मार्ग पर अग्रसर करती है। दया को परमात्मा का निजी जन्मजात गुण कहा गया है। जब किसी मनुष्य के हृदय में दया का प्रकाश जगता है तो वह केवल एक गुण का उदय नहीं होता, बल्कि उस मनुष्य के भीतर परमात्मा का ही आलोक प्रकट होने लगता है। भगवान दया के रूप है, भगवान दया के स्वरूप है, इसलिए दयालु हृदय में ही उनका सच्चा निवास होता है। जहाँ दया है वहाँ ईश्वर का सानिध्य है, जहाँ करुणा है वहाँ दिव्यता स्वयं चलकर आती है। दया का अभ्यास करने से मनुष्य में स्वतः ही अन्य दैवीय गुण जैसे क्षमा, प्रेम, सहनशीलता, सत्य, शांति, सौहार्द उदित होने लगते हैं। सर्व प्राणियों के प्रति करुणा का भाव रखना ईश्वर तक पहुंचने का सबसे सरल, सहज और निश्चित मार्ग है। दया की शक्ति अपार और असीम है। यह वह शक्ति है जो बिना शोर किए, बिना दिखावा किए, बिना किसी प्रतिफल की इच्छा के स्थायी और अलौकिक विजय प्रदान करती है। दया का स्पर्श पाकर पत्थर से कठोर हृदय भी मोम बन जाते हैं। दया दूसरों का विश्वास जीतने का सबसे पवित्र साधन है। समाज में परस्पर सुरक्षा, विश्वास, सौहार्द और भाईचारे की सबसे बड़ी गारंटी दया है। दया में दूसरों के भले की भावना निहित रहती है, इसलिए यह सामाजिक सुधार और मानवता के उत्कर्ष का एक अतुलनीय माध्यम बन जाती है। दया आत्मा का विशिष्ट गुण है। यह मनुष्य को मनुष्य बनाती है और मनुष्य से ऊपर उठाकर उसे श्रेष्ठ मनुष्य बनाती है। दया का दान संसार में सबसे महान दान कहा गया है, क्योंकि दया केवल वस्तु नहीं देती, बल्कि हृदय को आश्रय, मन को सहारा और जीवन को दिशा देती है। जिसे दया का दान मिलता है उसे लगता है मानो उसे अपने दुख में एक सच्चा साथी, एक सहयोगी, एक विश्वास योग्य मित्र मिल गया है। दया इंसान के भीतर संतोष, प्रसन्नता, उत्साह, उमंग और आशा जैसे दिव्य भावों को जन्म देती है। हम सब परमात्मा से दया की प्रार्थना करते हैं। उसी प्रकार हमारा कर्तव्य भी है कि दूसरों पर दया बरतें। यदि हम दूसरों के प्रति दयालु होंगे तो निश्चित ही परमात्मा भी हमारे प्रति अपनी कृपा बरसाएंगे। यदि समाज का हर व्यक्ति नियमित रूप से दया धर्म का आचरण करे तो मानव समाज के अधिकांश दुख, द्वेष, संघर्ष और कष्ट स्वतः ही मिटने लगेंगे। सामूहिक प्रगति, शालीनता, सद्भावना और मानवीयता का सर्वत्र विकास होने लगेगा। दरअसल किसी भी दुखी, कष्टग्रस्त और आर्त प्राणी को देखकर जिस भाव से हमारे हृदय में सहज हेतु रहित कोमलता और व्यथा निवारण की प्रेरणा उत्पन्न होती है, वही दया है। इस भाव में अपने लाभ, स्वार्थ और प्रसिद्धि की तनिक भी आकांक्षा नहीं होती। दया केवल दया के लिए होती है। वह किसी प्रतिफल, लाभ या अपेक्षा की मोहताज नहीं होती। दया की निर्मलता तभी विकसित होती है जब मनुष्य परमात्मा के शरण में जाता है, जब वह संसार के नियमों और जीवन के उतार चढ़ावों पर दार्शनिक दृष्टि से विचार करता है, जब वह प्रार्थना, भजन, ध्यान, आध्यात्मिक साधनों से अपने भीतर की शुद्धता, निष्प्रियता, निष्कामता और धैर्य को बढ़ाता है। धीरे धीरे भीतर स्थित दया का विशुद्ध, पवित्र और हेतु रहित स्वरूप उजागर होने लगता है। परमात्मा हर परिस्थिति में दया का प्रयोग करने से जीवन में दिव्य संपदा सा अमृतोपम लाभ मिलता है। परंतु दया का फल तभी मिलता है जब उसका आचरण पूर्णतः निष्काम और निस्वार्थ हो। जिस पर आप दया करें उसकी सहायता इस भावना से करें कि यह आपका कर्तव्य है, न कि उससे आपको कोई भविष्य लाभ मिलेगा या वह आपके कार्य आएगा। सच्ची दया वह है जहाँ मैं और मेरा का भाव मिट जाए और केवल सेवा, सहानुभूति और करुणा का भाव शेष रह जाए।

0: आप सुन रहे थे चिंतन, आलेख शालिनी शुक्ला का, वाचक स्वर अमृता विक्रम सिंह का। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। आइए सुनते हैं खेती की बातें। आज हम आपको सुनवा रहे हैं AI का खेती में महत्व, इस विषय पर जानकारी वाचक स्वर तुलसा दरगैया का।
1: किसान भाई नोनी राम राम। किसान भाई नोनी, हम देख ही रहे आज कि आजकल खेती किसानी में नई नई तकनीक आई गई न, नया आधुनिक कृषि यंत्र आई गया, जेका से हमारो काम भी जल्दी हुई जाए न हमारा समय की भी बचत हुई जाए। साथ ही आज का समय में खेती में AI जेका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कवान ओको महत्व भी तेजी से बढ़ी गयो, जेका हम स्मार्ट फार्मिंग या कृषि 4.0 कवान। इन्हीं तकनीक किसान भाई न का डेटा आधारित फैसला लेना में मदद करत, जेका सी उपज की पैदावार भी बढ़त न फसल की लागत भी हमका कम लगत। भाई बहनोनी, AI में आसी संवेदी चीज न रहना, जेका सी हम मट्टी की नमी, उको पोषण स्तर न फसल का स्वास्थ्य को विश्लेषण करी सका, यानी कि हमका पतो चली जाएगा हमारा खेत की मिट्टी में नमी कितनी छे, उको पोषण स्तर काई छे, उका में किना पोषक तत्व न की कमी छे, साथ हमका किस प्रकार से उका में खाद को प्रयोग करा जेका सी हमारी फसल अच्छी आवा। एका द्वारा मोबाइल ऐप से फसल की फोटो खींची न AI तुरंत हमका बीमारी न कीट न को पतो लगी सका कि हमारा खेत में का की बीमारी लगे, हमारी फसल पर कौन सा कीट लगी रहा। साथ AI से हमका भी ये भी पतो चली जाए कि खेत का किना हिस्सा में कितनी सिंचाई करनू या फिर कितना हिस्सा में उर्वरक या कीटनाशक की जरूरत है, जो कि हमारा नुकसान का कम करें। AI से मौसम का पैटर्न को विश्लेषण करी न हम बुवाई करी सका, सिंचाई करी सका न कटाई को सही समय भी पतो लगी सका। भाई बहनोनी, AI सक्षम ड्रोन फसल न पर कीटनाशक न को छिड़काव न फसल की निगरानी करी सका। किसान बहनोनी, बिना ड्राइवर को चलने वालों ट्रैक्टर खेती का आसान बनावज। AI से फसल न की सही देखभाल होनक से उत्पादन में वृद्धि हो, साथ कम संसाधन न का उपयोग से खेती की लागत घटी जाए न किसान भाई न का मुनाफो ज्यादा हो। AI से बदलती जलवायु का अनुसार फसल चयन का प्रबंधन में मदद मिलत, जो कि खाद्य सुरक्षा का लेना जरूरी छे। कहने को मतलब ये कि AI भारतीय कृषि में एक क्रांति लाई रहे, जेका से किसान भाई पारंपरिक खेती से हटी न स्मार्ट न ज्यादा लाभदायक खेती की ओर बढ़ी रहे। तो भाई बहनोनी, AI से फसल की पैदावार अच्छी हो, जो भी फसल हमारा खेत में लगाओ जो कि पैदावार अच्छी हो, जो कि हमको कम लागत लगे न मुनाफो ज्यादा हो, साथ जो भी संसाधन हमारा पास है उको अनुकूलित प्रबंधन हम करी सका न, एक अलावा जो हमारी फसल पर जो भी बीमारी न छे न जो भी कीड़ा लगी रहा उनका बारे में भी हमको जल्दी पतो लगी जाए, जेका से हम तुरंत उनकी रोकथाम करी सका न अपनी फसल का बीमारी न सी कीट न सी बचे सका। तो आज का समय में जो जो नया नया जो कृषि यंत्र आई गया, जो आधुनिक तकनीक आई गया, उनकी हम जानकारी लेवा न उनको अपना खेत में प्रयोग करा। साथ कोई भी फसल बोने से पहले हम अपनी फसल को बीजोपचार जरूर कराना, जेका से हमारी फसल में कोई बीमारी कीट न को प्रकोप नहीं होने को न हमारी जो फसल रहेगा वो लंबा समय तक सुरक्षित भी रहेगा। साथ ही भाई बहनों, एक बात ये भी ध्यान रखा कि हमारा आसपास जो भी कृषि विज्ञान केंद्र छे वहाँ से भी समय समय पर जानकारी लेता रहवा न, जो हमारे पास बीज छे उसकी भी हम गुणवत्ता जांची लेवा कि जो बीज हम अपने खेत में लगाने जाइरा वो अच्छी गुणवत्ता को छे। एकासी का ही होएगा कि हमारी जो फसल रहेगा वो अच्छी रहेगा, वो हमका लागत कम लगेगा न हमका मुनाफा ज़्यादा होगा, साथ ही हमारी फसल को उत्पादन भी हमका ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा। तो भाई बहनोनी, AI को अपनी खेती में उपयोग करा न अपनी फसल का बीमारी न से बचावा न ज्यादा से ज्यादा उत्पादन प्राप्त करा। किसान भाई बहनोनी, हमारो आपसे यह कहना था।
0: AI का खेती में महत्व, इस विषय पर हम आपको सुनवा रहे थे जानकारी, वाचक स्वर तुलसा दरगैया का था और प्रोग्राम था खेती की बातें। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। लीजिए सुनिए श्री रामचरित मानस कान का आज का प्रसंग।

काक भुशुंडी से श्री रामचरित और स्वयं उनके पूर्व जन्मों की कथा सुनकर पक्षीराज गरुड़ के मन का संशय सर्वथा मिट गया, किंतु एक प्रश्न फिर भी उनके मानस में कौंध किया। प्रश्न था कि संत, ऋषि मुनि, वेद सभी ज्ञान को सर्वाधिक दुर्लभ उपलब्धि बताते हैं, किंतु काकभुशुंडी ज्ञान को भक्ति का सा स्थान नहीं देते। ज्ञान और भक्ति में कितना और क्या अंतर है? काकभुशुंडी ने उत्तर दिया, हे पक्षीराज, ज्ञान और भक्ति में कोई भेद नहीं है, दोनों ही भौतिक दुखदैन्य मिटाने वाले हैं। ज्ञान, वैराग्य, योग, विज्ञान ये सब पुरुष हैं जिसका प्रताप प्रबल होता है। इसके विपरीत माया और भक्ति स्त्री वर्ग की हैं। ज्ञानी मुनि भी चंद्रमुखी हिरण सी आंखों वाली स्त्री का रूप देखकर मोहित हो जाते हैं। उधर माया दूसरी स्त्री अर्थात भक्ति को देखकर सकुचा जाती है। रघुनाथ जी को भक्ति अधिक प्रिय है, अतः माया भक्ति से सदा भयभीत रहती है और उस पर हावी नहीं हो सकती।

0: अभी आप श्री रामचरित मानस गान सुन रहे थे। गायक स्वर सुरेश वाटिकर का, संगीत संयोजन सतीश भाटिया का था।
1: दया एक ऐसा
2: युवाओं के जोश, उमंग और ज्ञान से भरे कार्यक्रम युववाणी का प्रसारण होता है प्रतिदिन शाम 5 बजे,
3: जिसमें होती है नित नई जानकारियाँ, मनोरंजन और ज्ञान की बातें।
2: तो सुनते रहिए मालवा की शान,
4: आकाशवाणी इंदौर।
3: आकाशवाणी इंदौर अब मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है।
0: ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। लीजिए सुनिए हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। सुबह 7:20 पर आप सुनेंगे सुनहरे पल प्रोग्राम। ये प्रोग्राम सदाबहार फिल्मी गीतों का प्रोग्राम होता है। सुबह 8:30 हम आपके लिए लेकर आएंगे विज्ञान पत्रिका। लोक संगीत में सुबह 9:00 कलाकार हैं प्रेमलता नारंदी व साथी। सुगम संगीत में 9:15 पर सुनिए बेगम अख्तर को। शास्त्रीय संगीत में 9:30 हम आपको सुनवाएंगे उस्ताद अमजद अली खां का सरोद वादन राग है देसी। सुबह 10:00 होगी जिले की चिट्ठी। 10:05 पर हम लेकर आएंगे सजीव फोन इन कार्यक्रम MH हॉटलाइन। आकाशवाणी मध्य प्रदेश से अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रम हैं इस घंटे की खास खबरें 11:58 पर, 12:58 पर और 2:58 पर। दिन में 11:00 होगा फोन इन कार्यक्रम बात आपके गीत हमारे। 12:30 संग्रहालय से। 1:00 सुनिए महिला कार्यक्रम, जिसमें आप सुनेंगे इंटरनेशनल डे फॉर प्लांट हेल्थ के बारे में। हीट स्ट्रोक से बचें इस विषय पर चर्चा होगी। और मेरी उड़ान क्रम में सुनिए घर से केक का व्यवसाय कर रही सपना यादव से दीप लक्ष्मी त्रिपाठी की बातचीत। काम की बातें में जानिए सोशल मीडिया पर निजी जानकारी शेयर ना करें। 1:30 पर होगा लोक संगीत का प्रोग्राम और 1:45 पर सुनिए सुगम संगीत। 2:00 सुनिए फिल्म संगीत और 2:30 पर होगा आपकी फरमाइश प्रोग्राम।

आप सुनेंगे 12:30 बजे प्रोग्राम, शाम 5 बजे युवाणी में युवा साथी सुनेंगे आज के क्रम में हमारे शहर शिवपुरी के बारे में। 5:45 पर होगा फिल्म संगीत का प्रोग्राम। शाम 6 बजे NCERT ये प्रायोजित कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आएंगे। 6:30 बजे सुगम संगीत में कलाकार हैं मोना शिवरे। 6:45 पर लोक संगीत में सुनिए फतेह सिंह परमार व साथियों को। 7:20 पर खेती गृहस्थी में सुनिए रविंद्र भारती से ली गई भेंट वार्ता, पर्यावरण की सुरक्षा कैसे करें। 8:00 बजे सुर्खियों में हम भोपाल केंद्र से रिले करेंगे और 8:15 पर हम पेश करेंगे प्रोग्राम दिल ने फिर याद किया। 9:15 पर सुनिए चित्रगीत। 9:30 बजे उर्दू कार्यक्रम कहकशां हम भोपाल केंद्र से रिले करेंगे। 10:00 बजे होगा फरमाइशी फिल्मी गीतों का प्रोग्राम मन भावन। 10:30 बजे शास्त्रीय संगीत में सुनिए रागिनी त्रिवेदी का सितार वादन, राग है रागेश्री। आप सुन रहे थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। 6:55 होने को है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार। संस्कृत समाचारों के ठीक बाद हिंदी में समाचार अनुप्रसारित किए जाएंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका ऋचा झा। अथ वार्ताः। पश्चिमैशियायाः संघर्षः दशकस्य बृहत्तमेषु संकटेषु अन्यतमः इति वर्णयन् प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी राष्ट्रीय संसाधनेषु भारः न्यूनीकर्तुं नागरिकाणाम् आह्वानम् अकरोत्। प्रधानमंत्री ह्यः गुजरातस्य वडोदरा नगरे सरदारधाम छात्रावासस्य उद्घाटनानन्तरं जनसभां संबोधयन् आसीत्।
1: पिछले कुछ वर्षों में दुनिया लगातार अस्थिर परिस्थितियों से गुजर रही है। पहले कोरोना का संकट, फिर वैश्विक आर्थिक चुनौतियां और अब पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव। अगर कोरोना महामारी इस सदी का सबसे बड़ा संकट थी तो पश्चिम एशिया में युद्ध से बनी परिस्थितियां इस दशक के बड़े संकटों में से एक है। ऐसे समय में देश को जन भागीदारी की शक्ति की बहुत बड़ी आवश्यकता है। आज जरूरत है कि हम सब मिलकर अपना दायित्व निभाएं, देश के संसाधनों पर पड़ने वाले बोझ को कम करें।
0: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी प्रोक्तवान् यत् केन्द्र प्रशासनस्य निरन्तर प्रयासैः भारतं पश्चिमैशिया संघर्षेण उत्पन्नस्य ऊर्जा संकटस्य प्रभावी रीत्या प्रबन्धनं करोति। प्रधानमंत्री अवदत् यत् देशस्य जनेभ्यः अस्याः स्थितेः न्यूनतमः प्रभावः भवेत् इति सुनिश्चेतुं प्रशासनं निरन्तरं प्रयतमानः अस्ति इति। असौ एतदपि कथितवान् यत् आगामि एकवर्षं यावत् तैलेन्धनानां संयमित उपयोगः करणीयः, तेन अनपेक्षित विदेशयात्राभ्यः दूरीकरणं, स्वर्णक्रयणे नियन्त्रणं तथा स्थानीय वस्तूनां प्राधान्यं स्वीकर्तुं विशेषः आग्रहः कृतः, येन देशस्य अर्थव्यवस्था सुदृढा स्यात्। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी शुक्रवासरात आरभ्य संयुक्तारबामीरात नीदरलैंड स्वीडन नॉर्वे इटली इत्येतेषां देशानां षड् दिवसीय यात्रायां प्रस्थास्यति। स्वीय पंच देशानां यात्रायां प्रथमे चरणे श्रीमोदी शुक्रवासरे संयुक्तारबामीरातं सम्प्राप्स्यति, यत्र असौ राष्ट्रपतिना शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान इत्यनेन सह मेलनं करिष्यति। द्वौ नेतारौ द्विपाक्षिक विषयेष् विशेषतया ऊर्जा सहयोगे सहैव पारस्परिक हितस्य क्षेत्रीयान्ताराष्ट्रिय विषयेष् विचार विनिमयं करिष्यतः। स्वीय यात्रायाः द्वितीये चरणे प्रधानमंत्री शुक्रवासरे नीदरलैंड देशं सम्प्राप्स्यति। सप्तदशाधिकद्विसहस्रतमे वर्षे स्वान्तिम यात्रायाः अनन्तरं प्रधानमन्त्रिणः नीदरलैंड देशस्य इयं द्वितीया यात्रा भविष्यति इति। यात्रायाः तृतीये चरणे श्रीमोदी रविवासरे स्वीडन देशस्य गोथेनबर्ग नगरं गमिष्यति। श्रीमोदी स्वीडन देशस्य समकक्षेण उल्फ टर्सन्स इत्यनेन सह विभिन्नेष् विषयेष् द्विपाक्षिक वार्ताम् करिष्यति। विदेश मन्त्रालयः अवदत् यत् प्रधानमन्त्रिणः आगामि यात्रा सद्यः सम्पन्नस्य भारत यूरोपीय संघस्य मुक्त व्यापार सहमतेः दृष्ट्या विविध क्षेत्रेष् विशेषतया व्यापार निवेश सम्बन्धेष् यूरोपेन सह भारतस्य सहभागित्वम् इतोऽपि सुदृढं करिष्यति इति। भाजपा दलस्य नेता हिमंत बिस्वा शर्मा इत्येषः अद्य चतुर्मन्त्रिभिः सह असमराज्यस्य मुख्यमंत्री रूपेण शपथवचनं ग्रहीष्यति। असमराज्ये तृतीयवारं एनडीए प्रशासनं भविष्यति, यस्य नेतृत्वं शर्मा वर्यः निरन्तरं द्वितीयवारं मुख्यमन्त्रित्वेन करिष्यति। आईपीएल इति क्रिकेट प्रतिस्पर्धायां धर्मशाला इत्यत्र हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम इत्येतस्मिन् क्रीडांगणे दिल्ली कैपिटल्स दलेन पंजाब किंग्स दलं त्रिस्तोभिः पराजितम् इति वार्ताः।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संघर्ष को इस दशक के सबसे बड़े संकट में से एक बताया है। उन्होंने राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए नागरिकों से एकजुट होने का आह्वान किया। वडोदरा में कल सरदार धाम छात्रावास का लोकार्पण करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है कि इस स्थिति का देशवासियों पर कम प्रभाव पड़े। प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से सात सूत्री अपील को अपनाने का आग्रह किया।
1: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टाले।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को पांच देशों की यात्रा पर रवाना होंगे। पहले चरण में शुक्रवार को प्रधानमंत्री संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे, विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग तथा परस्पर हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत होने की संभावना है। दूसरे चरण में प्रधानमंत्री शुक्रवार को ही नीदरलैंड्स पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी नरेश विलेम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से मुलाकात करेंगे। इसके बाद श्री मोदी रविवार को स्वीडन की यात्रा पर गोथनबर्ग पहुंचेंगे। यात्रा के चौथे चरण में प्रधानमंत्री मोदी सोमवार को नॉर्वे पहुंचेंगे। वे तीसरे भारत नॉर्वे शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी इस महीने की 19 तारीख से इटली की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी नेता हिमंत बिस्व शर्मा आज दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। ये असम में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की तीसरी सरकार होगी। श्री शर्मा लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। वे राज्य में ये उपलब्धि हासिल करने वाले एकमात्र गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री हैं। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृहमंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन तथा एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी उपस्थित रहेंगे। तमिलनाडु में ऑल इंडिया अन्ना डीएमके के 30 विधायकों ने पी वेलु मणि को विधायक दल का नेता और सी विजय भास्कर को सचेतक चुनने की घोषणा की है। इन विधायकों ने अस्थायी अध्यक्ष करुपैया से मुलाकात कर अपने हस्ताक्षर वाला पत्र उन्हें सौंपा। वहीं 17 विधायकों के एक अन्य समूह ने इडप्पडी के पलनीसामी को विधायक दल का नेता चुना है। इस विधानसभा सत्र में मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय की नेतृत्व वाली नई सरकार को बुधवार तक बहुमत साबित करना है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि देश में खाद्यान्न का पर्याप्त भंडार है और किसी तरह का कोई अभाव नहीं है। नई दिल्ली में कल स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के साथ कृषि बदलाव से स्वास्थ्य के लिए विज्ञान की उत्कृष्टता सेहत का शुभारंभ करते हुए श्री चौहान ने कहा कि इस पहल से लोगों के लिए स्वास्थ्य के लिए लाभदायक जीवन शैली को बढ़ावा देने में सहायता मिलेगी।
2: सदियों से कहा गया है, पहला सुख निरोगी काया, शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम। अगर शरीर स्वस्थ है तो आप सब धर्मों का पालन कर सकते हैं। जो शरीर के लिए उपयोगी है, स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है, पोषण के लिए उपयोगी है, वही खाओ, संतुलित आहार।
0: खान मंत्रालय जम्मू कश्मीर में चूना पत्थर खंडों की नीलामी का दूसरा चरण आज से शुरू करेगा। इसके अंतर्गत 12 चूना पत्थर खंडों की नीलामी होगी। प्रवर्तन निदेशालय ने पश्चिम बंगाल सरकार के पूर्व अग्निशमन और आपातकालीन सेवा मंत्री सुजीत बसु को दक्षिण दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले के सिलसिले में कोलकाता से गिरफ्तार किया है। सुजीत बसु पर तृणमूल कांग्रेस सरकार के दौरान नगर पालिका में नौकरी दिलाने के बदले धन और अन्य लाभ लेने का आरोप है। ईडी गिरफ्तार पूर्व मंत्री को आज अदालत में पेश करेगी। आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने पंजाब किंग्स को 3 विकेट से हरा दिया है। 211 रन के लक्ष्य के जवाब में दिल्ली कैपिटल्स ने 19 ओवर में 7 विकेट पर 216 रन बनाकर मैच जीत लिया। माधव तिवारी को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। मीडियम में 462.96 मीटर अर्थात 648 किलोहर्ट्ज़ पर।
4: अरे आप लोगों को मालूम पड़ा कि नहीं?
5: क्या?
4: अब आकाशवाणी इंदौर पूरी दुनिया में सुना जा सकता है।
5: वो कैसे?
4: वो ऐसे कि अब आकाशवाणी इंदौर न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।
5: और सुनेंगे कैसे?
4: इसके लिए अपने मोबाइल फोन पर जाकर डाउनलोड कीजिए न्यूज ऑन AIR ऐप और लाइव रेडियो पर जाकर सुनिए आकाशवाणी इंदौर के कार्यक्रम।
6: तो सुनते रहिए मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।

0: क्या?
1: ये धरती, ये नदिया, ये रैना
0: और
2: आकाशवाणी इंदौर, सुनते रहिए मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।

0: सवेरा बनारस का,
1: शाम अवध की,
0: वादियां हिमालय की,
1: क्या बात है।
0: और इन सब के साथ शान हो मालवा की,
1: तो यहाँ की सुबह और रातें किसी से कम नहीं।
0: तो सुनते रहिए मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।
2: अरे तनिष्का, कहाँ थी इतने दिनों से?
3: अरे राधिका, मैं गई थी कुल्लू मनाली।
2: तो क्या क्या किया कुल्लू मनाली में? मजा आया कि नहीं?
3: अरे काहे का मजा,
2: क्यों, क्या हुआ?
3: अरे मैंने वहाँ आकाशवाणी और विविध भारती इंदौर को बहुत मिस किया।
2: अरे इसमें मिस करने वाली क्या बात है, अब तो आकाशवाणी और विविध भारती इंदौर मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है, तुम्हें नहीं पता?
3: ऐसा क्या, तो अब मैं जब भी बाहर जाऊंगी मोबाइल ऐप के जरिए आकाशवाणी ऐप से जुड़ी रहूंगी।
2: ये हुई ना बात। युवाओं के जोश, उमंग और ज्ञान से भरे कार्यक्रम युववाणी का प्रसारण होता है प्रतिदिन शाम 5 बजे,
3: जिसमें होती है नित नई जानकारियाँ, मनोरंजन और ज्ञान की बातें।
2: तो सुनते रहिए मालवा की शान,
4: आकाशवाणी इंदौर।
3: आकाशवाणी इंदौर अब मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है।
5: NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।
6: अरे आप लोगों को मालूम पड़ा कि नहीं?
7: क्या?
6: अब आकाशवाणी इंदौर पूरी दुनिया में सुना जा सकता है।
7: वो कैसे?
6: वो ऐसे कि अब आकाशवाणी इंदौर न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।
7: और सुनेंगे कैसे?
6: इसके लिए अपने मोबाइल फोन पर जाकर डाउनलोड कीजिए न्यूज ऑन AIR ऐप और लाइव रेडियो पर जाकर सुनिए आकाशवाणी इंदौर के कार्यक्रम।
8: तो सुनते रहिए मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।
9: ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। सुबह के 7:10 होने को हैं। कुछ ही पलों में प्रादेशिक समाचार हम भोपाल केंद्र से रिले करेंगे।
10: प्रादेशिक समाचार होंगे,

0: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं शरद बाघेला। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। भोपाल में इंडो फ्रेंच इन्वेस्टमेंट कॉन्क्लेव आज जुटेंगे फ्रांस की प्रमुख कंपनियों के प्रतिनिधि। मध्य प्रदेश में निवेश पर होगा मंथन। राज्य मंत्री परिषद ने प्रदेश के समग्र विकास और जन कल्याण के लिए 29,540 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी। और प्रदेश में योग को घर घर तक पहुंचाने के लिए आज से शुरू हो रहा है हर घर योग अभियान। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संघर्ष को एक दशक के सबसे बड़े संकटों में से एक बताते हुए राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए नागरिकों से एकजुट होने का आह्वान किया है। कल वडोदरा में सरदार धाम छात्रावास का लोकार्पण करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है कि इस स्थिति का देशवासियों पर कम से कम प्रभाव पड़े। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने लोगों से 7 सूत्रीय अपील को अपनाने का आग्रह दोहराया।
1: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टाले।
0: श्री मोदी ने देशवासियों से विदेशों से आयातित उत्पादों का उपयोग कम करने और विदेशी मुद्रा के व्यय से जुड़े व्यक्तिगत कार्यों से बचने का आग्रह किया। उन्होंने नागरिकों से स्वदेशी उत्पादों का अधिक से अधिक उपयोग करने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सभी नागरिकों से राष्ट्रहित में प्रधानमंत्री के सुझावों को अपनाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक परिवहन सेवाओं का अधिक से अधिक उपयोग किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि वैश्विक संकट और सप्लाई चेन की चुनौतियों को देखते हुए प्रधानमंत्री के सुझावों को अपनाया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने किसानों से डीजल पंप के स्थान पर सोलर पंप के उपयोग और रासायनिक उर्वरकों के उपयोग में कमी लाकर प्राकृतिक खेती अपनाने का आग्रह भी किया। इससे पेट्रोलियम पदार्थ और उर्वरक के आयात में कमी आएगी। भारतीय जनता पार्टी नेता हेमंत बिस्व शर्मा आज दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उनके साथ 4 मंत्री भी शपथ लेंगे, जिनमें से 2 भाजपा और 1-1 सहयोगी दल असम गण परिषद और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट के होंगे। ये असम में एनडीए की तीसरी सरकार होगी। श्री शर्मा लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री के रूप में इसका नेतृत्व करेंगे। वे राज्य में ये उपलब्धि हासिल करने वाले एकमात्र गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री हैं। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री और एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। शपथ ग्रहण समारोह के लिए गुवाहाटी पहुंचे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हेमंत बिस्व शर्मा और उनकी पूरी टीम को शुभकामनाएं दी हैं।
2: गृह मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में और हेमंता जी के कुशल नेतृत्व में यह तीसरी बार सरकार बनने जा रही है। एक नया कीर्तिमान, एक नया युग अगले 5 साल का प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व

0: नेतृत्व में, हेमंता जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार कल स्थापित होने जा रही है। गिल दिल की गहराइयों से हेमंता जी और उनकी पूरी टीम, जो पांच लोगों का शपथ भी दिया जा रहा है, और उसी के साथ प्रदेश की जनता को मेरे तरफ से बहुत बहुत साधुवाद और शुभकामनाएं।
1: भोपाल में आज इंडो फ्रेंच इन्वेस्टमेंट कॉन्क्लेव का आयोजन किया जाएगा, जिसमें निवेश संभावनाओं को लेकर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव विदेशी निवेशकों से संवाद करेंगे। इंडो फ्रेंच चैम्बर ऑफ कॉमर्स एवं इंडस्ट्री और मध्य प्रदेश शासन के सहयोग से कुशाभाऊ अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में आयोजित इस कार्यक्रम में फ्रांस के राजदूत, फ्रांसीसी उद्योग जगत के प्रतिनिधि, वैश्विक कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारी, मध्य प्रदेश शासन के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और प्रदेश के उद्योग प्रतिनिधि शामिल होंगे। कॉन्क्लेव से मध्य प्रदेश और फ्रांस के बीच दीर्घकालिक औद्योगिक, तकनीकी और संस्थागत साझेदारी होगी। इससे राज्य सरकार फ्रांसीसी कंपनियों को मध्य प्रदेश के औद्योगिक वातावरण, निवेश संभावनाओं, नीति समर्थन और तेजी से विकसित हो रहे औद्योगिक इकोसिस्टम से अवगत कराएगी। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या newsonair ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
1: ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रदेश में आज से हर घर योग अभियान शुरू हो रहा है। अभियान में 800 स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र, आयुष्मान आरोग्य मंदिर और सभी चिकित्सालयों में पदस्थ योग शिक्षक 10-15 नागरिकों के छोटे समूह में योग अभ्यास करवाएंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कल एक बयान में कहा कि प्रदेशवासियों को योग से जोड़ने के लिए 21 जून तक यह अभियान चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत पंडित खुशीलाल आयुर्वेद कॉलेज भोपाल के मास्टर ट्रेनर स्टूडियो से 45 मिनट के लाइव योग सेशन आयोजित करेंगे। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से घर घर और जन जन तक योग को पहुंचाने के लिए मिलकर योग अभ्यास करने और निरोग रहने की अपील की है। राज्य मंत्री परिषद ने प्रदेश के समग्र विकास और जन कल्याण के लिए 29,540 करोड़ रुपए से अधिक की स्वीकृति दी है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई बैठक में लोक वित्त पोषित कार्यक्रमों, योजनाओं और परियोजनाओं के परीक्षण के लिए 15,598 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी। शहरी और नगरी मार्गों के नवनिर्माण और सुदृढ़ीकरण के लिए 6,900 करोड़ रुपए, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले वृद्धजनों की पेंशन के लिए 6,116 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई। इसके अलावा बुधनी में MBBS, नर्सिंग और पैरामेडिकल महाविद्यालय की स्थापना के लिए 763 करोड़ 40 लाख रुपए की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति दी गई। नीमच जिले की खुमान सिंह शिवाजी जलाशय सूक्ष्म सिंचाई परियोजना के लिए 163 करोड़ 95 लाख रुपए स्वीकृत किए गए। इंदौर जिले में फार्मर रजिस्ट्री सिचुएशन अभियान को 20 मई तक पूरा करने के लिए डोर टू डोर अभियान चलाया जा रहा है। फार्मर रजिस्ट्री के अंतर्गत फार्मर आईडी बनाए जाने का कार्य केंद्र शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता में शामिल है। फार्मर आईडी के अंतर्गत प्रत्येक कृषक भूमि स्वामी को यूनिक आईडी प्रदान की जाती है, जिससे किसानों को सभी शासकीय योजनाओं का लाभ प्राप्त हो सके। भोपाल में 15 मई से आयोजित होने जा रही भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया अंडर 18 हॉकी सीरीज के लिए भारतीय और ऑस्ट्रेलिया जूनियर टीमें कल भोपाल पहुंची। राजा भोज एयरपोर्ट पर दोनों देशों के खिलाड़ियों और कोचिंग स्टाफ का खेल एवं युवा कल्याण विभाग के अधिकारियों ने स्वागत किया। ये अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला 20 मई 2026 तक भोपाल स्थित उद्धव दास मेहता सेंट्रल सेंटर में आयोजित की जाएगी। अब कुछ समाचार संक्षेप में। राज्य अधिवक्ता परिषद के चुनाव आज इंदौर के 10,537 अधिवक्ता मताधिकार का करेंगे प्रयोग। सतना जिले के नगर परिषद नागौद के वार्ड 13 में होने वाले उपचुनाव को लेकर आचार संहिता के पालन के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए। संस्कृति राज्य मंत्री और खंडवा जिले के प्रभारी मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी आज खंडवा दौरे पर रहेंगे। वे जिले में विकास कार्यों की समीक्षा बैठक लेकर विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। सिवनी जिले में जनगणना 2027 के तहत मकान सूचीकरण और संबंधित प्रारंभिक सर्वे कार्य निर्धारित समय सीमा में पूरा गुणवत्ता के साथ किया जा रहा है। आगरमालवा जिले की नलखेड़ा तहसील के ग्राम डोकरपुरा में कल प्रशासन द्वारा अतिक्रमण के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए लगभग 35 बीघा बहुमूल्य शासकीय गोचर भूमि को मुक्त कराया गया। विदिशा जिले में उर्वरक वितरण प्रणाली में बड़ा बदलाव करते हुए 50% की जरूरत वाली पुरानी व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है। अब किसान ई पोर्टल के माध्यम से अपनी जरूरत का 100% खाद एक बार में उठा सकेंगे। मंडला पुलिस द्वारा जिले में यातायात व्यवस्था को सुचारू और सुरक्षित बनाए रखने के उद्देश्य से लगातार जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में नैनपुर में बस संचालकों की बैठक आयोजित की गई। राजगढ़ में आयोजित समय सीमा बैठक में सीएम हेल्पलाइन, जल गंगा संवर्धन अभियान, ई ऑफिस, आधार निर्माण, ई केवाईसी, सार्थक अटेंडेंस और समय सीमा के प्रकरणों की स्थिति पर विभागवार चर्चा करते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत रायसेन में कलेक्टर की अध्यक्षता में बैठक संपन्न हुई और ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण शिविर का आयोजन आगरमालवा जिले में 31 मई तक जिला मुख्यालय सहित सभी विकासखंडों में किया जा रहा है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए 2:10 पर। दीजिए अनुमति। नमस्कार।

ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। मीडियम वेव 462.96 मीटर अर्थात 648 किलोहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं सदाबहार फिल्म गीतों का प्रोग्राम सुनहरे पल।

उठो ये मंजरे शब्दाब देखने के लिए, सुबह की पहली किरण का साथ हो, गम की हर बात पुरानी हो जाए, नया दिन आपके लिए खुशियां लेकर आए।

आप सुन रहे थे फिल्म आंचल का ये गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में, शब्दरचना मजरू सुल्तानपुरी के, संगीत आर डी वर्मन का। श्रोताओं, सुबह की ये मुलाकात किसी आरती जैसी होती है, बिना शब्द बिना स्वर, और जो इस मौन को सुनना सीख लेता है वो दिन भर शोर में भी शांति खोज लेता है। आइए सुनते हैं प्रोग्राम का अगला गीत।

0: तेरी घर के सामने एस्पन का गीत आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी के सर में, साथी लता मंगेशकर। गीत लिखा श्री जयपुरी ने, सुरों में पिरोया एस टी वर्मन ने।
1: हेलो
2: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
1: फिर से
3: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
4: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
1: सर इतने कहाँ से?
4: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए।
3: 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
1: 2 लाख
5: क्या हुआ पापा?
1: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
3: अरे
1: काट दिया।
5: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
1: फ्रॉड?
5: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
1: तो पैसे गवाओगे।
6: RBI कहता है
7: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

आप सुन रहे थे फिल्म बेटी बेटी का ये गीत मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर के युगल स्वर में। गीतकार शैलेंद्र, संगीतकार शंकर जयकिशन।

आप सुन रहे थे फिल्म ताजमहल का ये नगमा मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ में। नगमा निगार साहिर लुधियानवी, मौसीकार रोशन। सुनहरे पल आपकी सेवा में आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित किया जा रहा है और मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त माजिदा खान।

0: आप सुन रहे थे फिल्म अप्रैल फूल का गीत मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर के स्वर में। गीत लिखा सरद जयपुरी ने, सुरों में पिरोया शंकर जयकिशन ने।
1: युवाओं के जोश, उमंग और ज्ञान से भरे कार्यक्रम युववाणी का प्रसारण होता है प्रतिदिन शाम 5 बजे,
2: जिसमें होती है नित नई जानकारियाँ, मनोरंजन और ज्ञान की बातें।
1: तो सुनते रहिए मालवा की शान,
3: आकाशवाणी इंदौर।
2: आकाशवाणी इंदौर अब मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर भी उपलब्ध है।

आप सुने थे सलील चौधरी के संगीत निर्देशन में मजरू सुल्तानपुरी का लिखा गीत। आवाज मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की। फिल्म का नाम था माया। अब हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म पाकीज़ा का नगमा लता मंगेशकर की आवाज़ में।

आप सुन रहे थे फिल्म पाकीज़ा का ये नगमा लता मंगेशकर की आवाज़ में। गीत लिखा कमाल अमरोही ने, संगीत गुलाम मोहम्मद का। श्रोताओं, आपको याद दिला दें, सुबह 10:05 से आप सुनेंगे सजीव फोन इन कार्यक्रम MH हॉटलाइन। इसके लिए हमारे फ़ोन नंबर से 2710223 और 2710224। इंदौर का सिटी कोड है 0731। तो फ़ोन करना बिल्कुल ना भूलें और फ़ोन करके हमारे साथ बहुत सारी बातें कीजिए और सुनिए अपनी पसंद का फिल्म गीत। तो हमें आपके फ़ोन कॉल्स का इंतज़ार रहेगा। सुनिए 10:05 पर सजीव फोन इन कार्यक्रम MH हॉटलाइन। और अब सुनिए अगला गीत।

आप सुन रहे हैं प्रोग्राम का आखिर गीत, लता मंगेशकर की आवाज़ में फिल्म लोफर से शब्द रचना, आनंद बख्शी की संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

और इसी गीत के साथ सुनहरी पल प्रोग्राम समाप्त करने की अनुमति दीजिए माजिदा खान को। और जाते जाते हम आपसे इतना ही कहना चाहेंगे, फूलों की तरह मुस्कुराते रहिए, चमकते सूरज की तरह जगमगाते रहिए, गम आए तो भी दिल से लगाते रहिए, खुशियों के गीत हर सुबह गुनगुनाते रहिए। अनुमति दीजिए, नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे सदाबहार फिल्मी गीतों का प्रोग्राम सुनहरे पल। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। सुबह के 8 बजने को है, कुछ ही पलों में समाचार होंगे।
1: आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा बचाने के लिए लोगों से ईंधन और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया। वरिष्ठ भाजपा नेता हेमंत बिस्व सरमा आज गुवाहाटी में असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। भाजपा के 2 तथा असम गण परिषद और बोडो पीपुल्स फ्रंट के 1-1 मंत्री भी शपथ लेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने दक्षिणी दमदम नगरपालिका भर्ती घोटाले में पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री सुजीत बसु को गिरफ्तार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ईरान के साथ युद्ध विराम सबसे कमजोर स्थिति में और लाइफ सपोर्ट पर है। और बांग्लादेश ने भारत में आईसीसी T20 क्रिकेट विश्व कप से अपनी टीम के हटने के कारणों की जांच के लिए समिति गठित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा की बचत के लिए लोगों से ईंधन बचाने और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया है। गुजरात के वडोदरा में कल एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने पेट्रोल और डीजल का उपयोग कम करने तथा घर से काम, ऑनलाइन कक्षाएं और वर्चुअल बैठक जैसे कोविड दौर के उपाय अपनाने की अपील दोहराई।
2: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो हम सोने की खरीद को टाले।
1: सरकार ने कहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार है तथा रसोई गैस की आपूर्ति लगातार हो रही है। पश्चिम एशिया के हाल के घटनाक्रम पर कल नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि एलपीजी वितरण केंद्रों पर किसी अभाव की सूचना नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेट्रोल और डीजल का उपभोग कम करने तथा सार्वजनिक परिवहन और कार पूलिंग पर बल दिया है।
3: माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के सभी लोगों से आग्रह किया है कि पेट्रोल और डीजल की खपत कम करें, जहां भी संभव हो मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें, कार पूलिंग का विकल्प चुनें, रेलवे एज अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर गुड्स को प्रेफर करें और जहां भी संभव हो इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग बढ़ाएं।
1: रसायन और उर्वरक मंत्रालय में अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने बताया कि देश में खरीफ सीजन के लिए 51% से अधिक उर्वरक भंडार उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 97 लाख मीट्रिक टन उर्वरक का अतिरिक्त प्रबंधन किया गया है। संवाददाता सम्मेलन में पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय में निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने कहा कि समुद्री क्षेत्र में सभी भारतीय जहाज सुरक्षित हैं। विदेश मंत्रालय में अपर सचिव असीम महाजन ने कहा कि भारतीय दूतावास और वाणिज्य दूतावास समय से सहायता उपलब्ध कराने के लिए लगातार हेल्पलाइन संचालित कर रहे हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने मीडिया को बताया कि भारतीय जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए भारत ईरानी अधिकारियों के संपर्क में है। मंत्रालय ने बताया कि तेहरान में भारतीय दूतावास ने 2500 से अधिक भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालने में मदद की है। भारतीय जनता पार्टी नेता हेमंत बिस्व सरमा आज दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। ये असम में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की 3री सरकार होगी। श्री सरमा लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण करेंगे। वे राज्य में उपलब्धि हासिल करने वाले एकमात्र गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री हैं। एक रिपोर्ट।
4: डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मा के साथ आज चार अन्य मंत्रियों को भी शपथ दिलाई जाएगी। जिन चार कैबिनेट मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी उनमें रामेश्वर तेली, अतुल बोरा, चरण बोरो और अजंता नियोग शामिल हैं। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कई केंद्रीय मंत्री तथा भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। गुवाहाटी के खानापारा स्थित वेटरनरी कॉलेज मैदान को शपथ ग्रहण समारोह के लिए पूरी तरह सजाया गया है। वहीं कामरूप मेट्रो जिला प्रशासन ने शहर के विभिन्न हिस्सों में यातायात सुचारू बनाए रखने और जाम से बचने के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की है। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
1: तमिलनाडु में ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के 30 विधायकों ने पी वेलुमणि को विधायक दल का नेता और सी विजय भास्कर को सचेतक चुनने की घोषणा की है। इन विधायकों ने अस्थायी अध्यक्ष करूपैया से मुलाकात कर अपने हस्ताक्षर वाला पत्र उन्हें सौंपा। वहीं 17 विधायकों की एक समूह ने इडपड्डी के पलनीसामी को विधायक दल का नेता चुना है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नई सरकार को बुधवार तक विधानसभा में बहुमत साबित करना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
5: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
6: परीक्षा एक ऐसा अवसर है और परीक्षा के लिए हेल्दी कंपटीशन की भावना हमारी तैयारी को और बेहतरीन बनाती
5: है। NCPCR आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।
7: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
8: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
7: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। पहले चरण में शुक्रवार को प्रधानमंत्री संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। इस दौरान विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग तथा आपसी हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत होगी। एक रिपोर्ट।
9: संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा के बाद अपनी यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री शुक्रवार को ही नीदरलैंड्स पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी नरेश विलेम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री की यात्रा से नीदरलैंड्स के साथ संबंधों को नई गति मिलेगी। इसके बाद श्री मोदी रविवार को स्वीडन की यात्रा पर गोथनबर्ग पहुंचेंगे। वहां स्वीडन के प्रधानमंत्री अल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत में द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की जाएगी तथा व्यापार और विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के नए उपाय तलाशे जाएंगे। दोनों प्रधानमंत्री यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लायन के साथ उद्योग जगत के प्रमुखों को संबोधित करेंगे। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनोज।
1: प्रवर्तन निदेशालय ने पश्चिम बंगाल में दक्षिणी दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले में पूर्व अग्निशमन और आपात सेवा मंत्री सुजीत बसु को कल कोलकाता से गिरफ्तार कर लिया। निदेशालय ने बताया कि तृणमूल कांग्रेस के शासन में सुजीत बसु ने नगर पालिका में विभिन्न पदों के लिए कथित रूप से लगभग 150 उम्मीदवारों की सिफारिश की थी। प्रवर्तन निदेशालय ने नौकरी देने के बदले कथित रूप से फ्लैट की मांग के अपराध का भी पता लगाया है। जांच एजेंसी को बसु के बैंक खातों में बड़ी राशि जमा होने के भी सबूत मिले हैं। सुजीत बसु को आज विशेष अदालत में पेश किया जाएगा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि देश में खाद्यान्न का पर्याप्त भंडार है और किसी तरह का कोई अभाव नहीं है। नई दिल्ली में कल कृषि बदलाव के स्वास्थ्य के लिए विज्ञान की उत्कृष्टता सेहत पहल का शुभारंभ करते हुए श्री चौहान ने कहा कि इससे लोगों के लिए स्वास्थ्य के लिए लाभदायक जीवन शैली को बढ़ावा देने में सहायता मिलेगी।
10: सदियों से कहा गया है, पहला सुख निरोगी काया, शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम। अगर शरीर स्वस्थ है तो आप सब धर्मों का पालन कर सकते हैं। जो शरीर के लिए उपयोगी है, स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है, पोषण के लिए उपयोगी है, वही खाओ, संतुलित आहार।
1: इस अवसर पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि ये पहल स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए सरकार की सक्रियता दर्शाती है।
11: हम जानते हैं कि हम लोगों ने एक ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोग्रेस किया है, और जब हम ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोग्रेस की बात करते हैं तो हमने हेल्थ सिस्टम्स को भी काफी स्ट्रेंथन किया है। और हमारी कोशिश क्या है कि हम एक्सपैंड करें अफोर्डेबल और हाई क्वालिटी के हेल्थ, और जो हमारा फोकस है वो फोकस है प्रिवेंशन पर, अर्ली डिटेक्शन पर और कॉन्टिन्यूम ऑफ केयर पर।
1: सेहत पहल का उद्देश्य स्वस्थ भारत के लिए कृषि, पोषण और वैज्ञानिक नवाचार को मजबूत करना है। खान मंत्रालय जम्मू कश्मीर में चूना पत्थर खंडों की नीलामी का दूसरा चरण आज से शुरू करेगा। इसके अंतर्गत 12 चूना पत्थर खंडों की नीलामी की जाएगी। खान मंत्रालय ने इन खंडों को संयुक्त राष्ट्र संसाधन वर्गीकरण प्रणाली के 3 और 4 अन्वेषण चरणों के अंतर्गत रखा है। मंत्रालय ने कहा कि संसाधन सीमेंट निर्माण और अवसंरचना जैसे प्रमुख क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण है। इससे क्षेत्र में औद्योगिक विकास और आर्थिक प्रगति को गति मिलेगी। अमरीका और ईरान के बीच कमजोर संघर्ष विराम के लाइफ सपोर्ट पर होने के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टिप्पणी के बाद राजनयिक तनाव गहरा गया है। इससे तेल बाजारों को झटका लगा है। अमरीका ने ईरान के शांति प्रस्ताव पर अपनी प्रतिक्रिया में अमरीकी प्रतिबंध हटाए जाने, ईरान की फ्रीज परिसंपत्तियां खोलने, अमरीकी नाकाबंदी समाप्त करने और हुर्मुज जलडमरू मध्य पर ईरानी प्रबंधन को मान्यता देने की मांग की थी, लेकिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इन शर्तों को नामंजूर कर दिया। शांति प्रस्ताव खारिज होने के बाद कच्चे तेल की कीमतों में 4% से अधिक का उछाल आया है। एक रिपोर्ट।
12: ईरान की मांगे मुख्य रूप से युद्धकालीन परिस्थितियों और आर्थिक दबावों पर केंद्रित रही है, न कि तत्काल परमाणु रियायतों पर, लेकिन फिलहाल अमेरिका इन मांगों को मानने के पक्ष में नहीं है। मध्यस्थ लगातार साझा समाधान खोजने की कोशिश में है, लेकिन युद्ध के दबाव और आर्थिक संकट के कारण स्थिति और जटिल होती जा रही है। इस बीच संयुक्त अरब अमीरात बुनियादी ढांचों पर हुए हमलों पर अपनी प्रतिक्रिया तय कर रहा है। उसने एक राष्ट्रीय समिति का गठन किया है जिसका उद्देश्य देश पर 2,800 से अधिक ड्रोन और मिसाइल हमलों से हुए नुकसान का दस्तावेजीकरण करना है। संयुक्त अरब अमीरात अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कानूनी जवाबदेह तय करने और अपने प्रमुख स्थलों तथा ऊर्जा प्रतिष्ठानों पर हुए हमलों के लिए मुआवजे की मांग करने की तैयारी कर रहा है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
1: बांग्लादेश क्रिकेट टीम के भारत में आईसीसी T20 विश्व कप से हटने के कारणों की जांच के लिए 3 सदस्यों की जांच समिति गठित की गई है। एक रिपोर्ट।
13: इस साल 7 फरवरी से 8 मार्च तक भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में हुई T20 विश्व कप से बांग्लादेश ने अपना नाम वापस ले लिया था। यह फैसला तब लिया गया जब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने सुरक्षा चिंताओं के कारण बांग्लादेश के मैच भारत से श्रीलंका स्थानांतरित करने की मांग को ठुकरा दी। विवाद तब शुरू हुआ जब भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने कथित तौर पर कट्टरपंथी समूहों से धमकियों के बाद बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्ताफिजुर रहमान को IPL से बाहर कर दिया। हालांकि ICC ने कहा कि सुरक्षा व्यवस्था पर्याप्त है, लेकिन इसके बाद अंतरिम सरकार ने BCB को टूर्नामेंट से हटने का निर्देश दिया। नवल सिंह परमार, आकाशवाणी समाचार, ढाका।
1: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सर फिरोजी।
14: धन्यवाद मुकेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेशी मुद्रा बचाने की सलाह सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान के अनुसार मोदी बोले, ऑनलाइन कक्षाओं और काम को प्राथमिकता दें, कोरोना महामारी की तरह इस संकट से भी बाहर निकल आएंगे। पत्र के अनुसार सरकार ने कहा, परेशान ना हो, देश में पर्याप्त पेट्रोल और डीजल उपलब्ध। जनसत्ता के अनुसार पोखरण परीक्षण की याद दिलाते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, कोई ताकत भारत को झुका नहीं सकती। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, कोरोना सदी का सबसे बड़ा संकट था, जंग दशक के बड़े संकटों में से एक। नवभारत टाइम्स इसी खबर पर ऊर्जा में आत्मनिर्भरता शीर्षक से संपादकीय में लिखता है, पीएम नरेंद्र मोदी के बाद सोमवार को पेट्रोलियम और गैस मंत्रालय ने भी लोगों से सार्वजनिक परिवहन और इलेक्ट्रिक व्हीकल का उपयोग करने की अपील की ताकि पेट्रोल डीजल की खपत कम की जा सके। हालांकि सरकार ने यह भरोसा दिया है कि देश में ईंधन की कमी नहीं है। वीर अर्जुन का शीर्षक है, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के शांति प्रस्ताव को पूरी तरह अस्वीकार्य बताकर खारिज किया। दैनिक जागरण की सुर्खी है, बंगाल सरकार का फैसला, सीमा पर बाढ़ के लिए 45 दिन के भीतर देगी जमीन।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा बचाने के लिए लोगों से ईंधन और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया। वरिष्ठ भाजपा नेता हेमंत बिस्व शर्मा आज गुवाहाटी में असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। भाजपा के दो तथा असम गण परिषद और बोडो पीपुल्स फ्रंट के एक एक मंत्री भी शपथ लेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने दक्षिणी दमदम नगरपालिका भर्ती घोटाले में पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री सुजीत बसु को गिरफ्तार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। और बांग्लादेश ने भारत में आईसीसी T20 क्रिकेट विश्व कप से अपनी टीम के हटने के कारणों की जांच के लिए समिति गठित की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
15: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Abhishek Mukhopadhyay. The headlines. Prime Minister Narendra Modi urges people to save fuel and reduce use of foreign products in a bid to save forex amid West Asia crisis. Senior BJP leader Himanta Biswa Sarma to be sworn in as Chief Minister of Assam in Guwahati today. 4 ministers, 2 from BJP and 1 each from AGP and BPF to also take oath. ADRS former West Bengal Minister Sujit Basu in connection with South Damdam Municipality Recruitment Scam. Prime Minister Narendra Modi to be on a 6-day visit to UAE, Netherlands, Sweden and Norway and Italy beginning Friday. US President Donald Trump says ceasefire with Iran is at its weakest and on massive life support. And Bangladesh forms committee to probe reason behind national cricket team's withdrawal from ICC Men's T20 World Cup in India. Prime Minister Narendra Modi has urged people to save fuel and reduce the use of foreign products to save foreign exchange amid West Asia crisis. Addressing a function in Vadodara, Gujarat yesterday evening, Mr. Modi reiterated his earlier appeal to revive COVID-era methods such as work from home, online classes, virtual meetings and reduced consumption of petrol and diesel, stressing on the need for collective efforts to reduce imports and help the country navigate the crisis. Prime Minister said there is a need for all of us to come together and fulfill our responsibility to reduce the burden on the country's resources.
16: आज समय की मांग है कि हम वोकल फॉर लोकल को एक जन आंदोलन बनाएं, विदेशी सामान की जगह लोकल उत्पादों को अपनाएं, अपने गांव, अपने शहर, अपने देश के उद्यमियों को हम ताकत दें। विदेश में वेडिंग इनका फैशन खूब बढ़ रहा है और लेकिन इस पर भी बहुत विदेशी मुद्रा खर्च होती। जरूरी है कि भारत में ही अपनी वैकेशन मनाएं और वेडिंग के लिए भी मैंने मानता हूं कि भारत से अधिक कोई अच्छी पवित्र जगह हो सकती है।
15: Prime Minister said that India spends lakhs of crores of rupees in foreign exchange to import many products from abroad, and the crisis has led to steep rise in imported goods and severely disrupted global supply chains. Mr. Modi said that his government is working to ensure the impact of the crisis on Indians is minimal.
16: सरकार भी लगातार ये प्रयास कर रही है कि देश के सामान्य नागरिक पर इन सारी विपरीत परिस्थितियों का कम से कम असर हो, लेकिन ऐसे समय में देश को जन भागीदारी की शक्ति की बहुत बड़ी आवश्यकता। मेरी देश के हर नागरिक से अपील है, जहां संभव हो पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, मेट्रो का उपयोग करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें।
15: Senior BJP leader Himanta Biswa Sarma will be sworn in as the Chief Minister of Assam in Guwahati today. Assam Governor Lakshman Prasad Acharya will administer him the oath of office and secrecy at a ceremony to be held at the Veterinary College playground in Khanapara area of the city. 4 ministers, including 2 from BJP and 1 each from AGP and BPF, will also take oath along with Chief Minister. We have more from a correspondent.
4: Along with Dr. Himanta Biswa Sarma as Chief Minister, 4 other members of the Council of Ministers will also be sworn in today. The 4 cabinet ministers are Rameshwar Teli, Atul Bora, Charan Boro and Ajanta Niyog. The swearing-in ceremony will be witnessed by Prime Minister Narendra Modi, Union Home Minister Amit Shah, Defence Minister Rajnath Singh, several Union Ministers and Chief Ministers of BJP-ruled states. The Veterinary College ground at Khanapara in Guwahati has been fully decorated to host the swearing-in ceremony. Elaborate arrangements arrangements have been made at the venue in view of the large gathering expected for the event. The Kamrup Metro District Administration has also issued traffic advisories in several parts of the city to avoid congestion and ensure smooth movement of vehicles. Rakesh Dole, Akashwani News, Guwahati.
15: Enforcement Directorate ED has arrested former Fire and Emergency Services Minister of the Government of West Bengal, Sujit Basu, in Kolkata, in connection with the South Domdom Municipality recruitment scam. We have more from a correspondent.
17: After more than 10 hours of interrogation, he is the first former minister to be arrested since the BJP government took charge in Bengal. ED officials say the alleged irregularities took place between 2014 and 2016. According to ED sources, across 17 municipalities, about 1,000 employees were recruited unlawfully. In the recent assembly poll, Bose lost to BJP by over 37,000 votes. According to Enforcement Directorate, the arrest was made under provisions of the Prevention of Money Laundering Act. Investigators have alleged that Bose recommended appointments of several candidates in the South Domdom municipality in exchange for financial benefits. The agency has also reported suspicious financial transactions during the course of the investigation. Sandeep Andashgupta, Akashvani News, Kolkata.
15: This is Akashvani giving you the news. For quick news updates around the clock, follow us on X handle at AIR News Alerts, and for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. Prime Minister Narendra Modi will be on a six-day visit to UAE, Netherlands, Sweden, Norway and Italy from Friday. The visit will further deepen India's partnership with Europe across sectors, particularly trade and investment ties, in light of the recently concluded India-EU FTA. We have more from a correspondent.
18: On the first leg of his five-nation visit, Mr. Modi will reach UAE on Friday, where he will meet the President, Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. The two leaders will exchange views on bilateral issues, in particular energy cooperation, as well as regional and international issues of mutual interest. Then the Prime Minister will reach Netherlands on Friday and call on King William Alexander and Queen Maxima. He will also hold talks with Prime Minister Rob Jetten. For the third leg of the visit, Mr. Modi will travel to Gothenburg, Sweden on Sunday and hold bilateral talks with his Swedish counterpart Ulf Kristersson. In the fourth leg of his visit, the Prime Minister will reach Norway on Monday for the third India-Nordic summit and bilateral engagements. As part of the final leg of his visit, the Prime Minister will undertake an official visit to Italy on Tuesday. During the visit, Mr. Modi will call on the Italian President Sergio Mattarella and hold talks with Prime Minister Giorgia Meloni. With Anupam Mishra, Rishu Jaiswal, Akashvani News, Delhi.
15: U.S. President Donald Trump has said the ceasefire with Iran was at its weakest and on massive life support a day after he rejected Tehran's proposal to end the months-long war as totally unacceptable. In response to a question on the ceasefire with Iran in the wake of the rejection of the peace proposal, Trump told reporters at the Oval Office that it is at its weakest. After reading that piece of garbage they sent, it's on life support, massive life support, he added.
19: It's unbelievably weak. I would call it the weakest right now. After reading that piece of garbage they sent us, they said, I'm not going to waste my time reading it. I would say it's one of the weakest right now. I would say the ceasefire is on massive life support, where the doctor walks in and says, sir, your loved one has approximately a 1% chance of living.
15: Trump received the Iranian proposal on Sunday amid hopes that it could lead to a breakthrough to end the war with Iran that began on February 28th, blocking the key sea route for global oil supplies, leading to fuel shortages in several countries. Our West Asia correspondent has filed this report.
20: Iran's demands focused heavily on wartime and economic conditions rather than immediate nuclear concessions, a framing that Washington appears unwilling to accept at this stage. The gap between the two sides' position remained wide, with mediators struggling to find common ground as battlefield pressures and economic stress continue to mount across West Asia. Meanwhile, in the United Arab Emirates, the government has moved to formalize its response to attacks on national infrastructure. Authorities have established a national committee tasked with documenting damage from more than 2,800 drones and missiles that have struck the Emirati territory. The UAE is now pursuing international legal accountability and seeking reparations for strikes in its landmark and energy facilities. This is Vinod Kumar for Akashvani News from Dubai.
15: In Bangladesh, a three-member inquiry committee has been constituted to probe the reason behind the national cricket team's withdrawal from the ICC Men's T20 World Cup in India. According to an official government order dated May 10th, former Additional Secretary Dr. A.K.M. Oli-Ullah will head the panel, which also includes former Bangladesh captain and current chief selector Habibul Bashar and Supreme Court lawyer Faisal Dastagir. The committee has been asked to submit its findings within 15 working days. We have more from a correspondent.
13: Bangladesh withdrew from the T20 World Cup, jointly hosted by India and Sri Lanka, from February 7 to March 8 this year after the International Cricket Council, ICC, refused a request to shift Bangladesh matches from India to Sri Lanka over security concerns. The controversy emerged after the Board of Control for Cricket in India, BCCI, reportedly dropped Bangladesh pacer Mustafizur Rahman from the IPL following threats from extremist group. The then Bangladesh Cricket Board, BCB, led by Aminul Islam, expressed concern over the safety of players, officials and journalists travelling to India for the tournament. After the ICC stated that security arrangements were adequate, the interim government subsequently directed the BCB to withdraw from the tournament, a decision that drew sharp criticism from former cricketers and sports analysts. Navalsingh Parmar, Akashwani News, Dhaka.
15: In IPL cricket, Delhi Capitals defeated Punjab Kings by 3 wickets at the Himachal Pradesh Cricket Association Stadium in Dharmashala last night. Chasing a target of 211 runs set by Punjab Kings, Delhi Capitals scored 216 for 7 in 19 overs. Skipper Akshar Patel was the highest scorer with 56 runs. David Miller made 51 runs off 28 balls. For Punjab Kings, Arshdeep Singh and Yash Thakur took 2 wickets each. Earlier, Delhi Capitals won the toss and opted to bowl. Put into bat, Punjab Kings scored 210 for 5 in the stipulated 20 overs. Shreyas Iyer was the top scorer with 59 runs, while Priyansh Arya made 56 runs. For Delhi Capitals, Mitchell Starc and Madhav Tiwari scalped 2 wickets each. Madhav Tiwari was adjudged player of the match. Today, Gujarat Titans will take on Sunrisers Hyderabad at the Narendra Modi Stadium, Ahmedabad. The match will start at 7:30 p.m. The Indian Meteorological Department, IMD, has forecast heavy rainfall of Assam, Meghalaya, Sub-Himalayan, West Bengal and Sikkim today. According to IMD, thunderstorms and hailstorms are likely to prevail over Himachal Pradesh, Ladakh and Jammu and Kashmir for the day. The Met Department has predicted thunder squall with wind speed reaching up to 60 km per hour over Delhi, Punjab, Haryana, Chandigarh, Bihar and Uttarakhand today. Thunderstorms and lightning are likely to prevail over Uttar Pradesh, Jharkhand, West Bengal, Odisha, coastal Andhra Pradesh, Karnataka and the northeastern states today. The IMD has issued an orange alert for rain in Uttarkashi, Chamoli, Rudraprayag, Bageshwar and Pithoragarh districts of Uttarakhand for the next 36 hours, while a yellow alert has been issued for the remaining districts. There is possibility of hailstorms and gusty winds in various parts of the state during this period. And now for a look at today's newspapers, it's over to V.C. Pramod.
0: Thank you, Abhishek. The Somnath Amrit Mahotsav is at the sacred Somnath Temple in Gir Somnath, Gujarat, finds prominent mention in most of the dailies this morning. The statesman, quoting Prime Minister Narendra Modi, says, Somnath Temple stands as beacon of unwavering faith, while the pioneer quotes him as saying, no power can bend India. Prime Minister Modi salutes scientists on National Technology Day, highlights push for self-reliant India, reports the statesman. Second day, Prime Minister makes austerity push, invokes COVID-era habits, leads the Indian Express. The Pioneer, in its editorial piece, says, rising crime against senior citizens. The paper elaborates that as India moves steadily towards becoming an aging nation, ensuring safety, dignity and emotional security for senior citizens must become a national priority. India, at present, is a young nation, but it is aging rapidly. By 2050, the country will have a significant elderly population. As the country progresses and new technologies emerge, they also have a downside. They are alienating a large section of society, senior citizens who find it difficult to cope with evolving technology and changing time. Suvendu government begins to implement key pledges, notice the Asian Age. New Delhi all set for first summit of International Big Cat Alliance in June, writes the Economic Times. And finally, the Beatles' first official London museum called the Beatles at 3 Savile Row is set to open next year in the Mayfair building where the band recorded its final album and played its last gig, reports the Hindustan Times. And with that, it's back to you, Abhishek.
15: Thank you, Pramod. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi urges people to save fuel and reduce use of foreign products and bid to save forex amid West Asia crisis. Senior BJP leader Himanta Biswa Sarma to be sworn in as Chief Minister of Assam in Guwahati today. Four ministers, two from BJP and one each from AGP and BPF to also take oath. EDRS former West Bengal Minister Sujit Basu in connection with South Domdom municipality recruitment scam. Prime Minister Narendra Modi to be on a six-day visit to UAE, Netherlands, Sweden, Norway and Italy beginning Friday. US President Donald Trump says ceasefire with Iran is at its weakest and on massive life support. And Bangladesh forms committee to probe reason behind national cricket team's withdrawal from ICC Men's T20 World Cup in India. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा।

0: विज्ञान पत्रिका में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। और श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे हम साइबर सिक्योरिटी के बारे में, किस तरीके के साइबर अपराध हो रहे हैं, किस तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है इंटरनेट के माध्यम से। आपके मोबाइल पर भी फ्रॉड हो सकता है, आपके कंप्यूटर पर भी फ्रॉड हो सकता है। तो शुरुआत करते हैं साइबर सिक्योरिटी, साइबर अपराध और नए जमाने की नए तकनीक की। और इस विषय पर बात करने के लिए हमारे बीच में उपस्थित हैं प्रोफेसर गौरव रावल, जो कि साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं, पेशे से इंजीनियर भी हैं। और साइबर सिक्योरिटी का एक बड़ा नाम गौरव जी हैं। तो सबसे पहले गौरव जी, हम स्वागत करना चाहेंगे आकाशवाणी के स्टूडियोज में आपका।
1: बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
0: गौरव जी, इन दिनों अक्सर सुनने में आता है कि मेरे अकाउंट से पैसे निकल गए, या मेरा फेसबुक हैक कर लिया, मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट हैक कर लिया, मेरा ईमेल हैक कर लिया, या कहें ये भी सुनने में आता कि मेरा मोबाइल भी हैक कर लिया और लोगों को नुकसान होता है। तो ये नुकसान करने के तरीके कौन कौन से हैं, फिर इनके सुरक्षा के बारे में और इनकी टेक्नोलॉजी के बारे में भी हम आपसे बात करेंगे।
1: देखिए, अगर हम साइबर अपराध की बात करते हैं तो साइबर अपराधी नित नए तरीके अपना रहे हैं। जिस तरह से हम नए नए केसेस सामने आ रहे हैं जांच एजेंसियों के सामने, तो एक किसी भी तरीके पे जांच एजेंसियां अपनी पकड़ ग्रिप बनाती हैं, उस पर पारंगत हासिल करती हैं उसको विवेचना करने में, और 3 महीने बाद वो टेक्नोलॉजी स्पैन पुरानी हो जाती है और वो नया तरीका ढूंढ लेते हैं। तो ये बड़ा ही चैलेंज है सुरक्षा एजेंसियों के लिए भी, जाँच एजेंसियों के लिए भी। तो अभी जिस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, वो एक तो वीडियो कॉल पे लोगों को चीटिंग किया जा रहा है, सेक्सटॉर्शन के मामले जिसको हम बोलते हैं, ब्लैकमेलिंग के मामले आ रहे हैं। दूसरा, हमारे पास फेक कॉल्स आ रहे हैं जॉब इंटरव्यू के लिए, लॉटरी के लिए, उस तरह के कॉल पे बनाया। तीसरा, किसी को कोई डरा कर किसी जांच एजेंसी के माध्यम से या उनके उनकी तरोर से फोन लगाकर कि हम दिल्ली पुलिस से बोल रहे हैं, हम सीबीआई से बोल रहे हैं, हम विशेष कोर्ट से बोल रहे हैं और आपके ऊपर कोई केस चल रहा है जिसमें मामला पंजीकृत है, इस तरह के मामले काफी सामने आ रहे हैं। लोगों को इवन एक हमारे अभी कुछ 2 हफ्ते पहले एक केस हुआ था जिसमें एक बच्ची को उन्होंने घर में ही नजरबंद कर दिया था, फोन पे के माध्यम से ही उसको इतना डरा के हैरेस कर दिया कि अब आपको 8 दिन घर से बाहर नहीं निकलना, और वो लड़की सच में भी नहीं निकली घर से बाहर, इतना उनकी बातों में आ गई। और उसने कुछ पैसे भी ट्रांसफर कर दिए उनको फाइन के नाम पे, ऑनलाइन फाइन के नाम। तो इस तरह के मामले अभी बहुत ज्यादा बढ़ गए।
0: ज्यादातर मामलों में गौरव जी ये देखा जा रहा है कि लोगों को जो फाइनेंशियल लॉस है वो बहुत हो रहा है।
1: देखिए, अगर हम बात करें आर्थिक अपराधों की, जिसमें फाइनेंशियल फ्रॉड की हम बात करते हैं, तो इसमें एक तो ओटीपी फ्रॉड आ रहा है हमसे कि ओटीपी जानकर या तो पूछकर या तो किसी ऐप के माध्यम से हमारी स्क्रीन को मिरर करके रिमोट एक्सेस पर लेकर बिना हमसे पूछे हमारा ओटीपी ले लिया जाता है। दूसरा है, एक हम इसको बोलते हैं सोशल इंजीनियरिंग, जिसको सोशल इंजीनियरिंग मतलब आपको फोन किया जा रहा है और आपसे मित्रता की जा रही है, और फिर आपसे आपकी गोपनीय बातें बातों ही बातों में आप पता की जा रही है, और उसके बाद फिर वो सारे क्रेडेंशियल को उपयोग करके ऑनलाइन टूल्स के माध्यम से आपकी बैंकिंग की सारी जानकारियां ले ली जाती हैं। दूसरा है, एक आपको फेक ईमेल भेजकर या एक कोई फेक यूआरएल भेजकर, कोई लिंक भेजकर उस पर बाध्य किया जाता है, प्रेरित किया जाता है कि आप उस पर क्लिक पे लिंक पर क्लिक करें, और जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपकी सारी जानकारियां चुरा ली जाती है। ये जो लिंक होती है इनको हम फिशिंग लिंक बोलते हैं। फिशिंग का मतलब होता है जिस तरह से एक मछुआरा एक जाल डालता है, उसका उद्देश्य उस पूरे तालाब की मछलियों को पकड़ना नहीं होता, उसमें से कुछ चुनिंदा मछलियों को पकड़ना होता है। उसी तरह से ये इस तरह की लिंक, इस तरह के ईमेल, इस तरह के फोन कॉल्स जिसको फेक कॉल्स बोलते हैं, ये 200, 500, 1000 लोगों को किए जाते हैं। इनका उद्देश्य होता है इनमें से कोई 5 या 10 लोग भी इसके उनकी बातों में प्रलोभनों में आकर आ जाए तो उनका काम हो जाता है। तो इस तरह से ये अपराध किए जाते हैं।
0: जब ये अपराध किए जाते हैं तो उस समय उनकी बातों में आ जाना और ये लगना कि ये जो कह रहा है वो ठीक है, ये क्या तकनीक होती है, ये कैसे ऑपरेट करते हैं इन सब फ्रॉड्स को?
1: देखिए, जो भी ये साइबर अपराधी होते हैं उनको ये पता होता है कि आप सभी लोग आज के समय में जागरूक हैं, पढ़े लिखे हैं, लेकिन ये आपके सामने एक ऐसी परिस्थिति और ऐसी इमरजेंसी परिस्थिति उत्पन्न करते हैं या ऐसा दर्शाते हैं कि अगर अभी आपने नहीं किया तो ये उनकी जान पर आ सकता है या उनके लिए बहुत बुरा हो सकता है या आपके लिए बड़ा बुरा हो सकता है, और आपको इस तरह से एक सोशल प्रेशर बनाया जाता है। तो इसके पीछे 2 ही रीज़न है, या तो आपको थ्रेटन दिया जाता है, डराया जाता है, या फिर आपको ग्रीड, आपको लालच दिया जाता है। तो दोनों ही केस में या तो व्यक्ति लालच में आकर, उनके प्रलोभन में आकर, अभी थोड़ा सा प्रॉफिट दिखाकर कोई यूट्यूब चैनल की लिंक भेजी और कहा कि आप हमारे चैनल को लाइक करेंगे और आपको कुछ 1000 रुपये मिलेंगे, और ये शुरू में कुछ 100, 500, 1000 रुपये उनके अकाउंट में क्रेडिट करते भी हैं, उनका विश्वास

0: के लिए। एक बार उनका विश्वास जीत लेते हैं, फिर ये बोलते हैं अगर आप और हमारे साथ इस तरह का बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको एक और डेडिकेटेड ग्रुप है हमारा है उस पर टेलीग्राम पर, हम उस पर आपको ऐड कर लेंगे। और जब उस ग्रुप पर ऐड किया जाता है तो वहाँ पर इस सारे ग्रुप के मेंबर इनके ही सदस्य होते हैं। वहाँ पर वो दिखाया जाता है कि इस ग्रुप में इस व्यक्ति ने अभी हाल 21,000 जीत लिए, उस व्यक्ति ने 50,000 जीत लिए, उस व्यक्ति ने 1,00,000 रुपये कमाई कर ली। तो इस व्यक्ति को ये लगता है कि जब सभी लोग कमा रहे हैं तो क्यों ना मैं भी इस पर इन्वेस्ट करूँ। और फिर इस माध्यमों से जो 1,000 से निवेश करते करते, इन्वेस्टमेंट करते करते, ये 10,000, 1,00,000, 2,00,000, 5,00,000 या 10,00,000 तक भी लोगों से ये फ्रॉड ठग लेते हैं।
1: जी बिल्कुल। कई बार गौरव जी ये देखने में आया है कि ऐसे कॉल्स आते हैं कि आपकी LIC की पॉलिसी एक्सपायर हो रही है, और सामने वाला व्यक्ति इस लालच में आ जाता है कि पहले तो उसे ध्यान नहीं आता है कि कौन सी पॉलिसी थी, एकदम दिमाग पर जोर लगाता है, 3 साल पहले की बात की जाती है आपसे, और वो कह देता है कि चलो कुछ इनकम हो जाएगी, तो फिर वो जो क्रेडेंशियल्स आपके चले जाते हैं, ये कैसे परफॉर्म होता है सारी चीज़ें?
0: देखिए, मैंने आपको बताया कि साइबर अपराध में दो ही तरह से आप ठगी का शिकार होते हैं, या तो आपको डराया जाता है कतिपय परिस्थिति दिखाकर, या आपको लालच दिया जाता है। अब व्यक्ति को लगता है कि शायद मैं भूल गया हूँगा, शायद हो सकता है मेरी लॉटरी लग गई होगी, शायद कोई मैंने पॉलिसी ली हो, या शायद इनको ऐसा भ्रम हो और अगर मुझे कोई इनकम मिल रही है तो मुझे अपनी कुछ जानकारियाँ देने में कोई हर्ज नहीं है। तो लालच में आकर पढ़े लिखे लोग, समझदार लोग, वयोवृद्ध लोग भी अपनी सारे क्रेडेंशियल इनको दे देते हैं और ठगी का शिकार हो जाते हैं।
1: तो इनसे कैसे बचा जाए जो ये इस तरीके के जो आपसे लालच में दे के मांगते हैं, और आपको कभी समझ में नहीं आता कि ये आपसे गलत जानकारी, आपकी जो व्यक्तिगत जानकारियां हैं वो मांग रहा है?
0: देखिए, सबसे पहले तो हमें ये स्वीकारना पड़ेगा कि हमने अपने जीवन में ऐसे कोई पराक्रम या कोई ऐसे कोई चमत्कार नहीं किए जो हमें कोई लॉटरी देगा। तो सबसे पहले तो मैं अपना अवलोकन करूं, अगर मुझे भी ऐसे कॉल आते हैं, आपको भी ऐसे कॉल आते हैं, सामान्य लोगों को इस तरह से कॉल आते हैं कि आपकी लॉटरी लग गई, आपका जॉब लग गया, या आपका कुछ बोनस निकला है सर, कुछ पॉइंट्स आपने जीत लिए हैं, आप वो लक्की विनर हैं, आप क्रेडिट कार्ड आपको फ्री दिया जा रहा है। हमें यह सोचना पड़ेगा कि इस ऑनलाइन दुनिया में एक फ़ोन कॉल पर जो व्यक्ति हमसे बात कर रहा है उसकी हमें कोई ना तो पहचान पता है, ना तो उसका गंतव्य स्थान पता है, वो कहाँ से बोल रहा है, वो कौन व्यक्ति, ना उसका नंबर पता है। कई बार नंबर भी गलत फ्लैश होते हैं हमारे कॉलर आईडी पे, हमारे मोबाइल पर। तो आपको इस ऑनलाइन दुनिया में बड़ा सजग रहने की ज़रूरत है और अवलोकन करने की ज़रूरत है कि जब मैंने ऐसा कोई कार्य नहीं किया तो मुझे ऐसे फ़ोन क्यों आएंगे। फिर भी अगर कोई मुझे अगर ऐसा बोलता है कि अगर आपको इस कोई सा मिला है, तो आप उनसे ये आग्रह करें कि मैं स्वयं प्रस्तुत होकर ये सारे जो भी दस्तावेज आप मांग रहे हैं मैं आपको दूंगा, इसकी बजाय कि उनको व्हाट्सएप पर शेयर करना या फिर किसी अन्य ईमेल के माध्यमों से या अन्य तरीकों से। इस तरह के जो फेक कॉल आते हैं इनको हम फिशिंग कॉल बोलते हैं। जैसे एक चीज़ होती है फिशिंग, मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि फेक लिंक भेजना, फेक SMS भेजना, फेक ईमेल भेजना, इसको हम फिशिंग मेल बोलते हैं, फिशिंग लिंक या फिशिंग ईमेल बोलते हैं, SMS। जब इस तरह के फेक कॉल आते हैं उनको हम विशिंग बोलते हैं। विश मतलब किसी को विश करना कि देखिए हम फला फला बैंक से बोल रहे हैं और आप वो भाग्यशाली विनर है जिसका क्रेडिट कार्ड यहाँ पर सिलेक्ट हुआ है, आपको थोड़ी सी जानकारी देना और आपको फ्री में क्रेडिट कार्ड बन जाएगा जिसमें आपको गोल्डन, आप हमारे अकाउंट होल्डर हैं तो आपको 1,00,000 रुपये तक की लिमिट रहेगी कोई भी क्रेडिट करने से। दूसरा, हमें ये भी एक सामान्य ज्ञान होना चाहिए कि क्रेडिट कार्ड या फिर कोई इस तरह के जो प्रलोभन होते हैं, जो स्कीमें होती हैं लोन लेने की, ये लोन तभी दिया जाता है जब आपको इसकी आवश्यकता हो। तो अगर हमें इन सारी चीज़ों की आवश्यकता नहीं हो क्रेडिट की, भाई क्रेडिट कार्ड में सिर्फ आपको 45 दिनों की और एक मोहलत मिल जाती है, कोई परचेस आपने आज की कोई खरीदारी, आपको 45 दिनों के भीतर भीतर वो क्रेडिट कार्ड बोलता है कि आप वो पैसे भर दीजिए अपने अकाउंट में, भले ही अपने अकाउंट में अभी शून्य बैलेंस हो। तो हमें ये सबसे पहले अपनी ज़रूरतों को, एक हम इस दुनिया में साइबर वर्ल्ड में एक बड़ी टर्म है जो अभी नई उभर कर आई है जिसकी बड़ी आवश्यकता है। जैसे हमने कोविड काल में देखा था कि हमने एक फिजिकल हाइजीन अपनाई थी जिसमें हमने अपने हैंड वॉश, हाथ धोए थे, सैनिटाइज किए थे, अपने आप को सैनिटाइज किया था, हमने 2-3 फुट की दूरी का डिस्टेंस का पालन किया था, मास्क लगाए थे। अब इस ऑनलाइन वर्ल्ड में भी आपको एक हाइजीन का पालन करना, जिसको हम बोलते हैं साइबर हाइजीन। साइबर हाइजीन का मतलब है जब तक उस एप्लीकेशन की, जब तक उस व्यवस्था की या उस फैसिलिटी की, उस सुविधा की मुझे आवश्यकता ना हो, मैं उसके लिए आग्रह करने पर भी कोई अप्लाई ना करूं। जब तक उस चीज़ की, उस एप्लीकेशन की या उस सॉफ्टवेयर की मुझे ज़रूरत नहीं है, अति आवश्यकता नहीं है, तब तक मैं उसको डाउनलोड ना करूं। जब तक ऐसे कोई गेम की मुझे नेसेसिटी नहीं है खेलने की, मैं ऐसा कोई गेम डाउनलोड मोबाइल के माध्यम से ना करूं। क्योंकि ये जो फ्रॉडस्टर होते हैं, साइबर अपराधी होते हैं, ये ऐसी ही विभिन्न साइटों पर अपने स्पायरवेयर या अपने फ्रॉड सॉफ्टवेयर डालते हैं, जहाँ से इनको डाउनलोड करने की ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की विजिट होता है, वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग विजिट करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ से डाउनलोड करते हैं।
1: गौरव जी, ये कैसे पता चले कि कोई एक्स ऐप है वो सिक्योर्ड है और वो फेक नहीं है, ऐसी कोई तकनीक है?
0: देखिए, छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखेंगे, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपको ये ध्यान रखना है कि कोई एप्लीकेशन मुझे आवश्यक है सपोज, तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि ये एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। वहाँ पर हम लोग कई बार सीधे उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेते हैं। आपको देखना है उस ऐप पर जाकर कि उस ऐप पे जो पूर्व में लोगों ने इसको डाउनलोड किया, उनके रिव्यूज़ क्या है। अगर 10 में से 7 लोग कहते हैं कि ये बिल्कुल बकवास ऐप है, या बिल्कुल मेरा डिवाइस उपकरण इसको इंस्टॉल करने के बाद हैंग होने लगा, गर्म होने लगा, या इसको इसमें कोई काम के ऑप्शंस नहीं है, तो आप उसको डाउनलोड ना करें। वहाँ पर हर ऐप में रेटिंग भी होती है 1 से लेकर 5 स्टार तक की। तो अगर 4 या 4.1 से कम की रेटिंग है किसी ऐप में, तो हम उसको डाउनलोड नहीं करेंगे। इसका मतलब है कि वो इतना आवश्यक नहीं है, उसकी कोई उपयोगिता हमारे लिए नहीं है। तीसरा, हमें ये भी देखना चाहिए कि वो ऐप हमसे क्या क्या परमिशन मांग रहा है। मैं अगर आपसे एक सिंपल सा उदाहरण दूं, आप और हमारे सभी के मोबाइल में हम लोग ट्रू कॉलर यूज़ करते हैं। ट्रू कॉलर हम इसलिए यूज़ करते हैं कि जो भी अनजान व्यक्ति मुझे फ़ोन करे, मुझे उसकी आइडेंटिटी पता चल जाए कि कौन व्यक्ति, अगर मैं आपको नहीं जानता हूं और आप मुझे कॉल करें, तो मुझे पता चल जाए कि कोई ब्रह्म प्रकाश जी मुझे कॉल कर रहे हैं। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर ब्रह्म प्रकाश जी ने ट्रू कॉलर में अपना आईडी सुनील कुमार के नाम से सेव कर रखा है, तो अब मुझे उनका नाम सुनील कुमार ही दिखने वाला है। अगर मैंने अपनी ट्रू कॉलर इंस्टॉल करके अपनी आईडी में अपना जो आईडी है, अपनी पहचान गौरव रावल की जगह एसपी इंदौर कर रखा है, तो मुझे वहाँ पर एसपी इंदौर ही आपको दिखेगा, आपको गौरव रावल नहीं दिखेगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अब ट्रू कॉलर की प्रासंगिकता नहीं रही। यानी अब हमारे हम जिस उद्देश्य से उस ऐप को यूज़ कर रहे थे कि किसी की पहचान हमसे गोपनीय ना रहे, अभी भी आपके साथ उसकी पहचान गोपनीय रह सकती है, वो वही पहचान दिखेगी जो वह व्यक्ति दिखाना चाहता है।
1: तो ये एक खतरा तब भी बना हुआ है?
0: जी बिल्कुल बना है
1: जी। अच्छा, कई बार ऐसा देखने में आता है कि जैसे आपने अभी बताया कि जब कोई ऐप डाउनलोड करता है तो बहुत सारी एक्सेस आपसे मांगता है, वो कहता है आपकी पूरी कॉन्टैक्ट लिस्ट का एक्सेस आप दीजिए तो फिर आप डाउनलोड कर सकते हैं, वो कहता है आप अपने कैमरे की एक्सेस दीजिए, मतलब आपके जो जितना फ़ोटो है वो एक्सेस कर सकता है, तो वो तो बहुत सारे एक्सेस मांगता है। यहाँ तक कि कई सरकारी ऐप हैं वो भी ये सारी चीज़ें मांगते हैं जो आवश्यक नहीं है, तो फिर ऐसे में क्या किया जाए?
0: देखिए, मैंने आपको ये कहा कि आपको देखना पड़ेगा कि वो क्या वो ऐप अति आवश्यक है आपके लिए। जैसे आपके लिए अगर ट्रू कॉलर अति आवश्यक नहीं है, तो मैंने अपने उपकरण में ट्रू कॉलर को अनइंस्टॉल कर रखा है। दूसरा, आपको ये भी देखना पड़ेगा कि ये ऐप जो परमिशन मांग रही है, ये ऐप कौन सी देश की है। ट्रू कॉलर एक स्वीडिश कंपनी है, स्वीडन की कंपनी है, इनका सर्वर स्वीडन में है। यानी हमारे देश में जितने लोग मोबाइल धारक हैं उनका सारे कॉन्टेक्ट लिस्ट, और जैसे ही आप इनको डालते हो तो एक्सेस मांगते हैं आपसे। ट्रू कॉलर आपने इंस्टॉल किया तो वो बोलता है ट्रू कॉलर वॉन्ट्स टू एक्सेस ऑल योर कॉन्टैक्ट लिस्ट। इसका मतलब जब व्यक्ति ट्रू कॉलर इंस्टॉल करना चाहता है अपने उपकरण में, तो वो अपने सारे कॉन्टैक्ट ट्रू कॉलर से शेयर करे, तभी वो उसको इंस्टॉल कर सकता है। यानी आपने अपने ट्रू कॉलर इंस्टॉल करने के बदले में मेरा मोबाइल नंबर जो आपके मोबाइल नंबर में सेव था, वो भी आपने ट्रू कॉलर को दे दिया, और दूसरे दिन से मेरे मोबाइल पर 2 मुखी रुद्राक्ष के मैसेज आना शुरू हो गए।
1: ये
0: तो डेटा एक्चुअली में जो कंपनीज हैं, जो डेटा भाई ये कंपनी यही बोलती है कि आप एक्सेस दो। एक्सेस का मतलब होता है कि ये कंपनियां आपका जो आपने डेटा दिया है, चाहे वो कॉन्टेक्ट्स हों, चाहे वो फ़ोन नंबर हों, चाहे वो आपके मीडिया गैलरी में फ़ोटोज़ हों, वो किसी भी व्यक्ति से विश्व में कहीं भी शेयर कर सकते हैं, और आपने इसको परमिशन दी है, तभी वो ऐप इंस्टॉल्ड होगी। तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि वो ऐप कितनी प्रासंगिक है, हमारे लिए कितनी आवश्यक है। अगर सच में सरकारी कोई ऐप है तो वहाँ पर हमको देने में कोई गुंजाइश नहीं, क्योंकि हमारा डेटा हमारे देश की सरकार के पास ही रहने वाला है। उनके पास वैसे भी हमारा डेटा आधार के माध्यमों से, पैन कार्ड के माध्यमों से, विभिन्न बैंकों के माध्यमों से, KYC के माध्यमों से हमारा डेटा उनके पास वैसे भी अवेलेबल, वहाँ हम उन पर निश्चिंतता कर सकते हैं। लेकिन आप बाहरी ऐपों पर आपको या एप्लीकेशन को डाउनलोड करने से बचना चाहिए।
1: गौरव जी, कई बार हमसे ये मांगा जाता है कि आप अपनी लोकेशन का एक्सेस भी हमें दीजिए, तो ये कितना खतरनाक साबित हो सकता है लोकेशन का एक्सेस देना, कि नहीं इसमें कोई दिक्कत नहीं दे सकते हम?
0: देखिए, अगर कोई ऐप आपसे लोकेशन का मांग रही है, तो वो इस तरह की ऐप होती है जो आपको डिस्टेंस बताती है आपका। और अगर हमारे अति आवश्यक, जैसे मैं अनजान रास्ते पे, मैं यहाँ से दिल्ली का सफर कर रहा हूँ बाय रोड,
1: हाँ,
0: तो मुझे नेशनल हाईवेज के ट्रैक देखना है गूगल मैप पे, तो सबसे पहले वो अपनी उस गंतव्य स्थान से मेरी दूरी या डिस्टेंस या कितने देर में मैं पहुँचूंगा वो तभी निकाल पाएगा जब उसको मेरी अपनी लोकेशन पता हो जिस कार में मैं बैठा हूँ।
1: अच्छा,
0: तो उस कंडीशन में तो मुझे अपना एक्सेस उसको देना ही होगा। लेकिन इसमें भी हमें यह ध्यान रखने की जरूरत है कि जैसे ही वो हमारा हेतु पूरा हो, जिस हेतु हम उस लोकेशन को एक्सेस कर रहे हैं, इमीडिएट हमको उसी समय त्वरित हमको अपनी लोकेशन को ऑफ कर देना है अपने उपकरण से। तो हमेशा सदैव के लिए लोकेशन ऑन करके नहीं रखना है, नहीं तो आप ये लाइव ट्रांसमीटर लेके घूम रहे हैं मोबाइल अपने, कोई भी व्यक्ति आपकी लोकेशन से आपको ट्रेस कर सकता है। स्पेशली जब आप महिलाएं हैं तो आपको विशेष सजग रहने की जरूरत है कि अपनी लोकेशन को ऑन तभी करें जब वो अति आवश्यक हो, जब आपको उसकी आवश्यकता हो, और आवश्यकता खत्म होने पर लोकेशन को, सेवा को वापस आप वापस होल्ड पे रख दें, बंद कर दें।
1: जी बिल्कुल। कई बार हमने ये देखा कि जैसे ब्लूटूथ आपका, आप कार्यालय में है, ब्लूटूथ आपकी सुविधा के लिए है क्योंकि आप कोई फाइल में काम कर रहे हैं तब भी आप किसी से बात कर सकते हैं, तो ब्लूटूथ का ऑन रहना मोबाइल में, ये भी हमारी इन्फॉर्मेशन को लीक कर सकता है किसी तरीके से?
0: जी बिल्कुल कर सकता है। देखिए, आपके मोबाइल उपकरण में कोई भी स्पायरवेयर, जैसे मैंने बताया, जो ऐसे जानकारी चुराने वाले सॉफ्टवेयर होते हैं जो स्पाई करते हैं, मतलब
1: चोरी करते हैं,
0: उनको हम स्पाई और सॉफ्टवेयर, इसको हम मिला के एक शब्द बना है स्पायरवेयर। ये आपके उपकरण में, मोबाइल डिवाइस में कुछ ही माध्यमों से आ सकते हैं, या तो डेटा केबल के माध्यम से आ सकते हैं, आपने कोई चार्जिंग केबल के माध्यम से, या फिर आ सकते हैं आपके वाईफाई के माध्यम से आपके राउटर के, या फिर आ सकते हैं आपके ब्लूटूथ के माध्यम से। तो ये भी एक माध्यम है, क्योंकि आपने देखा होगा पूर्व में, कुछ वर्षों पूर्व हम ब्लूटूथ एक दूसरे से फाइलें शेयर करने के लिए यूज़ करते थे, गाना एक दूसरे से ट्रांसफ़र करने के लिए, सॉन्ग MP3 फाइल। तो इसका मतलब है ब्लूटूथ सक्षम है दो उपकरणों के बीच में फाइल को ट्रांसफ़र करने के लिए। अब वो फाइल स्पायरवेयर भी हो सकती है, तो अगर हम सदैव अपना ब्लूटूथ ऑन करके रखेंगे तो चांसेस हैं कि कोई हम ऐसे दुर्घटना का शिकार हो जाए जहाँ से हमारी मर्जी के बगैर भी हमारे उपकरण में कोई भी फाइल ट्रांसफ़र कराई जा सकती है, अगर हमारा ब्लूटूथ ऑन है, या हमारा वाईफाई ऑन है सदैव, या हमारी लोकेशन ऑन है।
1: गौरव जी, अब बात करते हैं कि वो तकनीकें कौन कौन सी हैं कि जो फ्रॉड करने वाले लोग हैं, फ्रॉडस्टर जिनका नाम दिया है, वो किस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं? कोई सॉफ्टवेयर होता है या कोई और तरीका है इसका करने का?
0: देखिए, किन्हीं मामलों में हमने देखा है कि कई बार जो साइबर अपराधी होते हैं वो हमसे ज़्यादा जागरूक होते हैं। तो जैसे एक अभी इस तरह का फ्रॉड चल रहा है कि लोग आपको वीडियो कॉल करते हैं और उस पर अश्लील आपको वीडियो दिखाई जाती है और आपकी स्क्रीन रिकॉर्ड कर ली जाती है, आपको ब्लैकमेल किया जाता है। पर इसकी शुरुआत यहाँ से नहीं होती, इसकी शुरुआत होती है वो सबसे पहले आपसे मित्रता करते हैं फेसबुक के माध्यम से। एक फेसबुक फेक आईडी बनाई जाती है, आप पुरुष है तो महिला की आईडी से आपको रिक्वेस्ट भेजी जाएगी, आप महिला है तो पुरुष की आईडी से भेजी जाएगी, क्योंकि किसी किसी केसेस में महिला को महिला की आईडी से भी भेजी जा सकती। तो ये माना जाता है कि अपोजिट सेक्स के प्रति हमें में एक नैसर्गिक आकर्षण होता है, तो हम जल्दी एक्सपेक्ट, हमारी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है, संभावना ज़्यादा होती। तो हमें कोई फेक आईडी दिखे तो हमको देखना है कि वो फेक आईडी में कोई पोस्ट है कि नहीं, पिछले कुछ महीनों से, कुछ माह से वो एक्टिव है कि नहीं, या कितने माह पहले बनाई गई, वो उसके देखने के बाद ही उसको हम एक्सेप्ट करें। फिर ये टेक्निक यूज़ की जाती है कि जैसे आपने फेसबुक पे उनसे मित्रता की, वो आपसे एक या दो मुलाकात के बाद फेसबुक मैसेंजर पर एक या दो हेलो हाय के बाद आपसे वो आपका व्हाट्सअप नंबर शेयर करने का बोलते हैं। आपको वहीं पर क्वेश्चन आना चाहिए कि जो व्यक्ति मुझसे मैसेंजर पर बात कर सकता है, फेसबुक के थ्रू बात कर सकता है, वो मुझसे व्हाट्सअप नंबर क्यों मांग रहा है, क्योंकि व्हाट्सअप भी एक मैसेंजर सर्विस है। और आप आउट ऑफ जनरोसिटी, आपकी इतनी अंतरंग बात हो चुकी होती है कि आप सोचते हैं कि उदारता के वश आप उनको दे देते हैं कि शायद मैंने यहाँ पर, फिर वही क्वेश्चन बोला, साइबर हाइजीन, जितनी हम स्वच्छता रख सकते हैं मानसिक तौर पर, हाइजीनिक तौर पर हमको रखना चाहिए, पर हमें लगता है हम अपने आप को ओवर एस्टिमेटेड कर लेते हैं, ज़्यादा आकलन कर लेते हैं, शायद वह महिला मुझमें इंटरेस्टेड होंगी, शायद मुझमें कोई गुण होंगे, तो आप अपना मोबाइल नंबर दे देते हैं। अब वो, इन्हें ये पता है इन फ्रॉडस्टरों को कि अगर ये आपको सामान्य कॉल करेंगे तो कॉलर आईडी के थ्रू इनका कॉल टावर के थ्रू कनेक्ट होगा, और पुलिस CDR एनालिसिस में, कॉल डिटेल रिकॉर्ड में, टावर से इनका मोबाइल नंबर लेके इनकी लोकेशन ट्रेस कर लेगी। तो ये क्या करते हैं, एक दूसरी टेक्निक का यूज़ करते हैं जिसको हम बोलते हैं VOIP, इसको हम बोलते हैं वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब ये VOIP क्या है, जब आप इंटरनेट के माध्यम से किसी व्यक्ति को फ़ोन करते हैं, चाहे वो फेसबुक कॉल हो, चाहे वो व्हाट्सअप कॉल हो, तब आपका इंटरनेट से जब कॉल इस्टेब्लिश होता है तो वो आपका जो लोकल टावर है, जो आपका स्थानीय जो टेलीकम्युनिकेशन का टावर है,

0: उसको वो बाईपास कर देता है, वो वहां से कनेक्ट आपका कॉल नहीं होता है, इंटरनेट सर्वर के माध्यम से कनेक्ट होता है। इस केस में जो टेलीकॉम कंपनी है उनके पास किसी भी तरह की जानकारी नहीं होती कि आपको किस व्यक्ति ने कॉल किया था, कितनी देर आपकी बातचीत हुई और आपके कंटेंट क्या थे। तो ये वो साइबर अपराधी अच्छी तरह जानते हैं, वो इस टेक्निक का यूज़ करते हैं वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल का, ताकि वो किसी भी CDR एनालिसिस में उनका नंबर ना तो फ्लैश हो ना उनकी टावर लोकेशन आए, और टावर लोकेशन नहीं आएगी तो वो पकड़े भी नहीं जाएंगे।
1: तो ऐसे में फिर बचने के क्या उपाय हैं, हमें क्या तकनीक अपनानी चाहिए?
0: बचने के उपाय तो ये है कि अगर अननोन नंबरों से, जैसे मैं आपको जानता हूँ ज्ञान प्रकाश जी अगर मुझे फेसबुक कॉल कर रहे हैं या व्हाट्सअप कॉल कर रहे हैं, तो मैं उठा सकता हूँ कि हो सकता है कि कई बार इंटरनेट कॉलिंग और ज़्यादा ईजी हो जाती है जहाँ पर टावर नहीं मिलते वहाँ पर, तो ये एक अच्छी सुविधा है
1: जी।
0: उस केस में तो मैं आपका कॉल उठा लूँगा, लेकिन कोई अननोन अनजान व्यक्ति जब मुझे फेसबुक पर कॉल करता है या व्हाट्सअप कॉलिंग करता है, मैं वो फ़ोन नहीं उठाता हूँ, क्योंकि ये मैं मानता हूँ कि जो व्यक्ति मुझे कॉल कर रहा है उसके पास मेरा नंबर होगा, होना चाहिए, और अगर उसके पास मेरा नंबर नहीं है तो वो कहीं से ले मेरा नंबर और मुझे कॉल करे। मैं व्हाट्सअप कॉलिंग अननोन नंबर की ना तो उठाता हूँ और ना किसी को व्हाट्सअप कॉलिंग अननोन व्यक्ति को लगाता हूँ, मैं जिनको जानता हूँ उन्हीं को व्हाट्सअप कॉलिंग करता हूँ।
1: गौरव जी, कई बार ऐसा देखा गया है कि विदेश के जो नंबर हैं वो भी आपको कॉल करते हैं, और कई बार हम उनके झांसे में आके फ्रॉड का शिकार हो जाते हैं, तो ये कौन सा तरीका है?
0: देखिए, इसको एक तकनीक काम में आती है, इस तकनीक को हम बोलते हैं स्पूफिंग टेक्निक। स्पूफिंग का अगर हिंदी में मैं अर्थ समझना चाहूँ तो स्पूफिंग मतलब होता है हो कुछ और दिखे कुछ और। तो हमारे पास जब कॉल स्पूफिंग एक टेक्निक होती है, कॉल स्पूफिंग मतलब जो आप किसी से मोबाइल पे कॉल लगा रहे हैं, हमारे पास गूगल प्ले स्टोर में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर कॉल स्पूफिंग सॉफ्टवेयर अगर आप डालेंगे सर्च में तो आपको बहुत सारे सॉफ्टवेयर फ्री मिल जाएंगे वहाँ पर। bluffmycall.com, crazycall.com, ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स अवेलेबल हैं जो आपको ये फैसिलिटी देती हैं कि आप इंटरनेट के माध्यम से किसी व्यक्ति को कॉल कर सकते हो, और वो सॉफ्टवेयर आपसे स्वयं पूछता है कि आप कौन सा नंबर दिखाना चाहते हो। क्या कोई अमेरिकन नंबर दिखाना चाहते हो तो वो भी ऑप्शन है वहाँ पर। क्या आप ऑस्ट्रेलिया का नंबर दिखाना चाहते हो, क्या आप यूरोपियन नंबर दिखाना चाहते हो, या किसी सेलिब्रिटी का नंबर भी आप दिखा सकते हो। जैसे कि मैं अमिताभ बच्चन जी का अगर नंबर जानता हूँ, अगर मैं आपको अमिताभ बच्चन जी का नंबर उस सॉफ्टवेयर में डालूंगा और आपके मोबाइल पर जब मैं कॉल करूंगा तो कॉल तो मैं इंटरनेट से कर रहा हूँ उस सॉफ्टवेयर के माध्यम से, टूल के माध्यम से, लेकिन आपके मोबाइल पर अमिताभ बच्चन जी का नंबर शो होगा, और अगर आप कॉल बैक करेंगे तो वो उसी नंबर पर लगेगा अमिताभ बच्चन जी को ही, क्योंकि वो तो एक्चुअल नंबर है, लेकिन मैंने आपको कॉल स्पूफिंग के माध्यम से वो नंबर फ्लैश करा दिया। तो अगर आपको इतना सजग रहने की ज़रूरत है कि कोई कॉल अगर मुझे दिख भी रहा है कि ज्ञान प्रकाश जी का नंबर है, तो भी आपको ब्लाइंडली उस पर विश्वास नहीं करना एकदम से। हो सकता है कोई दूसरा व्यक्ति हो जो उनका नंबर फ्लैश करा के मुझसे बात कर रहा हो, अगर आपको उनकी आवाज़ दूसरी लगती तो आप ये समझ जाएंगे कि ये नंबर उनका दिखाया जा रहा है, लेकिन ये उनका नंबर नहीं है। तो ऐसे ही कई कॉल सेंटर का नंबर मैं दिखा सकता हूँ, मैं SBI का नंबर दिखा सकता हूँ, मैं एयरटेल का नंबर दिखा सकता हूँ, मैं कोई भारत सरकार का नंबर, कोई मंत्रालय का नंबर दिखा के आपको बात कर सकता हूँ कि मैं वहाँ से बोल रहा हूँ और आपका ऐसा ऐसा केस आया और मुझे आपको समन भेजने को कहा गया है और आपको इतने इतने पैसे दंड के तौर पर जमा करने होंगे। तो अगर आप केवल नंबर देख के बिलीव कर लेंगे तो आप ठगी का शिकार हो जाएंगे।
1: ये तो बहुत खतरे की बात है। हालांकि ये सभी क्या सभी किस्सा जो है, आज हम विज्ञान के कार्यक्रम में, ये सब विज्ञान ही है और तकनीकी है
0: जी।
1: ये उसी का उपयोग कहें या उसका दुरुपयोग कहें, दोनों बातें इसमें शामिल हैं। अभी देखने में आ रहा एक शब्द प्रचलन में है, डीप फेक टेक्नोलॉजी और क्लियर फेक टेक्नोलॉजी, ये दोनों टर्म्स बहुत इस्तेमाल हो रहे हैं, ये किस तरीके के इनकी जो है दुरुपयोग हो रहे हैं, उनके बारे में भी हमारे श्रोताओं को बताएं।
0: देखिए, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, डीप फेक ये दो शब्दों का संगम है। डीप का मतलब होता है गहरा, फेक मतलब ऐसा कंटेंट जो झूठा है। ऐसा कंटेंट जो डीपली फेक है मतलब इतनी गहराई से झूठा है कि वो सतही तौर पे देखने में हमको सच प्रतीत होता है। तो ऐसा हमारे पास वीडियो कॉल आता है जिसमें हमको दिखता है माननीय प्रधानमंत्री जी कोई स्कीम का आह्वान कर रहे हैं, या कोई मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, या कोई सेलिब्रिटी कोई हमको कोई आह्वान कर रहा है, या फिर कोई पब्लिक फिगर कर रहा है, या फिर कोई समाज सेवी कार्य करता है, लेकिन हमें यह देखना पड़ेगा कि वो डीप फेक वीडियो भी हो सकता है। अब इस टेक्निक में काम ऐसा होता है कि एक स्टैंड अलोन वीडियो को लिया जाता है। ये वीडियो बनाने के पहले जिस व्यक्ति का ये वीडियो बनाना चाह रहा है जो फ्रॉडस्टर, वो उस व्यक्ति के पहले 5-10 और वीडियो लेता है और उसको AI टेक्निक का यूज़ करके, टूल किट का यूज़ करके, उस पुराने जो वीडियो थे उनकी एल्गोरिदम को वो AI टेक्निक कॉपी करती है। अगर कोई व्यक्ति आपको डीप फेक वीडियो भेजे तो आप उसको फ़ोन कॉल करके कन्फर्म करो उनके एक्चुअल नंबर पर कि क्या ये आप ही हैं। अगर कोई व्यक्ति आपको डीप फेक फ़ोन कॉल करे तो आप उनके नंबर पे, एक्चुअल नंबर पे वीडियो कॉल करके कन्फर्म करें।

0: कि क्या है, आप ही नहीं फोन किया था थोड़ी देर पहले, तो आप बच सकते हैं। तो ये इन बातों को ध्यान रख के आप आसानी से इसको रेक्टिफाई कर सकते हैं कि ये वास्तविक वीडियो नहीं है, पर हाँ प्रथम दृष्टया देखने पर यह सत्य प्रतीत होता है। जब हम इंटरनेट की बात करते हैं, टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, तो हम जब इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं तो एक हमारे मदरबोर्ड में एक टेक्नोलॉजी होती है जिसको एक पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं पोर्ट। हम यूजुअली पोर्ट 80 से कनेक्ट होते हैं, तो अलग अलग सेवाओं के ईमेल का एक अलग पोर्ट होता है, सर्वर का अलग पोर्ट होता है। तो कई बार ये जो पोर्ट रहते हैं, जो सामान्य एंड यूजर है, जिसको सामान्य यूजर बोला जाता है, इंडिविजुअल अलोन यूजर है, उनके पोर्ट्स ओपन रहते हैं। तो बिना आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में जाए इन पोर्ट के थ्रू भी कोई व्यक्ति आपके सिस्टम में पहुंच को सुकर बना सकता है, उसको आसानी से वो घुस सकता है आपके सिस्टम में। कुछ ऐसे पेनेट्रेशन टेस्टिंग टूल्स आते हैं, इसको हम पेन टेस्टिंग बोलते हैं। वो टूल्स के थ्रू एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको हम बोलते हैं काली लिनक्स, उसमें बहुत सारे ऐसे टूल्स ऑलरेडी एम्बेडेड आते हैं, एडेड होते हैं। उसके थ्रू कोई भी व्यक्ति आपके सिस्टम में, इन पोर्ट के थ्रू आपके सिस्टम में पहुंचा जा सकता है और आपकी फाइल को एक्सेस किया जा सकता है। उसका तरीका यही है कि हम अपने सिस्टम को, सबसे पहली बात तो मैंने आपको एक प्रथम दृष्टया जो एक सभी को याद रखना चाहिए, जो हमने बार बार शब्द बोल रहे हैं, साइबर हाइजीन का ध्यान रखें। ऐसी वेबसाइटों पर नहीं जाना जहाँ पर जाने की आवश्यकता नहीं है। स्पेशली हम ये युवाओं में देखते हैं कि वो अश्लील वेबसाइट्स पर या अश्लील लिंक्स पर क्लिक करते हैं, पोर्न वेबसाइट्स पर जाते हैं। ये जो फ्रॉडस्टर हैं वो ऐसी ही पोर्न वेबसाइट्स पर इस तरह के स्पायरवेयर को रखते हैं ताकि कोई व्यक्ति जाए और उसमें फंस जाए, या वो जो डाउनलोड कर रहे हैं उस कंटेंट के साथ वो स्पायरवेयर डाउनलोड हो जाए। तो पहले तो एक हम साइबर हाइजीन रखें कि अच्छा लिटरेचर पढ़ें, अच्छे लिटरेचर को सर्च करें। आपको ये जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि एक हमारी संस्था है जो कंप्यूटर क्षेत्र में काम करती है, उनकी रिपोर्ट से पता चला है कि एशिया पैसिफिक, जिसमें भारत, श्रीलंका, चाइना, पाकिस्तान, भूटान, ये देश आते हैं, यहाँ पर 70% जो सामग्री है जो इंटरनेट पर सर्च की जाती, कंटेंट्स हैं, वो 70% पॉर्न कंटेंट, अश्लील सामग्री को सर्च करता है यहाँ का यूज़र, जिसमें हमारा देश भी शामिल। तो जब सीधी सी बात है, जो चीज़ ज़्यादा देखी जाएगी वही फिर परोसी जाएगी। तो ऐसी ही वेबसाइट पर फिर इस तरह के स्पायरवेयर रहते हैं। तो हम सबसे पहले तो साइबर हाइजीन का ध्यान रखें, दूसरा हम ये ध्यान रखें कि हमारा सिस्टम सुरक्षित हो। तो एक अच्छा एंटीवायरस हमारे सिस्टम में होना चाहिए, चाहे हम मोबाइल हैंडहेल्ड डिवाइस की बात करें, चाहे लैपटॉप या डेस्कटॉप। मैं देखता हूँ कि युवाओं में 90% युवा, अगर मैं बात करूँ कि हमारे भारत में करीब 75 करोड़ इंटरनेट यूज़र हैं जो इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं मोबाइल पर, मोबाइल इंटरनेट यूज़र, उसमें से करीब 35 करोड़ युवा होंगे, 50% से भी ज़्यादा, लेकिन वो एंटीवायरस उपयोग नहीं करते, स्पेशली अपने मोबाइल डिवाइसेस में। तो हमें अपने सिस्टम को सुरक्षित रखना, भाई जिस गाड़ी के माध्यम से, जिस हम अगर कार पर जाते हैं, जिसमें मैंने बताया, तो हम सीट बेल्ट लगाते हैं, हम टू व्हीलर पर जाते हैं, हम हेलमेट लगाते हैं, तो जिस उपकरण के माध्यम से हम इस साइबर वर्ल्ड से जुड़ रहे हैं, तो उसको सुरक्षित करने के लिए हमको सबसे पहले अच्छा एंटीवायरस होना चाहिए। अगर एंटीवायरस नहीं है तो उस केस में हम लाइसेंस सॉफ्टवेयर यूज़ करें, माइक्रोसॉफ्ट का, जिसमें उन विंडोज़ डिफेंडर, जो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में इनबिल्ट होता है, ऑटो बिल्ट होता है, तो वो हमको सुरक्षित करेगा। दूसरा, अपना पासवर्ड सुरक्षित रखें, इन माध्यमों से हम अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं, हैकिंग से बच सकते हैं।
1: तो श्रोताओं, बहुत अच्छी बातचीत और तकनीकी गुणवत्ता युक्त आज हमने बात की साइबर फ्रॉड्स के ऊपर और साइबर सिक्योरिटी के ऊपर, उनसे बचें कैसे इसके बारे में भी हमने बात की। हमें उम्मीद है कि ये बातचीत आपको बहुत पसंद आएगी, और ये सारी जानकारी हमें दे रहे थे गौरव रावल जी, हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि वो आकाशवाणी के स्टूडियोज में आए और हमें इतनी अच्छी जानकारी दी। गौरव जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
0: आपको भी मुझे आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।
2: आप भी आप सुन रहे थे विज्ञान पत्रिका। इस समय आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का इंदौर केंद्र। आइए अब सुनते हैं लोक संगीत। आज कलाकार हैं प्रेमलता नारंदी और साथी। आइए इनसे सुनते हैं निमाड़ी लोकगीत।

0: आप सुन रहे थे प्रेमलता नारमदेव और साथियों के स्वर में ये निवाड़ी लोकगीत। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। आप सुन रहे थे लोक संगीत। आज कलाकार थी प्रेमलता नारमदेव और साथी।
1: अरे आप लोगों को मालूम पड़ा कि नहीं?
2: क्या?
1: अब आकाशवाणी इंदौर पूरी दुनिया में सुना जा सकता है।
2: वो कैसे?
1: वो ऐसे कि अब आकाशवाणी इंदौर न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।
2: पर सुनेंगे कैसे?
1: इसके लिए अपने मोबाइल फोन पर जाकर डाउनलोड कीजिए न्यूज ऑन AIR ऐप और लाइव रेडियो पर जाकर सुनिए आकाशवाणी इंदौर के कार्यक्रम।
3: तो सुनते रहिए मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।

0: क्या?
1: ये धरती, ये नदिया, ये रैना
0: और
2: आकाशवाणी इंदौर, सुनते रहिए मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।
3: आकाशवाणी इंदौर से आइए अब सुनते हैं सुगम संगीत। आज कलाकार हैं बेगम अख्तर।

आप सुन रहे थे सुदर्शन फाकिर का कलाम खयाम के संगीत निर्देशन में, आवाज़ बेगम अख्तर की।

शास्त्रीय संगीत में अभी आप सुन रहे थे उस्ताद अमजद अली खां का सितार वादन राग था देसी। तबले पर संगत कर रहे थे सलमान खान। शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम अब संपन्न होता है। इस समय अपनी ट्यून किया है आकाशवाणी का इंदौर केंद्र

आप सुन रही हैं मीडियम वेव 462.9 मीटर अर्थात 648 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का इंदौर केंद्र, जिसे आप सुन सकते हैं मोबाइल ऐप न्यूज ऑन EIR पर भी। सुबह के 10 बजने को हैं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे जिले की चिट्ठी और उसके तुरंत बाद 10:05 पर आप सुनेंगे सजीव फोन इन कार्यक्रम MH हॉटलाइन, जिसके लिए हमारे फोन नंबर से 2710223 और 2710224 इंदौर का सिटी कोड है 0731। आइए अब सुनते हैं जिले की चिट्ठी।

0: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है जिले की चिट्ठी।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है आगर मालवा जिले की चिट्ठी। आलेख महेश शर्मा, वाचन स्वर शरद बाघेला। इन दिनों मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर चल रहा है। आगर मालवा जिले में भी पड़ रही तेज गर्मी से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शादी विवाह का सीजन होने के कारण बाजारों में भीषण गर्मी के बावजूद चहल पहल दिखाई दे रही है। दिन के समय बाजारों सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहता है, वहीं लोग अपने जरूरी बाजारों के कार्य सुबह शाम करते नजर आ रहे हैं। प्रदेश के अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री और आगर मालवा जिले के प्रभारी नागर सिंह चौहान ने गत दिनों सर्किट हाउस में आयोजित हुई विभागीय योजनाओं की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए कि जन कल्याण से जुड़े सभी कार्यों को अधिकारी प्राथमिकता

0: पूरा करें। प्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और अनुसूचित जाति कल्याण विभाग मंत्री नागर सिंह चौहान ने आगरमालवा प्रवास के दौरान बड़ोद चौराहे से पाल रोड तक 98.34 लाख रुपए की लागत से बनने वाली डामरीकृत सड़क एवं नाली निर्माण कार्य का विधिवत भूमि पूजन किया। इस अवसर पर श्री विजयवर्गीय ने कहा कि प्रदेश सरकार शहरों के समग्र विकास के लिए सतत प्रयासरत है। अपने प्रवास के दौरान मंत्रीद्वय ने जिले के सुसनेर में नगर परिषद के नवीन भवन का फीता काटकर लोकार्पण किया। आगरमालवा जिला दंडाधिकारी व कलेक्टर प्रीति यादव द्वारा भारतीय सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत जिले की संपूर्ण राजस्व सीमा में रबी फसल विशेष रूप से गेहूं कटाई के बाद खेतों में फसल अवशेष यानी कि नरवाई जलवाने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया है। नरवाई जलाने पर पर्यावरण क्षतिपूर्ति राशि भी निर्धारित की गई है। इसके तहत 2 एकड़ से कम भूमि पर अवशेष जलाने पर 2500 रुपए, 2 से 5 एकड़ भूमि पर 5000 रुपए और 5 एकड़ से ज्यादा भूमि पर 15000 रुपए प्रति घटना के दर से राशि वसूली जाएगी। जनगणना प्रक्रिया के अंतर्गत मकानों की गणना और स्वगणना कार्य को 100% पूर्ण करने वाले प्रगणकों का गत दिनों आगरमालवा SDM कार्यालय में सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस समारोह में SDM व तहसीलदार व जनगणना चार्ज अधिकारी ग्रामीण द्वारा उत्कृष्ट कार्य करने वाले प्रगणकों आशा पालीवाल, किरण नागले, सोना सोनगरा, कालूराम मेहर और प्रेम सिंह यादव को सम्मानित कर उनके कार्य की सराहना की। रबी विपणन वर्ष 2026-27 में आगरमालवा जिले में समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी 42 केंद्रों पर की जा रही है, जहां 20,843 कृषकों से 13,617 मैट्रिक टन गेहूं की खरीदी की जा चुकी है। साथ ही कृषकों को निर्धारित समय अवधि में भुगतान भी सुनिश्चित किया जा रहा है। आगरमालवा में 69.42 हेक्टेयर क्षेत्र में नवीन 2 औद्योगिक क्षेत्रों में 394 औद्योगिक प्लॉट विकसित किए गए हैं, जिसमें 175 निवेशकों ने अपनी रुचि दिखाई है। औद्योगिक क्षेत्र पूरी तरह से विकसित होने पर जिले में लगभग 550 करोड़ रुपए के निवेश और 3,500 से अधिक लोगों को रोजगार मिलने का अनुमान है। इससे स्थानीय युवाओं को अपने ही जिले में रोजगार उपलब्ध होगा और बड़े शहरों की ओर पलायन में कमी आएगी और साथ ही परिवहन, होटल, खानपान, मरम्मत व अन्य सेवा क्षेत्रों में भी आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी। आगरमालवा जिले में 24 करोड़ की लागत से बनने वाले हडाई डैम का भूमि पूजन पिछले दिनों क्षेत्रीय विधायक मधु गहलोत ने किया। इस मौके पर विधायक ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा विकास की कई योजनाएं संचालित की जा रही हैं, जिसका लाभ सभी को मिल रहा है। आगरमालवा जिले के सुसनेर स्थित PM श्री जवाहर नवोदय विद्यालय में पिछले दिनों कृषि विभाग द्वारा आयोजित की गई मिट्टी प्रशिक्षण कार्यशाला में विद्यार्थियों को मिट्टी के परीक्षण के बारे में विस्तार से समझाते हुए प्रयोग करके दिखाया गया कि किसान अपने कृषि योग्य भूमि की मिट्टी का परीक्षण स्वयं करके उसकी उर्वरकता क्षमता के बारे में जानकारी हासिल कर सकता है। एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना अंतर्गत विभिन्न राज्यों की संस्कृति, परंपराओं, जीवन शैली और भौगोलिक विविधताओं को समझने के लिए राष्ट्रीय एकता और आपसी भाईचारे को मजबूत करने के उद्देश्य से आगरमालवा जिले की चयनित छात्रा ख्वाहिश गवली ने नागालैंड का भ्रमण कर परंपराओं, जीवन शैली और भौगोलिक विविधताओं को समझा और मध्य प्रदेश की संस्कृति का भी परिचय कराया। 8वें पोषण पखवाड़ा के अंतर्गत कुपोषण के कारण पहचान एवं रोकथाम विषय पर आगरमालवा जिले के सुसनेर स्थित स्वामी विवेकानंद शासकीय महाविद्यालय में आयोजित हुए जागरूकता व्याख्यान में वक्ताओं ने कुपोषण के प्रमुख कारणों, उसके लक्षणों की पहचान और उससे बचाव के प्रभावी उपायों पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए संतुलित आहार, स्वच्छता और जन जागरूकता को कुपोषण से निपटने के प्रमुख उपाय बताए। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: आगरमालवा जिले की चिट्ठी, आलेख महेश शर्मा का था और वाचन स्वर शरद बाघेला का। आकाशवाणी का ये भोपाल केंद्र है।
2: इस समय आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का इंदौर केंद्र। सुबह के 10:05 हुए हैं और ये वक्त है MH हॉटलाइन प्रोग्राम का, जो आप श्रोताओं का पसंदीदा प्रोग्राम होता है। हम प्रोग्राम की शुरुआत करें इससे पहले आपको फोन नंबर बता दें। हमारे फ़ोन नंबर हैं 2710223 और 2710224। इंदौर का SET कोड है 0731। तो करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत।
3: हेलो, हेलो एमएच हॉटलाइन।

0: एमएच हॉटलाइन के सभी श्रोताओं को माजिदा खान का प्यार भरा नमस्कार। हम करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत और लेते हैं पहला कॉल। देखते हैं कौन से कॉलर अभी फोन पर हैं। हेलो हेलो हेलो
1: हेलो।
0: हाँ जी, कौन बात कर रहे हैं?
1: सूरज के बिना सुबह नहीं होती, तारों के बिना रात नहीं होती, बादल के बिना बरसात नहीं होती, और एमएच हॉटलाइन को याद किए बिना दिन की शुरुआत नहीं होती।
0: अरे वाह, क्या बात है, बड़े शायराना अंदाज में आप बोल रहे हैं। कौन बात कर रहे हैं, अपना शुभ नाम बताएं।
1: निसरपुर जिला धार से संदीप प्रजापत बोल रहा दीदी।
0: संदीप जी, हाँ जी संदीप जी, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आज?
1: दीदी फिल्म का नाम है तोहफा और गाने के बोले, एक आंख मारू तो लड़की पट जाए, ये वाला।
0: देखिए मैं देख रही हूँ आपका गाना, और बताएं क्या करते हैं आप?
1: दीदी हम फैमिली के साथ ईद बनाते हैं हमारे निसरपुर में।
0: अच्छा जी, कहाँ, धार से बात कर रहे हैं ना आप?
1: हाँ धार जिला है दीदी, हमारा गांव निसरपुर है।
0: अच्छा अच्छा, जिला धार से बात कर रहे हैं, ठीक है।
1: हाँ
0: लीजिए, सुनिए आपकी पसंद का गीत।
1: जी दीदी रेडियो सुनते रहते हैं, सुबह 6 बजे चालू करते हैं तो शाम को 7 बजे के बाद ही बंद करते हैं। दीदी आपके सभी कार्यक्रम अच्छे लगते हैं
0: जी, बहुत
1: और
0: अच्छी बात है।
1: थोड़ा सा कुछ कहना चाहूँगा दीदी मैं।
0: जी बताएं।
1: सुधा शर्मा दीदी के हम बहुत बड़े फैन हैं दीदी, तो हो सके तो हमारी बात सुधा दीदी तक पहुँचा देना।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: संदीप प्रजापत की फैमिली याद कर रही थी आपको।
0: बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात हम उन तक ज़रूर पहुँचा देंगे, और अभी हम आप तक पहुँचा रहे हैं आपकी पसंद का गीत। लीजिए सुनिए।
1: जी दीदी मेरे दोस्त की पसंद पे गाना सुनना चाह रहा हूँ मैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल, आप सभी मिलकर सुनिए। जी
1: थैंक यू जी।

0: हेलो
1: जी, मैम जय श्री महाकाल।
0: नमस्ते जी, कौन बात कर रहे हैं?
1: मैम शिवा लोहट एमपी विदिशा से बात कर रहा हूँ।
0: जी
1: शिवा लोहट एमपी विदिशा से बात कर रहा हूँ।
0: विदिशा से बात कर रहे हैं शिवा
1: जी।
0: जी जी बताएं, कैसे हैं आप?
1: मैं एकदम बढ़िया हूँ मैम, और आप कैसे हैं?
0: हम भी बहुत अच्छे हैं। आप सभी की शुभकामनाएं, आशीर्वाद सब हमारे साथ हैं। बताएं कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: मैम एक मूवी रहेगी अजनबी, उसमें गाना रहेगा मेरी जिंदगी में अजनबी का इंतजार है।
0: मेरी जिंदगी में अजनबी, ठीक है, बिल्कुल हम आपको सुनाएंगे ये गीत
1: जी।
0: और आपके साथ साथ इस समय कौन कौन रेडियो सुन रहे हैं? आपके सभी परिवार वाले हैं या आप अभी काम पर हैं?
1: जी मोबाइल एप्लीकेशन पे कनेक्ट है, और ये समझ लीजिए होम थिएटर में कनेक्ट है, तो लगभग करके सभी लोग सुन रहे हैं।
0: अरे वाह, बड़ी अच्छी बात है। मतलब होम थिएटर चल रहा है, आपका काम भी चल रहा है और सभी मनोरंजन भी कर रहे हैं, है ना?
1: जी बिल्कुल। और इसमें ये एक बात है मैम, इस साउंड क्वालिटी जो मोबाइल न्यूज ARN पे अपन सुनते हैं, साउंड क्वालिटी जी बहुत अच्छा आता है। साउंड क्वालिटी मैम
0: बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बहुत अच्छी साउंड क्वालिटी होती है, एकदम साफ सुनाई देता है।
1: बिल्कुल मैम
0: जी, चलिए हम आपको सुनवाते हैं फिल्म अजनबी का गीत
1: जी। थैंक यू मैम
0: जी, सुनिए। फोन करने के लिए शुक्रिया आपका।
1: जय श्री माता।

0: हेलो
1: माजीरा जी, अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम सलाम, कौन बात कर रहे हैं?
1: कदम कदम पर दोस्ती की बहार मिले
0: जी,
1: सारी उम्र अपनों का प्यार मिले,
0: बिल्कुल
1: खिलती रहे तमन्ना फूलों की तरह
0: जी,
1: खुदा करे हर खुशी आपको बार बार मिले।
0: बहुत बहुत बहुत शुक्रिया आपको, बहुत ही अच्छी शायरी आपने की और बहुत ही अच्छे शब्द थे उस शायरी में, शुक्रिया आपका। बताएं आप कौन बोल रहे हैं?
1: मैं पालगा नाका इंदौर से मोहम्मद रफी मंसूरी बोल रहा हूँ।
0: जी जी, मोहम्मद रफी मंसूरी जी,
1: कैसे हैं?
0: और क्या हाल चाल है आपके? हमारे हाल चाल बिल्कुल ठीक है
1: जी, हम भी ठीक है मैडम
0: जी। बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: बेगम फिल्म का है, मोहम्मद रफी और साथियों की आवाज में है।
0: मोहम्मद रफी, हाँ जी, मोहम्मद रफी मन्नाडे और साथियों की आवाज में ये गाना है फिल्म पैगाम से। बिल्कुल हम आपको सुनवाएंगे। और बताएं क्या चल रहा है?
1: बस अभी आपको फोन कर रहे थे, मैंने नाश्ता कर रहे थे, और आप भी कर लीजिए नाश्ता।
0: हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप नाश्ता कीजिए और नाश्ते के साथ लुत्फ लीजिए आपके गीत का जो आपने पसंद किया है आज MH Hotline प्रोग्राम में। लीजिए सुनिए, शुक्रिया।

0: हेलो
1: हाँ जी, कौन बात कर रहे हैं?
0: घाटे गांव से गोविंद जलोदिया बोल रहा हूँ।
1: घाटे गांव से
0: गोविंद जलोदिया।
1: गोविंद जलोदिया जी बात कर रहे हैं। और आपका पहली बार फोन लगा है?
0: ये दूसरी चक्कर है।
1: दूसरी बार फोन लगा है। आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है फोन लगा कर?
0: अच्छा लग रहा है, बड़ी मुश्किल से लगा है।
1: हाँ हाँ, क्योंकि काफी मशक्कत होती है ना, उसके बाद फोन लगता है तो बड़ी खुशी होती है।
0: हाँ।
1: और बताएं, आज आपकी क्या पसंद है?
0: सर ये मेरी पसंद तो है वो सर जवाब पिक्चर का गाना है, तेरी दुनिया से दूर होके चले मजबूर, याद रखना
1: जी। बहुत अच्छा गीत है। हाँ। लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में। हाँ, गीत
0: जी, जी, हाँ।
1: और बहुत खूबसूरत गीत है।
0: संगीत, हाँ।
1: जी जी बिल्कुल बिल्कुल सही बता रहे हैं आप। और क्या करते हैं आप?
0: मैं तो कुछ भी नहीं करता, सब गर्मी काट रहा है बस, और क्या।
1: अच्छा अच्छा।
0: हाँ, मेरा जन्मदिन आने वाला है सर, ये 21 मई 1953 में हुआ था मेरा जन्म।
1: अच्छा अच्छा,
0: तो 74 साल का होने जा रहा हूँ।
1: बिल्कुल, बहुत शुभकामनाएं आप इसी तरह से सेहतमंद रहें।
0: बस मेरा ये मतलब रेडियो वगैरह सुनना पुराने टाइम से ही, बिना का गीत माला से अभी तक चल रहा है।
1: जी जी जी बिल्कुल, आप सालों साल इसी तरह से खुश रहें, खुशहाल रहें, जिंदगी बसर करते रहें और सुनते रहें आकाशवाणी इंदौर। और अभी सुनिए आपकी पसंद का गीत फिल्म चबक से।
0: हाँ ठीक,
1: शुक्रिया।

0: हेलो, आई एम एस शॉर्टलाइन।
1: हेलो, नमस्कार मैम।
0: नमस्ते, कौन बात कर रही हैं?
1: मैं रानू गुप्ता बात कर रही हूँ।
0: रानू गुप्ता
1: जी,
0: इस समय कहाँ से बात कर रही हैं आप?
1: मैं अपने घर पे ही हूँ। मतलब
0: आप इंदौर से ही बात कर रही हैं?
1: ना, देवास से।
0: देवास से बात कर रही हैं, वही मेरा पूछने का मतलब था कि आप भी किस जगह से हमें कॉल कर रही हैं।
1: जी,
0: और बताएं आप कैसी हैं?
1: मैं ठीक हूँ, और आपकी क्या हाल चाल?
0: हम भी सब ठीक हैं।
1: जी,
0: और तो आप क्या करती हैं? हाउस वाइफ हैं, कुछ करती हैं?
1: मैं हाउस मेकर हूँ। हाउस वाइफ तो हूँ, बट उसके साथ मेरे यहाँ अप्लाई फर्नीचर और किराने की शॉप है, तो जैसे कि हेल्प वगैरह हस्बैंड की है, तो बिल्कुल देखती हूँ शॉप वगैरह सब।
0: बिल्कुल बिल्कुल, दोनों काम आप मैनेज करती हैं मतलब?
1: हाँ, थोड़ा तो जैसे बर्तन वाली है वो कर लेती, लेकिन खाना वगैरह सब मैं ही करती हूँ।
0: नहीं नहीं, आजकल तो आप देख ही रहे हैं, हर क्षेत्र में महिलाएं आगे हैं और हर चीज़ को मैनेज करके चलती भी हैं, है ना? बाहर का हो या घर का काम, और घर का काम भी कोई कम नहीं होता है।
1: वो तो
0: काम तो हमेशा कंटिन्यू चलने वाले होते हैं।
1: देखिए, आप लोग भी जॉब पे आती हैं, फिर घर का भी काम करते होंगे।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: आते होंगे ना, तो फिर वही है।
0: बिल्कुल, सभी को मैनेज करना होता है, हमको अपने परिवार को भी मैनेज करके चलना होता है और अपनी सारी दायित्वों को भी हम मैनेज करके चलते हैं। अभी आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: मूवी का नाम है आप मुझे अच्छे लगने लगे, ऋतिक रोशन अमीषा पटेल वाली मूवी है
0: जी,
1: और इसी का टाइटल सॉन्ग सुनना है, और सॉन्ग डेडिकेट आपको रहेगा और मेरी बहन नंदनी को रहेगा।
0: धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको।

0: हेलो
1: हेलो।
0: जी।
1: हाँ दीदी नमस्ते।
0: हाँ जी नमस्ते नमस्ते साहू जी।
1: हाँ बात चल रही है आपको जी, राजेंद्र नगर जवानों का जिला विधि। बिल्कुल
0: जी, गंज बासोदा
1: आप
0: जिला विदिशा से बात कर रहे हैं,
1: भारतीय नियमितता भागचंद्र।
0: भागचंद साहू जी। जी बताएं, आपकी
1: बिल्कुल
0: पसंद
1: फिल्म
0: बताएं।
1: का नाम है चांदनी।
0: चांदनी। हाँ
1: कोई सा भी गीत चल जाता है फिल्म का।
0: बिल्कुल, चांदनी फिल्म का कोई भी गीत हम आपको सुना देते हैं।
1: बिल्कुल दीदी, मौसम कैसा है? बिल्कुल
0: देखिए अभी तो बहुत गर्मी हो रही है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है इंदौर का इस समय, और शायद
1: बिल्कुल।
0: विदिशा में भी होगा।
1: हाँ बिल्कुल दीदी, 30 डिग्री चल रहा है।
0: जी, अभी इस समय सभी जगह बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, और अपने आप को लू से बचाए रखने की ज़रूरत भी है हम सभी को।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
0: आइए
1: और
0: सुनते
1: दीदी
0: हैं।
1: क्या?
0: जी, आपने चांदनी फिल्म का गीत पसंद किया है, हम आपको सुनवाते हैं।
1: ठीक है दीदी, नमस्कार।
0: नमस्ते।

0: हेलो
1: हेलो हेलो एमएच हॉटलाइन।
0: जी एमएच हॉटलाइन में आपका स्वागत है।
1: दीदी मैं नवग्रह नगरी से मीना दसौंधी बोल रही हूँ। जी नियमित श्रोता हूँ आपकी।
0: बिल्कुल बिल्कुल आप नियमित श्रोता हैं और आपके पत्र भी हमें बराबर मिलते रहते हैं।
1: बिल्कुल जी
0: हाँ। फरमाइशी पत्र भी मिलते हैं आपका, पत्र में भी आपके पत्र प्राप्त होते हैं।
1: हाँ और कॉल भी करते रहती हूँ दीदी हर प्रोग्राम में।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और बताएं खरगोन का मौसम तो गर्म ही होगा इस समय।
1: जी दीदी गर्मी बहुत है यहाँ पर तो।
0: हाँ जी
1: हाँ खाना बनाते बनाते लगा रही थी दीदी एकदम से, 125 बार लगाए जब जाके लगा।
0: बिल्कुल सही कह रही हैं, हमारे बहुत सारे श्रोता इस समय लाइन पर होते हैं और हर कोई प्रयास करता रहता है कि हमारा फोन लग जाए।
1: दीदी मैं टाइम होता है जब तक कोशिश करना नहीं छोड़ती।
0: बिल्कुल बिल्कुल आप कहते हैं ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, इसलिए आपकी हार नहीं हुई और आप जीत गए, आपका फोन भी लग गया।
1: मुझे इंतजार था कि आज मेरा कॉल लग ही जाए।
0: जी जी जी बिल्कुल आपका कॉल लग गया है।
1: जी दीदी आज मेरे बेटे की सालगिरह भी है शादी की और दो बच्चों की अभी शादी हुई है अप्रैल में 26 तारीख के।
0: जी जी जी बधाई शुभकामनाएं दीजिए हमारी तरफ से, आकाशवाणी परिवार की तरफ से उन्हें।
1: जी सबको बधाई देने के लिए मैंने गाना सभी के लिए चूज किया है।
0: जी जी बताएं।
1: मुबारक हो तुमको ये शादी तुम्हारी, सदा खुश रहो ये दुआ है हमारी।
0: बिल्कुल लीजिए सुनिए ये गीत और हमारी भी दुआएं हम सबके साथ हैं। धन्यवाद।

0: हेलो
1: हेलो
0: जी नमस्ते
1: माजी जी नमस्ते
0: नमस्ते जी
1: नाम
0: जी
1: नमस्ते मैं कमलेश सदाशिव जोशी
0: जी
1: त्रिपन गिद्धर इंदौर से बोल रहा हूँ।
0: कहाँ से बात कर रहे हैं? इंदौर में
1: नगर है ये हमारा
0: जोशी जी
1: जी आई एम कमलेश
0: जी जी जी नमस्ते जी और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमें छॉट लाइन में। कौन सा गीत पसंद कर रहे हैं आज आप?
1: ये देखिए अभी आपने शादी की सालगिरह अभी गाना बजा है।
0: जी जी जी
1: इत्तेफाकन मेरी भी शादी की सालगिरह है आज।
0: ठीक है बहुत बधाई आपको
1: जी। 12 मई 1979 को मेरे मित्र जी की
0: जी। अच्छा
1: तो अनफॉर्चुनेटली नो मोर तो उसकी याद में मैंने गुमराह का गाना पसंद किया था
0: जी।
1: बहुत ये इन हवाओं में इन सजाओं में
0: जी जी जी
1: पर इसमें दो ऑप्शन है।
0: हाँ जी।
1: जो जो आपको मिल जाए जैसे एक दूसरा सीरियस वर्जन है।
0: जी जी जी जी बिल्कुल हम आपको सुनाएंगे ये इन हवाओं में ये गीत जो आपने पसंद किया है।
1: हाँ जी इन हवाओं
0: जी
1: महेंद्र कपूर
0: जी जी जी
1: पुरानी पिक्चर गुमराह
0: जी जी जी।
1: तो मेरे दिल्ली देखिए कई बार फोन लगाता हूँ
0: जी
1: और नहीं भी लगता तो उसका कोई अफसोस नहीं करता है
0: जी,
1: पर
0: जी।
1: आज मेरे ऊपर वाले से मेरी दुआ मांग रहा था जहाँ जरूर लग जाए क्योंकि मैं इसको डेडिकेट करना चाहता हूँ।
0: बिल्कुल बिल्कुल देखिए आपकी दुआ कबूल भी हो गई है और आप बिल्कुल मायूस ना हो और आपकी मायूस आवाज से मुझे ऐसा लग रहा है आप काफी मायूस हैं और मैं आपकी मायूसी को दूर करने के लिए एक शेर सुनाती हूँ आपको सुनिए। हो के मायूस ना यूं शाम से ढलते रहिए ये आपके लिए और आप इसके बाद बिल्कुल उत्साहित हो जाएंगे और मायूसियों को छोड़ देंगे। ठीक है हो के मायूस ना यूं शाम से ढलते रहिए जिंदगी भोर है सूरज से निकलते रहिए एक ही पांव पर ठहरेंगे तो थक जाएंगे धीरे धीरे ही सही सही राह पे चलते रहिए।
1: बहुत बहुत शुक्रिया अरे बहुत ही मोटिवेशन है आपने।
0: बिल्कुल अब आप मायूसियों को दूर करिए और जो आपने पसंद किया है वो गीत हम आपको सुनवा रहे हैं लीजिए सुनिए। धन्यवाद
1: शुक्रिया।

0: पुलिस।
1: मिस सीमा
0: जी,
1: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए, वरना घर आ जाएंगे।
0: क्यों, लेकिन मैं
1: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
0: डिजिटल अरेस्ट?
1: 1,00,000 दो बन जाओगे।
0: इतने पैसे?
1: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
0: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
2: हेलो मम्मा।
3: RBI कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: इस छोटे से अंतराल के बाद आप सभी श्रोताओं को MH हॉटलाइन में पुनः स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे कौन से कॉलर इस समय हमसे बात करना चाहते हैं। हेलो MH हॉटलाइन
6: जी, माजदा जी को वेरी गुड मॉर्निंग।
5: नमस्ते जी। नमस्ते
6: जी, मैं अरविंद अग्रवाल बोल रहा हूँ, तीनगा जिला महोबा उत्तर प्रदेश से।
5: अरविंद अग्रवाल
6: जी
5: महोबा उत्तर प्रदेश से बात कर रहे हैं
6: जी। ग्राम का नाम है श्रीनगर।
5: श्रीनगर, बिल्कुल हमने सुन रखा है। और बताएं आप कैसे हैं और इस समय क्या मौसम है उस यूपी का?
6: एकदम बढ़िया है, बहुत टेम्परेचर हाई चल रहा है, 40+।
5: 40+ चल रहा है। फिर इस समय फिर आपका कामकाज प्रभावित हो रहा है इस मौसम में?
6: जी, सुबह शाम आते हैं ग्राहक, बाकी ऐसी सन्नाटा सा रहता है, कम आते ग्राहक, बैठे रहते हैं लेकिन दुकान में।
5: हाँ, अब ये है कि दुकानदारी तो करनी ही है और ये हमारा वर्क स्थल है तो हमें तो उस पर रहना ही है
6: जी।
5: और वर्क स्थल के साथ साथ हम अपना मनोरंजन करते रहें, आकाशवाणी इंदौर तो आपके साथ है ही
6: जी।
5: चलिए बताइए।

0: बताएं कौन सा गीत सुनना चाहते हैं।
1: जी फिल्म का नाम रहेगा हमारा अकबर एंथनी।
0: जी
1: इसके गाने के बोल हैं, हमको तुमसे हो गया है प्यार,
0: जी
1: बोलो तो जी बोलो क्या मर जाए।
0: हाँ बिल्कुल, हम आपको सुनाएंगे किशोर कुमार, मुकेश और मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर की आवाज में। गीत लीजिए सुनिए।

0: हेलो
1: हेलो, नमस्ते मैम।
0: नमस्ते, कौन बात कर रही हैं?
1: मैं इंदौर से जीनत परवीन कोहिनूर कॉलोनी से पूछ रही हूँ, बोल रही हूँ।
0: कोहिनूर कॉलोनी से जीनत परवीन बात कर रही हैं
1: जी।
0: मेरी पहली बार आपसे बातचीत हो रही है।
1: फर्स्ट टाइम हो रही है।
0: बिल्कुल, आप लगाती हैं फोन?
1: जी लगाती हूँ।
0: जी जी जी,
1: आपका नाम?
0: मेरा नाम माजिदा खान
1: जी।
0: माजिदा खान।
1: अच्छा, आपका नाम सुनती रहती हूँ
0: जी बिल्कुल, अगर आप रेडियो सुनते रहेंगे तो परिचित होंगे सभी से। जी बताएं, आज कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: आज शक्ति पिक्चर का सुनना चाहूंगी।
0: हाँ,
1: हमने सनम को खत लिखा खत में। हाँ
0: जी, हम आपको जरूर सुनवाएंगे शक्ति फिल्म का ये गीत जो आपने पसंद किया है। और आप एम एच हॉटलाइन सुनती हैं, फिल्मी गीत आपको पसंद है?
1: जी पसंद है ना।
0: अच्छा, तो फोन इन कार्यक्रम के अलावा और भी सुनते हैं?
1: जी सुनती हूँ, और भी कार्यक्रम सब सुनती हूँ।
0: अच्छा अच्छा, चलिए हम आपको सुनाते हैं।
1: न्यूज़ में भी आती है
0: जी?
1: न्यूज़?
0: न्यूज़ भी सुनते हैं
1: जी।
0: बिल्कुल बिल्कुल, आजकल जानकर जी जानकारी रखना चाहिए, न्यूज़ सुनना ज़रूरी है। हमें आसपास की सारी जानकारियाँ मिलती हैं, देश विदेश के बारे में हमें जानकारी मिलती रहती है और हम अवेयर भी रहते हैं सारी चीज़ों से। तो मनोरंजन के साथ साथ ज्ञानवर्धन और जानकारियाँ भी हमारे साथ रहती हैं रेडियो के माध्यम से। लीजिए सुनिए अपनी पसंद का गीत जो आपने पसंद किया है फिल्म शक्ति से। फ़ोन करने के लिए धन्यवाद।
1: शुक्रिया।

0: हेलो हेलो, एमएच हॉटलाइन।
1: नमस्ते।
0: नमस्ते जी,
1: आवाज पता नहीं मेरी?
0: बिल्कुल, मारनारी जी बात कर रहे हैं।
1: इस टाइम आपकी आवाज पता मिल नहीं एकदम मेरे को।
0: देखिए, हमारे नियमित श्रोताओं को तो हम याद रखते ही हैं।
1: आज क्या महीना हो गया जाते हुए 12 तारीख को, तो उसकी याद में गान सुना था मैंने।
0: बिल्कुल बिल्कुल, हम आपको सुनाएंगे जी।
1: आशा भोसले की याद ऐसी किस तरह दिन में बैठ गई है कि वो बुलाएंगे भूल पाते हैं हम लोग।
0: बिल्कुल, वो
1: जब भी उसकी आवाज आपके कानों में गिरती है तो मन प्रसन्न हो जाता है, यादें चली जाती है, अतीत में यादें चली जाती
0: है। बिल्कुल सही कहते हैं आप, इस तरह के जो सितारे हैं उनकी यादें तो भुलाई नहीं जा सकती, उनके गीत गाए हुए हमेशा हमारे जहन में रहते हैं और सुनते ही हम उनकी यादों में चले जाते हैं।
1: ये अभी मैंने गीत सुना है का मदन मोहन का संगीत है, राजा जी कृष्ण का गीत है
0: जी। जी,
1: इस फिल्म के कलाकार थे अमित शाह अनुप कुमार
0: जी। देख कबीर रोया,
1: ये गाना अनुप कुमार और अमित शाह का फिल्म है ऐसा लग रहा है।
0: देखिए, आपने जो भी गीत पसंद किया है मैं आपको सुनाती हूँ, लीजिए सुनिए।
1: हेलो।

0: हेलो।
1: हाँ हेलो मैडम।
0: नमस्ते।
1: नमस्ते मैडम
0: जी। जी नाम बताएं आपका।
1: मेरा नाम सीताराम कुमावत।
0: सीताराम कुमावत जी जी।
1: हाँ चिकली के पास से बोल रही है, सिमरोल के पास चिकली से बोल रहा हूँ मैं।
0: जी जी जी। गाना बताएं, हमारे पास बहुत ही कम समय बचा है।
1: अमराज पिक्चर का गाना सुनना, नीले गगन से।
0: नीले गगन के तले महेंद्र कपूर की आवाज में यह गाना है और हम आपको सुनवा रहे हैं प्रोग्राम का आखिर गीत।

0: इस गीत के साथ ही MH हॉटलाइन प्रोग्राम समाप्त करने की अनुमति दीजिए अपनी रेडियो दोस्त माजिदा खान को। नमस्कार।
1: हेलो MH हॉटलाइन।
0: अभी आप सुन रहे थे सजीव फोन इन कार्यक्रम MH हॉटलाइन। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। 11 बजने को है। कुछ ही पलों में हमारा अगला कार्यक्रम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से अनुप्रसारित किया जाएगा।
2: गीत हमारे प्रस्तुति सुनीता सिंह की है।
3: नमस्कार, बात आपकी गीत हमारे इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। मैं सुनीता सिंह। दोस्तों, जिंदगी हर सुबह हमारे हाथों में एक नया दिन रख देती है, लेकिन उसे शिकायतों से भरना है या शुक्रिया की रोशनी से सजाना है, ये चुनाव कहीं ना कहीं हमारा अपना होता है। कभी हम उन चीजों के बारे में सोचकर उदास हो जाते हैं जो हमारे पास नहीं है, और कभी एक छोटी सी खुशी भी मन को इतने संतोष से भर देती है कि जीवन सुंदर लगने लगता है। सच तो ये है कि सुख केवल परिस्थितियों में नहीं बल्कि उस दृष्टि में छिपा होता है जिससे हम अपने जीवन को देखते हैं। शिकायतें धीरे धीरे मन की मिठास छीन लेती हैं, रिश्तों में अनकही दूरियां भर देती हैं, और फिर घर परिवार दोस्त सबका साथ होते हुए भी हम अकेलापन महसूस करने लगते हैं। लेकिन उसी जीवन को जब हम शुक्रिया कहकर स्वीकारते हैं, जब हम आभार के भाव से भरते हैं, तो साधारण दिन भी उत्सव जैसा लगने लगता है।

0: ये है कि जिसे जो मिला उसने उसी से अपना संसार बना लिया। किसी ने कमी गिनी और किसी ने कृपा। तो आइए आज इसी विषय पर कुछ दिल की बातें करते हैं। आज का विषय, शिकायतें या शुक्रिया, आप किसके साथ हैं? आप अपनी जिंदगी में किन बातों के लिए ईश्वर, समय, अपनों या जीवन को शुक्रिया कहना चाहेंगे? क्या है आपके संतोष का आधार? कौन सी छोटी सी बात, कौन सा रिश्ता, कौन सी याद या कौन सा अनुभव आपको भीतर से संतोष से भर देता है? और क्या आपको लगता है कि जीवन का सुख वास्तव में हमारे नजरिए में छिपा होता है? तो आज इस कार्यक्रम में अपने अनुभव, अपने एहसास और अपने मन की बात साझा कीजिए हमसे। नमस्कार, बात आपकी गीत हमारे इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपना परिचय दीजिए।
1: जी, हम योगेश जांगड़े बोल रहे हैं, ग्राम सिरवा बांधा, जिला बेमेतरा, छत्तीसगढ़ से।
0: योगेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। कैसे हैं?
1: बढ़िया हैं, अच्छे हैं।
0: और बिल्कुल समय का ध्यान रखकर आपने फोन किया है।
1: हाँ जी, हाँ जी।
0: ये बहुत जरूरी है, हमारे सभी श्रोताओं को ये चाहिए कि वो समय का ध्यान रखकर एक हफ्ते के बाद फोन करें। तो योगेश जी,
1: शिकायत करने का मौका ही नहीं देंगे।
0: बहुत अच्छी बात। तो योगेश जी, हम आज का विषय बता दें, आज हम बात कर रहे हैं कि जीवन में आप किसके साथ हैं, शिकायतों के साथ या शुक्रिया के साथ। अक्सर मन में लोगों की शिकायत होती है कि हमारे पास ये नहीं है, ये उपलब्धि नहीं है। अपने अभावों को, अपनी कमियों को हम बहुत देखते हैं, लेकिन हर जिंदगी में कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होता है जिसके लिए इंसान शुक्रिया कह सके। तो हम जानना चाहते हैं कि आप किसके साथ हैं और किस बात के लिए शुक्रिया कहना चाहेंगे आप?
1: हमारा जीवन ज्यादातर शुक्रिया पर ही मतलब अभी तक गुजरा है। अक्सर लोगों को हम शिकायत करते सुनते हैं कि हमें ये परेशानी है, हमें वो परेशानी है, लेकिन वो सारी चीजें हमारे नजरिए पर निर्भर करता है कि हम किस चीज के बारे में ज्यादा सोचते हैं। जितना सकारात्मक सोचेंगे उतनी सकारात्मक ऊर्जा हमें मिलेगी और उस तरह से हमारा मानसिक स्थिति होगा। तो जो चीजें नकारात्मक होती है या जो हमारे से थोड़ी दूर होती है उनके बारे में उतना ना सोचे।
0: बिल्कुल,
1: जिंदगी बहुत खूबसूरत है और इस खूबसूरत जिंदगी को शुक्रिया में गुजारे तो ये ज्यादा अच्छा है, क्योंकि शुक्रिया कहने का मतलब तभी आता है कि जब हम या तो सामने वाले का मदद कर दे या सामने वाला हमारा मदद कर दे, तो ये सबसे अच्छी चीजें होती है।
0: बिल्कुल, जो कुछ हमें जिंदगी में नहीं मिला है उसकी शिकायत करते हुए हम ये भूल जाते हैं कि जो मिला है वो किसी आशीर्वाद से कम नहीं है, है ना?
1: बिल्कुल, मानव जीवन जैसे हमें मिला है तो यही हमारे लिए सबसे बड़ा सौभाग्य है। माता पिता है, पूरा परिवार है, इससे बड़ा एक इंसान के लिए कोई सौभाग्य की मतलब बात नहीं हो,
0: नहीं हो सकती। बिल्कुल। तो आज हम जानना चाहते हैं योगेश जी कि एक कोई ऐसी बात आप बताएं जिसके लिए आप, या जितनी बातें आप कहना चाहें, किस बात के लिए आप दिल से शुक्रिया कहना चाहते हैं जिंदगी को?
1: जिंदगी को दिल से शुक्रिया तो इसी बात के लिए कहना चाहेंगे कि हमारा पूरा भरा परिवार है और अभी तक के 35 साल के जीवन में हमें कभी मतलब दुखद या फिर कह सकते हैं जिंदगी से उस तरह से कोई शिकायत नहीं है।
0: क्या बात है। देखिए, आज जबकि बहुत से इंसान ऐसे हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें हर पल शिकायत होती है और इसकी वजह से उनके घर का पूरा वातावरण भी खराब होता है, जिंदगी भी खराब होती है, कई बार शारीरिक परेशानियां हो जाती हैं, बीमारियां आ घेरती हैं इस नकारात्मक भाव में रहते रहते। लेकिन आप कह रहे हैं
1: जी जी, जिंदगी से जितना चाहे है उनसे दोगुना ही मिला है।
0: क्या बात है। तो सोचना चाहिए कि जो कुछ मिला है उसको भी हम सेलिब्रेट करें, है ना? जो कुछ मिला है वो कम नहीं है, बहुत कुछ मिला है और का हम प्रयास कर सकते हैं खुशी के साथ, मेहनत के साथ, लेकिन जो मिला है उसे सेलिब्रेट करना ना भूलें।
1: जी जी जी।
0: तो योगेश जी, बहुत अच्छा लगा आपकी बात सुनकर। एक बहुत ही प्यारा सा गीत आप तक भेजते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपने फोन किया।

0: हेलो,
1: हेलो
0: बात आपकी गीत हमारे कार्यक्रम नमस्कार।
1: जी। नमस्कार दीदी, मैं दादू भाई कपूरवा तिंदवारा जिला बांदा उत्तर प्रदेश से रोशन सिंह बात कर रहा हूँ दीदी।
0: रोशन सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज इस
1: जी
0: कार्यक्रम में, जिसमें हम चर्चा कर रहे हैं कि शिकायतें या शुक्रिया, आप किसके साथ हैं?
1: जी दीदी, शुक्रिया के साथ रहूंगा मैं।
0: अच्छा, तो किन बातों का शुक्रिया कहेंगे?
1: जी मैं तो भगवान को, मतलब ईश्वर को यही शुक्रिया कहूंगा कि हमें, मतलब इंसान के रूप में जन्म दिया है। मतलब इंसान का जन्म बहुत यूनिक के बात कहते हैं, बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि मिलता
0: बिल्कुल,
1: है।
0: बड़े भाग मानुष तन पावा, है ना?
1: जी जी जी जी जी
0: तो पहला धन्यवाद तो इसलिए कि मनुष्य के रूप में आपको ईश्वर ने जन्म
1: जी
0: दिया। और
1: जी जी
0: किन-किन
1: जी
0: बातों का संतोष है जीवन में आपको? अक्सर
1: और
0: हम
1: दीदी और दीदी मुझे सारी बातों का संतोष है, लेकिन एक चीज से मैं कहना चाहूंगा कि मैं, मतलब, पढ़ाई नहीं कर पाया।
0: अफसोस है
1: जो
0: आपको कि आप पढ़ाई
1: जी
0: नहीं कर
1: अब
0: सके,
1: जी जी
0: लेकिन
1: अफसोस भी
0: देखिए।
1: है। जब 2 साल का था तब मुझे माइंड वाला दीदी जी बुखार हो गया था, तो डॉक्टरों ने, मतलब, पढ़ाई के लिए मना किया था कि पढ़ाई न कराना, नहीं आंखों की रोशनी चली जाएगी।
0: अब तो ठीक हैं आप?
1: जी अभी तो दीदी ठीक है, आप, मतलब, पूरा साफ साफ दिखाई देता है, लेकिन,
0: हाँ,
1: मतलब, पढ़ाई करने में दिक्कत होती तो पढ़ाई नहीं इसलिए करते दीदी।
0: लेकिन आजकल देखिए पढ़ने के भी बहुत तरीके हैं, सीखने के बहुत
1: जी
0: तरीके हैं, है ना?
1: जी जी जी
0: सुनकर
1: जी
0: बहुत
1: जी
0: कुछ आप सीख सकते हैं, है ना?
1: जी
0: तो
1: जी जी
0: आप
1: जी
0: जो कुछ जानना चाहते हैं वो सुनकर कीजिए, ऐसे बहुत से
1: जी
0: साधन
1: और
0: हैं।
1: अभी रविवार को हमने मदर्स डे मनाया है, तो मैं इस बात के लिए शुक्रिया अदा करना चाहूंगा अपनी माँ को कि हमें, मतलब, जीवन, इतना अच्छा जीवन दिया है उन्होंने। जी
0: देखिए,
1: जी
0: यही एक बात कि माँ साथ है, माँ ने इतनी अच्छी
1: जी
0: परवरिश दी, इस
1: जी
0: बात का
1: जी
0: भी
1: जी जी
0: शुक्रिया
1: जी
0: हो
1: जी
0: सकता
1: जी
0: है
1: जी
0: ना? बिल्कुल, होना ही चाहिए।
1: किसी किसी की तो दीदी माँ भी नहीं होती साथ, तो उनको भी बहुत दुख होता है, और हमें भी।
0: जी, तो रोशन सिंह जी, कहने का अर्थ यही है कि जीवन जो है वो नजरिए की बात है,
1: जी
0: वस्तुओं
1: जी
0: में,
1: जी जी
0: उपलब्धियों में, चीजों में सुख नहीं है। आपका
1: जी
0: नजरिया ही जो है वो आपको सुखी या
1: जी
0: दुखी करता है,
1: जी
0: संतुष्ट
1: जी
0: या
1: सुखी और
0: असंतुष्ट
1: दुखी में
0: करता है।
1: नजरिए नजरिए का बहुत अंतर है दीदी जी,
0: जी,
1: पूरा ही, मतलब।
0: तो शिकायतों के साथ नहीं, आप जीवन को शुक्रिया कहते हुए आगे बढ़ें, हमारा
1: जी
0: यही
1: जी
0: आज आपसे कहना है। और बहुत
1: जी
0: अच्छा लगा आपसे बात करके। चलिए, एक
1: जी
0: प्यारा सा
1: दीदी
0: गीत आप तक
1: जी
0: भेजते
1: दी
0: हैं।
1: जी दीदी नमस्कार, मैं सुनीता दीदी बोल रही हूँ, अपना नाम जान सकता हूँ थोड़ा?
0: जी जी जी जी सुनीता बोल रही
1: जी जी दीदी
0: हूँ।
1: नमस्कार, मैं आपको
0: नमस्कार।
1: वतन का राग में सुनता रहता हूँ तो बहुत अच्छा लगता है।
0: बहुत

0: बात आपकी, गीत हमारे। इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम अपने अगले श्रोता का। नाम बताइए
1: जी। आकाशवाणी मध्य प्रदेश के सारण सेवा में आदरणीय मैडम सुनीता सिंह जी को प्यार भरा अभिवादन करता हूँ। संतोष कुमार राव फ्रॉम उमरिया मध्य प्रदेश जी।
0: संतोष कुमार राव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो हम आज ये जानना चाहते हैं, जो विषय है वो आपके नाम से जुड़ा हुआ सा है। हम ये जानना चाहते हैं कि जीवन में कई बार हम बहुत सी बातों को लेकर असंतुष्ट होते हैं और शिकायतों से भर जाते हैं, तो ऐसी कौन सी बात है जो आपको संतोष देती है? आप शिकायतों के साथ हैं जिंदगी में या शुक्रिया के साथ हैं?
1: जी हमें हर बातों का मतलब शुक्रिया अदा करना चाहिए। ईश्वर ने हमें जीवन दिया है, इसका भी शुक्रिया अदा करना चाहिए। माँ ने जन्म दिया है, इसका भी शुक्रिया अदा करना चाहिए। पेड़ हमें छांव देते हैं, उसका भी शुक्रिया अदा करना चाहिए। हवाएं हमें वायु देती है, इसका भी शुक्रिया अदा करना चाहिए। जल हमें नीर देता है, उसका भी शुक्रिया अदा करना चाहिए। जीवन को शुक्रिया अदा करते ही अगर जाएंगे तो जीवन में संतुष्टि पाएंगे, और संतुष्टि ही सबसे बड़ा सुख होता है, संतोष का कारण होता है। तो विनम्र बनेंगे तो सहजता ही सरलता का भाव आता है, मन में ख्याल आता है, और विचारों को भी आप आदान प्रदान कर सकते हैं।
0: क्या बात है। तो दृष्टिकोण बदल जाए तो जीवन बोझ नहीं सुंदर लगने लगता है ना। और आपने बहुत अच्छी बात की कि कितनी बातों का हम शुक्रिया कह सकते हैं। एक स्वस्थ शरीर हमारे पास है, माँ ने जन्म दिया, परिवार ने हमें पाला पोसा, इतने अच्छे हमारे दोस्त हैं, हम चलने के काबिल हैं, बोलने के काबिल हैं, हम सुन सकते हैं, बहुत से उपहार हमें ईश्वर ने दिए हैं, है ना। और आपने प्रकृति की भी बात की है, बहुत अच्छा लगा संतोष जी। और इस तरह की जब एक दृष्टि होती है तो हमारा जीवन जो है उसकी गुणवत्ता बहुत अच्छी हो जाती है। फिर हम शिकायतों से नहीं भरते, हम हर बात के लिए आभार करते हैं, शुक्रिया करते हैं, और कृतज्ञता से भरे हुए होते हैं। और जो कृतज्ञ जीवन होता है वो हमेशा आनंद

0: होता है।
1: जी बिल्कुल मैम, और बहुत ही प्यारा सा प्रोग्राम्स होता है कार्यक्रम आकाशवाणी मध्य प्रदेश के। सभी प्रसारण सेवा के जो कार्यक्रम आते हैं बहुत ही लाजवाब होते हैं, और आपकी प्रस्तुतियां बहुत खास होती हैं। जितने भी पुराने हमारे अनाउंसर रहे हैं आकाशवाणी भोपाल के, बहुत ही अच्छा कार्यक्रम देते हैं। आप सभी की योगदान के लिए हम आपका भी शुक्रिया अदा बहुत बहुत करते हैं मैडम, क्योंकि इतनी अमूल्य समय निकाल करके आप हमसे बातें करते हैं और इतने कार्यक्रमों को आप प्रसार करते हैं, इसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा।
0: क्या बात है, आप हमारे प्रसारण के लिए हमें शुक्रिया कह रहे हैं। देखिए ये भी एक बात हो सकती है, एक नया ही दृष्टिकोण
1: बिल्कुल
0: आपने दिया। बहुत अच्छा लगा संतोष जी आपसे बात करके, बहुत शुक्रिया, बहुत आभार, बहुत धन्यवाद,
1: जी मैम, नमस्कार।
0: नमस्कार।

0: हेलो, बात आपकी गीत हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है हमारे अगले श्रोता का। अपना परिचय दीजिए।
1: जी जी नमस्कार जी।
0: नमस्कार
1: जी जी, मैं तो आज धन्य हो गया मैम जी कि आप उपस्थित हैं और ऐसे कार्यक्रम में उपस्थित हैं कि मैं मेरे विचारों की बात इस कार्यक्रम के माध्यम से रेडियो तक पहुँचे और श्रोताओं तक पहुँचे।
0: क्या बात है।
1: तो मैम जी, मैं अपना परिचय दे देता हूँ सबसे पहले। नियमित श्रोता जय नरसिंह एफएम रेडियो ग्रुप ग्राम करकबेल तहसील रोटेगांव जिला नरसिंहपुर के से कमलेश कहार बोल रहा हूँ जी।
0: कमलेश जी, आप हमारे नियमित श्रोता हैं, लगातार रेडियो सुनते हैं और बिल्कुल ध्यान से पूरे 7 दिन के बाद फोन करते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। इसके लिए आपका हम आभार करते हैं और जानना चाहते हैं कि आज के विषय पर आप क्या कहेंगे।
1: थोड़ी सी मैम बस एक बात और रख लूं, जैसे तो मैं सुन लूंगा मैम जी, वो तो सुनना जरूरी है, बताए के अनुकूल ही बोलूंगा। यही की श्रोताओं से निवेदन है, आग्रह, हाथ जोड़ कर निवेदन है कि कम से कम 8 या 9 दिन के पश्चात ही आप फोन लगाएं।
0: क्या बात है। तो कमलेश जी, आपके संदेश से हमारा मन खुश हो गया है, आपका आभार करते हैं कि हमारी तरफ से आपने ये बात कह दी है, बहुत शुक्रिया। आज का विषय जो है वो ये है कि हम जानना चाहते हैं कि जीवन में आप शिकायतों के साथ हैं या शुक्रिया के साथ, किन बातों का आभार करना चाहेंगे आप?
1: ये भी अनुकूल बात है मैम जी कि हमें शुक्रिया का अपनी जगह करने चाहिए जो हमारे पास है। जैसे मैं मान लूँ कि मेरे पास एसी नहीं है, तो बहुत से लोग एसी के लिए आतुर हैं आज, तो ये अच्छी बात नहीं है। जो है जितना है, कैसे है ना, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है।
0: क्या बात है, क्या बात है, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, और के लिए आप प्रयास कर सकते हैं, लेकिन नहीं है तो बहुत अधिक शिकायत से भरना ये जीवन को खराब कर देता है। तो कमलेश जी, हम ये जानना चाहते हैं कि आपके जीवन में ऐसी कौन सी बात है, ऐसा कौन सा रिश्ता है, ऐसी कौन सी याद है जिसके लिए आप शुक्रिया कहना चाहेंगे, आपको ऐसी कौन सी बात है जो संतोष से भरती है?
1: देखिए मैम जी, मुझे अपनों का साथ रोजी है, उसके लिए शुक्रिया करना चाहता हूँ। और दूसरी बात, सबसे बड़ा अपनापन जो है, मैं रेडियो के माध्यम से अपनापन समझता हूँ, तो रेडियो मेरे साथ है, मैं रेडियो के रोजाना उसके साथ हूँ। और आप जैसे उद्घोषक हमारे बीच है, तो ये भी एक शुक्रिया का या धन्यवाद का या आभार का, आभार की स्थिति बनती है। अपनों का साथ यदि रोजीना आपके साथ है, इससे बड़ा धन्यवाद या इससे बड़ा आभार किसी के लिए हो ही नहीं सकता।
0: बिल्कुल बिल्कुल। अगर आपके पास जीवन की बहुत सी उपलब्धियां हो लेकिन कोई अपना ना हो उसको सेलिब्रेट करने के लिए, उसका उत्सव मनाने के लिए, तो सारी खुशियां बेमानी हो जाती है ना?
1: बिल्कुल बिल्कुल, ये मन की बात कह दी, मैं यही कहने वाला था कि यदि हम उत्साह उमंग या खुशी मनाते हैं और ये अपना साथ ना हो, तो वहाँ कहीं ना कहीं हमें पीस पहुँचती है मन में, हृदय जरूर यह बात खलती है कि अपना कोई होना था तब हम उसके साथ अपनी बात रख पाते या खुशियाँ मना पाते।
0: जी जी,
1: तो
0: जी,
1: मैं समझता हूँ कि जीवन हमारा है या रिश्तेदार है या जो भी अपनेपन है, सभी के साथ उत्साह उमंग के साथ रहें और आभार रोज ही ना उनका करते रहें।
0: जी, और कहा जाता है कि जो हर बात के लिए आभार करता जाता है, जीवन में जो कुछ उसको प्राप्त है उसके लिए जो आभार करता जाता है, उसको प्रकृति की ओर से और बहुत कुछ मिलता जाता है। आप जितना संतुष्ट होते जाते हैं उतनी प्राप्ति और होती जाती है, तो इस वजह से भी आपको बहुत संतुष्ट होना चाहिए।
1: जी जी, जैसे मैं सुबह उठता हूँ रोजीना, मेरा स्वभाव बन चुका है कि धरती माँ को शरण स्पर्श करना, जलवायु अग्नि आकाश पृथ्वी माता की जय हो, आभार करता हूँ उनका रोजीना, ऐसा नाम लेकर के चंद्र देवता सूर्य भगवान जो हमारी संस्कृति कहती है, उन सभी का आभार करता हूँ कि मुझे आज के लिए आपने तैयार किया, मैं अब रोजी रोटी से लग जाऊँ।
0: क्या बात है, बहुत सुंदर बात कही आपने कमलेश जी, कि आप प्रकृति का आभार करते हैं, सूरज चांद धरती आसमान का आभार करते हैं कि एक और नया दिन हमें मिला है जीने के लिए और हम अपने काम को आगे बढ़ाएं, रोजी रोटी के लिए आगे बढ़ें, इस बात का शुक्रिया करते हैं। क्या बात है, मन खुश हो गया ये बात सुनकर।
1: बहन जी, ये शब्दों तक सीमित नहीं है, मैं सुबह में ही लाया हूँ।
0: जी जी,
1: शायद सुना पड़ी हो, कोयल मेरे बीच में है।
0: जी जी जी, कोयल ने आपके स्वर से स्वर मिलाया है और उसने सहमति दी है कि कमलेश जी सही कह रहे हैं।
1: पेड़ लगे हैं आम के, मैम जी अम्मियाँ लगी हैं, आम भी हो गए हैं, आंधी तूफान सबका आनंद ले रहे हैं।
0: क्या बात है। तो चलिए कमलेश जी, इसी तरह संतोष के साथ जीवन को खुशी खुशी आप बिताइए और आकाशवाणी का साथ बनाकर रखिए। आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद
1: जी। अंततः यह कहूंगा कि पूरी टीम को आभार धन्यवाद जो अप्रत्यक्ष रूप से आपके साथ रहते हैं, मैं हर बार यही कह देता हूँ, क्योंकि उनको आभार करना हमारा दायित्व बनता है, सभी श्रोताओं का दायित्व बनता है जो हमें आवाज के माध्यम सुनाई नहीं पड़ती, लेकिन उनके माध्यम से आवाज जरूर हमारे तक आ रही है।
0: जी जी जी बिल्कुल, तो हमारी पूरी टीम तक आपका आभार पहुँच रहा है, बहुत शुक्रिया आपने फोन किया। एक प्यारा सा गीत आप तक भेजते हैं। नमस्कार
1: जी, धन्यवाद जी।

0: बात आपकी, गीत हमारे। इस कार्यक्रम में अपने अगले श्रोता का हम स्वागत करते हैं। नमस्कार, नाम बताइए।
1: जी नमस्कार, मैं दशरथ सिंह बोल रहा हूँ, बस स्टैंड नाटाराम, जिला मंदसौर से।
0: दशरथ जी, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके कि आपने हमें फोन किया है, और हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि आज के विषय पर आप बहुत अच्छा एक कोई विचार रखेंगे। क्या कहना चाहेंगे आप, जिंदगी में किन बातों के लिए शुक्रिया कहना चाहते हैं? आप शिकायतों के साथ हैं या शुक्रिया के साथ हैं? आपको क्या लगता है कि जीवन का सुख वास्तव में हमारे नजरिए में छिपा होता है या वस्तुओं में, चीजों में छिपा होता है?
1: जी बिल्कुल, शुक्रिया अदा करना चाहेंगे सुख का, और शिकायत तो बिल्कुल भी नहीं है, किसी से भी शिकायत नहीं है। हमारे पास अपना जो शरीर है वो बिल्कुल स्वस्थ है, यानी हाथ पैर पांव सब ठीक है, और मम्मी पापा हमारे साथ हैं। शाम का खाना, सुबह का खाना, दोपहर की चाय, हम सब साथ में बैठकर पीते हैं, इससे सुख और क्या हो सकता है।
0: क्या बात है, परिवार का साथ है, माता पिता का आशीर्वाद है, भोजन की व्यवस्था है।
1: गरीबी और अमीरी, ये दुनिया का और संसार का नियम भी है, परिवर्तन का नियम है, लेकिन अपने पास स्वास्थ्य है। स्वास्थ्य नहीं, अपना जो शरीर है उसका स्वास्थ्य बहुत बढ़िया है, हाथ पैर बिल्कुल स्वस्थ है, सलामत है, और मम्मी पापा साथ में है, बच्चे बच्चियां हैं, मिसेज हैं, परिवार है, दुकान चल रही है, बढ़िया चल रही है, सभी कस्टमर आते हैं, वो सब सब कुछ चल रहा है, तो इससे बड़ी खुशी की बात और मेरे हिसाब से और कुछ नहीं हो सकती है।
0: बहुत सुंदर संदेश आपने दिया है दशरथ जी, के परिवार का साथ है, भोजन की व्यवस्था है, माता पिता का आशीर्वाद है, और आपका जो रोजगार है, रोजी रोटी, उसका काम बढ़िया चलता है, तो ये जरूर है कि आप और अच्छे का प्रयास करते होंगे, लेकिन जो है उसका संतोष जरूर है। जी
1: जी जी, हमने ये बात भी देखी है कि बहुत सारे के पास आधा पैसा है, लेकिन उनके पास बिल्कुल शांति नहीं है, वो खाना नहीं खा सकते हैं, किसी से बात करने का टाइम ही नहीं है, कोई गरीब आदमी आ गया तो उनको ऐसे ही टाल देते हैं कि इससे क्या बात करेंगे, अपना समय ऐसे ही जाया करा जाएगा, तो एक काम करते हैं, पैसे में लगे रहते हैं, हम पैसों के पीछे नहीं भागते हैं, हम व्यवहार के पीछे भागते हैं।
0: बिल्कुल, तो देखिए संतोष का बहुत सा अवसर और बहुत सी चीजें जीवन में उपलब्ध हैं, देखने के लिए एक दृष्टि चाहिए, है ना? हमारे जीवन में ईश्वर ने हमको ऐसा बहुत कुछ दिया है, ऐसी अनेक परिस्थितियां जिसके लिए हम आभार कर सकते हैं, जिसका कि आपने जिक्र भी किया, तो हमें बहुत अच्छा लगा दशरथ जी कि आपने एक बहुत सुंदर संदेश दिया इस कार्यक्रम के जरिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें फोन किया।
1: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण निरंतर ऐसे ही दिन रात हम तक पहुँचता रहे, जैसे की आकाशवाणी को सुनते हुए एक सुकून मिलता है, शांति मिलती है, जी तो ये मेरे हिसाब से कि जो कस्टमर और सुन रहे हैं, मेरे दोस्त लोग हैं, जो श्रोता बंधु हैं, मैं चाहता हूँ कि ये 90 साल का जो हमारा आकाशवाणी का सफर रहा है, हमारे से पहले भी चलता आ रहा था, तो आने वाली पीढ़ी को भी इसको समझना चाहिए कि आकाशवाणी क्या हो रही
0: है, बिल्कुल
1: आकाशवाणी क्या होती है।
0: बहुत अच्छी बात, तो आकाशवाणी से ये प्रेम बनाकर रखिए, आपके जरिए ये भी संदेश पहुंच रहा है कि आकाशवाणी, आप जो आने वाली पीढ़ी है वो भी रेडियो से जुड़े। बहुत अच्छा लगा दशरथ जी,
1: और कहते हैं कि जहां न पहुंचे प्राणी वहां पहुंच गई आकाशवाणी।
0: बहुत अच्छी बात, तो दशरथ जी आपने हमें आज फोन किया, आपका हम आभार करते हैं, शुक्रिया कहते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, एक प्यारा सा गीत आप तक भेजते हैं।

0: हेलो
1: हेलो, नमस्ते खमागणी।
0: नमस्ते खमागणी, कौन बोल रहा है?
1: हाँ, मैं जिला बालोतरा राजस्थान से आपका नियमित श्रोता मोहनलाल प्रजापति।
0: मोहनलाल प्रजापति जी, बहुत बहुत
1: जी
0: स्वागत है आपका। बात आपकी गीत हमारे कार्यक्रम में। कैसे
1: धन्यवाद।
0: हैं?
1: बहुत बढ़िया हूँ मैडम। और हमारे यहाँ तो गर्मी का मौसम बहुत खतरनाक है।
0: गर्मी खतरनाक है ही इस साल, तो बहुत बचकर रहना होगा और पूरी सावधानियां बरत कर ही गर्मी के मौसम में बाहर निकलिएगा। फिलहाल जो हमारा विषय है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आज हम जानना चाह रहे हैं कि जीवन में ऐसी कौन सी बात है जिसके लिए आप शुक्रिया कहना चाहेंगे, ऐसी कौन सी बात है जिसका आपको संतोष होता है। बहुत से लोग जीवन में शिकायतों के साथ रहते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, ये उपलब्धि नहीं है, मेरे जीवन में ये कमी है। तो हम आज जानना चाहते हैं कि जो है आपकी जिंदगी में, किस बात के लिए आप शुक्रिया कहना चाहेंगे जिंदगी को?
1: हाँ, भगवान की मेहरबानी से एक लड़का है तो वो मेरी मतलब मुराद पूरी हो गई। और दो बच्चियां हैं, जो एक शादीशुदा है और एक छोटी है, तो मेरी मुराद पूरी हो गई है। और वो एक भगवान की मेहरबानी से एक बच्चा है तो वो भी अपने काम पर व्यस्त है, तो मतलब मेरे मन की मुराद पूरी हो गई और मैं संतुष्ट हूँ।
0: संतुष्ट हैं। इसके अलावा और कौन कौन सी बातें हैं आपको ये लगता है कि आपके जो बच्चे हैं वो योग्य हैं और स्टैब्लिश्ड हैं, इसलिए आप संतोष करते हैं और आभार करना चाहते हैं ईश्वर का? और कौन सी बात है जिसका आप शुक्रिया कहना चाहेंगे? कई बार शिकायतें होती हैं लोगों को बहुत कि जिंदगी में ये नहीं है, अभावों पर बहुत हमारा ध्यान जाता है, लेकिन जो हमारे पास
1: मैं मेरे शरीर से संतुष्ट हूँ क्योंकि मैं नशा करता नहीं हूँ और मैं स्वस्थ हूँ। भगवान की मेहरबान से खुद धंधा कर लेता हूँ और संतुष्ट हूँ। भगवान की मेहरबान से धंधा भी अच्छा है।
0: जी, तो आप स्वस्थ हैं इस बात का शुक्रिया अदा करते हैं और ये बड़ी बात है। स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन कहा गया है स्वास्थ्य को, है ना?
1: हाँ
0: तो
1: जी,
0: सबसे
1: स्वास्थ्य
0: बड़ा
1: को धन
0: धन जब
1: कहना।
0: आपके पास है, आप स्वस्थ हैं, तो जीवन का सारा आनंद आपके पास है।
1: हाँ
0: तो इस
1: बिल्कुल
0: तरह
1: जी,
0: से भी सोचा जा सकता है जिंदगी को, है ना? तो मोहनलाल जी, आज आपने हमें फोन किया, हमें बहुत अच्छा लगा। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।

0: बात आपकी गीत हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, नाम बताइए।
1: मैं नीरज उपाध्याय बोल रहा हूँ, मैं अनूपपुर से।
0: आज के विषय पर क्या कहना चाहेंगे आप? शिकायतों के साथ हैं या शुक्रिया के साथ? ऐसा कौन सा विषय है, ऐसी कौन सी बात है जिसका आपको बहुत संतोष है, खुशी है और आप शुक्रिया कहना चाहते हैं?
1: देखो मैम, शुक्रिया जरूर हमें किसी की, अगर कोई हमारी मदद कर रहा है, कोई हमें अच्छा कोई कर रहा है, तो हम जरूर भी उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। जी
0: जिंदगी आपके साथ जो व्यवहार कर रही है, जिंदगी ने आपको जो दिया है, हम उसकी बात कर रहे हैं। ऐसी कौन कौन सी बात जिंदगी से आपको मिली है जिसका आप शुक्रिया कहना चाहेंगे?
1: बिल्कुल, मेरे हमारे जीवन में जरूर ऐसे कई बस ऐसे बातें आए हैं जिसको हम लोगों को शुक्रिया अदा किए हैं, ऐसे बात नहीं है। जी
0: आप क्या करते हैं?
1: मैं सिक्योरिटी गार्ड हूँ।
0: अच्छा, तो देखिए आपके पास एक नौकरी है, इस बात का शुक्रिया कर सकते हैं आप, है ना?
1: जी
0: बहुत से
1: बिल्कुल
0: लोग ऐसे हैं जिनके पास कोई जॉब नहीं है, नौकरी नहीं है,
1: जी जी
0: है ना? इसी तरह से बहुत
1: जी
0: सारी चीजें हो सकती हैं। घर में, घर परिवार में कौन है आपके?
1: घर पर में मेरी फैमिली है, मेरी मम्मी है। जी
0: और सभी लोग स्वस्थ हैं,
1: जी बिल्कुल
0: सभी
1: स्वस्थ
0: लोग
1: है।
0: खुश हैं, इस बात का
1: जी
0: शुक्रिया हो सकता है ना?
1: बिल्कुल हो सकता है। और एक
0: तो
1: शुक्रिया का है, एक और होता है शुक्रिया, जैसे मैं नौकरी के लिए अप्लाई किया था, उन्होंने मेरे डॉक्यूमेंट्स को रिसीव करके मेरे को मतलब नौकरी पे रखा, तो मैंने उनको शुक्रिया अदा किया अपने बॉस को।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: जी
0: दोस्त को भी शुक्रिया, ईश्वर को भी शुक्रिया। तो इस तरह से एक नज़रिया जब हमारा होता है ज़िंदगी में कि जो कुछ हमें प्राप्त है उसको भी हम कभी सेलिब्रेट करें, है ना?
1: जी जी बिल्कुल
0: अच्छे
1: बिल्कुल
0: के लिए हम प्रयास ज़रूर करें, जो कुछ कम है उस कमी को पूरा करने की कोशिश करें। किसकी ज़िंदगी में कमियां नहीं हैं? हर इंसान की ज़िंदगी में किसी न किसी बात की कमी है। जिसके पास बहुत पैसा है उसके पास हो सकता है कि समय की कमी हो सकता है कि परिवार की कमी हो, है ना?
1: जी जी बिल्कुल
0: तो चलिए, हमें बहुत अच्छा लगा कि आप शुक्रिया अदा करते हैं कि आपके पास एक अच्छी सी नौकरी है, घर परिवार है और सभी स्वस्थ हैं। तो इसी तरह से ज़िंदगी को सकारात्मक भाव के साथ देखिए और बहुत खुश रहिए, संतुष्ट रहिए। बहुत अच्छा लगा नीरज जी आपसे बात करके, बहुत शुक्रिया। आप तक भेजते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: बात आपकी गीत हमारे कार्यक्रम है ये, हमारे कौन से श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं?
1: मेरा नाम चंद्रशेखर सिंह शाक्य है, मैं टैक्सेशन असिस्टेंट हूँ मध्य प्रदेश वाणिज्यिक कर विभाग के अंतर्गत SGST डिपार्टमेंट में।
0: चंद्रशेखर सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। पहले भी फोन किया है आपने?
1: नहीं मैम,
0: पहली बार फोन किया है, तो इस तरह से आप हमारे नए श्रोता हुए, तो विशेष स्वागत है आपका। और अब हम जानना चाहते हैं कि आज के विषय पर आप क्या कहेंगे?
1: मैडम, मैं तो शुक्रिया अदा करूंगा, क्योंकि लाइफ में जो अप्स एंड डाउन रहते हैं वो ऐसा मानिए कि अगर वो नहीं होंगे तो हमें छोटी छोटी खुशियों का कभी पता नहीं चलेगा।
0: बिल्कुल,
1: तो
0: बिल्कुल,
1: थोड़ा सा लाइफ में स्ट्रगल होना या नेगेटिव फेस आना बहुत जरूरी होता है, उससे आदमी बूस्ट भी करता है
0: जी,
1: परिवार के साथ में उसकी बॉन्डिंग भी बनती है, बहुत सारी चीजें अच्छी है।
0: जी जी, तो ऐसी कौन सी बात है जिसका आपको बहुत संतोष है, जिसके लिए आप जिंदगी को शुक्रिया कहना चाहेंगे?
1: मैडम, मुझे इस बात का संतोष है कि मैं अपने परिवार के प्रति काफी संतोषजनक हूँ, उनकी बहुत केयर करता हूँ, वो मेरी बहुत केयर करते हैं।
0: एक अच्छा परिवार है आपके पास, है ना?
1: जी मैम,
0: जी जी। तो देखिए, जीवन में बहुत कुछ ऐसा होता है जिसको हम सेलिब्रेट कर सकते हैं, एक दृष्टिकोण की बात होती है, जो संतोष और सुख है वो वास्तव में हमारे नजरिए की बात है। तो चंद्रशेखर जी, आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा, आप हमारे नए श्रोता हैं, हम चाहेंगे कि आप हमारे नियमित श्रोता रहें, लगातार हमें फोन कीजिएगा, बस इस बात का ख्याल करके कि एक सप्ताह के अंतराल के बाद ही आप दोबारा फोन करें। बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा।
1: थैंक यू।

0: हेलो
1: हेलो,
0: नमस्कार, नाम बताइए।
1: शिवम सिंह,
0: कहाँ से बोल रहे हैं शिवम जी?
1: शहडोल, मध्य प्रदेश।
0: शिवम जी आप हमारे नए श्रोता हैं शायद,
1: जी
0: पहली बार फोन लगा है आपका।
1: हाँ,
0: बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका हम शिवम जी, बात आपकी गीत हमारे कार्यक्रम में। तो क्या कहेंगे आज के विषय पर आप?
1: फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं बहुत ज्यादा थैंकफुल हूँ कि मेरे पास एक बहुत अच्छी फैमिली है,
0: अच्छा।
1: क्योंकि वो बहुत ज्यादा सपोर्टिव है, रहते हैं मेरी पूरी फैमिली एंडायरिंग माय एल्डर ब्रदर्स, माय पेरेंट्स, सारी चीजें सब लोग। एंड जो क्योंकि लाइफ में बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन्स आते हैं, बहुत सारी जगह आपको ऐसे चीजें होती हैं कि आपको गाइडेंस की जरूरत होती है,
0: जी।
1: तो वहाँ पे बहुत अच्छी मेरे जो बड़े भाई लोग हैं और जो मेरे और पेरेंट्स हैं, वो सारे लोग मुझे बहुत अच्छा गाइड और सपोर्ट करते हैं वहाँ पे।
0: क्या बात है
1: सेकेंडली,
0: जी।
1: आई वॉज वेरी थैंकफुल फॉर माई जॉब, फॉर जॉब ऑन माई हैविंग, और अभी जिस जॉब को मैं कर रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे भी बहुत अच्छे सीनियर्स मुझे मिले हैं जो मुझे सपोर्ट करते हैं, और मुझे आगे बढ़ने में लाइफ कोचेस भी, एज अ लाइफ कोच भी गाइड करते हैं, एज अ कंपनी कोच भी गाइड करते हैं।
0: क्या बात है। तो शिवम जी आप बहुत खुश हैं कि एक बहुत अच्छा परिवार आपके पास है जो आपका मार्गदर्शन करता है और सपोर्ट करता है जब कोई कठिन परिस्थिति आती है, और ऐसा ही आपका कार्यक्षेत्र भी है। तो आपको क्या
1: जी
0: लगता है कि जिंदगी में सुख जो है वो वास्तव में वस्तुओं से होता है, चीज़ों से होता है, या हमारे नज़रिए की बात है सुख?
1: नजरिए का होता है, क्योंकि सबकी लाइफ, सबके देखने का तरीका अलग होता है। किसी को मटेरियल हैप्पीनेस होती है, किसी की मटेरियलिस्टिक होती है, किसी को चीजों में खुशी मिलती है, किसी को

0: फैमिली में खुशी मिलती है, किसी को किसी चीज में मिलती है। मुझे फैमिली में ज्यादा ज्यादा अच्छा लगता है, बिकॉज
1: जी
0: अगर आपके पास चीजें नहीं भी हैं बट आपके पास एक अच्छा परिवार है, कुछ अच्छे लोग हैं जो आपको आपके जिंदगी के उतार चढ़ाव में आपका साथ दें, तो जिंदगी आसान लगती है।
1: बिल्कुल। और नजरिए की बात मैंने इसलिए की कि एक गिलास की हम बात करें कि एक गिलास अगर आधा भरा है तो उसे दो तरह से देखा जा सकता है। कोई कह सकता है कि ये गिलास आधा भरा है और कोई ये भी कह सकता है कि ये गिलास आधा खाली है। तो ये दृष्टिकोण की बात है ना। तो हर जीवन में कमी तो होती है, अगर हम सिर्फ कमियों को लेकर शिकायतों से भरते हैं तो फिर बात बनती नहीं, जिंदगी उतनी अच्छी नहीं होती है, गुणवत्ता उसकी खराब हो जाती है ना।
0: जी
1: तो शिवम जी, आपने आज हमसे बात की, हमें फोन किया और अपने विचार इस कार्यक्रम में रखे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप तक भेजते हैं एक प्यारा सा गीत।

श्रोताओं, जीवन शायद कभी पूरी तरह शिकायतों से खाली नहीं होता, लेकिन यदि मन में शुक्रिया के कुछ दीप जलते रहें, तो अंधेरे उतने घने नहीं लगते हैं। कभी किसी अपने का साथ, कभी किसी अनजान की मुस्कान, कभी सुबह की धूप, तो कभी कठिन समय में मिली छोटी सी उम्मीद। जीवन हर दिन हमें कुछ न कुछ ऐसा देता है जिसके लिए ठहर कर धन्यवाद कहा जा सके, आभार किया जा सके, शुक्रिया कहा जा सके। शिकायतें मन को थका देती हैं, लेकिन कृतज्ञता मन को शांत करती है और यकीनन संतोष का रास्ता यहीं से होकर गुजरता है। इसी सोच और इसी सकारात्मक भावना के साथ अनुमति दीजिए अपनी दोस्त सुनीता सिंह को। आप मुस्कुराते रहिए, अपनों का साथ महसूस करते रहिए और जीवन में मौजूद छोटी छोटी खुशियों के लिए दिल से कहते रहिए शुक्रिया। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे, प्रस्तुति सुनीता सिंह की थी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: पेश है इस घंटे की खास खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में राज्य मंत्रिमंडल की पहली बैठक के निर्णयों की सराहना की। श्री मोदी ने प्रसन्नता व्यक्त की कि राज्य के लोग अब विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत का लाभ उठा सकेंगे। डबल इंजन सरकार जल्द ही अन्य केंद्रीय योजनाओं को निर्बाध रूप से सुलभ कराएगी। आज अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस है। आधुनिक नर्सिंग के संस्थापक फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती के उपलक्ष्य में ये दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष का विषय है हमारी नर्सें हमारा भविष्य। ये दिन रोगियों की देखभाल, सामुदायिक स्वास्थ्य और आर्थिक विकास में नर्सों की महत्वपूर्ण भूमिका के सम्मान को दर्शाती है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कल नरसिंहपुर जिले के गोटेगांव से मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की 36वीं किश्त जारी करेंगे। इस दौरान 1,25,22,542 हितग्राहियों के बैंक खातों में 1,835,67,29,250 रुपये की राशि अंतरित होगी। प्रदेश में 1 जुलाई से विकसित भारत जी रामजी अधिनियम पूरी तरह से लागू हो जाएगा। इससे वर्ष भर में 125 दिन का रोजगार मिलेगा, जिससे न सिर्फ ग्रामीण आजीविका बल्कि अधोसंरचनात्मक विकास को भी गति मिलेगी। इंडो फ्रेंच इन्वेस्टमेंट कॉन्क्लेव आज भोपाल में आयोजित की जा रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यहां विदेशी निवेशकों से संवाद करेंगे। कॉन्क्लेव में फ्रांस के राजदूत, उद्योग जगत के प्रतिनिधि, वैश्विक कंपनियों और प्रदेश के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी शामिल हो रहे हैं। और आईपीएल क्रिकेट में आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शाम 7:30 बजे गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। दिन के 12 बजे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। श्रोताओं, संगीत केवल मनोरंजन का साधन नहीं बल्कि हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है, जिसका प्रभाव हमारे मन, शरीर और आत्मा पर गहराई से पड़ता है। और भागदौड़ वाली इस जिंदगी में संगीत एक थेरेपी की तरह है, और ये थेरेपी अगर आपके पसंद की हो तो फिर तो सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है। तो आइए शुरू करते हैं आज की संगीतमय थेरेपी, वो भी आपकी पसंद की, कार्यक्रम आपकी फरमाइश के इस पहले गीत के साथ, जिसे हमने लिया है फिल्म बेमिसाल से। लता मंगेशकर की आवाज को संगीत से सजाया है आरडी बर्मन ने और गीत लिखा है आनंद बख्शी ने। इस गीत की फरमाइश हमें भेजी है आप सभी श्रोताओं ने। इंदौर मध्य प्रदेश से विजय, अनिल, नेहा फड़से, सीमा, कमल, पूजा, सुषमा और सुनील। साथ ही औरंगाबाद से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और शीतल राजेश ने। तो लीजिए सुनिए अपनी पसंद पर फिल्म बेमिसाल का ये गीत।

और प्रयागराज भट्ट, बेरडी से राजेश सोनी, कंचन सोनी, गायत्री, वैष्णवी चंचल और अर्जुन। आप सभी की पसंद है फिल्म अभिलाषा का गीत, जिसे गाया है मोहम्मद रफ़ी ने। इस गीत को लिखा है मजरू ने और संगीतबद्ध किया है राहुल देव बर्मन ने। तो लीजिए सुनिए अपनी पसंद का ये गीत।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश। लीजिए अब सुनिए आनंद बख्शी का लिखा, आर डी बर्मन का संगीत से सजाया हुआ गीत। फिल्म का नाम है तीसरी कसम और गायक कलाकार हैं अमित कुमार। पसंद आप सभी श्रोताओं की है। छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरेंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और झावेंद्र कुमार वर्मा। साथ ही इसी गीत को सुनना चाहा है पटेल नगर मलोट पंजाब से डॉक्टर रमेश कुमार जाजौरिया, गीता रानी जाजौरिया, गगनदीप जाजौरिया और बेबी आरजू जाजौरिया ने।

सपना संगीता रोड इंदौर से लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता सुनीता, पिंकेश, साक्षी, मनन और तानिया। गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर बिरक, जयतेग बिरक और मीका बिरक। आप सभी ने फरमाइश की है लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर की आवाज़ों में फिल्म धनवान के इस गीत को सुनने की, जिसे लिखा है साहिर ने और संगीतबद्ध किया है हृदयनाथ मंगेशकर ने। लीजिए सुनिए।

नाइट इन लंदन। इस फिल्म का गीत सुनिए मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। बोल आनंद बख्शी के हैं, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का और पसंद आप सभी की। बनियापारा धमतरी छत्तीसगढ़ से रामचंद्र माखीजा, सविता माखीजा, बेबी स्वाति, माही, पूजा, छुटकी, शरद और पूरा माखीजा परिवार ने।

0: इस गीत के साथ ही कार्यक्रम आपकी फरमाइश यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है,

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर

सदी हो तुम, या यूं कहें वक्त की रफ्तार हो। कच्ची यादों से उम्मीदों के चिराग जगमगाने तक, यूं ही चलते चलते अचानक कुछ याद आ जाने तक, हर कदम पर रहे हो साथ साथ।

0: युवाओं के जोश, उमंग और ज्ञान से भरे कार्यक्रम युववाणी का प्रसारण होता है प्रतिदिन शाम 5 बजे,
1: जिसमें होती है नित नई जानकारियाँ, मनोरंजन और ज्ञान की बातें।
0: तो सुनते रहिए मालवा की शान,
2: आकाशवाणी इंदौर।
1: आकाशवाणी इंदौर अब मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है।
3: हेलो
4: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
3: किसे?
4: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
5: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
3: सर इतने कहाँ से?
5: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए
4: 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
6: 2 लाख क्या हुआ पापा?
3: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
4: अरे
3: काट दिया।
6: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
3: फ्रॉड?
6: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
3: तो पैसे गवाओगे,
7: RBI कहता है।
8: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
9: माने वकील थे, बड़े वकीलों में उनकी गिनती हुआ करती थी। बस ये समझा जाए कि राय बहादुरी के खिताब के करीब पहुंच चुके थे। ऐसा नहीं था कि वो कोई खानदानी रईस थे। इनका बचपन बड़ी गरीबी में बीता। इनके संघर्ष और कामयाबी की मिसालें शहर में चर्चा का विषय थीं।
10: अरे BA में 3rd division से पास हो गए और वो भी 2 साल में, तो कौन सा तीर मार लिया? उन्हें देखो जिन्हें पढ़ने के लिए लालटेन की रोशनी भी नसीब नहीं थी, सड़क पर लगे लैंप शेड की रोशनी में पढ़ा करते थे और कभी कभी तो जुगनू की रोशनी में।

0: बन पाता है। बीज जब तक मिट्टी में नहीं मिल जाता पेड़ नहीं फूटता, पत्ते नहीं लगते फल नहीं आता।
1: बाबू अक्षय कुमार का शुरुआती सफर तो संघर्षमय रहा ही। वकालत करने के बाद भी सफलता नहीं मिली, लेकिन शीघ्र ही परिश्रम और लगन से वो समय भी आ गया जब वही काला कोट कामधेनु साबित हुआ। कुछ ही समय में अपनी मेहनत और लगन से उन्हें वो दर्जा मिलने लगा। बड़े बड़े जलसों में सभापति बनने का न्योता आने लगा। ये अक्षय कुमार के जीवन का वो समय था जब सारी खुशियां उनके कदम चूम रही थीं।
2: सभी मेहमान आ चुके हैं, मगर अभी तक हमारे खास मेहमान अक्षय बाबू नहीं दिखाई दिए।
3: जी हाँ, उन्हीं का इंतजार हो रहा है।
4: अरे साहब, किसी मुकदमे की तैयारी में उलझे होंगे।
5: हाँ वो तो ठीक है, लेकिन आज के जलसे की पहली स्पीच तो उन्हीं से ही शुरू होनी है।
4: अरे लीजिए, आ गए वकील साहब, आइए आइए। शैतान का नाम लिया नहीं और शैतान हाजिर।
6: दोस्तों, आज की महफिल में हमारे खास मेहमान हैं हम सबके हर दिल अजीज, हमारे प्यारे दोस्त और शहर के जाने माने वकील अक्षय कुमार जी। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो यहां मंच पे आकर हमारे नौजवानों के लिए दो शब्द कहें और ये बताएं कि कैसे संघर्ष और परिश्रम से उन्होंने जीवन का ये सफर तय किया और इस ऊंचाई तक पहुंचे। अक्षय कुमार जी।
7: दोस्तों, आप सभी और घोष बाबू सम्मान के पात्र हैं जो उन्होंने मुझे इस योग्य समझा। मैं तो सिर्फ इतना ही समझता हूं कि कुछ लोग भाग्य को बनाते हैं और कुछ लोगों को भाग्य बना देता है। मैं पहले किस्म के लोगों में से हूं। हमारे शहर, समाज और देश की परिस्थितियां कुछ ऐसी हैं कि हमें भाग्य पर नहीं बल्कि स्वयं के कर्म और कड़े परिश्रम पर विश्वास करना होगा। मैं सभी नौजवानों में यही जज्बा देखना चाहता हूं।
3: वाह वाह, कितना अच्छा बोलते हैं अक्षय बाबू।
8: इनकी शादी हो गई है क्या?
3: अभी नहीं, जीवन की भागदौड़ में शादी करने की फुर्सत ही कहां मिली अभी तक।
8: लेकिन यह सही समय है, अक्षय बाबू को अब विवाह कर लेना चाहिए।
1: समय बीतता रहा, अदालत से कचहरी, कचहरी से घर, घर से महफिल और देखते ही देखते वो समय भी आ गया जब हर कामयाब इंसान की तरह अक्षय बाबू के जीवन में भी उनके हम सफर का आगमन हुआ। हेमवती बेहद हसीन और हसमुख औरत थी।
5: जाने मन, मैं आपसे कुछ पूछूं, इजाजत है?
7: हाँ जाने मन, हम भी तो यही चाहते हैं कि कुछ आप अपनी कहें कुछ हम अपनी कहें।
5: हम चाहते हैं कि आज शाम को हम लोग नुमाइश देखने चलें।
7: अच्छा।
5: शादी हुए हमें इतना समय गुजर गया, देखो ना हम कहीं घूमने फिरने बाहर गए ही नहीं अब तक।
7: अब बात यह है प्रिय कि काम की व्यस्तताओं में कहीं घूमने फिरने का ख्याल ही नहीं आया। और नुमाइश, नुमाइश में क्या रखा है? कितनी भीड़ भाड़ होगी वहाँ। मेरा तो दम घुटता है ऐसे माहौल में। क्यों ना हम घर में ही कोई आयोजन रख लें, मेरा मतलब है कि मनोरंजन कर लें।
5: ठीक है, मैंने पहली बार आपसे कुछ मांगा, रहने दीजिए।
7: अरे अरे अरे अरे, लगता है आप बुरा मान गई। अरे सुनो तो, चली गई। अब इन्हें कैसे समझाऊं कि इस मुकाम पर पहुंचने के लिए

0: कितनी जी तोड़ मेहनत करनी पड़ी है। अरे कौड़ियों को दांत से पकड़ना पड़ा है। वो तो मैं बालों में खिसाब भी इसलिए लगाता हूं कि मुझे इनका कुछ ख्याल आ जाता है। मेरी नजर में ये फिजूल खर्ची से ज्यादा कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी इन्हें मनाने के लिए कुछ तो करना ही होगा। ठीक है प्रियवर, चलते हैं नुमाइश के लिए, आप तैयार रहना।
1: रहने दीजिए रहने दीजिए, अब हमें कहीं नहीं जाना है। मेरी बहनों को देखो कितना खुलकर खर्च करती हैं, आए दिन खरीदारी और सैर सपाटे करती हैं। उनके पति तो उन्हें मना नहीं करते, और एक हमारे साहब है।
0: जान तुम मुझे समझ नहीं सकी। देखिए मेरे कहने का मतलब ये था कि कल हमें घोष बाबू की पार्टी में तो जाना ही है, फिर क्यों ना कल ही चला जाए। और हाँ याद आया, वहां आपने भी तो ड्रामे में हिस्सा लिया है ना।
1: क्या मैं नहीं समझ रही हूँ कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? ये क्यों नहीं कहते कि आप अपने चार पैसे बचाने की फिराक में हैं? साहब मैं आपकी खातिर ही तो घूमने के लिए कह रही थी, मैं आपके लिए कुछ खरीदना चाहती थी और उसके लिए मैंने कुछ रुपए रखे हुए हैं।
0: ये तो समझती है कि पैसा जैसे पेड़ पर लगता है। हेमू आज तुम बला की खूबसूरत लग रही हो।
2: ये बालों में जूड़ा,
0: ये गजरा, अरे वाह वाह वाह वाह, अरे लगता है नाटक की तैयारी पूरी हो चुकी है। कह देता हूं आज तो आप सबके दिलों पर बिजलियां गिराएंगी, बिजलियां। बड़ी कीमती साड़ी है, जरूर मायके सिलाई होंगी, और बनाओ श्रृंगार पर भी काफी खर्च हुआ होगा, सब बेकार का खर्चा है, पर किया क्या जाए, इनसे मैं कुछ कह भी तो नहीं सकता। कहीं फिर से बुरा मान गई तो नहीं, नहीं नहीं नहीं, मुझे अभी सब्र से ही काम लेना चाहिए। जी चाहता है प्रिय तुम्हारा हाथ चूम लूं।
1: जाइए भी, जल्दी से तैयार हो जाइए।
0: हाँ।
1: ड्रामे के लिए देर हो रही है।
0: हाँ।
1: अरे सब लोग इंतजार कर रहे होंगे ना। जनाब तारीफ तो ऐसे कर रहे थे जैसे खर्च करने के लिए तपाक से मेरे हाथ में रुपए थमा देंगे, लेकिन मैं भी इनसे एक कदम आगे ही हूँ, साहब को जल्दी ही पता लग जाएगा।
3: वाह वाह क्या अभिनेत्री है, शकुंतला के रोल में जान ही डाल दी।
4: इन्हें तो फिल्मों में अभिनय करना चाहिए।
5: बड़े खुशनसीब हैं, ऐसा नगीना उनकी अंगूठी में जो जड़ा है।
4: लेकिन साहब इतना महंगा नगीना और ऐसे कंजूस की अंगूठी में, वो क्या जाने इसकी कीमत।
6: साहब गोशाल कंपनी से कोई महाशय आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं।
0: ठीक है अंदर भेजो।
4: साहब ये 200 रुपए का बिल है।
0: बिल? कैसा बिल?
4: कल मेम साहब ने हमारी दुकान से कुछ खरीदारी की थी, उसी का बिल है।
0: ओह हाँ, अच्छा तो कल की चमक दमक, ये बिल उसका खमियाजा है।
7: मन मार कर अक्षय बाबू को सुंदर बीवी के इन अतिरिक्त खर्चों का बोझ उठाना ही पड़ता था। बीवी की खातिरदारी के लिए थोड़ा बहुत खर्चा अपने ऊपर भी करना पड़ता था, हालांकि ये सब उनके उसूलों के सख्त खिलाफ था। आए दिन किसी न किसी अनजाने खर्च का बोझ उनके सिर पर सवार रहता था। एक रोज वकील साहब जब कचहरी से लौटे,
1: सुनिए जी श्रीमती किचलू आई थी और ये निमंत्रण पत्र दे गई हैं।
0: अच्छा लाओ दिखाओ तो।
1: हाँ ये लीजिए।
0: अच्छा है, निमंत्रण पत्र तो बड़ा महंगा छपाया है। अच्छा अपने छोटे भाई के बीए में पास होने के शुभ अवसर पर
7: आप सभी को सपरिवार प्रीति भोज में आमंत्रित करता हूं। लीजिए बताइए, ये भला बीए पास करने की खुशी में इतना बड़ा आयोजन करने की क्या जरूरत है? मेरा भाई अगर बीए में पास होता तो मैं तो उसकी पीठ ठूंक कर कहता कि शाबाश, खूब मेहनत की। हजारों लोग हर साल बीए पास करते हैं, अजी इसमें कौन सी बड़ी बात है? अच्छा चलो मान भी लिया जाए, लेकिन ये ड्रामा खेलने का भी कार्यक्रम, ये बात तो मुझे बिल्कुल भी हजम नहीं हो पा रही है।
1: क्यों, इससे बेहतर खुशी का और क्या मौका हो सकता है?
7: मेरी जान, डॉक्टर साहब समझदार आदमी है, ये उन्हें क्या सूझी। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि खुशी तो हृदय का तत्व है, उसके लिए ढिंढोरा पीटने की क्या जरूरत है?
1: ठीक है, लेकिन मुझे तो जाना ही पड़ेगा ना।
7: जाना पड़ेगा क्यों, क्या वादा कर लिया है?
1: अब देखिए ना, श्रीमती किचलू कितना आग्रह करके गई हैं।
7: तो मेरी जान तुम एक काम करो, जैसे वो तुम्हारे घर आई ऐसे ही तुम भी कभी उनके घर चली जाना।
1: क्या,
7: इसमें परसों जाने की क्या जरूरत है?
1: अरे जरूरत है भाई, अब आपको ही बता दूं, मुझे नायिका का पार्ट दिया गया है और मैंने उसे मंजूर भी कर लिया है। लगता है साहब ये खबर सुनकर खुश नहीं हुए हैं।
7: फिर वही ड्रामा, मतलब ये हुआ कि ये ड्रामा खेलेंगी और घोषाल एंड कंपनी फिर से कम 200 रुपए की चपत लगाएगी। मामला बेहद गंभीर है, वक्त की नजाकत को समझते हुए इस बात की सख्त जरूरत है कि अभी से रोकथाम कर दी जाए। ये बला फिर से तुमने अपने सर ले ली, अपनी तकलीफ और परेशानी का बिल्कुल ख्याल नहीं किया तुमने, और ये भी नहीं सोचा कि तुम्हारी परेशानी तुम्हारे इस प्रेमी को कितनी परेशान करती है। मेरी जान, इस किस्म के जलसे नैतिक दृष्टि से बहुत आपत्तिजनक होते हैं, इन्हीं मौकों पर दिलों में ईर्ष्या के बीज बोए जाते हैं और यहीं पीठ पीछे बुराई करने की आदत पड़ती है। अरे ऐसे ही जलसों में तानेबाजी और नोकझोंक की नौबत आ जाती है कि फला लेडी हसीन है इसलिए उसकी दूसरी बहनों का फर्ज है कि उससे जलें। मेरी जान, ईश्वर ना करे कि कोई किसी से जले, मुझे तो डर है कि तुम्हारा दाहक सौंदर्य कितने ही दिलों को जलाकर राख कर देगा। इसलिए प्यारी हेमू, मुझे दुख है कि तुमने मुझसे पूछे बगैर ये निमंत्रण स्वीकार कर लिया। लेकिन मुझे ये विश्वास भी है कि अगर तुम्हें पता होता कि मैं इसे पसंद नहीं करूंगा तो तुम हरगिज इसे स्वीकार नहीं करती।
1: साहब की दलीलें तो सुनिए, मैं सब समझती हूँ, लेकिन मुझे भी कम ना आका जाए। देखिए जी, मैंने तो यही सोचकर मंजूर कर लिया था कि कपड़े तो सब पुराने ही काम आ जाएंगे और ज्यादा सामान की जरूरत भी नहीं होगी, बस कुछ घंटों की तकलीफ जरूर है और एहसान मुफ्त में हो जाएगा। अरे डॉक्टरों को नाराज करना भी तो अच्छी बात नहीं है ना? मगर अब नहीं जाऊंगी, मैं अपनी मजबूरी उन्हें अभी लिखे देती हूँ। सचमुच क्या फायदा बेकार की उलझनों से।
7: कपड़े सब पहले के ही काम आ जाएंगे और कुछ ज्यादा खर्च भी नहीं होगा। चलो, दिल से एक बड़ा बोझ तो उतरा। अगर मुझे पहले मालूम होता कि मामला ऐसा है तो क्यों मैं इतनी माथापच्ची करता। अरे नहीं नहीं हेमू, मेरी जान, मेरी ये मंशा हरगिज नहीं है कि तुम जाओ ही मत। अब देखो ना, जब तुमने निमंत्रण स्वीकार कर ही लिया है तो उससे मुकरना अच्छी बात नहीं मालूम होती। मेरे कहने का मतलब तो सिर्फ इतना था कि जहां तक मुमकिन हो ऐसे जलसों से दूर ही रहना चाहिए।
1: आप फिक्र ना करें, अब नहीं जाऊंगी, तुम्हारी बातें मैंने गांठ बांध ली हैं।
7: दूसरे दिन शाम को अक्षय बाबू बगीचे में अपनी एक खास जगह पर फूलों के खिलने का आनंद उठा रहे थे। अक्सर काम से फुर्सत मिलते ही वो बगीचे में टहलने आया करते थे। तभी एक बूढ़ा उन्हें एक रंगीन और खुशबूदार लिफाफा थमा गया। लिफाफा? देखें तो किसका खत है, क्या लिखा है?
0: मेरे प्यारे अक्षय बाबू,
1: आप इस नाचीज के खत को पढ़कर बहुत हैरत में आएंगे, मगर मुझे आशा है कि आप मुझे माफ जरूर कर देंगे। आपके स्वभाव और आपके रहन सहन के तरीके सुन सुनकर मेरे दिल में आपके लिए प्रेम और आदर का भाव पैदा हो गया है। आपकी सादगी ने मुझे मोहित कर लिया है, लेकिन जब से मैंने आपको देखा है मुद्दतों की सोई
0: तो जरूर इस परी ने मुझे यहाँ बैठे देखा होगा। मैं कई दिनों से आईना भी तो नहीं देखा है।
1: तो मौजूद है जिसकी मेरी निगाह में ज्यादा इज्जत है। हालांकि मेरा ख्याल है कि अगर आपको अपने रूप की जरा भी चिंता होती तो शायद मैं बहुत प्रसन्न होती, मगर मैं रूप की भूखी नहीं हूँ। मुझे तो सीने में सच्चा दिल रखने वाले एक इंसान की चाहत है, और मैंने उसे आप पे देखा है। मेरी आपसे केवल यही प्रार्थना है कि आप कल रात को डॉक्टर किचलू के बंगले पर तशरीफ ले आएं। मैं आपका बहुत एहसान मानूंगी। वहां अशोक के पेड़ के नीचे हरे कपड़े पहने मैं आपके लिए आंखें बिछाए बैठी नजर आऊंगी।
0: तो जरूर इस परी ने मुझे यहां बैठे देखा होगा। मैंने कई दिनों से आईना भी तो नहीं देखा है। ना जाने चेहरा कैसा दिख रहा होगा। क्या करूं? क्यों ना हौस के पानी में अपनी सूरत देखी जाए। नहीं नहीं नहीं, यहां तो चेहरा साफ नजर ही नहीं आ रहा है। फिर तो घर ही चलना पड़ेगा, वहां आईना देखता हूं। ये क्या, हजामा साफ नहीं है, और ये कमबख्त साफा भी तो ठीक तरह से नहीं बंधा है। मगर इतना तो है कि मुझे कोई बदसूरत तो नहीं कह सकता। जरूर ये कोई ऊंचे दर्जे की पढ़ी लिखी महिला है, वरना मामूली औरतों की निगाह में तो दौलत और रूप के सिवा कुछ और होता ही नहीं। लेकिन मेरा फूहड़पन शायद ही किसी स्त्री को पसंद आए। मुझे अब इसका ज्यादा ही ख्याल रखना होगा। आज मेरे भाग्य जाके बड़ी मुद्दत के बाद मेरी कद्र करने वाला कोई सच्चा जौहरी नजर आता है। भारतीय स्त्रियां तो शर्म हया की पुतली होती हैं। जब तक अपने दिल की हलचलों से मजबूर ना हो जाएं, वो ऐसा खत लिखने का साहस ही नहीं कर सकती। इन्हीं ख्यालों में बाबू अक्षय कुमार ने रात काटी। पलक तक नहीं झपकी। दूसरे दिन सवेरे 10 बजे तक बाबू अक्षय कुमार ने शहर की सारी फैशनेबल दुकानों की सैर की। दुकानदार हैरान थे कि साहब यहां का रास्ता कैसे भूल गए। गरज ये कि आज उन्होंने बड़ी बेदर्दी से रुपया खर्च किया, और जब घर चले तो फिटन पर बैठने की भी जगह नहीं थी।
1: अरे, आज सवेरे से कहां गायब रहे, और ये माथे पर पसीना कैसा?
0: अब हाँ, जिगर में कुछ दर्द था, डॉक्टर चड्ढा के यहाँ चला गया था।
1: तुमने तो मुझसे बिल्कुल भी जिक्र नहीं किया। जिगर का दर्द एक भयानक रोग है।
0: अरे डॉक्टर साहब ने कहा है कि डरने की कोई बात नहीं है।
1: इसकी दवा डॉक्टर किचलू के यहाँ बहुत अच्छी मिलती है। मालूम नहीं डॉक्टर चड्ढा बीमारी की तह तक पहुँचे भी हैं या नहीं।
7: अक्षय कुमार ने हेमवती को चुपती निगाहों से देखा। खाना खाकर अपने कमरे में जा लेटे। शाम को जब वो पार्क, घंटाघर और आनंद बाग की सैर करते हुए फिटन पर जा रहे थे, तो उनके होठों पर लाली और गालों पर जवानी की गुलाबी झलक मौजूद थी। आज उन्हें पहली बार जीवन में अपने रूपवान ना होने पर दुख हो रहा था। आज वो अपनी पतली नाक के बदले अपना खूबसूरत गाउन और वकालत की डिग्री सब कुछ देने के लिए तैयार थे। डॉक्टर किचलू शहर के सबसे बड़े रईसों में से एक थे। पार्टियां देना तो उनका जैसे शौक था। बंगला क्या था, शानो शौकत का जीता जागता नमूना था। दूर तक फैले अशोक के पेड़, सजे धजे फाटक, बरामदे की लंबी मेहराबें, सरू के पेड़ों की कतारें, बल्ब की रोशनी से चकाचौंध बंगला भव्यता का संकेत दे रहा था। मुख्य कक्ष में ओपन थिएटर और उससे सटा बार। अभिप्राय ये कि आधुनिक सुख सुविधाओं से सजा धजा बंगला था।
8: अजय वकील अक्षय कुमार, आज ये कूलर में फूल कैसे लग गए?
4: आइए आइए भाई, आज तो आप एकदम बाके नौजवान लग रहे हैं, क्या बात है
9: भाई। आज वकील साहब को क्या हो गया है, ये चमक दमक माजरा क्या है?
5: जी जनाब, माजरा कैसा, अपने अक्षय बाबू किसी से कम थोड़ी ही ना है। रुपया है, मान सम्मान है, इज्जत है और खूबसूरत बीवी है, क्या नहीं इनके पास।
9: माफ करना, बात काट रहा हूँ, भाभी जी की संगत का असर रंग लाया है। बीवी अगर हसीन हो, जवान हो, ऊपर से अदाकारा हो, तो उसका जोड़ बिठाना कोई मामूली बात है क्या? क्या क्या पापड़ नहीं बेलने पड़ते, क्यों अक्षय बाबू?
0: कैसे कैसे मसखरे महफिल में जमाए, इनसे फुर्सत मिले तो उन मोहतरमा को ढूंढा जाए। वहां देखूं उस अशोक के पेड़ के नीचे, मगर वो है कहां। आधा घंटा हो गया, चलो अब नाटक भी शुरू होने वाला है, वहीं बैठा जाए।
6: क्या कातिलताएं हैं,
9: हाय शकुंतला के बेश में तो ये अप्सरा है।
6: अजी साहब, फलक के चांद और धरती के चांद में कौन ज्यादा हसीन है, कहना थोड़ा मुश्किल है क्या अक्षय बाबू?
0: ये क्या, ये तो हिम्मती है, इसने तो मुझसे कहा था कि नाटक में नहीं जाएगी, इन्होंने तो मेरी नसीहतों और अपने वादों और यहां तक कि मेरी खुशियों का भी ख्याल नहीं रखा। हे भगवान, यहां मेरा दम घुट रहा है, बाहर चलता हूं, उन मोहतरमा को तलाशता हूं। रात के 12 बजने को आए, उनका कहीं पता नहीं, मैं भी कैसा अहमक हूं, एक औरत के चकमे में आ गया, ना जाने हेमवती भी मेरे बारे में क्या सोचेगी। अरे वो पेड़ के नीचे, वो सुंदरी, अरे हाँ वो तो मुझे ही इशारे से बुला रही है। हाँ चलता हूं वहां। ऐ रूपवती, तुम्हारी इस कृपा के लिए दिल से मैं तुम्हारा आभारी हूं। तुम्हें देखने के शौक में मेरी आंखें पथरा गई हैं। अगर तुम्हें कुछ देर तक और नहीं मिल पाता तो शायद मेरी जान ही निकल जाती। कल शाम से ही मेरे दिल की जो हालत है उसका जिक्र करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। अपने हुस्न के जलवे दिखाइए, ये पर्दा हटा दीजिए, चेहरे से घूंघट हटा दीजिए। ये क्या, अरे अरे अरे, अरे हेमवती, हेमवती तुम, ओ तो ये सब तुम्हारी शरारत थी। बस बस हेमवती, बस अब मुंह से कुछ मत कहो, मैं खुद से बेहद शर्मिंदा हूं। हाँ हेमू, तुम जीत गई और मैं हार गया, और ये हार मैं कभी भी नहीं भूलूंगा।
7: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे धारावाहिक कलम के जादूगर की 12वीं कड़ी, नसीहतों का दफ्तर। इस धारावाहिक के प्रस्तुतकर्ता थे कुणाल फिल्म्स, निर्मात्री कौशल्या रॉय, रूपांतरकार दुष्यंत हिमराज, संकलन डॉक्टर पीसी राय, सहायक निर्माता विकेश कुमार और ध्वनि मुद्रण रामकिशन। भाग लेने वाले कलाकार थे ऋषिकेश शर्मा, गौहर परवेज, शिमाइला, साहिल सैयद, मोहम्मद अखलाक, सतीश कक्कर और अशोक शर्मा। तो अब इसी के साथ दीजिए हमें आज्ञा, आज ही के दिन और इसी समय हम फिर मिलेंगे। नमस्कार।

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। आप सुनेंगे इस घंटे की खास खबर।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल में हुई नव निर्वाचित सरकार के राज्य मंत्रिमंडल की पहली बैठक के निर्णयों की सराहना की। श्री मोदी ने प्रसन्नता व्यक्त की कि राज्य के लोग अब विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत का लाभ उठा सकेंगे। श्री मोदी ने कहा कि डबल इंजन सरकार जल्द ही अन्य केंद्रीय योजनाओं को निर्बाध रूप से सुलभ कराएगी। आज अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस है। यह दिवस आधुनिक नर्सिंग के संस्थापक फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस वर्ष का विषय है हमारी नर्सें हमारा भविष्य। यह दिन रोगियों की देखभाल, सामुदायिक स्वास्थ्य और आर्थिक विकास में नर्सों की महत्वपूर्ण भूमिका के सम्मान को दर्शाता है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कल नरसिंहपुर जिले के गोटे गांव से मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की 36वीं किस्त जारी करेंगे। इस दौरान 1,25,22,542 हितग्राहियों के बैंक खातों में 1,835,67,29,250 रुपए की राशि अंतरित होगी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में 21 जून तक प्रदेश में आज से विशेष अभियान हर घर योग चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि इस महत्वपूर्ण पहल से जुड़ें और लोगों को भी प्रेरित करें। इंडो फ्रेंच इन्वेस्टमेंट कॉन्क्लेव आज भोपाल में आयोजित की जा रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यहां विदेशी निवेशकों से संवाद करेंगे। कॉन्क्लेव में फ्रांस के राजदूत, उद्योग जगत के प्रतिनिधि, वैश्विक कंपनियों और प्रदेश के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी शामिल हो रहे हैं। और आईपीएल क्रिकेट में आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से गुजरात टाइटंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मुकाबला होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। श्रोता बहनों के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम महिला सभा। आज की प्रस्तुति आकाशवाणी इंदौर की।

बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने मन पसंद कार्यक्रम महिला सभा में। आज आपके साथ हूँ मैं दीपलक्ष्मी त्रिपाठी। सभी सखियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सखियों, गर्मियों की तेज धूप और उमस भरा मौसम न केवल असहज लगता है बल्कि आपकी सेहत के लिए भी खतरनाक साबित हो सकता है। हर साल हजारों लोग हीट स्ट्रोक का शिकार होते हैं, जिनमें से कई को समय पर इलाज ना मिलने पर गंभीर परिणाम भी झेलने पड़ते हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि कुछ सरल सावधानियों और जागरूकता के साथ आप इस खतरे से खुद को और अपने प्रियजनों को सुरक्षित रख सकती हैं। तो सबसे पहले सखियों, ये जानने की जरूरत है कि हीट स्ट्रोक और हीट थकावट में अंतर क्या है। शरीर जब अत्यधिक गर्मी से थक जाता है और शरीर का तापमान नियंत्रित नहीं कर पाता है, तब यह स्थिति होती है। यदि समय पर इलाज ना किया जाए तो यह हीट स्ट्रोक में बदल सकती है। अत्यधिक पसीना आना, त्वचा का ठंडा और नम हो जाना, कमजोरी और थकावट, चक्कर आना, सिर दर्द होना, धड़कन तेज या धीमी हो जाना, ये सारे लक्षण हो सकते हैं। और हीट स्ट्रोक के लक्षण क्या है सखियों? त्वचा का गर्म और सूखा हो जाना, भ्रम और बेहोशी या दौरे वाली स्थिति हो जाना, धड़कनों का तेज हो जाना। तो आप समझ ही गई होंगी कि इन दोनों में अंतर क्या है। और अब जानते हैं इसके इलाज और प्राथमिक चिकित्सा के बारे में। व्यक्ति को ठंडी और छायादार जगह पर ले जाएं, शरीर को ठंडे पानी से स्पंज करें, ढीले कपड़े पहनाएं, पानी या इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक दें।

वहीं अगर हीट स्ट्रोक की प्रॉब्लम हो तो तुरंत डॉक्टर को बुलाएं या नजदीकी अस्पताल ले जाएं। शरीर को तुरंत ठंडा करने की कोशिश करें, बर्फ के पैक, ठंडी तौलिया वगैरह इस्तेमाल करें। हीट स्ट्रोक से बचने के लिए कुछ आदतों को अपनाना बहुत जरूरी है। दोपहर 12 से 4 बजे तक कोशिश करें कि धूप में ना निकले, हल्के ढीले और सूती कपड़े ही पहने। दिन में 8-10 ग्लास पानी जरूर पिए। इलेक्ट्रोलाइट्स, नारियल पानी, शिकंजी हमेशा लेते रहें। बाहर निकलते समय छाता, टोपी या सनग्लासेस का इस्तेमाल करें। बच्चों और बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। गर्मी के मौसम में थोड़ी सी लापरवाही भी बड़ी समस्या का कारण बन सकती है। सखियों, हीट स्ट्रोक और हीट थकावट को रोकना पूरी तरह संभव है, बस जरूरत है सही जानकारी, सतर्कता और समय पर कार्यवाही की। तो सखियों, बहुत सी जानकारी और भी देंगे आपको आगे कार्यक्रम में। पहले सुन लेते हैं ये खूबसूरत सा गीत।

क्यों आज 12 मई है, हर साल 12 मई को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ प्लांट हेल्थ, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस। इसका उद्देश्य पौधों के स्वास्थ्य की रक्षा के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है, फसलों की कीटों और बीमारियों से बचाने के लिए वैश्विक प्रयासों को प्रोत्साहित करना है, क्योंकि कीटों के कारण हर साल दुनिया भर में लगभग 40% फसलों का नुकसान होता है। संयुक्त राष्ट्र ने दिसंबर 2018 में इस दिन की घोषणा की, जो 2020 के अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य वर्ष की एक विरासत है। यह दिवस खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने, पौष्टिक भोजन प्रदान करने और कृषि व्यापार को सुरक्षित बनाने में पौधों की अहम भूमिका को रेखांकित करता है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि स्वस्थ पौधे हमारे जीवन, पर्यावरण और अर्थव्यवस्था के लिए कितने आवश्यक हैं।

बात करते हैं प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में। प्रधानमंत्री मुफ्त बिजली योजना 13 फरवरी 2024 को शुरू की गई थी, जो 1 करोड़ घरों को छत पर सोलर पैनल लगाकर हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान करने का एक सरकारी कार्यक्रम है। यह योजना 40% तक के भारी सब्सिडी के साथ 75,000 करोड़ से अधिक के निवेश से शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य घरों में ऊर्जा में आत्मनिर्भर बनाना और बिजली बिल कम करना है। आवेदन करने के लिए आप pmsuryaghar.gov.in पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और अब आपको लेकर चलते हैं अपने अगले क्रम मेरी उड़ान की ओर।

0: न पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है। न हारेंगे हौसला उम्र भर, ये मैंने खुद से वादा किया है। इन्हीं इरादों और वादों के साथ शुरुआत करते हैं आज के मेरी उड़ान क्रम का। आज हमारे साथ हैं सपना यादव का, बहुत बहुत स्वागत है।
1: थैंक यू वेरी मच।
0: आजकल हम हर जो मूवमेंट होता है, क्षण होता है, उसको सेलिब्रेट करते हैं, वो चाहे जन्मदिन हो, शादी की सालगिरह हो या कोई भी अवसर, और कुछ भी सेलिब्रेशन में हमें जरूरत पड़ती है केक की। तो हम महिलाओं के लिए इस केक के बिजनेस में कितना सुनहरा अवसर है। सपना जी, सबसे पहले ये बताइए, केक का बिजनेस शुरू करना है, ये आइडिया आपको कैसे आया?
1: केक का बिजनेस करना है ये मैंने कभी नहीं सोचा था। एक्चुअली कोविड के समय सिचुएशन ऐसी थी कि किसी को कुछ अवेलेबल नहीं था, एटलीस्ट मुझे कुछ अवेलेबल नहीं था। मेरी एनिवर्सरी थी अप्रैल में, तब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ से क्या केक कैसे मिलेगा। बस वहीं से मैंने कुछ घर के सामानों से बनाया केक, फिर उसका स्टेटस रखा। जो दूसरे लोग थे जिन्होंने मेरा स्टेटस देखा, जो मेरे फ्रेंड्स थे, मेरे नेबर्स थे, तो उनको भी जब जरूरत पड़ी तो उन्होंने मुझसे कॉन्टेक्ट।
0: कोविड के दौरान आपको कहीं ना कहीं ये एक मोटिवेशन मिला कि आपने घर के लिए बनाया और फिर आपको बाहर से ऑर्डर मिलने लगे। तो अभी आपको कितने ऑर्डर्स मिल जाते हैं केक के?
1: अभी मुझे वीकली मिल जाते हैं 5 से 6, या फिर कभी कभी मुझे एक दिन में 3 या 4 भी बनाने पड़ जाते हैं। अर्ली मॉर्निंग भी देना पड़ता है और फिर लेट नाइट भी देना पड़ता है। तो ये चीजें मैं फिर ऐसे ऑर्डर्स मिलते हैं मंथ में 15-20 ऐसे ऑर्डर्स। अच्छा,
0: तो सपना जी ये बताइए कि जब आपने पहला केक बनाया उसका आपका एक्सपीरियंस क्या था?
1: वो तो बहुत खुशी हुई थी मुझे कि मैंने जो मैं देखती थी कभी सोचा नहीं था कि ये केक्स हम बना सकते हैं। बहुत खुशी हुई तब मैंने बनाया और मेरे हस्बैंड ने जब देखा तो उन्होंने तारीफ की, तो वो तो एक स्पेशल ही होता है हस्बैंड की तारीफ मिले।
0: जब अपने किसी हुनर की कोई तारीफ करता है तो वाकई में बहुत अच्छा लगता है। सपना जी, सबसे पहले जब आपने सोचा कि आपको केक बनाना है तो उसके लिए किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ी?
1: देखिए, केक बनाने के लिए तो हमारे घर में जो आटा होता है जिससे हम रोटियां बनाते हैं, हम केक उससे भी बना सकते हैं। किचन में सोडा भी यूज होता है, बेकिंग पाउडर भी होता है, शुगर भी होती है, ये सब बेसिक चीजों से ही केक बनता है। फिर हम इसमें फ्लेवर ऐड करते हैं, वो एसेंस के होते हैं उसके। तो अगर आप सिंपल केक बनाएंगे तो एसेंस की नीड नहीं है, नहीं तो आप घर के ही बेसिक सामान से ही केक बना सकते हो। आपको कोई मैदे की जरूरत नहीं, कोई सूजी की जरूरत नहीं, आप घर के गेहूं के आटे से भी आप केक बना सकते हैं। इवन शक्कर नहीं है तो आप गुड़ भी डालकर केक बना सकते हैं। जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनके लिए हम गुड़ से भी केक बना सकते हैं। तो कोई स्पेशल इंग्रेडिएंट्स की जरूरत नहीं। हाँ, हमें एडवांस लेवल पर जाना है।
0: अच्छा,
1: तो हमें चीजों की जरूरत
0: है। इतने सारे ऑर्डर्स आपके पास आते हैं तो अभी तो आपको बहुत सारे इसमें लगने वाले सामानों की जरूरत पड़ती होगी, तो खुद मार्केट जाकर लाती हैं या ऑनलाइन मंगवाती हैं?
1: नहीं, वो मैं खुद सर्च करती हूँ मार्केट में। जैसे जैसे नई चीजें आती है मैं मार्केट खुद जाकर सर्च करती हूँ और फिर जैसे मुझे जिस तरह के ऑर्डर्स मिलते हैं, जैसे आजकल बच्चों को थीम केक चाहिए, डोरीमैन केक चाहिए, बारबी गर्ल थीम, तो ये सब अलग अलग थीम चल रही है आज।
0: इतना बारीक काम है कि इसमें बहुत सारे टाइम की जरूरत
1: पड़ती है। ये वो केक को देखकर ऐसा लगता है कि इसमें बहुत टाइम लगता है, पर जब उस चीज में आप एक्सपीरियंस हो जाते हो, बहुत ज्यादा अनुभव हो जाता है उन चीजों को, तो आपके हाथ ऐसे चलते हैं जैसे आप रोटी नहीं बेलते हो फटाफट। जैसे एक लेडी को कितनी आदत हो जाती है रोटी बेलने की, उस तरह से केक आपका बनना। अगर मुझे कोई ऑर्डर देता है 2 घंटे पहले तो मैं केक रेडी करके दे दूँ।
0: 2 घंटे में अगर एक केक बनाना चाहें तो आराम से बन जाएगा।
1: आराम से
0: जो भी जिम्मेदारियां हैं उनको अच्छे से संभालते हो और आप केक के लिए आराम से टाइम निकाल लेते हो।
1: ये तो मेरे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी बोलूंगी कि मुझे घर में रहकर मैं घर भी संभाल रही हूँ, अपने बच्चों को भी देख पा रही हूँ और मैं ये काम भी कर पा रही हूँ। और अब बच्चे बड़े हो गए हैं तो वो भी सपोर्ट करते हैं, हस्बैंड भी सपोर्ट करते हैं।
0: एक सवाल और था आपसे, जैसे जो सखियां चाहती हैं, जैसे उनको भी पता है कि वो बहुत अच्छा कुछ कर सकती हैं, उनमें भी हुनर है किसी चीज का, या सपोज वो केक ही बनाती हैं, अच्छा बना सकती हैं, इसकी शुरुआत वो कैसे करें?
1: शुरुआत तो सबसे पहले हमें केक का बेस, जो स्पॉन्ज बोलते हैं जिसको, ड्राई केक बोलते हैं, उसमें आप पहले बनाइए, एक दो बनाइए, चॉकलेट का बनाइए, वनीला बनाइए, ये सब चीजें मार्केट में अवेलेबल हैं।
0: तो इसके लिए प्रॉपर कहीं ट्रेनिंग की ऐसी कोई जरूरत नहीं?
1: कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैं एक एग्जांपल हूँ जिन मैंने कभी कोई ट्रेनिंग नहीं ली। ट्रेनिंग भी अगर आप लेते हो और ट्रेनिंग करके छोड़ देते हो, आगे कुछ नहीं करते, पर आपको ट्रेनिंग लेने के बाद भी प्रैक्टिस तो लगती है।
0: प्रैक्टिस
1: आपके हाथ में सफाई आने के लिए आपको खुद को कम से कम 10 केक बनेंगे तब आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हमें सही बना पाए।
0: तो जैसे कोई हमारी सखियां हैं घर पर ही शुरू करना चाहती हैं केक का बिजनेस, तो मिनिमम उनको कितने अमाउंट की जरूरत हो?
1: आप मिनिमम 1000 रुपीज इन्वेस्ट करके, क्योंकि जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स है उससे आप स्पॉन्ज बना सकते हैं। फिर आपको क्रीम चाहिए, टर्निंग टेबल चाहिए, स्पैचुला चाहिए, नाइफ चाहिए, इसके लिए आप 1000 रुपीज इनफ है। 1000 रुपीज 1500 से आप स्टार्ट कर सकते हैं।
0: और ओवन भी जरूरत पड़ती होगी?
1: देखिए ओवन तो मैं खुद अभी कोविड के 2 साल मैंने बनाया, मेरे पास कोई ओवन नहीं था, मेरे पास कोई ऐसी एडवांस कोई मशीन नहीं थी। मैंने अपना केक 2 साल तक कम मैं बता दूं हंड्रेड्स ऑफ केक मैंने कढ़ाई और कुकर में ही बनाए।
0: तो बहुत अच्छी बात है सपना जी। और बहुत सी हमारी सखियां होती हैं जो कुछ करना चाहती हैं, आगे बढ़ना चाहती हैं, लेकिन उनमें एक डर होता है, एक हौसले की शायद कमी होती है, वो आगे बढ़ नहीं पाती, तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगी?
1: सखियों के लिए मेरा मैसेज यही है कि आप अपने ऊपर विश्वास रखिए और किसी भी चीज को देखकर घबरा जाना या डर जाना, कोई केक हम मेरे लिए भी पहले मैं देखती थी कैसे बनता होगा, पर कोई स्पेशली लेडीज के लिए तो कोई मुश्किल चीज है ही नहीं, कर सकती हैं वो, बस अपने अंदर के हुनर को पहचाने तो सब कुछ पॉसिबल है।
0: बिल्कुल सही बात कही है कि अपने हुनर को पहचानने की जरूरत है, उसको निखारने की जरूरत है। अगर आप में कोई प्रतिभा है, और जरूर होगी, हर महिला में कोई ना कोई प्रतिभा छुपी होती है, बस जरूरत होती है उसे पहचानने की और तराशने की। मेरे उड़ान क्रम में सपना जी आप आई, आपने इतना समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।

सखी उस खूबसूरत से गीत के बाद अब बारी है फूड जोन की। गर्मियों में शरीर को ठंडक देने और लू से बचने के लिए सत्तू यानी कि चने का आटा सबसे बेहतरीन और सस्ता घरेलू उपाय है। यह प्रोटीन और फाइबर से भरपूर होता है सखियों। तो आइए आज आपको बताते हैं क्लासिक नमकीन सत्तू शरबत के बारे में। ये सबसे आम और झटपट बनने वाली रेसिपी है जो पेट को तुरंत ठंडक देती है। तो इसमें लगने वाली सामग्री को लिख लीजिए सखियो। 2 बड़े चम्मच सत्तू, 1 गिलास ठंडा पानी, 1/2 चम्मच नींबू का रस, 1/2 छोटा चम्मच काला नमक, 1/2 छोटा चम्मच भुना जीरा पाउडर, बारीक कटी हुई हरी मिर्च, बारीक कटा हुआ पुदीना और धनिया। और सखियो अब जानते हैं इसे बनाना कैसे है। 1 गिलास में सत्तू और थोड़ा पानी डालकर अच्छी तरह घोल लें ताकि कांठे ना पड़े। फिर बाकी पानी, नींबू, काला नमक, जीरा मिर्च और धनिया मिलाकर ठंडा ठंडा सर्व करें। ये क्लासिक नमकीन सत्तू शरबत आपको बहुत ही पसंद आएगा। और सखियों आपको बता दें कि सत्तू का सेवन सुबह खाली पेट या दोपहर में करना सबसे अच्छा माना जाता है। तो सखियों फिर से लेकर चलते हैं आपको गीत संगीत की दुनिया में और सुनते हैं ये गीत।

0: सखियों, सोशल मीडिया एक दोधारी तलवार की तरह है। जहां यह हमें सीखने और जुड़ने के अवसर देता है, वहीं छोटी सी लापरवाही किसी भी बड़ी मुसीबत को आमंत्रण दे सकती है। ऐसे में महिलाएं सुरक्षित डिजिटल अनुभव के लिए कुछ अनिवार्य कदम उठा सकती हैं। इंटरनेट पर अगर कोई जानकारी ऑनलाइन चली गई तो उसे पूरी तरह मिटाना लगभग असंभव है। इसलिए सोशल मीडिया पर अपनी निजी जानकारी जैसे घर का पता, फोन नंबर, बच्चों के स्कूल का नाम या वित्तीय विवरण साझा ना करें। आप इन्हें सीधे अपलोड भले ही नहीं करती, पर कई बार अनजाने में किसी पार्सल या अवार्ड को दिखाते समय ये सूचनाएं गलती से पोस्ट हो सकती हैं, तो इन बातों का ध्यान रखें।
1: महिला सभा कार्यक्रम का प्रसारण अभी किया जा रहा था। आज की प्रस्तुति आकाशवाणी इंदौर की थी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: युवाओं के जोश, उमंग और ज्ञान से भरे कार्यक्रम युववाणी का प्रसारण होता है प्रतिदिन शाम 5 बजे,
3: जिसमें होती है नित नई जानकारियाँ, मनोरंजन और ज्ञान की बातें।
2: तो सुनते रहिए मालवा की शान,
4: आकाशवाणी इंदौर।
3: आकाशवाणी इंदौर अब मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है।
2: अरे तनिष्का, कहाँ थी इतने दिनों से?
3: अरे राधिका, मैं गई थी कुल्लू मनाली।
2: तो क्या क्या किया कुल्लू मनाली में? मजा आया कि नहीं?
3: अरे काहे का मजा,
2: क्यों, क्या हुआ?
3: अरे मैंने वहाँ आकाशवाणी और विविध भारती इंदौर को बहुत मिस किया।
2: अरे इसमें मिस करने वाली क्या बात है, अब तो आकाशवाणी और विविध भारती इंदौर मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है, तुम्हें नहीं पता?
3: ऐसा क्या, तो अब मैं जब भी बाहर जाऊंगी मोबाइल ऐप के जरिए आकाशवाणी ऐप से जुड़ी रहूंगी।
2: ये हुई ना बात।
5: आप सुन रहे हैं मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।
6: सुनते रहिए मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।
7: इस समय आप है हमारे साथ।
8: जी हाँ, मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर के साथ।
9: NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम
10: मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है सुगम संगीत। लोक संगीत के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं सुंदरलाल मालवीय और साथियों के गाए मालवी लोकगीत।

सुंदरलाल मालवीय और साथियों के गाए इस लोकगीत के साथ ही लोक संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आज की प्रस्तुति आकाशवाणी इंदौर की थी। ये प्रसारण आकाशवाणी मध्य प्रदेश से किया जा रहा है। कलाकार हैं सुगम संगीत के कार्यक्रम में शिखा शर्मा। आप सुनेंगे कुछ भक्त गीत।

0: सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज आपने शिखा शर्मा के गाए कुछ भक्ति गीत सुने। आज की प्रस्तुति आकाशवाणी इंदौर की थी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।
1: युवाओं के जोश, उमंग और ज्ञान से भरे कार्यक्रम युववाणी का प्रसारण होता है प्रतिदिन शाम 5 बजे,
2: जिसमें होती है नित नई जानकारियाँ, मनोरंजन और ज्ञान की बातें।
1: तो सुनते रहिए मालवा की शान,
3: आकाशवाणी इंदौर।
2: आकाशवाणी इंदौर अब मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है।
1: अरे तनिष्का, कहाँ थी इतने दिनों से?
2: अरे राधिका, मैं गई थी कुल्लू मनाली।
1: तो क्या क्या किया कुल्लू मनाली में? मजा आया कि नहीं?
2: अरे काहे का मजा।
1: क्यों, क्या हुआ?
2: अरे मैंने वहाँ आकाशवाणी और विविध भारती इंदौर को बहुत मिस किया।
1: अरे इसमें मिस करने वाली क्या बात है, अब तो आकाशवाणी और विविध भारती इंदौर

0: मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है, तुम्हें नहीं पता?
1: ऐसा क्या? तो अब मैं जब भी बाहर जाऊंगी मोबाइल ऐप के जरिए आकाशवाणी ऐप से जुड़ी रहूंगी।
0: ये हुई ना बात।
2: आप सुन रहे हैं मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।
3: सुनते रहिए मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।
4: इस समय आप हैं हमारे साथ।
5: जी हाँ, मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर के साथ।
3: NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।

0: क्या?
1: ये धरती, ये नदिया, ये रैना
0: और
2: आकाशवाणी इंदौर, सुनते रहिए मालवा की शान। आकाशवाणी
3: आरंभ कर रहे हैं मोहम्मद रफी के गाए कैफी आजमी के लिखे गीत से। संगीत मदन मोहन का है और फिल्म है हकीकत।

और अब पेश है कार्यक्रम का अगला गीत आशा भोसले और महेंद्र कपूर के स्वर में। साहिर के लिखे इस गीत को संगीत दिया है रवि ने, फिल्म है गुमराह।

0: फिल्म गुमराह के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब प्रादेशिक समाचार होंगे।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार समाचारों के साथ मैं राना शाहिद। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में 15 नर्सिंग पेशेवरों को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया। नर्सिंग के क्षेत्र में बेहतरीन काम करने वाले इन पेशेवरों को प्रमाण पत्र पदक और 1,00,000 रुपए नकद दिए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की अगुवाई में हुई पहली कैबिनेट बैठक के फैसलों की सराहना की है। राज्य सरकार ने आयुष्मान भारत योजना लागू करने और बांग्लादेश सीमा पर 45 दिन के भीतर बाड़ लगाने के लिए बीएसएफ को जमीन देने का फैसला किया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता हिमंता बिस्व शर्मा ने आज लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। गुवाहाटी के खानापारा मैदान में हुए इस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और कई केंद्रीय मंत्री भी मौजूद रहे। उनके साथ 4 मंत्रियों ने भी शपथ ली, जिनमें भाजपा असम गण परिषद और बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट के नेता शामिल हैं। 3 मई को हुई नीट यूजी 2026 परीक्षा को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने रद्द कर दिया है, क्योंकि परीक्षा से पहले ही पेपर लीक होने की बात सामने आई थी। इस पूरे मामले की जांच अब सीबीआई करेगी और एनटीए सभी दस्तावेज उन्हें सौंपेगी। करीब 23,00,000 छात्रों को दोबारा परीक्षा देनी होगी, हालांकि उन्हें फिर से आवेदन या फीस नहीं भरनी होगी। परीक्षा की नई तारीख जल्द ही आधिकारिक तौर पर घोषित की जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में प्रदेश के आयुष विभाग ने योग से आरोग्यता की ओर थीम पर 21 जून तक विशेष अभियान चलाने की पहल की है। हर घर योग के इस अभियान का मकसद हर घर तक योग को पहुंचाना और लोगों को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करना है। इस अभियान को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बताया,
1: 21 जून योग दिवस को लेकर के जो यूनेस्को के माध्यम से पूरी दुनिया को योग अपनाओ, निरोगी बनो, स्वस्थ जीवन, स्वस्थ शरीर, शरीर में परमात्मा की दया से योग के माध्यम से अपार क्षमता है जिसको हम जागृत कर सकते हैं।
0: मध्य प्रदेश और फ्रांस के बीच निवेश और कारोबारी संबंध मजबूत करने के मकसद से आज भोपाल के मिंटो हॉल में इंडो फ्रेंच इन्वेस्टमेंट कॉन्क्लेव आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और भारत में फ्रांस के राजदूत थियरी माथो समेत फ्रांस की कई बड़ी कंपनियों के प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। आईपीएल में कल रात धर्मशाला में खेले गए रोमांचक मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने पंजाब किंग्स को 3 विकेट से मात दी। वहीं आज शाम 7:30 बजे अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने होंगे। मध्य प्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद के निर्वाचन के लिए आज पूरे प्रदेश में एक साथ मतदान हो रहा है। भोपाल में जिला न्यायालय परिसर में शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे। प्रदेश भर के करीब 88,000 अधिवक्ता 122 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। आंधी बारिश के बाद प्रदेश में एक बार फिर लू ने दस्तक दे दी है। कल रतलाम में तापमान रिकॉर्ड 45 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और आज उज्जैन, धार, रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर और बड़वानी में लू का अलर्ट जारी है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 4 दिन तक इंदौर, उज्जैन और नर्मदापुरम संभाग में लू का असर रहेगा और भोपाल, इंदौर समेत 49 जिलों में पारा 43 से 44 डिग्री के बीच बना रहेगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। खंडवा प्रभारी मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी ने आज लॉयंस क्लब के भोजन सेवा केंद्र भवन निर्माण का भूमि पूजन किया। राजगढ़ के पचोर पेट्रोल पंप अग्निकांड के घायलों से मंत्री गौतम टेटवाल ने आज शाजापुर अस्पताल पहुंचकर मुलाकात की। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पर आगरमालवा में व्याख्यान का आयोजन किया गया। नवागत संभागायुक्त ने नर्मदापुरम संभाग का पदभार संभालते ही कमिश्नर कार्यालय की विभिन्न शाखाओं का निरीक्षण किया। जबलपुर के रामसागर तालाब में डूबे 2 युवकों में से एक का शव आज सुबह बरामद हुआ, दूसरे की तलाश जारी है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए आयोजित नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक के आरोपों के कारण रद्द, सीबीआई जांच के आदेश। हिमंता बिस्व शर्मा ने लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। सीबीआई ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या की जांच शुरू की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 15 नर्सिंग पेशेवरों को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए 3 मई को आयोजित नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द करने का फैसला किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में एजेंसी ने कहा कि यह फैसला विद्यार्थियों के हित तथा राष्ट्रीय परीक्षा प्रणाली में विश्वास को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।
1: एनटीए ने बताया है कि सरकार ने पेपर लीक के आरोपों की पूरी जांच के लिए मामला केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंपने का निर्णय लिया है। एजेंसी ने कहा है कि ये निर्णय केंद्रीय एजेंसियों के साथ समन्वय में एनटीए द्वारा जांच निष्कर्षों का मूल्यांकन करने के बाद लिया गया है। परीक्षा के लिए नई तिथि अलग से अधिसूचित की जाएगी। पंजीकरण विवरण, उम्मीदवार की जानकारी और मई 2026 के लिए चयनित परीक्षा केंद्र अपरिवर्तित रहेंगे। दोबारा परीक्षा के लिए फिर पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं होगी और कोई अतिरिक्त परीक्षा शुल्क भी नहीं लिया जाएगा। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हिमंता बिस्व शर्मा ने लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने गुवाहाटी में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में डॉक्टर शर्मा को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
2: মই শ্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ঈশ্বরৰ নামত শপথ লওঁ যে বিধিৰ দ্বাৰা স্থাপিত ভাৰতৰ সংবিধানৰ প্ৰতি মই প্ৰকৃত বিশ্বাস আৰু আনুগত্য পোষণ কৰিম।
0: डॉक्टर शर्मा के साथ 4 विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। इनमें भाजपा से रामेश्वर तेली और अजंता नियोग, असम गण परिषद से अतुल बोरा और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट से चरण बोरो शामिल हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर डॉ. हिमंता बिस्व शर्मा को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री शर्मा ने एक कुशल प्रशासक के रूप में अपनी पहचान बनाई है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने असम में नवगठित मंत्रिमंडल के सदस्यों को मंत्री पद की शपथ लेने पर बधाई दी। श्री नवीन ने आशा व्यक्त की कि मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा के नेतृत्व में एनडीए सरकार विकसित असम और विकसित भारत के दृष्टिकोण के साथ काम करती रहेगी। असम विधानसभा में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन ने लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी करते हुए 126 सदस्य विधानसभा में 102 सीटें हासिल की हैं। पुदुचेरी में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन नेता एन रंगासामी कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रभारी डॉ. मनसुख मांडविया तथा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई नेता शामिल होंगे। सीबीआई ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या की जांच शुरू कर दी है। राज्य पुलिस की सिफारिश पर एजेंसी ने आज आधिकारिक रूप से मामले की जांच शुरू कर दी। सीबीआई ने एक बयान में कहा कि कोलकाता जोन के संयुक्त निदेशक की देखरेख में एक विशेष जांच दल का गठन किया जाएगा। सीबीआई की एक टीम आज मध्यग्राम पुलिस स्टेशन जाकर घटनास्थल का मुआयना कर सकती है। इस बीच सीबीआई ने जांच करने के लिए डीआईजी पंकज सिंह के नेतृत्व में 7 सदस्यीय टीम का गठन किया है। प्रवर्तन निदेशालय ने पश्चिम बंगाल में दक्षिणी दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले में पूर्व अग्निशमन और आपात सेवा मंत्री सुजीत बसु को कोलकाता से गिरफ्तार किया है। निदेशालय ने बताया कि तृणमूल कांग्रेस के शासनकाल में सुजीत बसु ने नगर पालिका में विभिन्न पदों के लिए कथित रूप से लगभग 150 उम्मीदवारों की सिफारिश की। प्रवर्तन निदेशालय ने नौकरी देने के बदले कथित रूप से फ्लैट की मांग के अपराध का भी पता लगाया है। जांच एजेंसी को बसु के बैंक खातों में बड़ी राशि जमा होने के भी सबूत मिले हैं। प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में राज्य मंत्रिमंडल की पहली बैठक के निर्णयों की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्य के लोग अब विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत का लाभ उठा सकेंगे। कल राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इनमें बांग्लादेश सीमा पर 45 दिन के भीतर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ को भूमि हस्तांतरित करना शामिल है। तमिलनाडु विधायक जेसीडी प्रभाकर को आज सर्वसम्मति से विधानसभा अध्यक्ष चुना गया। कार्यवाहक अध्यक्ष एमवी करुपैया ने मुख्यमंत्री जोसेफ विजय द्वारा प्रस्तावित प्रभाकर के नाम की घोषणा की, जिसका सदन में पार्टी के नेता के.ए. सेंगोत्तैयान ने समर्थन किया। थोरायूर निर्वाचन क्षेत्र से तमिलनाडु के विधायक रविशंकर को भी सर्वसम्मति से उपाध्यक्ष चुना गया। टीवीके सरकार को कल विधानसभा में अपना बहुमत साबित करना है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने स्कूलों, कॉलेजों, पूजा स्थलों और बस स्टैंड के पास स्थित खुदरा शराब की दुकानों को बंद करने का आदेश दिया है। राज्य सरकार ने कहा है कि 4,675 खुदरा शराब की दुकानें चल रही हैं। इनमें से स्कूलों, कॉलेजों, पूजा स्थलों और बस टर्मिनलों से 500 मीटर के दायरे में 717 दुकानों को 2 सप्ताह के भीतर बंद करने का आदेश दिया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में 15 नर्सिंग पेशेवरों को वर्ष 2026 के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए। उन्हें ये पुरस्कार नर्सिंग के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिए गए। ये पुरस्कार पंजीकृत नर्सों, मिडवाइव्स, सहायक नर्स मिडवाइव्स और महिला स्वास्थ्य पर्यवेक्षकों को प्रदान किए गए। राष्ट्रपति ने कहा कि अवसर उन नर्सिंग कर्मियों और स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों के अमूल्य योगदान को श्रद्धांजलि है, जो करुणा और संपूर्ण निष्ठा के साथ देश की सेवा करते हैं। इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा, स्वास्थ्य राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव तथा अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार की स्थापना 1973 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा की बचत के लिए लोगों से ईंधन बचाने और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया है। गुजरात के वडोदरा में कल एक जनसभा में श्री मोदी ने पेट्रोल और डीजल का उपभोग कम करने तथा वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन कक्षाएं तथा वर्चुअल बैठक जैसे कोविड दौर के उपाय अपनाने की अपील दोहराई।
3: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, मेट्रो का उपयोग करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्चुअल मीटिंग और वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टाले।
0: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज कहा कि पश्चिम एशिया संघर्ष के बीच भारत ने अपने घरेलू एलपीजी उत्पादन को लगभग 36,000 टन प्रतिदिन से बढ़ाकर 54,000 टन कर दिया है। श्री पुरी ने नई दिल्ली में वार्षिक व्यापार शिखर सम्मेलन 2026 को संबोधित करते हुए कहा कि जहां कई देशों को पिछले कुछ महीनों में आसमान छूती कीमतों और ईंधन की कमी का सामना करना पड़ा है, वहीं भारत घरेलू कीमतों को अपेक्षाकृत स्थिर रखने में कामयाब रहा है।
4: किचन में इस्तेमाल होने वाली एलपीजी सिलेंडर गैस का लगभग 60% पहले हॉर्मुज क्षेत्र से आता था। अब हमें इसके लिए नई व्यवस्थाएं करनी पड़ी। संकट से पहले हमारी घरेलू एलपीजी उत्पादन क्षमता लगभग 35,000 या 36,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन थी। हमने अपने घरेलू उत्पादन को 36,000 से बढ़ाकर 54,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन कर दिया है।
0: श्री पुरी ने उद्योग जगत के नेताओं और अपने हितधारकों से एलपीजी से एलएनजी की ओर रुख करने और हरित ऊर्जा की ओर बढ़ने का आग्रह किया। उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में समाजवादी पार्टी के सांसद अजेंद्र सिंह लोधी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई है। भाजपा नेता सत्येंद्र प्रताप की शिकायत के बाद महोबा कोतवाली थाने में मामला दर्ज किया गया। ये विवाद तब शुरू हुआ जब लोधी ने कथित तौर पर प्रधानमंत्री मोदी की उस अपील पर आपत्तिजनक टिप्पणी की, जिसमें उन्होंने लोगों से सोना न खरीदने का आग्रह किया था। इन टिप्पणियों के बाद राज्य में भाजपा कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। पाकिस्तान ने हाल ही में ईरान और अमेरिका के बीच संघर्ष के दौरान ईरानी सैन्य विमानों को गुप्त रूप से अपने एयरबेस पर ठहरने की अनुमति दी, जबकि वो ईरान तथा अमेरिका के बीच संघर्ष समाप्त करने के लिए पाकिस्तान के मध्यस्थ की भूमिका निभाने का दावा करता है। अमरीकी मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि कुछ ईरानी विमान रावलपिंडी के निकट नूर खान वायुसेना अड्डे पर खड़े किए गए थे। रिपब्लिकन सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने पाकिस्तान की मध्यस्थ की भूमिका की पूरी तरह से पुनः समीक्षा करने की मांग की है। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि ईरान ने कुछ यात्री विमानों को पड़ोसी देश अफगानिस्तान भेज दिया था। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @XHAIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों की यात्रा पर रवाना होंगे। पहले चरण में वे शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। एक रिपोर्ट।
5: यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री शुक्रवार को ही नीदरलैंड्स पहुंचेंगे। इससे पहले उन्होंने 2017 में नीदरलैंड्स की यात्रा की थी। प्रधानमंत्री मोदी नीदरलैंड्स के नरेश विलियम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री रॉब जेटन से भी उनकी बातचीत होगी। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी रविवार को स्वीडन की यात्रा पर गोथनबर्ग पहुंचेंगे। वे स्वीडन के प्रधानमंत्री अल्फ क्रिस्टन के साथ बातचीत में द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे। यात्रा के चौथे चरण में प्रधानमंत्री मोदी सोमवार को नॉर्वे पहुंचेंगे। वे तीसरे भारत नॉर्वे शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की ये पहली नॉर्वे यात्रा होगी। यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी इटली जाएंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मित्रोला से मुलाकात करेंगे और प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ भी उनकी व्यापक बातचीत होगी। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की 5 देशों की यात्रा से यूरोप के साथ भारत की साझेदारी मजबूत होगी। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज चिली गणराज्य के विदेश मंत्री फ्रांसिस्को पेरेस मैकेना और चिली प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने भारत चिली व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते CEPA की वार्ता की प्रगति की समीक्षा की। चेन्नई से अबुधाबी जाने वाली इत्तेहाद एयरवेज की उड़ान संख्या EY0343 आज सुबह तकनीकी खराबी और बाएं पंख में आग लगने की घटना के बाद रद्द कर दी गई। लगभग 280 यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। चेन्नई हवाई अड्डे ने सोशल मीडिया पोस्ट में यात्रियों से आगे की जानकारी के लिए एयरलाइन से संपर्क करने का अनुरोध किया है। मौसम विभाग ने कल तक गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ स्थानों पर लू चलने की संभावना व्यक्त की है। असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में भी कल तेज बारिश हो सकती है। बिहार और उत्तराखंड में भी कल 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ आंधी आने की संभावना है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज लगभग 1.4% की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 1048 अंक लुढ़क कर 74,967 पर, जबकि निफ्टी 305 अंक की गिरावट के साथ 23,511 पर था। आईपीएल क्रिकेट में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए आयोजित नीट UG परीक्षा पेपर लीक के आरोपों के कारण रद्द, CBI जांच के आदेश। हिमंता बिश्व शर्मा ने लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। CBI ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या की जांच शुरू की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 15 नर्सिंग पेशेवरों को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए। और IPL क्रिकेट में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, पेश है आपकी फरमाइश। आपकी फरमाइश का पहला गीत श्रेया घोषाल और आतिफ असलम की आवाज में, फिल्म है तेरे नाल लव हो गया।

आतिफ असलम और श्रेया घोषाल के गाए इस गीत को सुनवाने की फरमाइश हमें भेजी थी बलवंत कुमार वर्मा, राजूबाई, माया वर्मा, शोभा वर्मा, राहुल, ज्योति, अतुल, पायल, प्रियांश और ऋषि वर्मा ने प्रमिलागंज आलौट जिला रतलाम मध्य प्रदेश से। इसी गीत को सुनना चाहते थे संभाजी नगर से राजेश सावले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और शीतल राजेश। अकोला से गांधीबाग के रमेश कटनकर और वैशाली कटनकर की यही फरमाइश थी। अमरावती महाराष्ट्र के सरोज चौक से कमरुल्ला, नसीम बेगम, आयशा खान, हादिया खान, अस्मा, सालहिया और उनके सभी साथियों ने इसी गीत को सुनना चाहा था। और अब हम आपको सुनवा रहे हैं हमारे इन सभी श्रोताओं की पसंद का गीत। पसंद करने वाले हैं कंवर कॉलोनी बड़वाह से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य, आदित्य, शिवानी और मीनू राज श्रीमाली, अभिजीत गवाणकर, सरिता गवाणकर, प्रिंस एकांश गवाणकर ने उमर खेड़ महाराष्ट्र से फरमाइश भेजी है। बदलापुर मुंबई से सिद्धांत गवाणकर और प्रणिता गवाणकर की फरमाइश आई है। बहादुरा नागपुर से शैलेश, सुमित, श्वेता, ध्वनि और टुकटुक गवाणकर ने भी ये फरमाइशी पत्र भेजा है। शाजापुर मध्य प्रदेश से एमएम राजावत, राज, मधु, राशि, रक्षित, चित्रंजन, कमल, उमेश, सरोज, आरती, रेखा, रितिका, रिचा, स्वीटी, सागर, रिया, रीत और ऋषभ राजावत भी यही गीत सुनना चाहते हैं। नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका, नुपुर, ऋषिका और रॉबिन की भी यही पसंद है। तो आप सबकी पसंद पर सुनते हैं इरशाद कामिल का लिखा सलीम सुलेमान का संगीतबद्ध गीत। आवाज शफकत अमानत अली और क्लिंटन की है। फिल्म है जोड़ी ब्रेकर्स।

और अब पेश है कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म रांझणा से। जावेद अली, कीर्ति सगाथिया और पूजा के गाए इस गीत को संगीत से संवारा है AR रहमान ने। फरमाइश करने वाले श्रोता हैं निवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी राय और प्रांजल राय। बाबापट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार राय और हैप्पी राय। ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और महराज जहां ने आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से फरमाइश भेजी है। नवागढ़ कटई से नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, सोना शारदा, दामिनी और उनके परिवार के सभी सदस्य, सतीश मिगलानी, सीमा, शायना, विशाल और मिगलानी परिवार के सभी सदस्यों ने मलौट कैंप पंजाब से अपनी फरमाइश भेजी है। तो पेश है आप सबकी पसंद का ये गीत।

इरशाद कामिल का लिखा एक और गीत आप सुनेंगे, चिन्मयी श्रीप्रदा और आतिफ असलम की आवाज में। इस गीत को संगीत से संवारा है प्रीतम ने। फिल्म है फटा पोस्टर निकला हीरो। फरमाइश करने वाले श्रोता हैं अनिल कवचाले, नेहा फटसे, सीमा, सबीहा, पूजा, नेहा, सुषमा, स्मिता और उनके सभी साथी। इंदौर से ये पत्र आया है। पटेल नगर मलौट पंजाब से रमेश कुमार जाजौरिया, गीतारानी जाजौरिया, गगनदीप और बेबी आरजू ने भी अपना फरमाइशी पत्र हमें भेजा है। महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश, तारिणी, सूरज, सुजला, ज्योति और रियांश ठाकुर की फरमाइश आई है। कनेरा मोहल्ला पटियाला से मुकेश बत्ता, नीलम, नितिन, पलक, करण, गीतू, निहारिका और वंश बत्ता भी अपनी फरमाइश भेज रहे हैं। तो आप सबकी पसंद पर हम सुनवाते हैं आतिफ असलम और चिन्मयी श्रीप्रदा का गाया

और अब कार्यक्रम के आखिर में सुनते हैं कौसर मुनीर का लिखा गीत विशाल शेखर के संगीत निर्देशन में। फिल्म है गोरी तेरे प्यार में और इस गीत को आवाज दी है नीति मोहन और कमाल खान ने। फरमाइश करने वाले श्रोता हैं गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभियानंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज प्रमोद, रोहित और मोहित, कमलेश जयपुरिया, अनुश्री प्रदीप, पिंकी और प्रमिला, लालचंद्र मिश्र और नरेंद्र कुमार राम ने भिलाई और रायगढ़ से ये फरमाइश हमें भेजी है। जबलपुर से जिनेन्द्र जैन, महेंद्र जैन, सत्येंद्र जैन और अरुण चौरसिया की फरमाइश है। प्रभाकर जोंधले और आरती जोंधले ने गौतम नगर जिला नांदेड़ से अपना पत्र भेजा है। भाटापारा दतरेगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और झाविंद्र कुमार वर्मा की भी यही पसंद है।

0: इस गीत के साथ ही आपकी फरमाइश कार्यक्रम अब समाप्त होता है। ये प्रसारण आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। अब सुनते हैं इस घंटे की खास खबरें।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में 15 नर्सिंग पेशेवरों को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की अगुवाई में हुई पहली कैबिनेट बैठक के फैसलों की सराहना की है। भाजपा के वरिष्ठ नेता हेमंता बिस्व शर्मा ने आज लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। गुवाहाटी के खानापारा मैदान में हुए इस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और कई केंद्रीय मंत्री भी मौजूद रहे। 3 मई को हुई नीट यूजी 2026 परीक्षा को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने रद्द कर दिया है, क्योंकि परीक्षा से पहले

पेपर लीक होने की बात सामने आई थी। इस पूरे मामले की जांच अब सीबीआई करेगी और एनटीए सभी दस्तावेज उन्हें सौंपेगी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में प्रदेश के आयुष विभाग ने योग से आरोग्यता की ओर थीम पर 21 जून तक विशेष अभियान चलाने की पहल की है। मध्य प्रदेश और फ्रांस के बीच निवेश और कारोबारी संबंध मजबूत करने के मकसद से आज भोपाल के मिंटो हॉल में इंडो फ्रेंच इन्वेस्टमेंट कॉन्क्लेव आयोजित किया जा रहा है। मध्य प्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद के निर्वाचन के लिए आज पूरे प्रदेश में एक साथ मतदान हो रहा है। भोपाल में जिला न्यायालय परिसर में शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे और आईपीएल में आज शाम 7:30 बजे अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने होंगे। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

ये आकाशवाणी भोपाल है। सांध्यकालीन सभा में शाम 5:02 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम लोकवाणी, जिसमें गीत संगीत चर्चा और रोजगार सूचनाएं शामिल होंगी। एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम शाम 6:00 प्रसारित किया जाएगा। 7:21 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम ग्राम सभा। आज इस कार्यक्रम में सुनिएगा कृषि के साथ वानिकी के लाभ विषय पर ली गई भेंटवार्ता। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर मनोज कुमार सिंह, साथ ही होंगे बुंदेली समाचार, गीत संगीत और चर्चा शामिल रहेगी। सुर्खियों में कार्यक्रम रात 8:00 प्रसारित किया जाएगा। 8:15 पर आप सुन सकेंगे फिल्म संगीत। रात 9:30 पर उर्दू कार्यक्रम कहकशा प्रसारित किया जाएगा और 10:30 पर शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रजनी होगा, जिसके अंतर्गत आप सुनेंगे पंडित दिनकर कैंकिनी का ख्याल गायन। राग होगा सावनी बिहार। ये थे सांध्यकालीन सभा के कुछ मुख्य आकर्षण। मीडियम वेव 188.32 मीटर यानी 1593 किलोहर्ट्ज़, साथ ही डीटीएच के ऑडियो चैनल और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन पर यह आकाशवाणी भोपाल है। दिन के 3:01:30 हुए हैं। मीडियम वेव पर हमारी ये सभा यही समाप्त होती है। शाम 5:00 अपने कार्यक्रमों के साथ मीडियम वेव पर हम पुनः उपस्थित होंगे। इस बीच प्रसारण डीटीएच पर जारी रहेगा।

नमस्कार श्रोताओं, मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलो हर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5 बजे हैं। अब हमारी आज की सांध्यकालीन सभा आरंभ होती है। सभा के आरंभ में यानी शाम 5 बजे युवा श्रोताओं सुनेंगे उनका नियमित कार्यक्रम युववाणी।

0: नमस्कार दोस्तों, शाम के 5 बज चुके हैं और आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम युवानी। तो साथियों, मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त माधवी
1: और साथ ही मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त अपर्णा। तो दोस्तों, आज है दिन मंगलवार का, यानी कि हम जानते हैं कि आप आज के स्पेशल सेगमेंट के लिए बेहद आतुर होंगे, जो कि है हमारा शहर। तो आज हम किस शहर की यात्रा पर चलेंगे, हम आपको आगे कार्यक्रम में ज़रूर बताएंगे। लेकिन माधवी, उसके पहले हम आज के 2 प्रश्न पूछ लेते हैं।
0: बिल्कुल। तो आज का पहला प्रश्न है कि आधुनिक नर्सिंग की जननी किसको कहा जाता है,
1: और आज का दूसरा प्रश्न है पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो दोस्तों, आप इन दोनों ही प्रश्नों के उत्तर ढूंढ कर रखिएगा और कार्यक्रम के अंत में जब हम इसका उत्तर देंगे तो इसे मिलाइएगा जरूर। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं आज का पहला गीत।

0: तो दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो हमारी धरती, हमारे स्वास्थ्य और हमारे भविष्य तीनों से जुड़ा हुआ है।
1: जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय पौध स्वास्थ्य दिवस, यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ प्लांट हेल्थ।
0: हर वर्ष 12 मई को ये दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य लोगों को पौधों के स्वास्थ्य और अपने आप के प्रति जागरूक करने के लिए इसको बहुत इम्पोर्टेंस दी जाती है। जो स्वास्थ्य है वो पौधों से बहुत रिलेटेड होता है, क्योंकि एक स्वस्थ पृथ्वी में ही एक स्वस्थ मानव का वास हो सकता है।
1: बिल्कुल सही। साथ ही संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2022 में 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय पौध स्वास्थ्य दिवस घोषित किया था। इस पहल को आगे बढ़ाने में खाद्य एवं कृषि संगठन यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और दोस्तों, इसके मुख्य उद्देश्य क्या थे? तो पौधों को बीमारियों, कीटों और जलवायु परिवर्तन से बचाना, ताकि खाद्य सुरक्षा और पर्यावरण हमारा सुरक्षित रह सके।
0: दोस्तों सोचिए, यदि पृथ्वी पर पौधे ना हों तो क्या होगा?
1: तो ना तो एक ऑक्सीजन मिलेगी, ना भोजन, ना बारिश का संतुलन रहेगा। और पता है माधवी, एक आंकड़े के अनुसार दुनिया के लगभग 80% भोजन हमें पौधों से ही प्राप्त होता है।
0: और इतना ही नहीं, पृथ्वी का लगभग 90% ऑक्सीजन का जो स्रोत होता है वो पेड़ पौधे ही तो होते हैं।
1: बिल्कुल, लेकिन दुख की बात यही है कि हर साल कीट और बीमारियों के कारण दुनिया की लगभग 40% फसलें नष्ट हो जाती है।
0: अब सवाल ये है कि पौधे बीमार क्यों पड़ते हैं? तो इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे अत्यधिक गर्मी, प्रदूषण, गलत तरीके की गई सिंचाई, कीट, फफूंद और रासायनिक दवाइयों का अधिक उपयोग।
1: और कुछ सामान्य पौधे रोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनमें पत्तियों का पीला पड़ना, जड़ों का सड़ना, फफूंद लगना, पत्तियों में छेद होना, कई बार पौधों को ज़रूरत से ज़्यादा पानी दे देने से भी पौधे खराब होते हैं।
0: और अपर्णा, आजकल तो जो ये इंडोर प्लांट्स का ट्रेंड चल गया है वो कितना ज्यादा बढ़ चुका है। हर कोई अपना घर सजाने के लिए आर्टिफिशियल प्लांट्स नहीं बल्कि रियल लेकिन इंडोर प्लांट्स प्रेफर कर रहे हैं।
1: बिल्कुल माधवी, बाजार में तरह तरह के इंडोर प्लांट्स अब उपलब्ध है, जैसे मनी प्लांट, पीस लिली, रबर प्लांट, एरिका पाम। ये घर को सुंदरता तो देते हैं, साथ ही उनके कई सारे पॉजिटिव इफेक्ट्स भी होते हैं। वो घर के नकारात्मक गैस खींच लेते हैं, डस्ट खींचते हैं, साथ ही एक स्वस्थ वातावरण प्रोवाइड करते हैं।
0: इंडोर के साथ साथ लोग आउटडोर पौधों पर भी उतना ही ध्यान दे रहे हैं, अपना वर्टिकल गार्डन तैयार कर रहे हैं, अपने गार्डन को ग्रीन बना रहे हैं और पेड़ लगा रहे हैं जैसे नीम, अमलतास, गुलाब, आम, सीताफल, पारिजात और मोगरा भी। और ऐसे कई तरह के सुंदर सुंदर फूलों वाले पौधे जब लगते हैं तो अपना कितना सुंदर गार्डन लगता है ना वो।
1: सच में माधवी, गार्डनिंग करना ना माधवी, कुछ लोगों के लिए थेरेपी साबित हुई है, जानती हो।
0: बिल्कुल, लोग अपने पौधों से प्यार करते हैं, उनसे रोज बातें करते हैं, अपने मन की बात उनसे शेयर करते हैं और इससे उनका मन भी हल्का हो जाता है।
1: बिल्कुल सही, क्योंकि वो लोग अपने पौधों को अपनी बच्चों की तरह पालते और देखभाल करते हैं।
0: अब सबसे जरूरी जो बात है वो ये है कि गर्मी के मौसम में पौधों की देखभाल कैसे करें।
1: तो सबसे पहले तो उन्हें तेज धूप में पौधे सीधे न रखें, खासकर दोपहर के समय में।
0: सुबह जल्दी या शाम को पानी देने से सबसे अच्छा टाइम माना जाता है पौधों के लिए कि वो पानी को अच्छी तरह से अब्जॉर्ब कर लेते हैं।
1: बिल्कुल, अगर दिन में पानी दिया गया तो पानी जल्दी सूख जाएगा और पौधों को पर्याप्त नमी नहीं मिल पाएगी।
0: गमलों की जो मिट्टी होती है अपना, उसमें भी बहुत सारी चीजें बनाई जा सकती है, जैसे नारियल के जो भूसा होता है, सूखे पत्ते होते हैं और मिट्टी के जो लंबे लंबे समय तक चलने वाले पेड़ पौधों के गमले होते हैं वो भी काफी अच्छा काम करते हैं।
1: बिल्कुल, गर्मी में पौधों की पत्तियों पर पानी का हल्का स्प्रे भी अगर कर देना तो वो और फ्रेश और उनके लिए फायदेमंद चीज़ होती है।
0: एक और महत्वपूर्ण बात है और वो है कि हर पौधे की पानी की जरूरत भी अलग अलग होती है। कैक्टस को कम पानी चाहिए जबकि मनी प्लांट को थोड़ा ज्यादा चाहिए।
1: और पता है दोस्तों, एक बड़ा पेड़ प्रतिवर्ष लगभग 100 से 120 किलो ऑक्सीजन वातावरण में छोड़ सकता है।
0: युवा साथियों, युवा वाणी के माध्यम से आज हम दोनों आपको ये बताना चाहते हैं कि अपने आसपास के जो पेड़ और पौधे हैं उनका ध्यान रखिए और अधिक से अधिक पेड़ पौधे उगाइए, उनकी देखभाल कीजिए। आपके एक छोटे से कदम से पर्यावरण को बहुत बड़ा बदलाव मिल सकता है।
1: बिल्कुल दोस्तों, पौधे केवल सजावट नहीं बल्कि आपके जीवन का आधार है। यदि पौधे स्वस्थ रहेंगे तो हमारा पर्यावरण और हमारा भविष्य भी सुरक्षित रहेगा।

0: हेलो।
1: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
0: फिर से
2: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए, अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
3: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
0: सर इतने कहाँ से?
3: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
0: 2 लाख
4: क्या हुआ पापा?
0: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं। काट दिया।
4: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
0: फ्रॉड?
4: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
0: तो पैसे गवाओगे।
5: RBI कहता है,
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: दोस्तों, आज के दिन से बेहतर मौका नहीं मिलेगा उन लोगों के बारे में बात करने के लिए जो दिन रात हमारी सेवा में लगे रहते हैं, जो अस्पतालों की असली ताकत होते हैं और जिनकी मेहनत से लाखों लोगों को नया जीवन मिलता है।
8: ये तो तुमने बिल्कुल सही कहा है अपर्णा, आज का दिन है ही उन लोगों के लिए समर्पित। दोस्तों, आज है अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस, यानी कि इंटरनेशनल नर्सेस डे।
7: हर वर्ष 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है।
8: ये दिन आधुनिक नर्सिंग की जो संस्थापक है फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। उनका जन्म 12 मई 1820 को फ्लोरेंस में हुआ था और इसी कारण से उनका नाम फ्लोरेंस ही रखा गया।
7: जानते हैं श्रोताओं, सबसे अधिक प्रसिद्धि उन्हें क्राइमियन युद्ध के दौरान मिली, जब वे घायल सैनिकों की देखभाल करने के लिए अस्पतालों में दिन रात काम करती रही।
8: फ्लोरेंस नाइटिंगेल रात में दीपक लेकर घायल सैनिकों की देखभाल करती थी, इसीलिए उन्हें द लेडी विद द लैम्प भी कहा जाने लग गया था।
7: फ्लोरेंस बचपन से ही लोगों की सेवा करना चाहती थी। उस समय नर्सिंग को सम्मानजनक पेशा नहीं माना जाता था, लेकिन फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने अपने समर्पण और मेहनत से इस पेशे को नई पहचान दी।
8: उन्होंने अस्पतालों में साफ सफाई, स्वच्छ पानी और बेहतर देखभाल पर बहुत जोर दिया। उनके प्रयासों से मरीजों की जो मृत्यु का दर था वो काफी कम हो गया था।
7: फ्लोरेंस ने नर्सों के प्रशिक्षण के लिए नर्सिंग स्कूल शुरू किए, जिससे नर्सिंग शिक्षा को बढ़ावा मिल सका।
8: उन्होंने नर्सिंग को केवल सेवा नहीं बल्कि एक सम्मानित और संगठित पेशे के रूप में भी स्थापित किया।
7: दोस्तों, जब भी हम अस्पताल जाते हैं, डॉक्टर के साथ सबसे पहले जो चेहरा हमें भरोसेमंद लगता है वो होता है एक नर्स का। नर्स केवल दवाइयां देने का काम नहीं करती बल्कि मरीज की शारीरिक और मानसिक देखभाल भी करती है।
8: वे मरीजों को निगरानी के साथ रखती हैं, उनका ध्यान रखती हैं, समय पर उनको दवाइयां देती हैं, आपातकालीन स्थितियों में संभाल लेती हैं और मरीज के परिवार को भी सहयोग करती है।
7: कई बार नर्सें मरीजों के लिए परिवार जैसी ही बन जाती है।
8: विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी नर्सेज को स्वस्थ व्यवस्था की जो रीढ़ होती है ना, जो स्पाइन जिसे कहा जाता है, वो बताया गया है।
7: हाँ माधवी, और ये बात कितनी सच है कि मतलब ये तो हम जानते ही है कि कोविड महामारी के दौरान हम देख चुके हैं कि जब नर्स डॉक्टर के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी होती है तभी एक स्वास्थ्य हमारी मेडिकल फील्ड सक्षम हो पाती है, उस कठिन समय पर जब उन्होंने खुद से ज्यादा मरीजों की चिंता की और देखभाल की।
8: एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में करोड़ों नर्सेज स्वस्थ सेवाओं की कार्यकर्ता हैं। भारत में भी सरकारी और निजी अस्पतालों में बड़ी संख्या में नर्सेज अपनी सेवाएं दे रही हैं।
7: लेकिन विशेषज्ञों के अनुसार अभी भी दुनिया के कई देशों में प्रशिक्षित नर्सेज की कमी है। युवाओं को नर्सिंग जैसे सेवा प्रधान क्षेत्र की ओर कई जगह प्रेरित भी किया जा रहा है।
8: तो साथियों, आज जो हम आपसे इस बारे में बात कर रहे हैं वो इसीलिए भी हो सकती है कि आप इसे जानकारी की तरह समझिए, कि आप इसके साथ साथ आपको मोटिवेशन मिले कि अगर कोई इंटरेस्टेड है, कोई छात्र या छात्रा है जो नर्स बनना चाहती है या सेवा के काम में आगे बढ़ना चाहती है तो उसे और क्या करना चाहिए।
7: तो दोस्तों, भारत में नर्सिंग के लिए बहुत सारे अलग अलग कोर्सेज अवेलेबल है, जैसे कि ANM, GNM या BSc नर्सिंग।
8: इसके लिए विज्ञान विषय से पढ़ाई करना बहुत लाभदायक माना जाता है, लेकिन सबसे ज़रूरी जो है वो ये है कि आप में सेवा भाव होना चाहिए, आप में धैर्य होना चाहिए, संवेदनशीलता होनी चाहिए और सामने वाले के प्रति जिम्मेदारी होनी चाहिए।
7: बिल्कुल सही दोस्तों, इसकी पढ़ाई आप कई सरकारी मेडिकल कॉलेज, निजी मेडिकल कॉलेज और निजी नर्सिंग संस्थानों से कर सकते हैं। अधिकतर बड़े अस्पतालों से जुड़े मेडिकल कॉलेजेस में नर्सिंग विभाग होता है, जहां पढ़ाई के साथ साथ आप प्रैक्टिकल नॉलेज भी गेन कर सकते हैं।
8: आज नर्सिंग केवल सहायक भूमिका नहीं रही है, बल्कि आईसीयू, ऑपरेशन थिएटर, इमरजेंसी, पीडियाट्रिक्स, कार्डियोलॉजी जैसे कई विशेषज्ञ शाखाओं में नर्सेस की बहुत ज़रूरत है।
7: अगर आप मानवता, जिम्मेदारी और सहायता की भावना से करियर ढूंढ रहे हैं तो नर्सिंग आपके लिए बहुत अच्छा विकल्प हो सकता है। दोस्तों, नर्सों के समर्पण, मेहनत और सेवा भावना को सलाम है।

0: तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपको कार्यक्रम की शुरुआत में बताया था, आज है हमारा स्पेशल सेगमेंट और जिसमें हम आपसे बात करने वाले हैं एक बहुत ही सुंदर नगरी के बारे में। उस नगरी का नाम है शिवपुरी। तो अपर्णा, तुम बताओ, क्या तुमने कभी शिवपुरी के बारे में सुना है? क्योंकि मैं सोच रही थी कि इस बार किसी शांत, खूबसूरत और ऐतिहासिक सी जगह पर घूमने जाया जाए।
1: हाँ माधवी, शिवपुरी तो मध्य प्रदेश का एक बहुत ही सुंदर शहर है। इसे पर्यटकों का स्वर्ग कहा जाता है। वहाँ की हरियाली, झीलें, पुराने महल और जंगल, सब कुछ इतना सुंदर है कि मन खुश हो जाता है।
0: देखो, जब मैंने रिसर्च की तब मुझे ये पता चला कि पर्यटकों के लिए एक बहुत सुंदर जगह है। और अगर लोकेशन वाइज देखा जाए तो ये पता है कि ग्वालियर के बहुत पास है।
1: बिल्कुल, लेकिन इसकी कहानी बहुत दिलचस्प है। पहले ये क्षेत्र सिंधिया राजघराने का ग्रीष्मकालीन निवास होता था, यानी कि वो गर्मियों के दिनों में वहां जाके रहा करते थे।
0: तो जब ग्वालियर में बहुत गर्मी पड़ती थी तब राजा महाराजा शिवपुरी आकर रहते थे, क्योंकि यहाँ का मौसम बाकी इलाकों की तुलना में ठंडा और सुहावना रहता था। मतलब ये जो शहर है वो राजाओं की पसंदीदा जगह मानी जाती थी।
1: हाँ, और इसी वजह से यहाँ कई शानदार महल और स्मारक भी बने हैं। सबसे प्रसिद्ध जगह है यहाँ का माधव नेशनल पार्क।
0: ये जो नेशनल पार्क है उसकी खासियत जो है वो उसकी हरियाली में है। वहाँ बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, झीलें हैं और वन्य जीवों से भरा हुआ पार्क है वो।
1: यहाँ हिरण, नील गाय, चीतल और ऐसे कई सारे सुंदर पशु और पक्षी देखने को मिलते हैं। सुबह सुबह सफारी करने का एक अलग ही मजा है।
0: ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। तो जिन लोगों को जंगल सफारी बहुत पसंद है वो यहाँ जाने के बारे में ज़रूर सोचें। अच्छा, ये बताओ कि और क्या-क्या जगहें हैं जहाँ हम घूम सकते हैं वहाँ पर?
1: मुझे जहाँ तक याद है, एक बहुत ही खूबसूरत जगह है जिसका नाम है जॉर्ज कैसल। कहते हैं कि इसे ब्रिटिश राजा जॉर्ज पंचम के स्वागत के लिए बनाया गया था।
0: बिल्कुल, और नाम में ही कितनी रॉयल्टी दिख रही है ना,
1: हाँ
0: जॉर्ज कासल। और कहाँ पर है? शिवपुरी में।
1: हाँ और वहाँ से पूरा जंगल दिखाई देता है। सनसेट के समय तो नज़ारा बिल्कुल फिल्मों जैसा लगता है।
0: अब तो मैं और ज़्यादा एक्साइटेड हो गई हूँ वहाँ जाने के लिए। इसके अलावा वहाँ पे मैंने ये भी सुना है अपर्णा कि वहाँ पर छतरियाँ भी हैं जो कि बहुत प्रसिद्ध है। ये सिंधिया राजघराने की याद में बने हुए बहुत सुंदर स्मारक है।
1: हाँ, सफेद पत्थरों की नक्काशी और आसपास शांत वातावरण, ये बहुत आकर्षक लगता है।
0: मुझे पुराने ऐतिहासिक स्थानों पर घूमना बहुत ज़्यादा पसंद है, और हर इंसान जो वहाँ जाता है आज के ज़माने में, मुझे लगता है फोटोज़ और पिक्चर्स के बिना तो आएगा नहीं।
1: और मुझे लगता है कि इतना सुनने के बाद मुझे लगता है कि शिवपुरी बहुत ही खूबसूरत स्पॉट होगा फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के लिए, नहीं माधवी?
0: बिल्कुल सही कह रही हो तुम।
1: और वहाँ की झीलें भी कोई कम खूबसूरत नहीं है। साख्या सागर लेक तो इतनी शांत और सुंदर है कि बस घंटों वहां बैठे रहो और मन अपने आप शांत हो जाता है।
0: मेरा जो आइटिनरी थी उसमें बोटिंग भी मेंशन किया गया है कि इस लेक पर बोटिंग बहुत अच्छे से होती है। तो जो लोग भी समर वेकेशंस के लिए किसी पास की जगह को ढूंढ रहे हैं वो शिवपुरी के बारे में सोच सकते हैं। परिवार और कपल्स दोनों के लिए बहुत अच्छी जगह है, क्योंकि वहाँ पर आपको नेचर मिलता है, एक्टिविटीज़ मिलती है, नेशनल पार्क मिलता है, और मुझे लगता है पैकेज डील है ना अपना।
1: बिल्कुल, और कितना मैजिकल होगा ना जब शाम की ठंडी हवा और पानी में पड़ती सूरज की किरणें और आप पास में बैठ के चाय पी रहे हो।
0: शिवपुरी सच में एक हिडन जेम सा लग रहा है ना?
1: बिल्कुल, और सबसे अच्छी बात पता है क्या है? वहां ज्यादा भीड़ नहीं होती है, इसलिए शहर का नेचुरल चार्म बना हुआ है।
0: तो दोस्तों, ये हमने बताया आपको शिवपुरी के हिस्टोरिकल और जो अपना क्या कहते हैं उनको, पुरानी चीज़ों के बारे में, और क्या क्या घूमने की जगहें हैं शिवपुरी में।
1: साथ ही और भी बहुत सारी जानकारियां आपको शिवपुरी के बारे में देंगे, लेकिन उसके पहले माधवी एक गीत हमारे श्रोताओं को सुनवा देते हैं।

0: तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे शिवपुरी के बारे में, और अब हम आपको बताएंगे कि वहाँ जाने का जो बेस्ट समय है और घूमने का जो बेस्ट मंथ और क्लाइमेट है वो कौन सा है। तो शुरू करते हैं इस क्वेश्चन के साथ। अपर्णा, तुम मुझे बताओ कि वहाँ जाने का सबसे अच्छा समय कौन सा है।
1: माधवी, ये तो तुमने बहुत ज़रूरी बात पूछी, क्योंकि जब भी हम कोई ट्रिप प्लान करते हैं तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि भाई वहाँ का क्लाइमेट जाने जैसा है या नहीं। तो शिवपुरी जाने का जो सबसे बेस्ट समय माना जाता है वो है अक्टूबर से मार्च तक का। ये समय ठंडा होता है, इसलिए बहुत प्लेजेंट होता है।
0: यानी अगर शिवपुरी जाना है तो वो विंटर ट्रिप के लिए एकदम परफेक्ट है।
1: बिल्कुल, सुबह हल्की ठंड, दिन में आरामदायक धूप और शाम को ठंडी हवा, घूमने का पूरा मजा इसी में आता है।
0: बात तो तुमने एकदम सही कही है, लेकिन अब मेरे मन में एक सवाल उठ रहा है कि गर्मियों में क्या करते हैं? गर्मियों में नहीं जा सकते?
1: गर्मियों में माधवी तापमान बढ़ जाता है, लेकिन फिर भी मध्य प्रदेश के कई शहरों से थोड़ा बेहतर रहता है शिवपुरी में, क्योंकि यहाँ हरियाली ज्यादा है। लेकिन साइट सीइंग के लिए सर्दियां ही सबसे अच्छी मानी गई है।
0: अच्छा, मेरे मन में जो है वो है कि एक फैमिली ट्रिप हो जाए शिवपुरी की, क्योंकि पास में है, ज़्यादा ट्रैवलिंग नहीं है, हम सारे घर वालों को लेके जा सकते हैं, तो उसमें बच्चे भी आते हैं। अब तुम मुझे ये बताओ कि बच्चों के लिए क्या-क्या एक्टिविटीज़ हो सकती हैं वहाँ पर?
1: बच्चों को माधवी यहाँ पे बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि यहाँ पे जंगल सफारी है, बोटिंग है, बर्ड्स वॉचिंग भी है और नेचर वॉक। ये सब कुछ इतना एक्साइटिंग है कि बच्चे वहाँ से वापस आने का नाम ही नहीं लेंगे। बच्चे एनिमल्स देखकर ही बहुत खुश हो जाएंगे।
0: वैसे ये बात बहुत अच्छी है, क्योंकि हम जानते हैं कि आजकल की जो लाइफ चल रही है, इसमें जो शहरों में बच्चे रहते हैं आजकल, उन बच्चों को नेचर से कनेक्ट करने का जो मौका है वो भी बहुत कम मिलता है।
1: बिल्कुल
0: तो जिन भी बच्चों की अभी समर ब्रेक लगी होगी या जो ब्रेक में बाहर जाना चाहते हैं, मुझे लगता है ये नेचर के साथ कनेक्ट करने का एक बहुत अच्छा अवसर हो सकता है।
1: बिल्कुल सही। और यहाँ पे फैमिली पिकनिक के लिए भी बहुत अच्छे स्पॉट्स हैं। लोग लेक साइड बैठकर खाना एंजॉय करते हैं, गेम्स खेलते हैं और फोटोग्राफी करते हैं।
0: फिर तो यहाँ पर एडवेंचर एक्टिविटीज़ भी होती होंगी।
1: बिल्कुल, ट्रैकिंग, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी काफ़ी पॉपुलर है यहाँ पे। कुछ लोग कैंपिंग एक्सपीरियंस भी लेते हैं।
0: अच्छा, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है किसी भी ट्रिप के लिए वो ये होती है कि वहाँ पर खाना कैसा मिलता है और क्या उस जगह के खाने के साथ हम अपने आप को अडेप्ट कर सकते हैं, क्योंकि अगर लंबा ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो खाना तो ज़रूरी है। तो
1: बिल्कुल
0: ये
1: सही।
0: बताओ कि खाने पीने का वहाँ क्या सीन है?
1: वहाँ का लोकल फूड बहुत टेस्टी है माधवी। अब क्योंकि मध्य प्रदेश के लोग हैं तो जबान तो चटोरी होगी ही, इसलिए पोहा, जलेबी, कचौरी, चाट, ट्रेडिशनल मध्य प्रदेशी खाना, वहाँ पे सब कुछ बहुत फेमस है।
0: खाना सुन के तो मुझे थोड़ा अच्छा लग गया है, तो मुझे लगता है कि इस ट्रिप को बहुत जल्द से जल्द प्लान करना चाहिए।
1: डेफिनेटली, शिवपुरी उन जगहों में से है जहाँ जाने के बाद दिल बहुत हल्का और खुशनुमा महसूस होता है।

0: मैं ये कहना चाहूंगी माधवी की इतिहास भी है, प्रकृति भी है, शांति भी और खूबसूरती भी है शिवपुरी में, जहाँ तक हमने बात की। तो जो लोग भीड़ भाड़ से दूर कुछ सुकून के पल बिताना चाहते हैं, उनके लिए शिवपुरी किसी जन्नत से कम नहीं है, है ना?
1: बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि शिवपुरी सिर्फ एक टूरिस्ट प्लेस नहीं है, बल्कि एक बहुत ही पीसफुल सा एक्सपीरियंस है। जिन लोगों को भी रोड ट्रिप्स पसंद है, नेचर के साथ कनेक्टिविटी पसंद है, वो लोगों को शिवपुरी के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए।
0: बिल्कुल। और इंदौर से ग्वालियर या झांसी तक ट्रेन लेकर आप जा सकते हैं, या फिर सड़क के मार्ग से भी आप शिवपुरी पहुंच सकते हैं, काफ़ी ऑप्शंस है।
1: अगर आप लोग फ्लाइट्स का सोच रहे हैं तो शिवपुरी का खुद का एक बड़ा सा एयरपोर्ट तो नहीं है, लेकिन सबसे नज़दीक एयरपोर्ट जो है वो ग्वालियर में है, तो वहाँ से आप टैक्सी या बस लेकर बहुत आसानी से पहुँच सकते हो। तो दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि ये एक बहुत ही फ़न एक्सपीरियंस होगा, खूब सारी बोटिंग, सफारी, सनसेट्स और पिक्चर्स। और क्या चाहिए किसी फैमिली पिकनिक को, है ना?
0: डन। तो माधवी चलो फटाफट हम भी पैकिंग में लगते हैं और जल्दी से यहाँ की ट्रिप प्लान करते हैं।

0: तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हमने कार्यक्रम की शुरुआत में आपसे दो प्रश्न पूछे थे, तो अब समय आ गया है उन प्रश्नों के उत्तर जानने का। तो पहला प्रश्न था कि आधुनिक नर्सिंग की जननी किसे कहा जाता है। तो इसका जो उत्तर है वो है फ्लोरेंस नाइटिंगेल, इनको आधुनिक नर्सिंग की जननी कहा जाता है।
1: और दोस्तों, आज का दूसरा सवाल था कि पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। उसका उत्तर है फोटोसिंथेसिस।
0: तो हम उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको हमारा आज का कार्यक्रम अच्छा लगा होगा। इसी के साथ मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त माधवी,
1: और मैं अपर्णा। दीजिए हमें अनुमति।
0: नमस्कार, नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज पर शाम के 5:45 हो चुके हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत। फिल्म संगीत में आइए अब आपको सुनवाते हैं फिल्म कलाकार का ये गीत, जिसे गाया है किशोर कुमार ने। इस गीत को लिखा इंदिवर ने और संगीत कल्याण जी आनंद जी का है।

आकाशवाणी इंदौर से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। आइए अब सुनते हैं फिल्म आईना का ये गीत, जिसे गाया है कुमार सानू और आशा भोसले ने। इस गीत को लिखा समीर ने और संगीत दिलीप सेन और समीर सेन का है।

फिल्म संगीत का अंतिम नगमा लीजिए सुनिए फिल्म मोहब्बत से किशोर कुमार की आवाज़ में। इस गीत को लिखा इंदीवर ने और संगीत बप्पी लहरी का है।

इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज़ पर। शाम के 6 बजे हैं। प्रस्तुत है प्रायोजित शैक्षिक कार्यक्रम NCERT उमंग।

0: उमंग CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है उमंग कार्यक्रम में। नमस्कार, मैं हूं विमलेश।
0: और मैं हूं अजीत। नमस्कार श्रोताओं, शुरुआत करते हैं एक खूबसूरत विचार से जिसे हमें भेजा है ग्रामपुत की कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे और सुमांशु पांडे जी ने। बड़ा खूबसूरत लिखा है।
2: लिखते हैं, मुश्किलों को कुछ यूं हराते हैं, चलो आज थोड़ा मुस्कुराते हैं।
0: वाह, बहुत सुंदर विचार, मुश्किलों को कुछ यूं हराते हैं, चलो आज थोड़ा मुस्कुराते हैं। जी हाँ श्रोताओं, मुस्कान वो रोशनी है जो अंधकार और निराशा से भरे किसी भी हृदय को उजाले से भर सकती है। याद रखिए,
2: आपकी मुस्कान किसी के जीवन का सबसे खूबसूरत उपहार बन सकती है। आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम।
0: तो सबसे पहला संदेश हमें मिला है जेल रोड जालंधर से, रोशन जहां, मन्नत जहां और इशरत जहां का।
2: केंद्रपाड़ा उड़ीसा से देशदीप दास जी का।
0: और डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव तामुरिया, डॉली बेबी, पूजा पुष्कर लेहान, अजिज्ञासा के साथ विराट, तेजस्वी और गौरव तामुरिया।
2: हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोड़खे, राजेश साबले पाटिल, शेख अल्लाह बख्श।
0: और नजदीक बस स्टैंड बुर्ज हनुमानगढ़ फजिलका पंजाब से रमन वर्मा, अमन वर्मा, दिव्यांश वर्मा और डॉक्टर मदनलाल वर्मा।
2: हार्दिक आभार आपके संदेशों के लिए और जो आपने प्रश्नों के उत्तर भेजे उनके लिए भी हार्दिक आभार।
0: आप सबका हार्दिक स्वागत है एक बार फिर से हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए में। साथियों, गर्मी का मौसम है और पूरे भारत में भीषण गर्मी पड़ रही है।
2: हमें आपकी चिंता है और चाहते हैं कि ऐसे मौसम में आप अपना और आपके अपनों का जरूर ख्याल रखें।
0: जी,
2: तो इस सप्ताह हमारी चर्चा का विषय रहेगा कैसे रखें अपना ख्याल इस गर्मी के मौसम में। तो आइए अजीत जी आपसे शुरुआत करते हैं।
0: जी विमलेश जी, तो श्रोताओं सबसे पहली बात, ऐसे मौसम में सबसे पहली सलाह ये दी जाती है कि 12 बजे से 4 बजे तक बाहर ना निकलें।
2: लेकिन अजीत जी, हमारे श्रोता ये जरूर जानना चाहेंगे कि 12 बजे से 4 बजे तक के समय में ऐसा क्या होता है जिसके कारण ये सलाह दी जाती है।
0: विमलेश जी, ऐसे तो गर्मी के मौसम में हमें हर समय अपना ख्याल रखना ही चाहिए, लेकिन ये समय खास होता
2: जी,
0: क्योंकि सुबह से तो गर्मी पड़ती ही है लेकिन पृथ्वी की परिक्रमा की स्थिति के कारण 12 बजे सूर्य की किरणें पृथ्वी पर सीधी पड़ती हैं, जिसके कारण इस समय तापमान अपने चरम पर होता है।
2: जी, और जब तापमान अपने चरम पर होता है तो इस समय लू लगने की संभावना बहुत अधिक हो जाती है, जिसके कारण उल्टी, चक्कर आना, बेहोशी, मतिभ्रम और कभी कभी जान को भी खतरा हो सकता है।
0: लेकिन विमलेश जी, एक बार फिर से मैं उसी प्रश्न पर आता हूँ, क्या पृथ्वी का गर्म होना और 12 बजे सूर्य की किरणों का सीधा पड़ना ही एकमात्र कारण है या इस समय कुछ और विशेष भी होता है?
2: जी, बहुत अच्छा प्रश्न है अजीत जी। इसे हमें ये जानना भी बहुत जरूरी है कि सूर्य की किरणों के सीधे पड़ने का प्रभाव पृथ्वी के धरातल पर क्या पड़ता है,
0: तो इसे जरा विस्तार से बताइए।
2: अजीत जी, गर्मी के मौसम में सुबह से सूर्य की किरणें जब पृथ्वी पर पड़ती हैं तो भूमि गर्म हो जाती है, या दूसरे शब्दों में वो गर्मी को सोख लेती है
0: जी।
2: और 12 बजे सूर्य की किरणें पृथ्वी पर सीधी पड़ती हैं जो बाद में धीरे धीरे तिरछी होने लगती हैं, इसलिए उसका तापमान पृथ्वी पर थोड़ा कम होने लगता है। लेकिन इस दौरान भूमि अपनी गर्मी धीरे धीरे छोड़ती है, जिसके कारण गर्मी और अधिक बढ़ जाती है। इसे थर्मल लैग कहते हैं।
0: क्या कहते हैं?
2: थर्मल लैग।
0: अच्छा, तो शायद यही कारण है कि हमें गर्मी 12 बजे से अधिक 1 से 4 बजे के दौरान महसूस होती है
2: जी।
0: तो क्या हम थर्मल लैग को बोलचाल की भाषा में भभक उठना या भभका कह सकते हैं?
2: जी बिल्कुल कह सकते हैं। उस समय ऐसा लगता है जैसे भूमि से गर्मी निकल रही है, ऊपर से सूर्य का ताप और नीचे से पृथ्वी का ताप, यानी एक तरह से दोहरी मार।
0: जी यही बात है, एक तरह से दोहरी मार, बिल्कुल सही कहा। तो ऐसे समय में हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
2: देखिए, कहा जा सकता है कि यदि बहुत जरूरी हो तभी बाहर निकलें।
0: लेकिन विमलेश जी, यदि निकलना ही पड़े तो?
2: यदि निकलना ही पड़े तो सर पर टोपी या कोई कपड़ा जरूर रखें। और हाँ, प्यास लगे या न लगे थोड़ा थोड़ा पानी जरूर पिए। ऐसे में नींबू पानी, नारियल पानी और ORS बहुत लाभकारी होते हैं
0: जी।
2: और हाँ, कोशिश करें जहाँ कहीं छाया मिल जाए वहाँ थोड़ी देर जरूर सुस्ता लें।
0: जी हाँ श्रोताओ, ऐसे समय में बहुत जरूरी ये भी है कि हल्के और ढीले कपड़े पहने
2: जी।
0: कोशिश करें कि हल्के सूती कपड़े हों और उनका ज्यादा गहरा रंग ना हो
2: जी।
0: सफेद कपड़ों और हल्के रंगों के कपड़ों की सलाह दी जाती है क्योंकि वे सूर्य की किरणों को परावर्तित करने में सक्षम होते हैं।
2: प्रयास करें कि त्वचा

0: ढकी हुई हो, क्योंकि सनबर्न का खतरा भी बना रहता है, और धूप का चश्मा जरूर पहने, क्योंकि सूरज की तेज किरणों का असर हमारी आंखों पर भी पड़ सकता है।
1: जी, तो श्रोताओं ये थी हमारी आज की जानकारी, जिसके द्वारा हमने बताया कि कैसे रखें अपना ख्याल गर्मी के इस मौसम में। हम तो फिर से कहेंगे कि अपना
0: अपना और अपने अपनों का ख्याल जरूर रखें, खासकर बच्चों और बुजुर्गों का। तो अब सुनिए आज का प्रश्न। प्रश्न है,
1: थर्मल लैग किसे कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए
0: थर्मल लैग किसे कहते हैं?
1: और भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है। और साथ ही साथ आप हमारे ईमेल के पते पर भी अपना संदेश भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cieet.nic.in।
0: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: तो श्रोताओं अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम। शीर्षक है आग बरसाती धूप।
0: इस कार्यक्रम में एक नाटक के द्वारा गर्मी से बचाव के उपायों के बारे में बताया गया है, और विशेष रूप से चर्चा की गई है कि गर्मी के मौसम में बच्चे अपना ध्यान किस प्रकार से रखें।
2: आग बरसाती धूप।
3: विद्या, क्या है? आम के बाग में चलते हैं।
4: क्यों?
3: वहाँ बहुत सारे आम हैं।
4: अच्छा, तुमने खुद देखे?
3: हाँ।
4: अच्छा, तो फिर चलते हैं, जल्दी चलो।
3: धीरे से, माँ उठ जाएगी।
4: हाँ हाँ, धीरे से चलो ना।

0: वाह, कितने ढेर सारे आम हैं। अब तो मजा आ जाएगा।
1: हाँ, पर कितनी तेज धूप है और हवा भी गर्म चल रही है।
0: छोड़ो भी, वो रहे आम।
1: हाँ,
0: आ चलो खाते हैं। अरे, यहाँ पर तो बहुत सारे आम गिरे हुए हैं। लो विद्या, एक तुम भी खाओ, एक मैं खाता हूँ।
1: आहा, इसकी खुशबू कितनी अच्छी है। वाह, मजा आ गया, कितना मीठा आम है।
0: हाँ, पर गर्मी भी कितनी हो रही है।
1: हाँ मोहन, गर्मी तो मुझे भी कितनी लग रही है। देखो ना, कितना पसीना आ रहा है मुझे।
0: चलो नदी में नहा कर आते हैं,
1: फिर तो मजा आ जाएगा और गर्मी भी कम हो जाएगी। आओ जल्दी चलें।
2: कितनी तेज धूप है, जैसे आग बरस रही है। आज तो आधा खेत भी नहीं जोत पाया। अरे, इन दोनों बच्चों को देखो, कहाँ भागे जा रहे।
1: मोहन, और तेज दौड़ो। देखो, मुझे छू सकते हो।
0: कोशिश करता हूँ।
1: अरे मोहन, मोहन क्या हो गया तुझे? अरे अरे, तो गिर पड़ा। अरे मोहन, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? मोहन, मोहन।
2: मैं पहले कहता था ना कि इन बच्चों को कुछ होकर रहेगा, भला ये भी कोई घर से निकलने का टाइम है? लगता है कुछ गड़बड़ है, चलो देखो। अब भागना मत मेरे हीरा मोती, मेरे बैलों की जोड़ी, मैं अभी आया। यहीं पेड़ की छांव में रहना। हाँ।
1: अरे मोहन, मोहन क्या हो गया तुझे? तो कुछ बोलता क्यों नहीं?
0: विद्या, विद्या।
1: अरे ये तो बेहोश हो गया। मोहन, मोहन, मोहन, कुछ बोल मोहन।
2: क्या बात है बेटे, क्या बात है?
1: देखो ना हामिद काका, मोहन को क्या हो गया?
2: लगता है इसे लू लग गई है। बेटा चलो जल्दी से उठाकर इसे छांव में ले चलते हैं।
1: इसे डॉक्टर के पास ले चलिए काका।
2: हाँ, हाँ, डॉक्टर के पास ही चलते हैं। मैं उठाता हूँ। हाँ, ऐसे चलो।
1: हाँ हाँ, हाँ चलिए चलिए।
2: हाँ, हाँ, हाँ, हाँ। आ गया डॉक्टर साहब का घर।

0: इसे छांव में खाट पर लिटाते हैं
1: जी।
0: तब तुम जरा डॉक्टर को आवाज दो बेटा।
1: डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब।
2: कौन है भाई, अभी आया?
0: इसका जरा कपड़ा उतार दूं। लीजिए, डॉक्टर साहब भी आ गए। आइए आइए डॉक्टर साहब, जल्दी आइए।
3: क्या बात है हामिद भाई, क्या बात है?
0: डॉक्टर साहब, लगता है इसे लू लग गई है।
3: ओहो, अच्छा इसके कपड़े उतार दीजिए हामिद भाई, और इसके बदन पर ठंडा पानी डालिए। ये लीजिए, ये इस लोटे में ठंडा पानी है, तब तक मैं थर्मामीटर लेकर आता हूँ।
0: अच्छा डॉक्टर साहब।
3: और विद्या बेटी, इस पंखे से तुम हवा करती रहो।
1: जी।
3: लाओ, अब ये थर्मामीटर लगा देते हैं, बुखार चेक कर लेते हैं। अरे हामिद, इसकी टांगे जमीन से एक फुट ऊपर उठाकर रखो।
0: हाँ जी,
3: ऐसे। लाओ, अब जरा बुखार देख लेते हैं। हाँ, बुखार कम हो गया। भाई अब ठंडा पानी डालने की जरूरत नहीं है
0: जी।
3: इसके शरीर का तापमान 38 डिग्री सेल्सियस यानी 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट तक आ गया है
0: जी।
3: भाई अब घबराने की जरूरत नहीं है।
1: ये लू क्या होती है डॉक्टर साहब?
3: बेटा, बहुत तेज गर्म हवा को लू कहते हैं। तेज गर्मी के मौसम में गर्म हवा के प्रभाव से शरीर की ताप नियंत्रण व्यवस्था काम करना बंद कर देती है
1: जी,
3: जिसके कारण शरीर का तापमान अचानक बाहरी तापमान के अनुसार बढ़ने लगता है।
1: इससे क्या होता है?
3: भाई तापमान बढ़ने से शरीर में पानी की कमी हो जाती है और पसीना आना बंद हो जाता है और मरीज बेहोशी की हालत में चला जाता है।
0: तो डॉक्टर साहब कैसे बच सकते हैं इससे?
3: भाई सावधानी ही असली बचाव है। ज्यादा तेज धूप और गर्मी में बाहर नहीं निकलना चाहिए, और अगर निकलना बहुत जरूरी हो तो छतरी या सर पर कपड़ा रखकर निकलना चाहिए। लगातार पानी वगैरह पीते रहना चाहिए।
0: डॉक्टर साहब, नींबू पानी, गन्ने का रस और कच्चे आम को उबालकर बनाया गया पन्ना भी तो फायदेमंद होता है।
3: हाँ हाँ हामिद भाई, खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूजा वगैरह मौसमी फल भी खूब खाने चाहिए। और साधारण दिनों से पानी 3 गुना ज्यादा पीना चाहिए
0: जी।
1: और अगर लू लग जाए तो?
0: प्राथमिक उपचार क्या करना चाहिए?
3: भाई लू लगे व्यक्ति के शरीर के तापमान को जल्दी ही नीचे लाने का प्रयास करना चाहिए। ठंडा पानी या बर्फ आदि से शरीर को पोंछकर तापमान को 38 डिग्री सेल्सियस तक लाने का प्रयास करना चाहिए
1: जी।
3: और डॉक्टर की सलाह भी तुरंत लेनी चाहिए।
1: मोहन को होश आ गया डॉक्टर साहब, मोहन को होश आ गया।
3: अभी लेटे रहो मोहन बेटे, अभी तुम्हें आराम की जरूरत है।
0: डॉक्टर साहब की बताई बातें याद रहेंगी कि नहीं?
1: जी।
0: अब तो नहीं घूमोगे कड़ी धूप और गर्मी में?
1: नहीं काका, मुझे सब याद है जो डॉक्टर साहब ने बताया।
3: कोई बात नहीं, चलो एक बात फिर बता देता हूँ। गर्मी के दिन घर में बिताओ, खीरा ककड़ी तरबूज खाओ, नींबू पानी लस्सी पियो, 3 गुना पानी पियो, गन्ने का रस आम का पन्ना गर्मी में मत करो मना, तेज धूप में कभी न खेलो, गर्मी के दिन घर में बिताओ, गर्म हवा से रहे हम दूर, ठंडक में खेले भरपूर।
0: गर्म हवा से रहे हम दूर,
4: ठंडक में खेले भरपूर।
0: ठंडक
4: में खेले भरपूर।
3: आग बरसाती धूप।
5: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आग बरसाती धूप, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम लांस नायक अल्बर्ट एक्का।
6: इस कार्यक्रम में भारतीय सेना के वीर योद्धा लांस नायक अल्बर्ट एक्का के जीवन और सन 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान उनके पराक्रम और शौर्य की रोमांचक गाथा बताई गई है। अपने प्राणों का बलिदान देने के लिए कृतज्ञ राष्ट्र ने उन्हें मरणोपरांत सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया।
5: CIET NCERT

0: आरटी द्वारा प्रस्तुत है प्रेरक गाथाओं की श्रृंखला
1: इन्हें हमारा सलाम।
0: तो आइए इस श्रृंखला में सुनते हैं कार्यक्रम परमवीर चक्र विजेता लांस नायक अल्बर्ट एक का। नमस्कार साथियों।
2: साथियों नमस्कार।
0: साथियों, भारत रणबांकुरों और वीरांगनाओं की भूमि है। यहाँ की माटी ने ऐसे ऐसे वीरों को जन्म दिया है जिन पर सिर्फ देश ही नहीं विश्व इतिहास भी हमेशा गौरव का अनुभव करेगा।
2: जी हाँ, इन वीरों ने समरांगन में अपने रक्त से जिस वीरता की गरिमामय गाथा लिखी वो कभी भी भुलाई नहीं जा सकती। सच तो ये है कि इन वीरों की गाथाएं पीढ़ी दर पीढ़ी विश्व के इतिहास पटल पर गुंजायमान रहती हैं।
0: तो आज हम एक ऐसे ही वीर की गाथा प्रस्तुत करने जा रहे हैं जिसका पराक्रम याद किया जाता रहेगा। भारत माता के वह वीर सपूत थे लांस नायक अल्बर्ट एक का।
2: लांस नायक सुनकर ही आप समझ गए होंगे कि अल्बर्ट एक का भारतीय स्थल सेना से संबंध रखते थे।
0: जी हाँ साथियों, लांस नायक एक सैनिक पदवी है। लांस नायक अल्बर्ट एक्का ने सन 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में पूर्वी मोर्चे पर ऐसे असीम शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया जो अतुलनीय है।
2: उनकी बहादुरी ने दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए और दुश्मन को भारी पराजय का सामना करना पड़ा
0: और इस वीरता के कारण उन्हें सैनिक सम्मान परम वीर चक्र से सम्मानित किया गया।
2: उनके शौर्य को देख कर एक यूनिट कमांडर ने कहा था, ऐसा लगता था जैसे स्वयं महाकाल शत्रुओं के विध्वंस के लिए प्रकट हो गए हैं।
0: इतना ही नहीं साथियों, शत्रुओं के खेमे में भी उनकी बहादुरी की चर्चा बड़े सम्मान से की जाती थी। तो आइए सुनते हैं अल्बर्ट एक्का की कहानी।
2: साथियों, भारत संघ का एक सुंदर पूर्वी राज्य है झारखंड। यहाँ के पर्वतीय स्थल, सदाबहार जंगल, कलकल करती पहाड़ी नदियाँ और सीधे सादे आदिवासी और उनका कर्णप्रिय आदिवासी संगीत अनायास ही लोगों का मन मोह लेता है।

0: नाम से ही विदित होता है साथियों, जैसा अभी कहा गया झारखंड, झार यानी झाड़ या पेड़। तो झारखंड का अर्थ हुआ ऐसा भूखंड जो वृक्षों या जंगलों से भरा हुआ हो। झारखंड राज्य एक पठार पर बसा है जिसे छोटा नागपुर का पठार कहते हैं।
1: इस राज्य में वन और खनिज संपदाओं की भरमार है।
0: इसी झारखंड राज्य का एक जिला है गुमला, और इस जिले में एक प्रखंड या ब्लॉक है डुमरी। इसी डुमरी ब्लॉक के जरी नामक गांव में 27 दिसंबर 1942 को एक आदिवासी परिवार में अल्बर्ट एक्का का जन्म हुआ था।
1: इनके पिता का नाम जूलियस एक्का था और माँ का नाम मरियम एक्का। माता पिता शुरू से ही पढ़ाई लिखाई के विषय में बहुत जागरूक थे, इसलिए ठीक समय पर उन्होंने बेटे अल्बर्ट को पढ़ाई के लिए स्कूल भेजा।
0: उनकी प्रारंभिक शिक्षा उसी जिले के एक स्कूल में हुई। आदिवासी होने के कारण तीर धनुष चलाने और शिकार खेलने में उनकी विशेष रुचि थी। संभवतः इसी रुचि ने उन्हें आगे चलकर बेहतर सैनिक बनने में उनकी सहायता की।
1: उन दिनों भारत में हॉकी का खेल बहुत ही लोकप्रिय था। अल्बर्ट एक्का हॉकी के भी अच्छे खिलाड़ी थे। अपने स्कूली दिनों में वे खेल के मैदान में घंटों अभ्यास करते थे और पसीना बहाते थे। उनके नेतृत्व में स्कूल ने कई टूर्नामेंट जीते।
0: झारखंड आदिवासी बहुल राज्य है और सेना में जाने का प्रचलन वहाँ के युवाओं में आम बात है। अल्बर्ट भी आसपास के गांव में जवानों को सेना में भर्ती होते देखते थे। जब वे जवान छुट्टियों में गांव आते थे तो अल्बर्ट अक्सर उनसे बातें करते। उन्हें सेना का जीवन बहुत भाने लगा था, और फिर ऐसा हुआ कि धीरे धीरे उन्होंने सेना में जाने का मन बना लिया।
1: और ठीक अपने जन्मदिन पर 27 दिसंबर 1962 को, यानी

0: 20 वर्ष की आयु में वे भारतीय सेना में भर्ती भी हो गए।
1: उन्होंने फौज में बिहार रेजिमेंट से अपना कार्य शुरू किया। बाद में जब 14th गार्ड्स का गठन हुआ, तब एल्बर्ट अपने कुछ साथियों के साथ वहां स्थानांतरित कर दिए गए। उन दिनों उनकी यूनिट बिहार रेजिमेंट में थी।
0: अनुशासन, श्रेष्ठ कर्तव्य निर्वहन और निष्ठा के कारण वे धीरे धीरे सिपाही से लांस नायक की पदवी तक पहुंच गए।
1: और फिर आया सन 1971 का साल। भारत के पूर्वी हिस्से में युद्ध के बादल मंडराने लगे। 1947 में जब भारत का विभाजन हुआ, तो बंगाल का एक बहुत बड़ा हिस्सा पाकिस्तान में चला गया था, जिसे पूर्वी पाकिस्तान कहते थे और ये अब बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है।
0: जब यहाँ की स्थितियाँ बिगड़ने लगी, तो भारत को मानवीय आधार पर युद्ध में उतरना पड़ा।
1: 3 दिसंबर 1971 का दिन, भारतीय और पाकिस्तानी सेनाओं के बीच भीषण युद्ध शुरू हो चुका था।
0: उनकी यूनिट को गंगा सागर के पाकिस्तानी गढ़ पर कब्जा करने का आदेश दिया गया। इसे जीतना भारत के लिए सामरिक तौर पर बहुत जरूरी था।
1: इसे जीतना इसलिए जरूरी था कि इसके बिना भारतीय फौज ढाका तक नहीं पहुंच सकती थी।
0: दुश्मन अपनी पूरी तैयारी के साथ बैठा था। यहाँ एक जगह है अखौरा। पाकिस्तानी सेना ने यहाँ अपना पूरा जमावड़ा लगा दिया था।
1: सेना दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ी, जिनमें से एक यूनिट की कमान थी लांस नायक एल्बर्ट एक्का के पास।
0: शत्रुओं द्वारा टैंक विरोधी मिसाइलों को तैनात कर दिया गया था, ताकि भारतीय सेना की बढ़त को रोका जा सके। सामरिक दृष्टि से पाकिस्तानी सेना बहुत बेहतर स्थिति में थी।
1: और तो और, वहाँ पाकिस्तानी सेना के जवान भी बहुत भारी संख्या में तैनात थे। कुल मिलाकर गंगा सागर गढ़ पर कब्जा करना एक दुस्साहस और मौत को गले लगाने के अलावा कुछ नहीं था।
0: लेकिन लांस नायक अल्बर्ट एक्का के नेतृत्व में यूनिट आगे बढ़ती रही। उन्होंने तय कर लिया कि वे अपना मिशन पूरा करके ही रहेंगे। वे आगे बढ़े ही थे कि दूसरी ओर से गोलियों की भयंकर बौछारें आने लगीं।
1: वो जगह माइंस से पटी हुई थी, इस कारण भी बहुत से भारतीय सैनिक हताहत होने लगे। दुश्मनों की मशीन गने बंकरों से लगातार गोलियां बरसा रही थी। भारतीय सैनिक रेंगते हुए इंच इंच करके आगे बढ़ रहे थे।
0: लांस नायक एल्बर्ट एक्का को समझ में आ गया था कि जब तक पाकिस्तानी मशीन गनों को शांत नहीं किया जाएगा, भारतीय सैनिक बहुत बड़ी संख्या में हताहत होते रहेंगे।
1: और इसके लिए उन्होंने सबसे पहले हथगोलों से पाकिस्तानी बंकरों को निशाना बनाया। इसमें उन्हें थोड़ी सफलता भी मिली, लेकिन यह काफी नहीं था। एक पाकिस्तानी बंकर से अभी भी लगातार गोलियों की बौछार आ रही थी।
0: और अब समय था इतिहास रचने का। अल्बर्ट एक्का लगातार आगे बढ़ते गए। उनके पास हथगोले थे। गोलियों की बौछारों से बचते बचाते वे किसी तरह उस बंकर के पास पहुंच गए और उस बंकर में बने एक छेद से अंदर हथगोला फेंक दिया।
1: जब वहां पर हथगोला फटा और कई पाकिस्तानी सैनिक उसी समय काल कलवित हो गए, लेकिन अभी भी कुछ सैनिक बचे थे जो बंकर के अंदर से लाइट मशीन गनों से गोलियों की लगातार बौछार कर रहे थे।
0: फिर क्या था, लांस नायक एल्बर्ट एक्का अकेले ही उस बंकर में कूद गए।
1: और फिर शुरू हुआ आमने सामने का युद्ध। एल्बर्ट एक्का काल बनकर दुश्मनों पर टूट पड़े। अपने बंदूक की संगीन और बट से उन्होंने दुश्मनों पर प्राण घातक हमला किया और उन सैनिकों को भी मौत के घाट उतार दिया। उस बंकर में दुश्मन के सारे सैनिक एल्बर्ट एक्का की बहादुरी के कारण मारे जा चुके थे।
0: लेकिन इस युद्ध में एल्बर्ट एक्का को गंभीर चोटें भी आईं और वे देश के लिए वहीं शहीद हो गए। उनकी आंखें बंद हो चुकी थीं, लेकिन उनकी इसी वीरता ने भारत के लिए ढाका पहुंचना आसान कर दिया और भारत की जीत सुनिश्चित कर दी।
1: इसी युद्ध के परिणाम स्वरूप दुनिया के मानचित्र पर एक नया देश उभरा, जिसे आज हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं।
0: इस कल्पनातीत शौर्य, पराक्रम और बहादुरी के लिए लांस नायक अल्बर्ट एक्का को मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।

0: इतना ही नहीं, बांग्लादेश ने भी इस महापराक्रमी योद्धा को फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वॉर ऑनर से नवाजा।
1: भारत के सैन्य इतिहास में संभवतः लांस नायक अल्बर्ट एक का अकेले वह युद्ध नायक हैं जिन्हें दो राष्ट्रों ने दो अलग अलग सम्मानों से अलंकृत किया। एक और बात जो अल्बर्ट एक्का के बारे में और भी अनूठी है,
0: और वो ये कि वे भारत के आदिवासियों में परमवीर चक्र से सम्मानित किए जाने वाले शायद पहले व्यक्ति हैं।
1: जी हाँ, लांस नायक अल्बर्ट एक्का भारत और बांग्लादेश के सैन्य इतिहास में एक बड़े सितारे बन चुके हैं
0: जिनकी आभा कभी भी धूमिल नहीं होगी। इस समर नायक को हमारा सलाम। परमवीर चक्र विजेता लांस नायक अल्बर्ट एक्का, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम।
2: अकादमिक परामर्श राजेश कुमार निमेश, वाचन अजीत होरो और वंदना अरिमर्दन, तकनीकी निर्देशन बटिलैंग लिंगडो, ध्वनियांकन मयंक कुमार, निर्माण सहयोग सौम्या मलिक, आवरण सज्जा अमित कुमार और कुसुमलता, आलेख अजीत होरो, निर्माण परामर्श वंदना अरिमर्दन और विमलेश चौधरी, ध्वनि संपादन निर्देशन एवं निर्माण तनु गुप्ता,
0: तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत। लांस नायक अल्बर्ट एक्का, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम, और अब इसी के साथ हम अपने आज के उमंग प्रसारण को विराम देने की आज्ञा चाहेंगे। तो तब तक के लिए अजीत
3: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
4: उमंग उमंग उमंग उमंग।
5: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित शैक्षिक कार्यक्रम उमंग। हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज़ पर।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का इंदौर केंद्र। शाम के 6:30 बजे बजने वाले हैं। प्रस्तुत है सुगम संगीत। सुगम संगीत में आज के कलाकार हैं मोना शेवड़े। आइए सुनते हैं इनकी आवाज़ में कुछ गज़लें।

सुगम संगीत में अभी आपने माखनलाल पंडित माखनलाल चतुर्वेदी की ये देशभक्ति रचना सुनी। आइए अब सुनते हैं मोना शिवरी की आवाज़ में एक और भजन।

सुगम संगीत में अभी आप सुन रहे थे मोना शेवड़ी की आवाज़ में ये गज़ल, और इसी के साथ सुगम संगीत का यह कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज़ पर। शाम के 6:45 हो चुके हैं, समय हो चला है लोक संगीत का। लोक संगीत में आज के कलाकार हैं फतेह सिंह परमार और इनके साथ इनकी साथी। आइए इनसे सुनते हैं ये सद्गुरु भजन।

फतेह सिंह परमार से अभी हमने ये गणेश वंदना सुनी। लोक संगीत में लीजिए आप सुनिए इन्हीं की आवाज़ में एक और निमाड़ी लोक भजन।

फ़तेह सिंह परमार की आवाज़ में अभी आप ये निमाड़ी लोक भजन सुन रहे थे। इसी गीत के साथ लोक संगीत का कार्यक्रम यही संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज़ पर। शाम के 7 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में हिंदी में समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। भारत 14 और 15 मई को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में बताया कि ब्रिक्स के सदस्य और सहयोगी देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुख बैठक में भाग लेंगे। वे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात करेंगे। श्री जायसवाल ने कहा कि बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री जायसवाल ने कहा कि यात्रा के दौरान ऊर्जा, सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत होगी।
1: संयुक्त अरब अमीरात दौरे के दौरान भी ऊर्जा सुरक्षा पर बातचीत होगी। जिस प्रकार का हमारी उनसे साझेदारी चल रही है, कैसे इसको और व्यापक किया जाए ताकि हम अपने जो ऊर्जा सुरक्षा हमारी है उसको हम मजबूत कर सके। इसके अलावा जो 4

0: देश हैं। नॉर्डिक समिट होने वाला है, नॉर्वे की यात्रा है, स्वीडन की यात्रा है, इटली की यात्रा है, नेदरलैंड्स की यात्रा है। यहाँ पर भी ये देश में से के नवाचार के बहुत बड़ा केंद्र है। इनोवेशन इकोसिस्टम में भारत में बहुत काम हो रहा है और क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज में ये लोग और ग्रीन ट्रांजिशन में काफी आगे हैं। तो इन सभी मुद्दों पर हमारी बातचीत होगी और वो सब साझेदारी जो विकसित भारत की तरफ हमको ले आता है उसको कैसे मजबूत किया जाएगा।
1: ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को चीन के समर्थन से जुड़ी खबरों पर श्री जायसवाल ने कहा कि ये खबरें पहले से ज्ञात तथ्यों की पुष्टि करती हैं। उन्होंने कहा कि स्वयं को जिम्मेदार राष्ट्र बताने वाले देशों को इस बात पर विचार करना होगा कि आतंकवादी ढांचे की रक्षा के प्रयासों का समर्थन उनकी प्रतिष्ठा को प्रभावित करता है। भारत और नेपाल संबंधों पर श्री जायसवाल ने कहा कि दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंध हैं। दोनों देश साझेदारी को सुदृढ़ करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार साइबर सुरक्षित भारत के निर्माण की दिशा में अथक प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने में अवैध खातों की समस्या एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र ने आज रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के साथ एक समझौता किया। इसका उद्देश्य बैंकिंग और डिजिटल भुगतान प्रणाली में साइबर आधारित वित्तीय धोखाधड़ी से निपटने और अवैध खातों को कम करने में सहयोग को मजबूत करना है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए 3 मई को आयोजित नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द करने का फैसला किया है। सरकार ने पेपर लीक के आरोपों की पूरी जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंप दी है। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि एजेंसी विद्यार्थियों को नीट यूजी परीक्षा शुल्क वापस कर देगी।
2: हमने इस मैटर को सीबीआई को इंक्वायरी को दिया है और हम इस तरह के जितने लोग खुराफात किए हैं उनको जेल भेजेंगे ताकि बच्चों का भविष्य किसी भी प्रकार से एडवर्सली प्रभावित न हो। इसके साथ ही हमने यह भी कहा कि बच्चों के लिए हम दोबारा परीक्षा कराएंगे जो कि एकदम फेयर तरीके से होगी, जिसमें किसी भी तरह की अनियमितता नहीं होगी।
1: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से सरकार मातृभाषा, भारतीय ज्ञान परंपराओं और एआई संचालित शिक्षा पर आधारित अनुसंधान और नवाचार को निरंतर बढ़ावा दे रही है। उन्होंने कहा कि ग्लोबल साउथ के देश विश्वास, समाधान और नेतृत्व की अपेक्षाओं के साथ भारत की ओर देख रहे हैं। भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद के स्थापना दिवस पर उन्होंने कहा कि यह संगठन भारतीय परिप्रेक्ष्य में सामाजिक विज्ञान अनुसंधान को नई दिशा देने का महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने देशभर के न्यायालयों के आधुनिकीकरण का खाका तैयार करने के लिए न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने की घोषणा की है। इसके लिए सरकार से 40 से 50 हजार करोड़ रुपए का आवंटन सुनिश्चित करने को कहा गया है। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने अपने हाथ में ले ली है। राज्य पुलिस की सिफारिश के बाद ये जांच केंद्रीय एजेंसी को सौंपी गई है। आईपीएल क्रिकेट में अहमदाबाद में सनराइजर्स हैदराबाद ने गुजरात जायंट्स के खिलाफ मुकाबले में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज़ पर। शाम के 7:05 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। पहले जानकारी आज की सभा के शेष कार्यक्रमों की। अब से थोड़ी ही देर में शाम 7:20 पर खेती गृहस्थी कार्यक्रम में सुनेगा पर्यावरण की सुरक्षा कैसे करें, इस विषय पर जानकारी देंगे रविंद्र भारती। रात 8 भोपाल से रिले करेंगे सुर्खियों में दिल ने फिर याद किया, यह कार्यक्रम सुनेगा रात 8:15। रात 9:15 सुनेंगे चित्रगीत कार्यक्रम में सदाबहार पुरानी फिल्मी गीत। उर्दू कार्यक्रम कहकशा आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से रिले करेंगे रात 9:30। रात 10 पत्रों पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मनभावन होगा। शास्त्रीय संगीत में रात 10:30 रागिनी त्रिवेदी का सितार पर बजाया राग बागेश्री सुनेंगे। ये तो थी जानकारी हमारे केंद्र से आज के शेष कार्यक्रमों की।

अब जानकारी कल की सभा के मुख्य कार्यक्रमों पर। कल हमारी पहली सभा आरंभ होगी भक्ति संगीत के कार्यक्रम वंदना से सुबह 6:05 पर। चिंतन करेंगे सुबह 6:30 पर। खेती की बातें होंगी सुबह 6:35 पर। विषय होगा गर्मी में गहरी जुताई में उपयोगी कृषि यंत्र। श्री रामचरितमानस गान का प्रसारण समय होगा कल सुबह 6:40। श्रोताओं के पत्रों के जवाब देंगे कार्यक्रम अधिकारी। आपका पत्र कार्यक्रम में समय होगा कल सुबह 7:20। फिल्म संगीत सुनेगा कल सुबह 8:30 पर। शाम 5:45 पर रात 9:15 कार्यक्रम चित्रगीत में। लोक संगीत में सुनेगा सुबह 9:00 आनंदी भावेल से लोक संगीत और शाम 6:45 पर सरला मिश्रा और संगीता पंडित के गाए मालवी लोकगीत। सुगम संगीत में सुबह 9:15 संध्या दवे के गाए कुछ नगमे होंगे और शाम 6:30 राजीव शर्मा के गाए कुछ नगमे आप सुगम संगीत में सुन सकेंगे। शास्त्रीय संगीत होगा सुबह 9:30 जिसमें आप सुनेंगे विदुषी किशोरी अमोनकर का गाया राग ललित। सुबह 10:00 जिले की चिट्ठी आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से रिले करेंगे। फोन इन कार्यक्रम MH हॉटलाइन आप सुनेंगे सुबह 10:05 पर और हमें आपकी फोन कॉल का इंतजार रहेगा। कल सुबह 11:00 भोपाल से रिले करेंगे कार्यक्रम फोन करें और गीत सुने। दोपहर 12:00 से आकाशवाणी मध्य प्रदेश के कार्यक्रम रिले करेंगे। दोपहर 12:00 सुने फिल्म संगीत। 12:30 संग्रहालय से। दोपहर 1:00 महिला कार्यक्रम। 1:30 लोक संगीत। 1:45 पर सुगम संगीत और दोपहर 2:00 फिल्म संगीत। 2:30 पर चित्रपट संगीत होगा। हमारी शाम की सभा आरंभ होगी कार्यक्रम युवाणी से शाम 5:00। शाम 6:00 प्रायोजित शैक्षिक कार्यक्रम NCERT होगा। शाम 7:20 पर ग्राम लक्ष्मी कार्यक्रम होगा जिसमें आप सुनेंगे कविता पाठ रमा टेमले से। रात 8:00 भोपाल से होगा सुर्खियों में दिल ने फिर याद किया यह कार्यक्रम आप सुन सकेंगे रात 8:15। रात 9:30 चर्चा का विषय है आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे 2.5 अक्षर प्रेम न्याय और ज्ञान के ये रूपक आप सुन सकेंगे रात 10:00। रात 10:30 शास्त्रीय संगीत में उस्ताद राशिद खां का गाया राग सरस्वती होगा। ये तो थी जानकारी हमारे केंद्र से आज के और कल के प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की। यह आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज़ पर। शाम के 7:10 होने को है। कुछ ही पलों में समाचार होंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: से 7:10 होने को है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी का साकार हुआ सपना, जन जन सब गाएं मिल मधुर

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं राणा शाहिद। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 मई से 5 देशों की यात्रा पर संयुक्त अरब अमीरात से करेंगे शुरुआत। ऊर्जा सहयोग और व्यापार पर होगी चर्चा। लाडली बहना योजना की 36वीं किस्त कल

0: की जारी 1.25 करोड़ महिलाओं के खातों में ट्रांसफर होंगे 1,835 करोड़ से ज्यादा रुपए। भोपाल में इंडो फ्रेंच इन्वेस्टमेंट कॉन्क्लेव ईवी और रिन्यूएबल एनर्जी समेत कई क्षेत्रों में निवेश की संभावनाओं पर हुई चर्चा। और कुछ ही देर में अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आमने सामने होंगे सनराइजर्स हैदराबाद और गुजरात टाइटंस। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 से 20 मई के बीच संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की आधिकारिक यात्रा पर जाएंगे। यात्रा की शुरुआत संयुक्त अरब अमीरात से होगी। इस यात्रा के बारे में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया।
1: पहला पड़ाव प्रधानमंत्री का संयुक्त अरब अमीरात का होगा और इस दौरे के दौरान ऊर्जा सुरक्षा पर बातचीत होगी, जिस प्रकार का हमारी उनसे साझेदारी चल रही है। इसके अलावा जो चार अन्य देश हैं, नॉर्डिक समिट होने वाला है, नॉर्वे की यात्रा है, स्वीडन की यात्रा है, इटली की यात्रा है, नेदरलैंड्स की यात्रा है, यहां पर भी ये देश में से नवाचार के बहुत बड़ा केंद्र है। इनोवेशन इकोसिस्टम में भारत में बहुत काम हो रहा है और क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज में ये लोग और ग्रीन ट्रांजिशन में काफी आगे हैं। तो इन सभी मुद्दे पर हमारी बातचीत होगी और वो सब साझेदारी जो विकसित भारत की तरफ हमको ले आता है उसे कैसे मजबूत किया जाएगा, ये प्रधानमंत्री के दौरे का एक मुख्य आधार है।
0: भारत 14 और 15 मई को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा, जिसकी अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर करेंगे। बैठक में शामिल विदेश मंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे और वैश्विक व क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा होगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव कल नरसिंहपुर जिले के गोटेगांव से लाडली बहना योजना की 36वीं किस्त जारी करेंगे। प्रदेश की 1,25,00,000 से ज्यादा महिलाओं के बैंक खातों में सिंगल क्लिक से 1,835 करोड़ रुपए से अधिक की राशि ट्रांसफर की जाएगी। मध्य प्रदेश और फ्रांस के बीच निवेश और कारोबारी संबंध मजबूत करने के मकसद से आज भोपाल में इंडो फ्रेंच इन्वेस्टमेंट कॉन्क्लेव आयोजित किया गया। कार्यक्रम में सूक्ष्म एवं लघु उद्यम मंत्री चैतन्य कश्यप और भारत में फ्रांस के राजदूत थियरी माथो समेत फ्रांस की कई बड़ी कंपनियों के प्रतिनिधि शामिल हुए। 3 मई को हुई नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक होने के कारण रद्द कर दी गई है और अब इस मामले की जांच सीबीआई करेगी। करीब 23,00,000 छात्रों को दोबारा परीक्षा देनी होगी। हालांकि इन छात्रों को न नया आवेदन करना होगा और न ही दोबारा फीस भरनी होगी, बल्कि पहले दी गई फीस भी वापस की जाएगी। नई दिल्ली में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने बताया,
2: इसको जांच करने की जिम्मेदारी कि 30 क्वेश्चन थे कि 45 थे कि 50 थे कि 60 थे, यह काम सीबीआई करेगी, पूरी फोरेंसिक्स लेके करेगी और उनकी रिपोर्ट के हिसाब से कार्रवाई होगी। जो शिकायत आई थी उसमें अगर एक इंच की भी, एक आयोटा की भी सच्चाई है तो हम उसके ऊपर लेके कार्रवाई किए हैं। अब किस हद तक है, कितना हद तक है, उसको करने में समय लगेगा। हम जितना डिले करेंगे उतना यह समस्या बढ़ेगी, उतना अगर हमको री एग्जाम करना है तो वो निर्णय आज हम ले रहे हैं तो हम जल्दी कर पाएंगे।
0: अब समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
3: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। भाजपा के वरिष्ठ नेता हिमंता बिस्व शर्मा ने आज लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। गुवाहाटी के खानापारा मैदान में हुए इस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और कई केंद्रीय मंत्री भी मौजूद रहे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में प्रदेश के आयुष विभाग ने योग से आरोग्यता की ओर थीम पर 21 जून तक विशेष अभियान चलाने की पहल की है। हर घर योग के इस अभियान का मकसद हर घर तक योग को पहुंचाना और लोगों को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करना है। साइबर अपराधों और बैंकिंग धोखाधड़ी पर लगाम लगाने के लिए गृह मंत्रालय के अधीन भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र और रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस समझौते के तहत संदिग्ध लोगों का डेटा AI सिस्टम को दिया जाएगा जो उन बैंक खातों को पकड़ेगा जिनका इस्तेमाल साइबर ठगी की रकम इधर उधर करने के लिए करते हैं। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ में धार भोजशाला प्रकरण की अंतिम सुनवाई आज पूरी हो गई। करीब दो घंटे की बहस के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। मुस्लिम पक्ष ने एएसआई की 98 दिनों की सर्वे रिपोर्ट पर सवाल उठाते हुए कहा कि वैज्ञानिक रूप से अभी तक यह सिद्ध नहीं हुआ है कि यह स्थल मंदिर है या मस्जिद। वहीं हिंदू पक्ष ने सर्वे और ऐतिहासिक साक्ष्यों के आधार पर भोजशाला को वाग्देवी मंदिर बताते हुए पूर्ण अधिकार की मांग की है। इस साल प्रदेश में गेहूं का उत्पादन 365 लाख मैट्रिक टन तक पहुंच गया है, जो देश के कुल उत्पादन का 18% है। भारत से होने वाले कुल गेहूं निर्यात में प्रदेश की हिस्सेदारी 35 से 40% है और शरबती व ड्यूरम गेहूं की मांग अमेरिका, जर्मनी, इटली और दुबई जैसे देशों में बनी हुई है। प्रदेश में इस बार गेहूं खरीदी का लक्ष्य 100 लाख मैट्रिक टन रखा गया है। प्रदेश में सरकारी भवनों की छतों पर सोलर रूफटॉप संयंत्र लगाने के लिए शासकीय संस्थाओं और रेस्को विकासक इकाइयों के बीच विद्युत क्रय अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए। रेस्को पद्धति के तहत सरकारी विभागों को बिना किसी निवेश के 3.78 रुपये प्रति यूनिट की दर से बिजली मिलेगी और पहले दिन से बचत शुरू हो जाएगी। प्रदेश के सभी जिलों में इसी तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की जबलपुर खंडपीठ के न्यायमूर्ति डीडी बंसल आज अपने सरकारी आवास से 3 किलोमीटर साइकिल चलाकर अदालत पहुंचे। उन्होंने कहा कि जहां तक संभव हो सभी को साइकिल चलाकर पेट्रोल डीजल की बचत करनी चाहिए। देवास जिले में चल रहे जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत मोरूखेड़ी ग्राम पंचायत में जल संरक्षण के लिए बड़े पैमाने पर काम किया गया है। पहाड़ी पर 1 हेक्टेयर क्षेत्र में 350 कंटूर ट्रेंच बनाए गए हैं। प्रशासन का दावा है कि इससे हर साल करीब 13 लाख लीटर बारिश का पानी इकट्ठा किया जा सकेगा। एनसीईआरटी और सीबीएसई ने मिलकर कक्षा 3 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए कम्प्यूटेशनल थिंकिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित नया पाठ्यक्रम शुरू किया है। गर्मी की छुट्टियों में शिक्षकों को इसका प्रशिक्षण दिया जाएगा और स्कूल खुलने के बाद पढ़ाई शुरू हो जाएगी। इसके अलावा कक्षा 9 से 12 तक के लिए भी एआई की पाठ्यपुस्तकें तैयार की जा रही हैं। आईपीएल में अब से कुछ देर बाद अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में सनराइजर्स हैदराबाद और गुजरात टाइटंस के बीच मैच खेला जाएगा। दोनों टीमों के 11-11 मैच में 14-14 पॉइंट्स हैं। आज जीतने वाली टीम सीधे पॉइंट्स टेबल के टॉप पर पहुंच जाएगी। अब कुछ समाचार संक्षेप में। गुना, झाबुआ और बैतूल में जिला कलेक्ट्रेट में जनसुनवाई का आयोजन हुआ। कलेक्टर ने अधिकारियों को आमजन की समस्याओं से के त्वरित समाधान के निर्देश दिए। आगरमालवा में जनगणना 2027 के तहत मकान सूचीकरण कार्य में नलखेड़ा ग्रामीण के सर्किल 20 ने तय समय से पहले 100% काम पूरा किया। खंडवा में प्रभारी मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी ने अधिकारियों को ईंधन बचाने के लिए काफिले में केवल जरूरी वाहन रखने के निर्देश दिए। देवास में मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत हरिद्वार ऋषिकेश तीर्थ यात्रा 20 जून को रवाना होगी। जिले को 196 सीटों का कोटा मिला है। श्योपुर में कूनो नेशनल पार्क में जन्मी मादा चीता के चारों शावक मृत पाए गए। सुबह मॉनिटरिंग टीम को डेन साइट के पास शव मिले। शहडोल में मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के तहत शिक्षित बेरोजगार युवाओं से ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर, माफ कीजिए, सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज पर शाम के 7:20 हुए हैं। प्रस्तुत है खेती गृहस्थी कार्यक्रम।

खेती गृहस्थी कार्यक्रम सुनने वाला सभी किसान भाई बहन नखा आपकी बहन तुलसा की राम राम। भाई बहन नोनी देखो अभी हमारा खेत में जायद की फसल लगेल छे। जी भाई नका पास पानी की व्यवस्था छे, पर जेका पास पानी की व्यवस्था नहीं है उनका खेत खाली पड़ा होएगा न उ आव खरीफ की तैयारी करी रहेगा। पर भाई हो खरीफ की तैयारी से पहला हम अपना खेत की मट्टी की जांच जरूर कराड़ी लेवा, जेका से हमका पतो चली जाएगा कि हमारा खेत में किना पोषक तत्व न की कमी छे। न जांच का बाद हमका एक कार्ड मिला जेको नाव छे मृदा स्वास्थ्य कार्ड। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है जेका 19 फरवरी 2015 सूरतगढ़ राजस्थान से शुरू करी थी, जेको उद्देश्य देश का सभी किसान भाई नक हर 2 साल में मिट्टी को रिपोर्ट कार्ड देणु, जेका में 12 महत्वपूर्ण पोषक तत्व न का मापदंड का आधार पर मिट्टी की उर्वरता की जाँच करनु छे। जेका सी हम वैज्ञानिक तरीका नसी उर्वरक न को उपयोग करी न अपनी खेती की उत्पादकता बढ़ाई सकें। योजना को मुख्य बिंदु छे स्वस्थ धरा खेत हरा, यानी कदी हमारी जमीन स्वस्थ रहेगा तो हमारो खेत भी हरो भरो रहेगा। इन्हीं जांच में हम नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास सल्फर जिंक बोरान लोहा मैग्नीज तांबू पीएच विद्युत चालकता न ऑर्गेनिक कार्बन की जांच करें। भाई उन मट्टी की जांच का आधार पर सही पोषक तत्व का उपयोग सी खेती की लागत में कमी आवज न पैदावार बढ़े। इन्हीं प्रक्रिया में मट्टी का नमूना प्रयोगशाला में परीक्षण का लेना भेजा न इन्हीं जांच का परिणाम पोर्टल पर सॉइल हेल्थ कार्ड पोर्टल पर उपलब्ध हुई जाए। जुलाई 2025 तक करीब 25 करोड़ से ज़्यादा कार्ड वितरित करा दिया है। भाई उन मृदा स्वास्थ्य कार्ड का कई लाभ छे, जसो संतुलित उर्वरक को उपयोग करांगा जिका सी अनावश्यक रासायनिक खाद न का उपयोग में कमी आवेगा। फसल की जरूरत का हिसाब से उर्वरक डालने से खेती का खर्चा यानी लागत में भी कमी आवेगा। मट्टी की अम्लीयता या क्षारीयता को पतो चली जाएगा जिका सी हमारी मट्टी सुधार हम करी सका न सही पोषण मिलने से फसल की पैदावार में भी बढ़ोतरी होएगा। किसान भाइयों ने अपनो मृदा स्वास्थ्य कार्ड सॉइल हेल्थ कार्ड पोर्टल पर अपना गाँव या खेत की जानकारी डाली न हम ऑनलाइन भी देखी सकाएं। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना एक तरफ तो किसान भाई न कल्याण वरदान साबित हुई रही तो दूसरी तरफ हमारा ग्रामीण भाई न का रोजगार भी दी रही। मृदा स्वास्थ्य कार्ड में किसान भाई न का उर्वरक न की फसलवार सिफारिश दे साथ ही किसान भाई न का ये भी बतावज कि कृषि भूमि की उर्वरा क्षमता का किस प्रकार से वो बढ़ी सके, जेका से किसान भाई अपनी मट्टी की सेहत जानी सकेगा न उर्वरक को चयन करना में भी उनका मदद मिलेगा। मट्टी की सेहत न खाद का बारा में पूरी जानकारी नहीं होने का चलते किसान भाई अपना खेत में नाइट्रोजन को ज़्यादा उपयोग करे जेका सी कृषि उत्पाद की गुणवत्ता पर खराब असर पड़े, जेका सी भूमिगत जल में नाइट्रेट की मात्रा भी बढ़ी जाए साथ ही पर्यावरण में कई समस्या न भी उत्पन्न हुई जाए। पर मृदा स्वास्थ्य कार्ड का जरिया हम इन्हीं समस्या न से बची सकान। तो भाई बहन होनी कदी हम इन सब परेशानी नसी बचनू चाहता है तो अपना खेत की मट्टी की जांच जरूर कराना न कम लागत में ज़्यादा उत्पादन लेवा। न भाई बहन नोनी देखो अब गर्मी पड़ी रही न गर्मी में तो सो घर से बाहर निकलने को जरा भी मन नहीं होता, पर कदी हमको जरूरी काम हो तो घर से बाहर तो निकलनू पड़े। तो अपना जो काम छे वो अपन घर से बाहर भी जावा पर थोड़ी सावधानी भी रखा कि अपन पानी पीने जावा साथ में एक छोटो सो कांदो रखी लेवा न सिर खभी अपन ढाकी लेवा न। चलो अपना कार्यक्रम में अब अपन एक सुना लोकगीत उषा रायकवार ने उनकी मंडली को गाएं।

0: भाई नोनी, अभी हम ना उसारा अखबार को गए ली लोकगीत सुनियो ना। भाई देखो, हमारी खेती किसानी में अब नई नई तकनीक आई गई ना, आधुनिक यंत्र आई गए जेका द्वारा खेती करनो और भी आसान भी गो। तो डिजिटल तकनीक काई हो एका बारा में ज़्यादा जानकारी कर लेना अपन सुना जी वार्ता। वार्ता को विषय छे डिजिटल तकनीकी द्वारा किसानों को तकनीकी का प्रचार प्रसार न। इना विषय पर हमका जानकारी दे रहे डॉक्टर सविता कोले, कृषि वैज्ञानिक, राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान इंदौर से। तो सुना जा पड़ी वार्ता।
1: प्रिय किसान भाइयों और बहनों, मैं डॉक्टर सविता कोले, प्रधान वैज्ञानिक, राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान की ओर से आज के विशेष कृषि कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का विषय है डिजिटल द्वारा किसानों को तकनीकी का प्रचार प्रसार। आज का युग डिजिटल युग है। जिस प्रकार मोबाइल फोन और इंटरनेट ने शहर की जीवन शैली बदल दी है, उसी प्रकार अब गाँवों और किसानों के जीवन में भी डिजिटल तकनीकी तेजी से बदलाव ला रही है। खेती अब केवल परंपरागत अनुभव पर आधारित नहीं रहे, बल्कि वैज्ञानिक सलाह, मौसम की जानकारी, बीज चयन, रोग नियंत्रण और बाजार भाव जैसी जानकारियां अब किसानों के मोबाइल तक पहुंच रही हैं। भारत सरकार तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR द्वारा किसानों को तकनीकी रूप से सशक्त बनाने के लिए अनेक डिजिटल पहले की जा रही है। विशेष रूप से राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान ने सोयाबीन किसानों के लिए कई आधुनिक डिजिटल माध्यम विकसित किए हैं, जिनसे किसानों को समय पर वैज्ञानिक सलाह प्राप्त हो रही है। मित्रों, आज खेती में केवल अधिक उत्पादन ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि संतुलित पोषण प्रबंधन भी अत्यंत आवश्यक हो गया है। यदि किसान सही मात्रा में उर्वरक, सूक्ष्म पोषण तत्व, बीज, जैव उर्वरक, खरपतवार नाशी और सिंचाई का उपयोग करें, तभी खेती लाभकारी बन सकती है। कई बार किसान जानकारी के अभाव में अधिक या कम मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग कर देते हैं, जिससे लागत बढ़ती है और उत्पादन प्रभावित होता है। इन्हीं समस्याओं के समाधान के लिए राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान डिजिटल तकनीक के माध्यम से किसानों को वैज्ञानिक पोषण प्रबंधन की जानकारी प्रदान कर रहा है। संस्थान द्वारा किसानों को मिट्टी परीक्षण आधारित उर्वरक प्रबंधन, संतुलित पोषक तत्व उपयोग, जैव उर्वरकों के प्रयोग, जल प्रबंधन तथा अन्य कृषि आदान के उचित उपयोग की डिजिटल सलाह दी जाती है। भाइयों और बहनों, राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित सोयाबीन ज्ञान ऐप इस दिशा में एक क्रांतिकारी पहल है। यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित मोबाइल ऐप किसानों को पोषक तत्व प्रबंधन और अन्य कृषि आदानों के सही उपयोग की विस्तृत जानकारी प्रदान करता है। इस ऐप में किसानों को यह बताया जाता है कि किस प्रकार मिट्टी की आवश्यकता के अनुसार उर्वरकों का संतुलित उपयोग किया जाए, ताकि उत्पादन बढ़े और मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी बनी रहे। इस ऐप के माध्यम से किसान नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश तथा सूक्ष्म पोषक तत्वों की सही मात्रा और सही समय पर उपयोग की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही बीज उपचार, जैव उर्वरकों का प्रयोग, खरपतवार प्रबंधन तथा जल संरक्षण संबंधी वैज्ञानिक सलाह भी उपलब्ध कराई जाती है। मित्रों, सोयाबीन ज्ञान ऐप की सबसे बड़ी विशेषता इसकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सेवाएं हैं। इस ऐप में AI आधारित रोग एवं कीट पहचान प्रणाली उपलब्ध है, जिसके माध्यम से किसान अपने खेत में दिखाई देने वाली समस्या की फोटो अपलोड कर तुरंत समाधान प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही ऐप में AI आधारित मौसम अनुसार रोग एवं कीट पूर्वानुमान प्रणाली भी उपलब्ध है। यह सुविधा किसानों को मौसम के अनुसार संभावित रोग और कीट प्रकोप की अग्रिम जानकारी देती है, जिससे किसान समय रहते उचित पोषण प्रबंधन और कीट नियंत्रण उपाय अपना सकते हैं। इतना ही नहीं, इस ऐप AI आधारित चैटबॉट भी उपलब्ध है। किसानों को उनकी समस्याओं के समाधान हेतु तुरंत व्यक्तिगत सलाह प्रदान करता है। किसान अपनी भाषा में प्रश्न पूछ सकते हैं और तुरंत वैज्ञानिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। भाइयों और बहनों, आज की खेती में लागत लगातार बढ़ रही है। ऐसे में इनपुट मैनेजमेंट यानी आदान प्रबंधन का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। यदि किसान उर्वरकों, कीटनाशकों और सिंचाई संसाधनों का वैज्ञानिक एवं संतुलित उपयोग करें, तो लागत कम की जा सकती और पर्यावरण संरक्षण भी संभव है। डिजिटल प्लेटफॉर्म किसानों को यही जानकारी सरल भाषा में उपलब्ध करा रहे हैं। सोयाबीन ज्ञान ऐप में किसान हितैषी सेवाएं भी जोड़ी गई हैं, जैसे साप्ताहिक कृषि सलाह, अच्छी कृषि पद्धतियां, मंडी भाव की जानकारी, मौसम आधारित सलाह तथा राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान के YouTube चैनल तक सीधी पहुंच। किसान वीडियो देखकर खेती की नई तकनीकों को आसानी से समझ सकते हैं। यह ऐप किसानों और वैज्ञानिकों के बीच एक मजबूत डिजिटल सेतु का कार्य कर रहा है। आज हजारों किसान इस ऐप के माध्यम से आधुनिक तकनीकों को अपनाकर अपनी उपज और आय में वृद्धि कर रहे हैं। सोयाबीन ज्ञान ऐप गूगल प्ले स्टोर पर आसानी से उपलब्ध है और सोयाबीन किसानों के लिए ज्ञान का एक महत्वपूर्ण डिजिटल साथी बन चुका है। मित्रों, डिजिटल तकनीक का सबसे बड़ा लाभ यह है कि जानकारी बहुत तेजी से किसानों तक पहुंचती है। पहले किसी नई तकनीक को गांव तक पहुंचने में कई महीनों लग जाते थे, लेकिन अब मोबाइल संदेश के माध्यम से सब कुछ मिनटों में लाखों किसानों तक जानकारी पहुँच रह जाती है। प्रिय किसान भाई और बहन, समय बदल रहा है और खेती भी बदल रही है। अब आधुनिक किसान वही है जो खेत के साथ साथ मोबाइल और डिजिटल तकनीक का भी सही उपयोग करे। डिजिटल कृषि केवल सुविधा नहीं बल्कि भविष्य की आवश्यकता बन चुकी है। राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान संस्था किसानों तक वैज्ञानिक जानकारी पहुंचाकर लैब टू लैंड की अवधारणा को सफल बना रही है। सोयाबीन ज्ञान ऐप जैसे डिजिटल माध्यम किसानों को संतुलित पोषण प्रबंधन, वैज्ञानिक कृषि निवेश

दे रही थी डॉक्टर सविता कोले, कृषि वैज्ञानिक राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान इंदौर से। ने कितने अच्छी बात ने बताई कि किस प्रकार हम तकनीक को उपयोग करी ना अपनी खेत में अपनी खेती की पैदावार बढ़े सका न कम लागत में ज्यादा से ज्यादा उत्पादन अपन प्राप्त करी सका न। आवश्यक भाई बहनों ने एक लोकगीत देखा गया अपना भाई राम अवतार अखंड उनका साथी नाना।

भाई नोनी, अभी हमने राम अवतार अखंड न उनका साथी न को गाए लोकगीत सुनियो। न भाई मैंने देखो, पर्यावरण संरक्षण आज की आवश्यकता छे, क्योंकि प्रदूषण न जलवायु परिवर्तन का कारण हमारो अस्तित्व खतरा में आई गई। पर्यावरण की रक्षा करने से हमका स्वच्छ हवा, साफ पानी न स्वस्थ भोजन मिलेगा, न ई जलवायु परिवर्तन का प्रभाव का कम करेगा, जैव विविधता का बने न रखेगा, न प्राकृतिक आपदा न की संभावना का कम।

0: करेगा। एक कारण हम सबकी जिम्मेदारी छे कि हम अपनी दैनिक गतिविधि न छोटा छोटा बदलाव लाई न इन्हीं धरती का सुरक्षित न सुंदर बनावा न पर्यावरण का बारा में आरु ज्यादा जानकारी कर लेना सुना जा पड़े इन्हीं वार्ता वार्ता को विषय छे पर्यावरण की सुरक्षा कैसे करे। वार्ताकार छे रविन्द्र भारती, तो सुना जी वार्ता।
1: पर्यावरण प्रदूषण एक गंभीर समस्या। किसान भाइयों एवं बहनों नमस्कार, आज मैं आप लोगों के बीच पर्यावरण प्रदूषण एक गंभीर समस्या है पर चर्चा करने जा रहा हूं। पर्यावरण प्रदूषण आज के समय की एक गंभीर समस्या बन चुकी है। यह समस्या मानव जीवन के साथ साथ संपूर्ण जीव जंतुओं और प्रकृति के लिए भी खतरा उत्पन्न कर रही है। विज्ञान के इस युग में मानव को भी जहाँ कुछ वरदान मिले हैं वहीं कुछ अभिशाप भी मिले हैं। प्रदूषण एक ऐसा अभिशाप है कि जो विज्ञान की कोख में जन्मा है और उसे सहने के लिए अधिकांश जनता मजबूर है। पर्यावरण पृथ्वी के चारों ओर के वातावरण को कहा जाता है, जिससे हवा, पानी, भूमि एवं प्राकृतिक सौंदर्य विद्यमान होता है। प्रकृति में पेड़ पौधे, नदी, नाले, पहाड़, समुद्र, पशु पक्षी आदि सभी आते हैं, जबकि पर्यावरण इन सबों से उत्पन्न वातावरण को कहते हैं। यूं तो प्रकृति एवं पर्यावरण मनुष्य के लिए बहुत आवश्यक है, लेकिन विकास के नाम पर पर्यावरण से काफ़ी छेड़छाड़ किया जाता है। प्रकृति का इतना शोषण और दोहन करना शुरू किया गया है कि इससे प्राकृतिक स्वरूप पर्यावरण प्रदूषण जैसा एक गंभीर समस्या आ खड़ी हो गई है। खनिज के नाम पर पहाड़ों एवं जंगलों को काटा जा रहा है। हवा एवं पानी को बुरी तरह प्रदूषित किया जा रहा है। फलतः हमें तरह तरह के प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ रहा है। कहीं बाढ़ तो कहीं सुखाड़ हो रहा है, कहीं भूकंप तो कहीं ज्वालामुखी का सामना करना पड़ रहा है। आज हम प्रदूषण की दुनिया में जी रहे हैं। प्रदूषण के कारण हमारा जीवन एक भयावह चक्रव्यूह में फंस गया है। देश की राजधानी दिल्ली इसका बड़ा उदाहरण है। प्रदूषण की इस तरह विकट समस्या के मूल में औद्योगिक क्रांति और बढ़ती हुई जनसंख्या है। प्रदूषण के प्रमुख इस प्रकार हैं: हवा में हानिकारक गैस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, धुआं, धूल कण और विषाक्त पदार्थ मिलाना, जिससे सांस संबंधी बीमारियां होती है और अलमीय वर्षा होती है। ये सभी वायु प्रदूषण के अंतर्गत आता है। वायु प्रदूषण के प्रमुख कारण बढ़ती जनसंख्या, जंगलों की कटाई एवं जंगलों में आग लगने से, पेड़ पौधों को जलाने से, फसलों को जलाने से, बढ़ती शहरीकरण से, औद्योगिकरण से, बढ़ते मोटर वाहनों की संख्या से, अधिक ईंधन जलाने से इत्यादि प्रमुख है। वाहनों से निकलने वाले धुओं में कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसे खतरनाक गैस निकलती है। कारखानों और बिजली संयंत्रों से सल्फर डाइऑक्साइड और खतरनाक कण उत्पन्न होते हैं। वनों की कटाई से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने वाले पेड़ों की संख्या कम हो रही है। आज पंजाब, हरियाणा ऐसे राज्यों में पलारी जलाने से वायु प्रदूषण की समस्या खड़ी हो रही है। कहा जाता है कि दिल्ली की आबोहवा खराब होने का एक प्रमुख कारण पंजाब एवं हरियाणा के किसानों द्वारा पलारी जलाने का ही है। आज जल प्रदूषण की समस्या भी बहुत बड़ी समस्या है। कल कारखानों और दूसरे उद्योग धंधों से भी निकलने वाला गंदा पानी एवं कचरा हमारे नदियों एवं जलाशयों को प्रदूषित कर रहा है। यही कारण है कि आज गंगा, यमुना जैसी विशाल नदियाँ दिनों दिन और प्रदूषित होती जा रही है। ये नदियाँ अपनी पवित्रता व शुद्धता के बनाए रखने में असमर्थ हो रही है। जल प्रदूषण को बढ़ाने में रासायनिक खादों का बढ़ते प्रयोग का भी रोल काफ़ी है। उदाहरण के लिए दिल्ली के पास यमुना एवं कानपुर के पास गंगा विशेष रूप से दूषित हो रहा है। ऐसा देखा गया है कि हमारा ड्रेनेज सिस्टम खराब होने से या पानी सप्लाई सिस्टम का पाइप फटने से जल प्रदूषण का काफ़ी गुंजाइश है। हाल में भागीरथपुरा इंदौर की घटना आपके सामने है। भूमि प्रदूषण का मुख्य कारण बांध और रासायनिक उपकरणों का बेहताशा प्रयोग है। पेड़ कटाई से मिट्टी का भी कटाव एवं बहाव बढ़ जाता है, जिससे भूमि प्रदूषण बढ़ता है। इस प्रकार हम जान चुके हैं कि बांध एवं पेड़ कटाई से भूमि की उर्वरा शक्ति नष्ट होती है। रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग एवं कीटनाशक दवाओं के अधिक प्रयोग से तो मानो कटे पर नमक छिड़कना है। सच्चाई यह है कि वायु प्रदूषण आज के समय में सबसे बड़ी समस्या है। भूमि प्रदूषण और जल प्रदूषण इससे और बढ़ावा देती है। कल कारखाने एवं वाहनों से निकलने वाला धुआं इसे विषैला बना रहा है। एक अनुसंधान के अनुसार कार्बन डाइऑक्साइड लगभग 5 अरब टन प्रति वर्ष की दर से बढ़ रही है। इसके दुष्प्रभावों से ओजोन की परत पतली होती जा रही है, जिसके कारण पराबैंगनी किरणें सीधे धरती पर आती है, जो अंततः कैंसर आदि भयानक बीमारियों का कारण बनती है। अब हम आपको प्रदूषण रोकने के उपाय बता रहे हैं। आज प्रदूषण मुक्त वातावरण की कल्पना बेकार है, लेकिन इसे कम अवश्य किया जा सकता है। प्रदूषण कम करने के मुख्य उपाय इस प्रकार हैं। पर्यावरण की बिगड़ी स्थिति को देखते हुए लोगों को जागरूक करना अति आवश्यक है। इसके लिए भारत सरकार का स्वच्छता अभियान प्रशंसनीय कदम है। आशा है कि उक्त अभियान के अच्छे परिणाम आएंगे। यह सही है कि विकास के लिए औद्योगिक विकास जरूरी है, लेकिन कल कारखानों में दूषित नियंत्रण यंत्र तथा आधुनिक टेक्नोलॉजी का उपयोग जरूरी है। फैक्ट्रियों में इको फ्रेंडली उपकरण लगाना जरूरी है। कल कारखानों से निकलने वाला कचड़ों का प्रबंधन भी जरूरी है। प्रदूषण कम करने के लिए वाहन उद्योग में इलेक्ट्रिक वाहन ईवी, हाइड्रोजन फ्यूल सेल, हाइब्रिड इंजन और BS4 या Euro 6 जैसे उन्नत इंजन अपनाई जा रही है। आजकल नैनो टेक्नोलॉजी वाली इंजन का भी आ गया है। इन नई तकनीक का उद्देश्य सड़कों पर प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाना और एक स्वच्छ तथा अधिक कुशल परिवहन प्रणाली का निर्माण करना है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए 10 साल से पुराने वाहनों को चलाने पर रोक लगा देनी चाहिए। दिल्ली जैसी शहरों में ऑड इवन फॉर्मूले पर भी विचार किया जा रहा है। पर्यावरण की ध्यान में रखते हुए गाड़ियों में ईंधन की गुणवत्ता में भी सुधार की आवश्यकता है। आज बाजार में BS3 स्टेज का ईंधन मिल रहा है, अब BS4 के लिए प्रयास करना चाहिए। ऑटो एवं लोक परिवहन में CNG का इस्तेमाल एवं इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल पर जोर देना चाहिए। पर्यावरण से सुरक्षित रखने के लिए सर्वप्रथम बचे हुए वनों एवं वृक्षों के विनाश को रोकना होगा, साथ ही साथ वृक्षारोपण को बढ़ावा देना होगा, वन महोत्सव पे बल देना होगा। वृक्षों को हम प्रकृति का फेफड़ा मान सकते हैं। पेड़ पौधे वातावरण के जहरीले गैस पीकर हमें ऑक्सीजन यानी अमृत प्रदान करती है। इसलिए मत्स्य पुराण में एक वृक्ष को 10 पुत्रों के बराबर माना गया है। आज की आवश्यकता है कि कचरा प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया जाए। कचरा हमारे स्वास्थ्य को काफी हानि पहुंचाता है, इसलिए गांव से लेकर शहरों तक जगह जगह पे कूड़ादान की व्यवस्था की जानी चाहिए और उससे जैविक खाद का निर्माण किया जाना चाहिए। आज स्वच्छता अभियान के तहत शहर से लगायत गांव तक गाड़ियों से कचड़े का संग्रहण किया जा रहा है और उससे कंपोस्ट खाद बनाए जा रहे हैं। यह भारत सरकार एवं राज्य सरकार की एक बहुत अच्छी पहल है। प्रदूषण हमारे लिए प्राण घातक है। अगर हम इस प्रकार ध्यान नहीं दिया गया तो स्थिति विस्फोटक हो जाएगा। दिल्ली जैसा सभी शहर गैस चैम्बर बन जाएगा। इसलिए आज आवश्यकता आ पड़ी है कि पर्यावरण के लिए जागरूकता अभियान चलाया जाए, गाड़ियों में प्रदूषण नियंत्रण यंत्र लगाया जाए, ईंधन उच्च गुणवत्ता वाले की प्रयोग किया जाए, इलेक्ट्रिक गाड़ियों का प्रयोग बढ़ाया जाए, वृक्षारोपण पे बल दिया जाए। आवश्यकता पड़ने पर यदि पेड़ कटता है तो दूसरे स्थान पर एक पेड़ के बदले 5 पेड़ को लगाया जाए। पलारी जलाने पर प्रतिबंध लगे। कचड़े का संग्रहण कर वर्मी कंपोस्ट बनाया जाए। सड़कों के किनारे वृक्ष अवश्य लगाए जाए। कल कारखानों से निकलने वाले गंदे पानी नदियों में न जाने दिया जाए। जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगाया जाए, गांवों में गोबर गैस संयंत्रों को बढ़ावा दिया जाए। आइए हम शपथ लें, हम सबका एक ही नारा, प्रदूषण मुक्त हो देश हमारा।
0: भाई अभी हम सुनी रहा था वार्ता, पर्यावरण की सुरक्षा कैसे करें। वार्ताकार था रविंद्र भारती। न भाई बहनों, आज मंगलवार छे, न मंगलवार का दिन अपन सुना रामायण पाठ। तो सुना मुकेश की आवाज में रामायण पाठ।

किसान भाइयों ने अभी हम सुनी रहा था रामायण पाठ मुकेश की आवाज़ में। न भाइयों ने देखो हमारा खेत में जायद की फसल लगे छे, न कई भाई ना तो ग्रीष्मकालीन मूंग की फसल लगाई होएगा। मूंग जो छे एक फलीदार फसल है जिसका मुख्य रूप से हम दाल का रूप में प्रयोग करा। न दाणा का साथ साथ फसल की पत्ती न तना से पर्याप्त मात्रा में भूसो मिलत जो कि जानवर न का चारा का रूप में हम प्रयोग करी सकान। एकासी हरी खाद का भी एक हरी खाद का रूप में भी प्रयोग करी सकान। न मूंग जो छे दाल वाली फसल आए तो एक ही जड़ में सूक्ष्म जीवाणु रह जो कि वायुमंडल की नाइट्रोजन का एकत्रित करत न अगली फसल का लेना हमें का प्रयोग करी सकान। तो भाई बहनों हमारा खेत में कभी दाल वाली फसल जैसे मूंग अभी लगेल हुए न एका कटना का बाद हम खरीफ की फसल लगावेंगा जो कि हमारी की नाइट्रोजन की पूर्ति करी देगा। न भाई बहनों एका साथ आज हमारो आज को खेती गृहस्थी कार्य भी समाप्त हो। तो अपनी बहन का देव आज्ञा, राम राम।

0: अभी आप सुन रहे थे खेती गृहस्थी कार्यक्रम, ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है, मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज़ पर। कुछ ही पलों में आकाशवाणी भोपाल से रिले करेंगे सुर्खियों में।
1: मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में।
2: नमस्कार, सुर्खियों में कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं सोनू सूद और आज हम वैश्विक अनिश्चितता के दौर में राष्ट्रीय हित और आर्थिक संयम विषय पर चर्चा करेंगे। और इस अहम विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हैं आर्थिक विशेषज्ञ शरद कोहली। शरद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में।
3: नमस्कार सोनू, आपको और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा अभिवादन।
2: शरद जी, से पहले कि हम चर्चा शुरू करें, हम एक अंश सुनेंगे प्रधानमंत्री के संबोधन का, जिसमें उन्होंने बताया है कि अस्थिर परिस्थितियों के दौर से हम काफी समय से गुजर रहे हैं और अभी ऐसा समय है जब जन भागीदारी के द्वारा एक नागरिक के तौर पर कर्तव्य निभाते हुए छोटे छोटे संकल्प लेकर ही हम इस स्थिति से पार पा सकते हैं। आइए सुनते हैं।
4: पिछले कुछ वर्षों में दुनिया लगातार अस्थिर परिस्थितियों से गुजर रही है। पहले कोरोना का संकट, फिर वैश्विक आर्थिक चुनौतियां और अब पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव। इन सारी परिस्थितियों का असर लगातार पूरी दुनिया पर पड़ रहा है और भारत भी इससे अछूता नहीं है। सरकार भी लगातार ये प्रयास कर रही है कि देश के लोगों, देश के सामान्य नागरिक पर इन सारी विपरीत परिस्थितियों का कम से कम असर हो। लेकिन ऐसे समय में देश को जन भागीदारी की शक्ति की बहुत बड़ी आवश्यकता है। हमें भारत के नागरिक के तौर पर अपने कर्तव्य को प्राथमिकता देनी होगी। जब तक हालात सामान्य नहीं होते, हम सबको मिलकर छोटे छोटे संकल्प लेने होंगे।
2: क्या कहेंगे आप, अभी जो स्थिति है, जैसा कि प्रधानमंत्री ने बताया कि काफी समय से एक के बाद एक क्राइसिस आ रहे हैं जिससे भारत ने बहुत मजबूती के साथ हमने उनका सामना किया है, अभी जो स्थिति है, अभी जो पश्चिम एशिया का संकट है, उससे किस तरह के स्पेसिफिक चैलेंजेस उत्पन्न हुए हैं हमारे देश के लिए?
3: देखिए, हम सब जानते हैं कि भारत क्रूड ऑयल के लिए, अगर मैं उदाहरण के तौर पर लूं, तो 87% के करीब भारत का क्रूड ऑयल विदेश से आता है और इन सब का भुगतान पेट्रो डॉलर्स, तो ज्यादातर लोगों ने सुना होगा कि ये इसका क्रूड ऑयल का ज्यादातर जो व्यापार है वो पेट्रो डॉलर्स में किया जाता है। तो पेट्रो डॉलर्स की जब हम बात करते हैं सोनू, हमारा जो विदेशी मुद्रा भंडार है, वो विदेशी मुद्रा भंडार सीधा सीधा प्रभावित होता है। इस समय जो हमारा विदेशी मुद्रा भंडार है वो 700 बिलियन डॉलर से नीचे आ चुका है। तो प्रधानमंत्री जी के वक्तव्य क्या, उसके पीछे का आप अर्थशास्त्र जब लोग समझने की कोशिश करते हैं, और मैं समझता हूँ यही आकाशवाणी प्रसार भारती का दायित्व है जो इस समय पूरा आकाशवाणी निभा रहा है, कि लोगों के लिए इसको सरल भाषा में समझाया जाए कि प्रधानमंत्री जी ने अगर ऐसा कहा तो उसके पीछे क्या अर्थशास्त्र था। अब वो जहां पर बोल रहे थे, पहले उन्होंने हैदराबाद से बोला, फिर वडोदरा से भी बोला, तो वो इस वक्तव्य में ये तो है नहीं कि पूरी पीछे वो इकोनॉमिक्स समझाएंगे। तो प्रधानमंत्री जी की बात को अक्षरशः लेने का उसके पीछे अर्थशास्त्र समझना होगा। वो ये है कि हमारा विदेशी मुद्रा भंडार तेजी से गिर रहा है और ये जो खाड़ी में वेस्ट एशिया में कभी हाँ कभी ना, कभी लगता है कि ट्रूस हो जाएगा, वहां पर शांति वार्ता सफल हो जाएगी, प्रस्ताव स्वीकार हो जाएगा, अगले दिन फिर लगता है कि नहीं होगा। शुक्रवार को ऐसा लगा कि ये मामला अब सुलट जाएगा, क्योंकि 14 सूत्री एक प्रस्ताव भेजा गया अमेरिका के पास ईरान द्वारा, और जब पता लगा कि इसको अमेरिका ने ठुकरा दिया, तो क्रूड ऑयल की कीमतें जो $100 से नीचे आ गई थी पिछले वीकेंड से पहले जी। वो एक दफे फिर सोमवार जैसी सुबह हुई, फिर वो 105 पहुंच गई, तो ये ऐसा लगने लगा कि जल्दी समाप्त होने वाला नहीं है। और अगर ये चलता रहा तो जिस प्रकार से रुपए पर दबाव बन रहा है, जिस प्रकार से विदेशी मुद्रा का हमें भुगतान करना पड़ रहा है, तो उनको लगा कि भाई लोग अगर इसमें अपना योगदान दें, 140-145 करोड़ की जनता है, लोग इसमें अगर अपना योगदान देते हैं जी, तो इस समस्या का हम काफी हद तक समाधान पा सकते हैं। उसके पीछे जो मूल सिद्धांत है वो ये है कि बूंद बूंद करके घड़ा भरता है।
2: आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री ने क्या क्या ये छोटे छोटे उपाय सुझाए, छोटे छोटे संकल्प लेने के लिए नागरिकों को प्रेरित किया, ताकि जैसे आपने कहा कि विदेशी मुद्रा भंडार जो है हमारा, उसको कम से कम व्यय किया जाए।
4: मेरी देश के हर नागरिक से अपील है, जहां संभव हो पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, मेट्रो का उपयोग करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। जिनके पास कार है वे एक गाड़ी में ज्यादा लोगों को साथ लेकर चलें, जिनके पास ईवी है वे भी दूसरों की मदद के लिए आगे आएं। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्चुअल मीटिंग्स और वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेस की व्यवस्था पर काम करें। साथियों, सिर्फ ईंधन ही नहीं, खाने के तेल पर भी देश की बड़ी विदेशी मुद्रा खर्च होती है। अगर हम थोड़ा संयम बरतें, तेल की खपत कम करें खाने के तेल की, तो इससे देश और हमारी सेहत दोनों को लाभ होगा।
2: बहुत ही गूढ़ बातें हैं और ये कोई नई बात नहीं है, ये सारी बातें पहले भी प्रधानमंत्री कह चुके हैं। पर्यावरण के संरक्षण के संदर्भ में जो उन्होंने मिशन लाइफ सुझाया था, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, उसमें भी ये सब बातें थी। और वोकल फॉर लोकल जो सरकार का हमेशा से एक मूल मंत्र रहा है, उसके तहत अगर हम देखें तो उन्होंने जो कहा है कि डोमेस्टिक डेस्टिनेशंस में वेडिंग्स करिए, ये बात भी वो पहले कर चुके हैं। लेकिन अब उन बातों का जो एक कहें कि महत्व था, वो बहुत बड़े वे में अभी सामने आ रहा है स्थिति में।
3: जी हाँ, प्रधानमंत्री जी तो देखिए शुरू से ही स्वदेशी के ऊपर जोर दे रहे हैं, आत्मनिर्भरता के ऊपर, स्वदेशी के ऊपर, और छोटी छोटी बातों में कहते हैं। पर इस बार उसमें एक और आयाम सोनू जुड़ा
2: जी।
3: वो आयाम था विदेशी मुद्रा भंडार का। आप देखें, जैसा मैंने आपको कहा, इन सभी चीजों में जो आपको कॉमन थ्रेड, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं, वो विदेशी मुद्रा भंडार को सेव करना था, जहां जहां हम बचत कर सकते हैं, जो गैर जरूरी चीज है। और अगर मैं सोनू आपकी इजाजत से टॉप 3 आइटम जो हम इंपोर्ट करते हैं, मुझे लगता है आकाशवाणी के श्रोताओं को ये जानकर बहुत बड़ी उनकी जानकारी में इजाफा होगा कि सबसे ऊपर क्रूड ऑयल है, $140 बिलियन का हमने वित्त वर्ष 25-26 में आयात किया, लगभग $140 बिलियन का। दूसरे नंबर का क्या था, आपको हैरानी होगी सुन के, कि इसमें इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स और कंपोनेंट्स थे। भारत में बहुत बड़ी मात्रा में मोबाइल फोन बन रहे हैं, उनके छोटे छोटे कलपुर्जे आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सामान आता है, लगभग 115 से 120 बिलियन डॉलर का। ये दूसरे नंबर का आइटम था। और हैरानी की बात है कि तीसरा आइटम सोना था, जो कि $72 बिलियन पिछले साल 25-26 में हमारे यहाँ, इससे पिछले साल 58 था, उससे पिछले साल 45 था, लगातार इसका आयात हमारे यहाँ बढ़ रहा है। तो हमारा इंपोर्ट बिल, जिसको हम कहते हैं आयात का जो पूरा खर्च है
2: जी,
3: उसके बढ़ते हुए क्वांटम को देख के, उसके बढ़ती हुई संख्या को देख के प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि ये तो अगर लोग अगर थोड़ा थोड़ा योगदान दें तो तभी ये बचत हो सकती है। क्योंकि ये किस लिए आता है, लोगों के इस्तेमाल के लिए सब चीजें आती है, क्रूड ऑयल आता है उसको लोग इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स आते हैं, चलिए ठीक है वो B2B होता है, कुछ लोग मोबाइल फोन बना के उसको एक्सपोर्ट भी करते हैं। सोना तो ऐसी चीज है जो कि 60-70% सोना जो हम आयात कर रहे हैं, और ये भी मैं बताना चाहूंगा सोनू के 99% सोना भारत का आयात किया जाता है, तो उसमें 60-70% तो ज्वेलरी मेकिंग में यूज होता है, बाकी का निवेश में जाता है। तो ये ऐसी चीज है जिसके बिना लोग गुजारा कर सकते हैं, ठीक है, क्रूड ऑयल के बिना हम गुजारा नहीं कर सकते। हम शायद इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हम मंगाते हैं क्योंकि हमारा उस पर निर्यात भी निर्भर है, उससे विदेशी मुद्रा आती भी है, परंतु सोना तो ऐसी चीज है। तभी उन्होंने सोने के लिए अलग से कहा, जो उन्होंने एक साल की बात कही कि एक साल तक लोग सोना ना खरीदे। और मैं देखिए ये कहना चाहूंगा क्योंकि सोना भारत में भावनाओं से भी जुड़ा हुआ है, सोना हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ है, हमारे सोशल फैब्रिक से जुड़ा हुआ है, तो उसमें आप सोने को रिसाइकल करिए ना। एक अनऑफिशियल एस्टिमेट आया कि भारत में 30,000 टन सोना भारतीय घरों में है। तो जो आपके पास पुराने फैशन के हार पड़े हैं, कंगन पड़े हैं, चेन पड़ी है, अंगूठी पड़ी है, और अगर आप ज्वेलरी पहनना चाहते हैं, शादी ब्याह का मौका है, फंक्शन है, कहीं देना चाहते हैं, तो उस सोने को आप लाइए टेबल पे। एक बड़ी ज्वेलरी कंपनी ने अभी किसी फेमस क्रिकेटर को हायर किया सिर्फ यही कहने के लिए कि आप पुराना सोना अपना लाइए और बनवाइए, क्योंकि नया आप सोना के रेट भी बहुत बढ़ चुके हैं, खरीदना भी महंगा पड़ता है, लोग पीछे शिकायत भी कर रहे थे कि सोना हमारी पहुंच से बाहर हो गया, तो उसको रिसाइकिल किया जाए। इसका मतलब ये नहीं कि आप सोना पहनना छोड़ दें। प्रधानमंत्री जी ने यह बिल्कुल, कल कुछ लोगों ने इस बात को थोड़ा सा गलत परसीव किया कि क्या सोना पहनना छोड़ दें, सोने का इस्तेमाल, सोना खरीदने को मना किया उन्होंने, सोना पहनने को या सोना रिसाइकल करने को उन्होंने मना नहीं किया।
2: बिल्कुल शरद जी, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगी। अभी 70 दिनों से अधिक हो गए हैं वेस्ट एशिया क्राइसिस को शुरू हुए, और हमने देखा है कि बाकी जो विकासशील देश है और विकसित देश है, हर जगह पेट्रोल डीजल के प्राइसेस में बढ़ोतरी हुई है, कहीं 50%, कहीं उससे भी ज्यादा, बहुत अवेलेबिलिटी पर भी असर हुआ है। भारत ने अभी तक जिस तरह से इस इकोनॉमिक क्राइसिस से डील किया है, आप कैसे तुलना करेंगे? और दूसरा प्रश्न मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि ये देखते देखते हुए कि शायद यह क्राइसिस लंबा चल सकता है, जैसे आप अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे, आपको लगता है जो सरकार ने ये अपील की है ये एक इंक्लूसिव अपील है सबको साथ में लेते हुए और बहुत दूरदर्शिता से भरी हुई एक स्टेप है?
3: बिल्कुल, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, क्योंकि अगर आप अमेरिका को स्वयं देखें जो दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर है, सबसे बड़ा तेल का वहां पर उत्पादन होता है, उनके स्वयं अपने देश में कीमतें डबल हो चुकी है। वहां पर उसको गैस बोला जाता है, हम लोग पेट्रोल डीजल बोलते हैं, वो लोग गैसोलीन बोलते हैं, हम लीटर में नापते हैं, वो लोग उसको गैलन में नापते हैं। भारत सरकार ने, मुझे लगता है भारत की जो अच्छी आर्थिक परिस्थिति पिछले कुछ सालों में रही उस दम पर भारत इसको झेल पाया, परंतु प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि इसका दबाव भारत सरकार पर, भारत के कोष पर पड़ रहा है। हम और आप जाके पेट्रोल और डीजल जब हम भरवाते हैं या हम एक नॉर्मल गैस का सिलेंडर खरीदते हैं, हमें एहसास नहीं होता, हमें लगता है सब कुछ ठीक ठाक है, ऐसे ही नजर आता है सब कुछ ठीक ठाक है, परंतु इसके पीछे, जैसा मैंने कहा कि इसके पीछे जो अर्थशास्त्र है कि इस पे जो फिस्कल लोड, उसको हम अंग्रेजी में कहते हैं, जो हमारे ऊपर राजकोषीय भार पड़ रहा है, वो भार धीरे धीरे धीरे धीरे करके कठिन होता जा रहा है। और एक अनुमान के अनुसार 30,000 करोड़ रुपए प्रति माह, सोनू, ये जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं जिसमें हिंदुस्तान पेट्रोलियम है, भारत पेट्रोलियम है, इंडियन ऑयल है, जो सरकारी क्षेत्र के संस्थान है, इनको लगभग 1,000 करोड़ रुपए पर डे का लॉस हो रहा है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। तो कब तक ये लॉस झेल पाएंगे? आखिर अगर क्रूड ऑयल की कीमतें लगातार ऊपर बनी रही तो मुझे लग रहा है कि कभी ना कभी ये कठिन निर्णय लेना पड़ेगा। और इससे पहले कि ये निर्णय लेना पड़े, प्रधानमंत्री जी ने एक घर के बड़े के नाते, देश के नेता होने के नाते, उन्होंने लोगों को एक सुझाव कहिए, अपील कहिए, उसको दरख्वास्त कहिए, रिक्वेस्ट कहिए, जो मर्जी आप कहिए, लोगों को करिए कि अगर बूंद बूंद करके घड़ा भरता है, हर व्यक्ति योगदान देगा, अगर सरकार कह सकती है सबका साथ सबका विश्वास, तो आई थिंक लोगों को भी ये सोचना चाहिए कि हम भी, और मैं तो ऐसा मानता हूं सोनू के युद्ध की जब परिस्थिति होती है ना, तो हर व्यक्ति किसी ना किसी तरीके से सिपाही बन जाता है। तो मुझे लग रहा है कि हर व्यक्ति, चाहे हम लोग गन उठाए तो नहीं, युद्ध के मोर्चे पर हमारा कोई इसमें रोल नहीं है, ना हमारा देश लड़ रहा है, पर हम इस तरीके से देश में एक आर्थिक युद्ध जो हमारे ऊपर जबरदस्ती ऐसा लगता है थोपा गया है, उससे हमें हर व्यक्ति अपना अपना योगदान एक सिपाही बन के दे सकता है।
2: और इसमें अगर सरकार को एक कदम उठाना पड़ता है जैसे बाकी सब देशों ने उठाया है, अगर पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी करनी पड़ती है, वित्तीय जो हमारी स्वास्थ्य है हमारे देश का उसको बरकरार रखने के लिए, तो उसको भी जैसा आपने समझाया एक अर्थशास्त्री के तौर पर उसे गहराई से समझना चाहिए।
3: बिल्कुल, मुझे लगता है देखिए जो अर्थशास्त्र है, मुझे लगता है उसमें ना कोई राजनीति है, उसमें कुछ नहीं है, वो तो एक सिंपल इकोनॉमिक्स है कि अगर देश के ऊपर भार पड़ रहा है तो लोगों पर भार पड़ रहा है, लोगों पर भार पड़ रहा है तो देश पर लाभ पड़ रहा है, इस इन लोगों को मिला के ही देश बनता है। तो मुझे लग रहा है अगर कल को ये कठिन निर्णय लेना भी पड़ता है तो लोग अब इसको बेहतर समझ पाएंगे। ठीक है, कुछ आवाजें तो देखिए सोनू हमेशा ही ऐसी होती हैं जिनको कि कोई भी निर्णय पसंद नहीं आता, अच्छा निर्णय भी पसंद नहीं आता, तो ये बढ़ाने की तो मैं बात अलग है।
2: इनफैक्ट आप आवाजों की बात कर रहे हैं शरद जी, तो IMF की प्रमुख ने अभी कुछ दिन पहले कहा था कि उनको ये लगता है कि सरकार को, भारतीय सरकार को अब एक स्टेप लेना चाहिए, नहीं तो वो हमारी फिस्कल हेल्थ के लिए लॉन्ग रन में ठीक हितकारी नहीं होगा।
3: क्योंकि IMF में बहुत बड़े बड़े अर्थशास्त्री बैठे हैं और जब वो गणना करते हैं, जब वो आकलन करते हैं, तो उनको दिखाई दे, मैंने तो आपको स्वयं ही कहा कि अगर जो थोड़ा भी अर्थशास्त्र को समझता है वो व्यक्ति तो तुरंत कहेगा, बल्कि वो हैरान होगा कि अभी तक भारत सरकार ने कैसे इसको बर्दाश्त कर रखा है। और प्रधानमंत्री जी ने, आपने ध्यान दिया होगा, अगर उनके आप पूरा वक्तव्य जब सुनेंगे हम, तो उन्होंने कहा कि इससे देश पर दबाव पड़ रहा है और उन्होंने कहा कि देश इससे अछूता नहीं है। मुझे लगता है लोगों के लिए ये संकेत काफी है। अब देखिए प्रधानमंत्री जी आके लोगों को डराएंगे तो नहीं कि हम, अब प्रधानमंत्री जी आके आंकड़े देने लगे कि इतने दिन हमारा विदेशी मुद्रा भंडार चलेगा, कल को फिर हमारा आगे क्या होगा, इस प्रकार की वो कभी भी बात नहीं करेंगे। ये तो आपको बेसिक इकोनॉमिक्स समझनी होगी कि जब कोई चीज पीछे से महंगी आ रही है और हमारे यहाँ उसका उत्पादन नहीं होता है, मात्र 13% क्रूड हमारे देश में होता है, 87% हम बाहर से मंगाते हैं, और विदेशी मुद्रा भंडार तो ज्यादातर डॉलर में काम होता है, कि जो फॉरेक्स रिजर्व होते हैं वो खाली डॉलर से नहीं बनते हैं, उसमें जो रिजर्व बैंक के पास सोना है वो भी होता है 880 टन के आसपास, और इसमें IMF की स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स होती है, इसको SDR बोला जाता है। तो अगर ये धीरे धीरे इसी प्रकार इरोड होता रहा, ये धीरे धीरे जाता रहा, तो एक समय ऐसा आ सकता है जब हमें, आपको याद होगा 1990-91 में भारत को एक समय ऐसा था जब अपना सोना गिरवी रखना पड़ा था, क्यों? क्योंकि हमारे पास विदेशी मुद्रा समाप्त हो गई थी। तो उस ओर अगर प्रधानमंत्री जी को लगा कि देश चल पड़ा है, तो इसमें लोगों को अब आगे आना चाहिए और लोगों को इसको स्पोर्टिंगली लेना चाहिए और लोगों को अपनी तरफ से थोड़ा थोड़ा, मैंने तो कहा बूंद बूंद करके घड़ा भरता है। कोई व्यक्ति ये सोचता है कि मेरे 5 लीटर तेल कम भरवाने से क्या देश का विदेशी मुद्रा भंडार बच जाएगा? जी हां, बच जाएगा, क्योंकि हर व्यक्ति अगर ऐसा सोचेगा तो 140 करोड़ की हमारी आबादी तो कमाल करके दिखा सकती है। सुनो
2: शरद जी, अंतर्राष्ट्रीय संकट के समय में राष्ट्रीय हित के लिए आर्थिक संयम और हरेक नागरिक का योगदान कितना आवश्यक है, उस पर प्रकाश डालने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
3: धन्यवाद, थैंक यू।
2: इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही सुर्खियों में कार्यक्रम समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: सुर्खियों में
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, लीजिए अब सुनिए।
0: हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज पर। रात्रि के 8:15 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया।

दिल ने फिर याद किया कार्यक्रम में मैं आज हूँ आपके साथ अर्चना वर्मा, स्वीकारे मेरा नमस्कार। श्रोताओं, गर्मी के इस मौसम में जब शाम आती है, ये शाम इतनी सुकून देके जाती है कि ऐसा लगता है कि बस शाम थोड़ी रहे, थोड़ा टाइम ज़्यादा शाम रहे और आपके कार्यक्रम के लिए हम हाज़िर हो जाएं। चलो इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और हम आपको सुनवाते हैं आज ज़िंदगी विषय पर कुछ बहुत अच्छे से ही हसीन से नगमे।

ज़िंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो ज़िंदगी की भीड़ में खुश रहता है, ज़िंदगी उसके आगे सिर झुकाती है। बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता, बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती। जब तक नहीं पड़ती हथौड़ों की चोट, तब तक कोई पत्थर भगवान नहीं होता।

जिंदगी कभी धूप है, कभी ठंडी छांव जैसी, कभी खुशियों का मेला तो कभी वीरान गांव जैसी। कभी अपनों का साथ मिले, कभी तन्हाई घेर लेती है, मगर चलते रहना ही सच है, जिंदगी यही कहती है।

परिस्थितियां सदैव एक जैसी नहीं रहती। तर्क वितर्क, कलह, कलेश, क्रोध सब आएंगे, परंतु इन सब को छोड़कर प्रेम को महत्व देना और अपने रिश्तों को जीवंत रखना, यही सुखी जीवन का रहस्य है।

जिंदगी में कोई साथ दे ना दे, मगर चलो उसी राह पर जो दिल कहे। ये दुनिया कहेगी तुम्हें बुरा बोलने को, मगर हमेशा बोलो वही जो दिल कहे। जिंदगी की राह में मिलेंगे कई बहकावे, मगर सफ़र में सुनो उसकी जो दिल कहे। अभी कई आएंगे तुम्हें बर्बाद करने वाले, मगर तुम संभलो उससे ही जो दिल कहे। करने के लिए तो बहुत कुछ है जहाँ में, मगर तुम हमेशा करो वही जो तुम्हारा दिल कहे।

0: सच है क्या सब सच है।
1: वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे।

कुछ सपने अधूरे हैं, कुछ ख्वाहिशें बाकी है, ज़िंदगी की किताब में कई किस्से बाकी हैं। न हार मान अभी है दिल, तेरे हिस्से की खुशियाँ अभी बाकी है। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज़ पर। कुछ ही समय में समाचार होंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। सीबीआई ने कथित नीट परीक्षा पेपर लीक संबंध में मामला दर्ज किया। देश भर से कई संदिग्धों को हिरासत में लिया गया। तमिलनाडु में एआईएडीएमके पार्टी में फूट। 30 विधायकों का बड़ा गुट विजय की सरकार का समर्थन करेगा, विश्वास मत कल। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने देश भर की अदालतों के आधुनिकीकरण का खाका तैयार करने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। भारत 2 दिन के ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी बृहस्पतिवार से करेगा। इसमें पारस्परिक हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। तेल की बढ़ती कीमतों और अमेरिका ईरान तनाव के बीच घरेलू बाजार में लगभग 2% की गिरावट। और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन के पुरुष डबल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 के कथित पेपर लीक के संबंध में मामला दर्ज किया है। इस मामले में देशभर से कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। जांच एजेंसी ने उच्च शिक्षा विभाग के लिखित शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया है। नीट यूजी परीक्षा के संचालन में कथित अनियमितताओं और पेपर लीक संबंध में आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, चोरी और साक्ष्य नष्ट करने तथा सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज की गई है। मामले की जांच के लिए विशेष सीबीआई टीमें विभिन्न स्थानों पर भेजी गई हैं। नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में राजस्थान पुलिस के विशेष अभियान दल ने अब तक 15 लोगों को हिरासत में लिया है। जांचकर्ता अब संदिग्ध नेटवर्क के विस्तार और परीक्षा से पहले प्रश्न पत्रों के प्रसार से जुड़े धन के लेन देन की जांच कर रहे हैं। दल ने कल जयपुर में मनीष नाम के कथित मुख्य साजिशकर्ता को हिरासत में लिया। सूत्रों के अनुसार इससे पहले राजस्थान पुलिस ने 7 मई को देहरादून से 5 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिनमें कथित मुख्य साजिशकर्ता सीकर का करियर काउंसलर राकेश कुमार भी शामिल था। अगले दिन 4 नीट परीक्षार्थियों को भी गिरफ्तार किया गया। उधर नासिक पुलिस ने नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है। इससे पहले राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए 3 मई को आयोजित नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द कर दी थी। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि एजेंसी विद्यार्थियों को नीट यूजी परीक्षा शुल्क वापस कर देगी।
1: हमने इस मैटर को सीबीआई को इंक्वायरी को दिया है और हम इस तरह के जितने लोग खुराफात किए हैं उनको जेल भेजेंगे ताकि बच्चों का भविष्य किसी भी प्रकार से एडवर्सली प्रभावित न हो। इसके साथ ही हमने यह भी कहा कि बच्चों के लिए हम दोबारा परीक्षा कराएंगे जो कि एकदम फेयर तरीके से होगी, जिसमें किसी भी तरह की अनियमितता नहीं होगी।
0: तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नव निर्वाचित टीवी के सरकार के लिए होने वाले विश्वास मत से पहले राज्य की राजनीतिक स्थिति नाटकीय रूप में बदल गई है। ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी सरकार को समर्थन देने के मुद्दे पर 2 गुटों में बंट गई है। पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी महासचिव एदापड्डी के पलानीसामी के नेतृत्व वाले गुट ने पार्टी विधायकों को टीवी के सरकार का समर्थन न देने का निर्देश दिया है। वहीं 30 विधायकों के समर्थन का दावा करने वाले एक गुट ने एसपी वेलुमणि को ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी विधायक दल का नेता चुना है। ये गुट विश्वास मत के दौरान टीवी के सरकार का समर्थन करेगा। सरकार को अम्मा मक्कल मुनित्र कड़गम के एकमात्र विधायक एस कामराज का भी समर्थन प्राप्त है, जिन्हें आज ही उनकी पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था। मुख्यमंत्री जोसेफ विजय कल से ही विश्वास मत से पहले समर्थन जुटाने के लिए सहयोगी दलों के नेताओं से बैठकें कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हेमंत बिस्व शर्मा ने आज लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। डॉ शर्मा के साथ 4 मंत्रियों ने भी शपथ ली। इनमें भाजपा से रामेश्वर तेली और अजंत नियोग, असम गण परिषद से अतुल बोरा और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट से चरण बोरो शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा सहित 4 मंत्रियों को बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि श्री शर्मा ने कुशल प्रशासक के रूप में पहचान बनाई है। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने अपने हाथ में ले ली है। मामले की जांच के लिए पुलिस महानिदेशक पंकज सिंह की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय विशेष जांच दल का गठन किया गया है। इस बीच पुलिस ने इस मामले में उत्तर प्रदेश और बिहार से 3 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। न्यायालय ने आरोपियों को 24 मई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने देश भर के न्यायालयों के आधुनिकीकरण का खाका तैयार करने के लिए न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति गठित करने की घोषणा की है। इसके लिए सरकार से 40 से 50 हजार करोड़ रुपए का आवंटन सुनिश्चित करने को कहा गया है। समिति 31 अगस्त तक प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य संजीव सान्याल को विस्तृत निष्कर्ष और आवश्यक निधि का विवरण प्रस्तुत करेगी। भारत 14 और 15 मई को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में बताया कि ब्रिक्स के सदस्य और सहयोगी देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधि मंडलों के प्रमुख बैठक में भाग लेंगे। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे, इटली की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री जायसवाल ने कहा कि यात्रा के दौरान ऊर्जा सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत होगी।
2: संयुक्त अरब अमीरात दौरे के दौरान भी ऊर्जा सुरक्षा पर बातचीत होगी। जिस प्रकार का हमारी उनसे साझेदारी चल रही है, कैसे इसको और व्यापक किया जाए ताकि हम अपने जो ऊर्जा सुरक्षा हमारी है उसको हम मजबूत कर सके। इसके अलावा जो 4 अन्य देश हैं, नॉर्डिक समिट होने वाला है, नॉर्वे की यात्रा है, स्वीडन की यात्रा है, इटली की यात्रा है, नेदरलैंड्स की यात्रा है, यहाँ पर भी ये देश में से नवाचार के बहुत बड़ा केंद्र है। इनोवेशन इकोसिस्टम में भारत में बहुत काम हो रहा है और क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज में ये लोग और ग्रीन ट्रांजिशन में काफी आगे हैं। तो इन सभी मुद्दे पर हमारी बातचीत होगी और वो सब साझेदारी जो विकसित भारत की तरफ हमको ले आता है उसे कैसे मजबूत किया जाएगा।
1: ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को चीन के समर्थन से जुड़ी खबरों पर श्री जायसवाल ने कहा कि ये खबरें पहले

0: अज्ञात तथ्यों की पुष्टि करती हैं।
1: ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम में हुए आतंकी हमले का एक सटीक, लक्षित और नपातुला जवाब था। इसका उद्देश्य उन आतंकवादी ढांचों को नष्ट करना था जो न केवल पाकिस्तानी राज्य द्वारा प्रायोजित है बल्कि पाकिस्तान से और उनके इशारों पर चलता है। अब यह उन राष्ट्रों को ही तय करना है, उन पर ही निर्भर करता है जो स्वयं को जिम्मेदार मानते हैं कि वे इस बात पर आत्मचिंतन करें कि क्या आतंकवादी ढांचे को बचाने के प्रयासों का समर्थन करना उनकी प्रतिष्ठा और वैश्विक साख को प्रभावित करता है।
0: गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार साइबर सुरक्षित भारत के निर्माण की दिशा में अथक प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने में अवैध खातों की समस्या एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र ने आज रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के साथ एक समझौता किया है। इसका उद्देश्य बैंकिंग और डिजिटल भुगतान प्रणाली में साइबर आधारित वित्तीय धोखाधड़ी से निपटने और अवैध खातों को कम करने में सहयोग को मजबूत करना है। श्री शाह ने कहा कि इस कदम से अवैध खातों का तेजी से पता लगाया जा सकेगा और उन्हें समाप्त किया जा सकेगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत आर्थिक, तकनीकी अथवा भू राजनीतिक हर तरह की बाधाओं का सामना करने में सक्षम है। नई दिल्ली में एक सम्मेलन में उन्होंने कहा कि खंडित भू राजनीतिक और व्यावसायिक परिस्थितियों के कारण दुनिया हर दिन संकटों का सामना कर रही है, लेकिन भारत ने लगातार प्रतिकूल परिस्थितियों को अवसरों में परिवर्तित किया है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोने की खरीद टालने और विदेश यात्रा से बचने की अपील एक सकारात्मक कदम और एहतियाती उपाय है। उन्होंने कहा कि देश में आवश्यक वस्तुओं की कोई कमी नहीं है। नई दिल्ली में पार्टी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि इस समय विपक्ष को सरकार के साथ खड़ा होना चाहिए।
2: विपक्ष को चाहिए कि वो पैनिक ना फैलाए, भ्रम की राजनीति ना करे और आपदा में अवसर की खोज और आविष्कार ना करें। और जिस तरह से कोविड की महामारी में भी विपक्ष ने ऐसी ही भूमिका निभाई थी, लेकिन भारत कोविड की महामारी से उभर पाया और मजबूत होकर निकल के आया, वैसे ही ये जो वैश्विक संकट है, चुनौतियां हैं इसमें, लेकिन भारत में वो मजबूती है कि इन चुनौतियों के सामने मजबूती से खड़ा भी रहेगा और मजबूत होकर उभर के आएगा।
0: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से सरकार मातृभाषा, भारतीय ज्ञान परंपराओं और एआई संचालित शिक्षा पर आधारित अनुसंधान और नवाचार को निरंतर बढ़ावा दे रही है। उन्होंने कहा कि ग्लोबल साउथ के देश विश्वास, समाधान और नेतृत्व की अपेक्षाओं के साथ भारत की ओर देख रहे हैं। भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद के स्थापना दिवस पर उन्होंने कहा कि यह संगठन भारतीय परिप्रेक्ष्य में सामाजिक विज्ञान अनुसंधान को नई दिशा देने का महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है।
3: आईसीएसईआर समय को आगे जाते हुए आने वाले 10-15 साल भारत को 2047 की रोड मैप में पहुंचने के लिए, लक्ष्य तक पहुंचने के लिए किस किस प्रकार की सोशल चैलेंजेस को ध्यान देना पड़ेगा, ये आईसीएसईआर के आने वाले 10-15 साल के काम होने चाहिए। हमें अपनी भाषा को महत्व देना पड़ेगा, हमारी अर्थनीति को मजबूत करना है तो हमारी भाषा को हमें महत्व देना पड़ेगा।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स चिकित्सा नवाचार और स्वास्थ्य सेवा उत्कृष्टता के क्षेत्र में देश का प्रमुख केंद्र बनकर उभरा है। आज नई दिल्ली में एम्स के दीक्षांत समारोह में उपराष्ट्रपति ने कहा कि एम्स ने किफायती दरों पर रोगी देखभाल और आधुनिक चिकित्सा के उच्चतम मानक स्थापित किए हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। तेल की बढ़ती कीमतों और अमेरिका ईरान तनाव के बीच बंबई शेयर बाजार में लगभग 2% की गिरावट आई है। अन्य आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं अमित गोयल।
4: बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स आज 1.9% के नुकसान से 1456 अंक लुढ़ककर 74,559 के स्तर पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 1.8% की गिरावट से 436 अंक गिरकर 23,380 के स्तर पर रहा। अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया 32 पैसे की गिरावट से 95.63 रूपये प्रति डॉलर के रिकॉर्ड निचले स्तर पर दर्ज हुआ।
0: सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने 2025-26 में 1,98,000 करोड़ रुपए का अब तक का सबसे अधिक शुद्ध लाभ दर्ज किया है। ये लगातार चौथा वर्ष है जब बैंक मुनाफे में रहे। वित्त मंत्रालय ने कहा कि यह प्रदर्शन तेजी से बढ़ती भारतीय अर्थव्यवस्था की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की मजबूती और स्थिरता को दर्शाता है। गुजरात में जनगणना का पहला चरण 1 जून से शुरू होगा। लोगों को पहली बार भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए स्वगणना पोर्टल se.census.gov.in के माध्यम से जनगणना में शामिल होने का अवसर मिलेगा। 17 से 31 मई तक लोग पोर्टल पर स्वगणना पूरी कर सकेंगे। पहली से 30 जून तक नामित जनगणना अधिकारी घर घर जाकर जानकारी एकत्र करने के लिए परिवारों की सूची तैयार करेंगे। मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा ने आज रीभोई जिले के भोईरिम्बोग में एरी रेशम प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य राज्य के पारंपरिक रेशम उद्योग को मजबूत करना और बुनकरों के लिए बेहतर बाजार पहुंच बनाना है। थाईलैंड बैडमिंटन ओपन में पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने इंडोनेशिया के पुत्र एरवियान सिहा और बगास मोलाना को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है, जबकि हरिहरन अमसा कारुनन और एमआर अर्जुन तथा महिला डबल्स में रितुपर्णा श्वेतापर्णा पांडा को हार का सामना करना पड़ा। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियाई अंडर 17 मुक्केबाजी प्रतियोगिता में लक्ष्य फोगाट ने फाइनल में प्रवेश कर लिया है, जबकि चार अन्य मुक्केबाजों ने सेमीफाइनल मुकाबलों में कांस्य पदक हासिल किया। आईपीएल क्रिकेट में अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक गुजरात टाइटंस ने 17वें ओवर में 4 विकेट पर 124 रन बना लिए हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि कैलाश मानसरोवर यात्रा 2026 के लिए पंजीकरण जल्द ही समाप्त होने वाले हैं। इच्छुक उम्मीदवारों को 19 मई से पहले यात्रा के लिए आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए mygov.gin पर लॉगिन कर सकते हैं। सीबीआई ने कथित नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में मामला दर्ज किया। देश भर से कई संदिग्धों को हिरासत में लिया। तमिलनाडु में एआईएडीएमके पार्टी में फूट, 30 विधायकों का बड़ा गुट विजय की सरकार का समर्थन करेगा, विश्वास मत कल। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने देश भर की अदालतों के आधुनिकीकरण का खाका तैयार करने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। भारत 2 दिन के ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी बृहस्पतिवार से करेगा। इसमें पारस्परिक हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। तेल की बढ़ती कीमतों और अमेरिका ईरान तनाव के बीच घरेलू बाजार में लगभग 2% की गिरावट। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आइए अब आपको सुनवाते हैं ओपी नैयर के संगीत निर्देशन में आशा भोसले की आवाज़ में ये गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म मेरे सनम से। आइए सुनवाते हैं आशा भोसले की आवाज़ में आपको ये गीत।

चित्रगीत का अंतिम नगमा फिल्म बहू बेगम से आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ें हैं। इस गीत को लिखा है साहिर लुधियानवी ने और संगीत रोशन का है।

इसी गीत के साथ चित्र गीत का यह कार्यक्रम यही संपन्न होता है। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चित्र गीत। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है, मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलो हर्ट्ज पर। रात्रि के 9:30 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में उर्दू कार्यक्रम कहकशा हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: अभी आप सुन रहे थे उर्दू कार्यक्रम कहकशा। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।
1: हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज़ पर।

0: ये धरती ये नदिया ये रहना
1: और आकाशवाणी इंदौर सुनते रहिए मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर।

0: आप सुन रहे हैं मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर।
1: आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का इंदौर केंद्र मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 10 बजने वाले हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम मन भावन।

मनभावन सुनने वाले हमारे तमाम श्रोताओं का स्वागत है। स्वीकार्य अर्चना वर्मा का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आपके पत्रों को लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी पसंद के गीतों के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी फरमाइश के गीतों को सुनवाने का सिलसिला। तो पत्र हमें भेजा है सनावत से हुकुम चंद कटारिया, पिंटू सेन, हरिनिवास खेड़े, दीपक, सचिन कटारिया, श्रीमती प्रभा कटारिया, कृष्णा रिवाज, अर्णव और काव्यांशी कटारिया। इसी गीत को सुनने के लिए हमें पत्र भेजा है खरगोन से ध्रुवा सोनवने, सुनीता, खुशी, प्रियांश, आशीष, पूनम, कृष्णा, शुभम सोनवने। इसी गीत के लिए हमें पत्र मिला है खंडवा से यथार्थ कुमार खंडाले, सुभाष खंडाले, मंदा, संदीप, माधुरी, पिंटू कुमार और जयश्री खंडाले। इस गीत के लिए हमें पत्र भेजा है मलकापुर से संजय पाटिल, उषा, प्रथमेश, निवृत्ति, शिरसागर, सतीश सराफ और जगदीश तांबर। इसी गीत की फरमाइश हमें भेजी है पंजाब से हरदेव मिका, बलमिंदर, जैतेक बीरक और मिका बीरक। इस गीत के लिए खंडवा से पत्र मिला है अब्दुल गफार डावर, खुशनसीब, अब्दुल हक डावर, जियालू हक डावर, मोहम्मद उमर डावर। आप सभी ने सुनना चाहा है फिल्म वो सात दिन का ये गीत, जिसे गाया है लता मंगेशकर, शब्बीर कुमार ने। इस गीत को लिखा आनंद बख्शी ने और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है।

आइए पूरी करते हमारे इन श्रोताओं की पसंद को जिन्होंने हमें पत्र भेजा है। इंदौर से दिनेश कुमार हाडिया, ज्योति हाडिया, राहुल, वर्षा, अंजू, अनुराग, अंकित, हेमंत, दिनेश, ज्योति, राहुल, सीपिका, अंजू, वर्षा रानी, अवधि, दिव्यराज हाडिया और इनके परिवार के सभी सदस्यों ने इसी गीत के लिए फरमाइश भेजी है। बक्सर बिहार से शरीफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी, डुमराव से वलीउल्ला अंसारी और आसमानाज अंसारी, दिल्ली से सोनम और अरीबा, बक्सर से राज एसडी अंसारी, आसमा खातून अंसारी और गुलफराज भागलपुरी इसी गीत को सुनना चाहा है। इंदौर से वंदना नगर इंदौर से राम लक्ष्मण, भरत शत्रुघ्न खर्चे, ललिता नारायण खर्चे, गणेश कार्तिक खर्चे, संजना परी खर्चे, मालती स्वाति और प्रयागराज चौधरी इसी गीत की फरमाइश हमें भेजी है। कवरकारों ने बड़वा से प्रवीण शिमाली, मीना शिमाली, आदित्य अदिति शिवानी और मीनूराज श्रीमाली ने इसी गीत को सुनना चाहा है। सनावत से दिलीप मालाकार, योगेश मालाकार, सुनीता मालाकार और मुस्कान ने। आप सभी ने सुनना चाहा है फिल्म खुद्दार का ये गीत, जिसे गाया है कुमार सानू, अलका याग्निक ने। इस गीत को लिखा है राहत इंदौरी ने और संगीत अनु मलिक का है।

आकाशवाणी इंदौर से आप सुन रहे हैं फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम, आपके पत्रों के द्वारा कार्यक्रम मनभावन। हम पूरी करते हैं हमारे इन श्रोताओं की पसंद को जिन्होंने हमें पत्र भेजा है उज्जैन से। पत्र हमें मिला है उज्जैन से विनोद मुनत जैन, नेहा जैन, दीपक और मयंक, चेतन नाहटा, दिलीप सिंह पवार, दीक्षा और कुशमुनत। इसके अलावा हमें पत्र मिला है पटियाला से बत्रा परिवार, मुकेश बत्रा, नीलम बत्रा, नितिन पलक, करण, गीतू, निहारिका वंश ने पत्र भेजा है। और इसी के साथ हमें मक्सी से पत्र मिला है दयाराम जाटव, चैंसिया आरोल, नानू राम कांसोटिया, नंदकिशोर कांसोटिया, दीपक कसोटिया का। इसी गीत की फरमाइश हमें करनाल से भेजी है सुधीर नूतन, मीनाक्षी तिवारी, सुनीता शर्मा ने। और इस गीत के लिए हमें सनावत से एक और पत्र मिला है मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अल्तमाश खत्री और रमेश गौड़, मोहम्मद शादाब खत्री। आप सभी ने सुनना चाहा है फिल्म 20 साल बाद का ये गीत, जिसे गाया है अनुराधा पौडवाल और मोहम्मद अजीज ने। इस गीत को संगीत से सजाया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और धुन बनाई है और इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने।

आइए श्रोताओं, अब सुनवाते हैं आपको फिल्म अर्पण का ये गीत, जिसे गाया है लता मंगेशकर ने। इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है। पसंद करने वाले हमारे श्रोता हैं, जिन्होंने हमें पत्र भेजा है सतारा से, सतीश वाघमारे, अतीश, स्वाति, वर्षा, श्रमण और श्रमीण वाघमारे। और इसी गीत को सुनना चाहा है कोल्हापुर से विजय चौहान, तेजस्विनी चौहान, अंकिता, अनिकेत, माया चौहान। इस गीत के लिए हमें पत्र मिला है लोहारी से राजेश कुमार धनजे, राहुल कुमार धनजे, विशाल, शीला, गायत्री धनजे, मानपुर से विजय वैद्य, रानी वैद्य, महिमा वैद्य, नीतू और इनके परिवार के सभी सदस्य। इसी गीत के लिए हमें हिंगोली से पत्र मिला है रामचंद्र इंगोले, सिद्धांत, टिंकू इंगोले, रमाबाई, सुरेंद्र, मयूरी, सुरभि, मंजूषा, गौतम इंगोले। बसमत महाराष्ट्र से ही पत्र है पार्वती सखाराम ठोके, दीपाली राजू ठोके, रोहित मोनू, सोनू ठोके। झुमरी तलैया से देव इंगोले, जकुली इंगोले, छोटू दादा और इनके परिवार के सभी सदस्य। इसी गीत के लिए मालेगांव से दत्ता घायल, सुनीता बाई घायल, सानिका और गजानन घायल का हमें पत्र मिला है। एक और पत्र हमें हरिद्वार से मिला है ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और महराज जहां का हमें पत्र मिला है। आप सभी ने सुनना चाहा है फिल्म अर्पण का ये गीत।

श्रोताओं इसे गीत के साथ कार्यक्रम मन भावन को विराम देने की अनुमति दें, पर हमारा पता नोट करें ताकि आप हमें पत्र लिख पाएं। हमारा पता है कार्यक्रम मन भावन द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी केंद्र मालवा हाउस इंदौर, और इंदौर का पिन कोड है 452001। आप हमें आपके पत्रों का इंतज़ार रहेगा, पत्र लिखना बिल्कुल ना भूलें। और दें अब इजाज़त अर्चना वर्मा को। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मन भावन। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है, मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 10:30 हुए हैं। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत। शास्त्रीय संगीत में आज आप सुनेंगे रागिनी त्रिवेदी का सितार पर बजाया राग बागेश्री।

शास्त्रीय संगीत में अभी आप सुन रहे थे रागिनी त्रिवेदी का सितार पर बजाया राग बागेश्री। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है, मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज पर। कुछ ही पलों में हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 के कथित पेपर लीक के संबंध में मामला दर्ज किया है। इस मामले में देशभर से कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। जांच एजेंसी ने उच्च शिक्षा विभाग की लिखित शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया है। नीट यूजी परीक्षा के संचालन में कथित अनियमितताओं और पेपर लीक के संबंध में आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, चोरी और साक्ष्य नष्ट करने तथा सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज की गई है। मामले की जांच के लिए विशेष सीबीआई टीमें विभिन्न स्थानों पर भेजी गई है। नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में राजस्थान पुलिस के विशेष अभियान दल ने अब तक 15 लोगों को हिरासत में ले लिया है। कल जयपुर में मनीष नाम के कथित मुख्य साजिशकर्ता को हिरासत में लिया। उधर नासिक पुलिस ने नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक मामले में एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है। इससे पहले राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए 3 मई को आयोजित नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द कर दी थी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि एजेंसी विद्यार्थियों को नीट यूजी परीक्षा शुल्क वापस कर देगी।
1: हमने इस मैटर को सीबीआई को इंक्वायरी को दिया है और हम इस तरह के जितने लोग खुराफात किए हैं उनको जेल भेजेंगे ताकि बच्चों का भविष्य किसी भी प्रकार से एडवर्सली प्रभावित न हो। इसके साथ ही हमने यह भी कहा कि बच्चों के लिए हम दोबारा परीक्षा कराएंगे जो कि एकदम फेयर तरीके से होगी, जिसमें किसी भी तरह की अनियमितता नहीं होगी।
0: तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नवनिर्वाचित टीवीके सरकार के लिए होने वाले विश्वास मत से पहले राज्य की राजनीतिक स्थिति नाटकीय रूप में बदल गई है। ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी सरकार को समर्थन देने के मुद्दे पर दो गुटों में बंट गई है। पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी महासचिव एड्डापाडी के पलनी स्वामी के नेतृत्व वाले गुट ने पार्टी विधायकों को टीवी के सरकार का समर्थन न करने का निर्देश दिया है। वहीं 30 विधायकों के समर्थन का दावा करने वाले एक गुट ने एसपी वेलुमणि को ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी विधायक दल का नेता चुना है। ये गुट विश्वास मत के दौरान टीवी के सरकार का समर्थन करेगा। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हिमंत बिस्व शर्मा ने आज लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। डॉ शर्मा के साथ 4 मंत्रियों ने भी शपथ ली। इसमें भाजपा के से रामेश्वर तेली और अजंता नियोग, असम गण परिषद से अतुल बोरा और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट से चरण बोरो शामिल है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने देशभर के न्यायालयों के आधुनिकीकरण का खाका तैयार करने के लिए न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने की घोषणा की है। इसके लिए सरकार से 40 से 50 हजार करोड़ रुपए का आवंटन सुनिश्चित करने को कहा गया है। समिति 31 अगस्त तक प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य संजीव सान्याल को विस्तृत निष्कर्ष और आवश्यक निधि का विवरण प्रस्तुत करेगी। भारत 14 और 15 मई को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक